जब हम नए आरंभ की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है श्री गणपति जी का, वो जो विघ्नों को हर लेते हैं और भक्तों को शक्ति, बुद्धि और साहस प्रदान करते हैं।

हम इंसान भी कितने अजीब हैं ना, कल क्या होगा इस फिक्र में आज का सुकून खो देते हैं। लेकिन भक्ति हमें सिखाती है कि जब हमारी चिंताएं हमारी ताकत से बड़ी हो जाएं, तो उन्हें उस विधाता को सौंप देना चाहिए जिन्होंने हमें इस दुनिया में भेजा है। जब वो साथ हैं तो डरने की फिर क्या बात है। आइए अपनी सारी चिंताएं भूलकर डूब जाते हैं इस सुंदर से भजन में।

जिंदगी में कभी कभी ऐसा मोड़ आता है जब चारों तरफ सिर्फ मुश्किलें नजर आती हैं। ऐसे में महाबली केसरी नंदन ही है जो हमारे रक्षक बनते हैं। तभी तो उन्हें संकट मोचन कहा जाता है, जो हर संकट को पल भर में दूर कर दें। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो अपने अंदर के हर डर को

दूर भगा दीजिए। और इस सुंदर से भजन में आइए हनुमान जी की इस प्यारे से भजन में खो जाते हैं।

शिव जी हर किसी के हैं, जिसने भी उन्हें सच्चे दिल से मान लिया, उन पर समर्पण कर दिया। हमने ये सुना होगा ना कि हर किसी को कहते हुए सुना है कि ये विधाता की मर्जी है, ये नियति का खेल है। आखिर इससे कौन बच पाया है? और इसी विधाता और नियति से जुड़ी कहानी और इससे बचने की भी कहानी आज हम आपको सुना रहे हैं कि आखिर कौन थे?

जो विधाता और नियति से बच पाए थे। सृष्टि की रचना हुई तो ऋषि भृगु के दो पुत्र हुए, धाता और विधाता। विधाता की पत्नी थी नियति और इनके पुत्र हुए ऋषि मृकुंड। मृकुंड ऋषि को एक पुत्र की अभिलाषा थी जो कि पूरी भी हुई। उन्हें एक पुत्र प्राप्त भी हुआ, लेकिन उस पुत्र का विधान था कि वो सिर्फ 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। नियति थी मृत्यु। विधे के विधान से कोई नहीं बच सकता, तो उनके ही वंश का ये बालक कैसे बचता? विधाता के पौत्र के मन में भय नहीं था, उनके मन में था समर्पण, और वो समर्पण भगवान शिव के लिए। उन्होंने अपने आखिरी दिन शिवलिंग की स्थापना की और ध्यान में बैठ गए। जब उन्हें ले जाने के लिए काल स्वयं यमराज आए, तो यमराज उन्हें ले जाने के लिए उन पर यमराज ने मृत्यु का पाश फेंका, लेकिन उस बालक ने एक आखिरी बार शिवलिंग को कस के पकड़ लिया। अब उस काल के पाश में वो बालक भी हैं और शिवलिंग भी। शिवलिंग फटा और निकले महाकाल। उन्होंने यमराज का अंत कर दिया और शिव भगवान शिव कहलाए कालांतक, शिव जी का एक रूप। अब बालक के प्राण तो बच गए, लेकिन सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। मृत्यु होनी ही बंद हो गई। सभी देवताओं ने प्रार्थना की कि यमराज को जीवित किया जाए ताकि सृष्टि अपने नियमों से चल सके। तो महाकाल महादेव ने उस बालक को काल से परे कर दिया, क्योंकि अगर यमराज जीवित हो जाता तो 16 वर्ष की अवधि तो उस बालक की पूर्ण हो चुकी थी। तो कालांतक ने उन्हें पहला चिरंजीवी बना दिया, जो आजीवन 16 वर्ष के रहेंगे और वे बालक कहलाए ऋषि मार्कंडेय। ऋषि मार्कंडेय जो अपने समर्पण और ज्ञान के कारण सबसे कम उम्र में भगवान शिव को प्राप्त कर लिया और पहले चिरंजीवी कहलाए।

6:41 का वक्त, भक्ति संगीत कार्यक्रम पुष्पांजलि सुन रहे हैं आप आज स्वेच्छा के साथ।

कहते हैं जब इंसान पर दुनिया का रंग चढ़ता है तो वो बदल जाता है, लेकिन जब उस पर हरि का, ईश्वर का रंग चढ़ता है तो वो तर जाता है। मीरा, कबीर, सूरदास, ये सब इसी रंग में रंगे थे। आइए हम और आप भी आज इस दिव्य रंग में रंग जाते हैं।

इस पूरी कायनात में अगर भगवान की मूरत को साक्षात दिखना हो तो वो माँ के रूप में दिखती है, चाहे वो हमारी जन्म देने वाली माँ हो या जगत जननी माँ भवानी। माँ की एक प्रार्थना हर बला को टाल देती है।

दुनिया का शोर बहुत ज़्यादा है, कभी कभी ये हमें अंदर से थका देता है। ऐसे में थोड़ी देर मौन बैठकर अपने अंदर झांकिए, वहाँ आपको एक सुकून की आवाज़ सुनाई देगी, वही ईश्वर का निवास स्थान है। अब वक्त हो गया है आज की पुष्पांजलि को यहीं पर विराम देने का, लेकिन इस वादे के साथ कि दिल में ईश्वर के प्रति विश्वास और होठों पर मुस्कान हमेशा बनी रहेगी। ठीक 7 बजे आप सुनेंगे समाचार और उसके बाद हम मिलेंगे कार्यक्रम सदाबहार गीत के साथ।

குட் மார்னிங் கான்பூர், கேசே ஹே ஆப்? உம்மீத் ஹே ஆப்கி ஆஜ் கி சண்டே மார்னிங் பியார், சுகூன் ஔர் டேர் சாரி பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் கே சாத் ஷுரு ஹுயி ஹோகி. वेल, कहते हैं संडे सिर्फ छुट्टी का दिन नहीं होता बल्कि खुद से मिलने का दिन भी होता है। जी हाँ, पूरे 6 दिन की बिजी लाइफ के बाद आज का दिन थोड़ा स्लो डाउन करने, परिवार के साथ बैठने, यारों के साथ बातें करने और अपने मन को रिफ्रेश करने का दिन है। वेल, इससे बेहतर मॉर्निंग वाइब भला और क्या हो सकती है ना? दोस्तों, जून 2026 का महीना अब अपनी आखिरी जर्नी पर है और बस 2 दिन बाद जुलाई नई उम्मीदों, नई बिगिनिंग्स और नई अपॉर्चुनिटीज के साथ आधा साल बीत जाने के साथ ही दस्तक देने को तैयार है। तो चलिए जून के इस आखिरी वीकेंड को बनाते हैं थोड़ा और खास। जी हाँ, आज हम करेंगे बात देश दुनिया की, रुकेंगे कानपुर की गलियों में, जानेंगे खेलों की दुनिया का हाल, सोशल मीडिया पर क्या है बज और क्या है मौसम का हाल, विद सम ब्यूटीफुल ट्रैक्स। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर को लेकर आज सारिका शुक्ला है आपके साथ। प्रोग्राम का पहला गीत आपके मोबाइल और रेडियो सेट्स के थ्रू पहुंच रहा है आपके पास।

तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, हम ना रहे हम तुम क्या मिले। जी हाँ, 102.2 FM रेनबो कानपुर पर प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर। दोस्तों, सुबह की सुरीली शुरुआत तो इस गीत के साथ हो गई। बेल, आज की संडे मॉर्निंग और आज का पूरा दिन कुछ खास भी है। जी हाँ, तो अब शेयर करते हैं FM रेनबो कानपुर 102.2 पर आज आपके लिए क्या क्या है खास। जी हाँ, आज सुबह 11 बजे जरूर सुनिएगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मासिक रेडियो संवाद मन की बात। जी हाँ, इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी करेंगे साझा अपने मन की बात, तो सुनना मत भूलिएगा दिन में 11 बजे कार्यक्रम मन की बात। सुबह 8:30 पर समाचार के बाद सुनिएगा कार्यक्रम सुरों की पुरानी महफिल। सुबह 9:00 मैं यानी सारिका शुक्ला आपके लिए लेकर आऊंगी कार्यक्रम रसबहार, और 9:45 का वक्त होगा कार्यक्रम पॉप टाइम का। एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि सुबह

11 बजे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मासिक रेडियो संवाद मन की बात प्रसारित होगा। जी हां, इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी करेंगे साझा अपने मन की बात, तो सुना मत भूलिएगा दिन में 11 बजे कार्यक्रम मन की बात। दिन में 3 बजे सुनिएगा कार्यक्रम म्यूजिककार। इस कार्यक्रम को लेकर आज आपसे रूबरू होंगी आरजे महिमा। वहीं शाम 4 बजे आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम हेलो कानपुर। इस कार्यक्रम को आपके लिए लेकर आएंगी आरजे पूर्णिमा। 102.2 एफएम रेनबो कानपुर से कनेक्ट हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर।

You all are listening to Good Morning Kanpur only on 102.2 FM Rainbow Kanpur. अपने शहर की आवाज, अपने सुबह का सबसे खुशनुमा साथी. वक्त है आज के मॉर्निंग मंत्रा का. आज का पॉजिटिव थॉट है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों से. खुशी तब मिलती है जब आपके विचार, आपके शब्द और आपके कर्म एक दूसरे के अनुरूप हों. कितनी सिंपल सी लेकिन कितनी पावरफुल बात है. कई बार हम अच्छा सोचते हैं लेकिन कह नहीं पाते, और कई बार कहते तो हैं लेकिन उसे अपने एक्शंस में नहीं ला पाते. पर असली खुशी तब मिलती है जब हमारी थिंकिंग, हमारे वर्ड्स और हमारे एक्शंस तीनों एक ही दिशा में हों. तो क्यों ना आज की शुरुआत एक छोटे से प्रॉमिस के साथ की जाए. पॉजिटिव सोचेंगे, दिल से बोलेंगे और पूरे मन से अच्छे काम करेंगे. दिस इज 102.2 FM रेनबो कानपुर. आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर.

सो डियर लिसनर्स, अपनी आज की सुबह को बनाइए और खूबसूरत। जुड़े रहिए FM 102.2 रेनबो कानपुर के साथ, जहां हर सुबह होती है कुछ खास। दोस्तों, आज के दौर में सुबह की चाय के साथ एक और चीज जुड़ गई है और वो है सोशल मीडिया की टाइमलाइन। जी हाँ, देखते ही देखते पता चल जाता है कि देश दुनिया में क्या ट्रेंडिंग है। तो चलिए शेयर करते हैं आपसे कुछ चुनिंदा सोशल मीडिया अपडेट्स। जी हाँ दोस्तों, फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट किया है, अगर प्रेम उनसे ना मिले जिन्हें आप चाहते हैं, तो प्रेम उन्हें जरूर देना जो आपको चाहते हैं। कितनी सादगी से रिश्तों की एक बड़ी बात कह दी है अनुपम खेर जी ने। वेल दोस्तों, कई बार कुछ पोस्ट सिर्फ लाइक्स और कमेंट्स नहीं बटोरते बल्कि दिल को छू जाते हैं और सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसी एक पोस्ट फिल्म अभिनेत्री काजोल ने सोशल मीडिया पोस्ट में शेयर की है। जी हाँ, काजोल ने लिखा है, मस्ती करना कोई विकल्प नहीं बल्कि आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, इसका इस्तेमाल कीजिए ठीक अपने वोट की तरह। सही भी है दोस्तों, हम अपनी बिजी लाइफ में अक्सर हंसना, मुस्कुराना और छोटी छोटी खुशियों को जीना भूल जाते हैं, लेकिन जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों का नाम ही नहीं बल्कि हर पल को दिल से एंजॉय करने का नाम भी है।

वहीं दोस्तों अभिनेता अरुण गोविल ने भी अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट किया है, सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनका स्वभाव अपने संस्कारों के कारण सरल होता है। 102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप, प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर और इस प्रोग्राम को आप एंजॉय कर रहे हैं सारिका के साथ।

चलिए दोस्तों, अब करते हैं एक छोटा सा टाइम ट्रेवल, स्क्रॉल करते हैं हिस्ट्री पेजेस जहां दर्ज हैं कुछ यादगार पल। जानते हैं 28 जून इतिहास के पन्नों में क्या खासियत रखती है।

जी हाँ दोस्तों, आज ही के दिन वर्साई शांति संधि पर दस्तखत के साथ प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ। और आज ही के दिन 1986 में केंद्र सरकार ने अविवाहित लड़कियों को भी मातृत्व अवकाश देने का कानून बनाया। वहीं 1857 में आज ही के दिन खुद को बिठूर में पेशवा घोषित किया नाना साहेब ने।

और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का जन्म भी 28 जून आज ही के दिन हुआ था। जिंदगी के हर रंग को संगीत के साथ सजाता एफएम रेनबो कानपुर 102.2 आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर।

0: आवश्यक सूचना सुनिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्वनामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए awards.gov.in। सूचना समाप्त हुई।
1: रेनबो कानपुर से प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर। वेल, अब वक्त है जानने का देश और दुनिया में क्या चल रहा है, कौन सी खबरें हैं हेडलाइंस में और

किन बातों पर बनी हुई है सबकी नजर। जी हाँ, 3 दिवसीय यात्रा पर सेशेल्स पहुंच चुके हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और इनका स्वागत किया सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी ने। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी सेशेल्स के गोल्डन जुबली नेशनल डे समारोह में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शामिल होंगे। वहीं गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कल गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। और भारत समेत 35 देशों के बीच अमेरिका में दूसरे पैक्स सिलिका सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर हस्ताक्षर किए गए और इसका मकसद है तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला तैयार करना। 102.2 FM रेनबो कानपुर से कनेक्ट है आप, प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर।

दिल का क्या करे साहेब, हम उन्हीं पे मरते हैं, जुर्म बस इतना है उनसे प्यार करते हैं। 102.2 FM रेनबो कानपुर से कनेक्ट हैं आप, प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर। तो दोस्तों अब रुख करते हैं अपने शहर की ओर, क्योंकि अपने शहर कानपुर की हर हर चल, हर नई पहल और हर छोटी छोटी खबर से कनेक्ट रहना भी तो है जरूरी। शेयर करती हूँ आपसे अपने कानपुर सिटी की अपडेट्स, जी हाँ, फटाफट अंदाज में कुछ ब्यूटीफुल से ट्रैक्स के साथ। सो डियर लिसनर्स, एआई के बढ़ते यूज को देखते हुए सीएसजेएमयू ने नया सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है, जिसका नाम सर्टिफिकेट कोर्स इन इंटेलिजेंस फॉर मीडिया रखा गया है, जो जुलाई

जुलाई माह में शुरू हो जाएगा। वहीं अपने कानपुर के गौरव की बात, जी हां, प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना के अंतर्गत कानपुर जिला प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। यहां अब तक लगभग 38,000 घरों पर सोलर संयंत्र लगाए जा चुके हैं। वहीं वैश्विक रैंकिंग में शामिल प्रदेश के 5 विश्वविद्यालय में CSJMU नंबर 1 पर है। ये उपलब्धि हरित एवं सतत परिषद के विकास के लिए ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, वृक्षारोपण, अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक मुक्त परिसर, स्वच्छता अभियान तथा पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा दिए जाने का परिणाम है। वहीं दोस्तों, गंगा पुल होकर लखनऊ जाने वाले भारी वाहनों को आज भी अपना वैकल्पिक मार्ग ढूंढना होगा, क्योंकि 26 जून से शुरू और आज यानी कि 28 जून तक डायवर्जन लागू है, जो NHAI के द्वारा मरम्मत कार्य के कारण किया जा रहा है। 102.2 FM रेनबो कानपुर से कनेक्ट हैं आप।

जी हाँ, फटाफट अंदाज में शेयर की जा रही अपने कानपुर सिटी अपडेट्स। तो दोस्तों, आईआईटी कानपुर ने सितंबर 2026 सत्र के ऑनलाइन पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन की लास्ट डेट बढ़ाकर

एक जुलाई कर दी है। तो जो लोग ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में शामिल होना चाहते हैं वो 1 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। साथ ही छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में रोजगारोन्मुख को बढ़ावा देने की दिशा में स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट ने नई पहल की है। BFSI यानी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस पाठ्यक्रम, और इसमें प्रवेश प्रक्रिया की आज है अंतिम तिथि। वहीं दोस्तों, आज IIT से सेंट्रल स्टेशन मेट्रो रेल सेवाएं पूरी तरह से ठप रहेंगी। जी हां, सेंट्रल स्टेशन से नौबस्ता तक बने नए सेक्शन की फाइनल टेस्टिंग के कारण ये डिसीजन लिया गया है। वेल, इस वक्त मैंने डिसीजन ले लिया है कि

आज आईआईटी से सेंट्रल स्टेशन मेट्रो रेल सेवाएं पूरी तरह से ठप रहेंगी। जी हां, सेंट्रल स्टेशन से नौबस्ता तक बने नए सेक्शन की फाइनल टेस्टिंग के कारण ये डिसीजन लिया गया है। वेल, इस वक्त मैंने डिसीजन ले लिया है कि आपको सुनाया जाएगा एक और ब्यूटीफुल सा ट्रैक। 102.2 एफएम रेनबो कानपुर से कनेक्ट है, आप प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर।

करती है आपसे। जी हाँ, फीफा फुटबॉल विश्व कप में ईरान के साथ एक एक गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में मिस्र पहुंच चुका है। और आज आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का मुकाबला भारतीय महिला टीम और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच है। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा, लेकिन टॉस और मैच से पहले का विश्लेषण और इसी के साथ में मैच की कमेंट्री आप 6:30 से FM रेनबो कानपुर 102.2 पर सुन सकेंगे।

102.2 FM रेनबो कानपुर से प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर। और हमारे जिन लिसनर्स ने हमें अभी अभी ट्यून इन किया है उन्हें भी हमारा राम राम है जी। चलिए दोस्तों अब बढ़ाते हैं थोड़ा सा एक्साइटमेंट लेवल। क्योंकि अब वक्त है स्पोर्ट्स वर्ड्स की दुनिया का। और अब खेलों की दुनिया की क्या है अपडेट सारी का शेयर

0: वेल दोस्तों, मॉर्निंग की प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं कि कहाँ जाना है और क्या करना है, जी हाँ, तो कोई भी प्लानिंग हो सबसे पहले वेदर चेक तो बनता ही है। तो दोस्तों, मौसम आज कैसे रहने वाला है शेयर करती हूँ आपसे। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अनुसार आज से आगामी चार दिनों तक हल्के बादल छाए रहने के कारण आज यानी कि 28 जून से 30 जून तक गरज चमक बिजली और तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी होने की पॉसिबिलिटी है। साथ ही उमस भरी गर्मी की भी पॉसिबिलिटी है। तो अगर कहीं बाहर जाएं तो छाता रेनकोट साथ रखें और साथ ही हाइड्रेटेड रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। 102.2 FM रेनबो कानपुर से कनेक्ट हैं आप।
1: ये सूरज से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे, ये सूरज से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे, अगर उससे बातें करनी है तो फिर नजर झुका के करे, तो फिर नजर झुका के करे।

बारिश की जाए। जी हाँ, बारिश का इंतजार सभी को है। फिलहाल चलते चलते बस इतना ही। हर दिन को खास बनाने के लिए किसी बड़े मौके का इंतजार मत कीजिए। छोटी छोटी खुशियों को जीना सीखिए, मुस्कुराइए और दूसरों के मुस्कुराने का कारण बनिए। दीजिए सारिका शुक्ला को प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर को यही वाइंड अप करने की इजाजत। समाचार के बाद कार्यक्रम सुरों की पुरानी महफिल के साथ फिर मिलूंगी आपसे।

0: नमस्कार।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी है। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है और किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है।
3: Today we have a new national health policy.
4: आज हमारे पास एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है। यह रोग के उपचार से स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर एक परिवर्तनकारी कदम है, जिसमें बीमारी की रोकथाम को केंद्र में रखा गया है। भारत सरकार ने इन 12 वर्षों में कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें सबसे परिवर्तनकारी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम माना जाता है, जिसके दायरे में लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं।
3: 62 करोड़ इंडिविजुअल्स।
1: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बातचीत की और गिरोह में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुंबई अपर आयुक्त अशोक दुबे ने बताया कि पेपर लीक मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
5: महाराष्ट्र में जो TET की एग्जाम होने वाली है, उस एग्जाम में जो पेपर आने वाले थे

0: वो पेपर भिवंडी में बेचने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ के डीसीपी जोन 2 पवन बंसोड इनको मिले थे। वहाँ पे 3 लोगों को टीम ने हिरासत में लिया। उनके पास से कुछ मोबाइल इस्तेमाल होने वाले टीटी के 4 पेपर जब्त किए हैं। आगे की जांच हमारी चल रही है।
1: इस घटना के बाद आज होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं।
2: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भारतीय श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल तो पहुंच गए, लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा और परमिट नहीं थे। इस कारण कई श्रद्धालुओं को यात्रा के समय समस्याएं पेश आई हैं और उन्होंने मंत्रालय से मदद मांगी है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रद्धालु सभी कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर परमिट या वीजा मिल जाएगा, क्योंकि इससे यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं से कहा है कि यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है। मंत्रालय का कहना है कि इस सलाह का उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और परेशानी से मुक्त बनाना है। रोहन के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: चार धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के पुरानी मंडी स्थित श्रीराम मंदिर अमरनाथ यात्री आधार शिविर से में साधुओं का आगमन शुरू हो गया है। इससे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने बहुस्तरीय व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का अभ्यास किया। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी के साथ परिचर्चा प्रसारित कर रहे हैं। अंबिकापुर नगर निगम द्वारा संचालित इस कैफे में प्लास्टिक कचरे के बदले में भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
3: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
4: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
5: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ल्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया। सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया, तो उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है।
6: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित किया जाएगा। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का बाग अभयारण्य में बाघों के पुनर्स्थापना के 18 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों और प्रकृति प्रेमियों को बधाई दी है। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। सेना ने कहा कि उसने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत कीकुक पर हुए हमले के जवाब में अमरीका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने के क्षमताओं को निशाना बनाया। वेनेजुएला में भूकंप में से मरने वालों की संख्या 1,430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ है। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज सुबह कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही कांगो की टीम इतिहास रचते हुए पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में पहुंच गई है। एक अन्य मुकाबले में आज पुर्तगाल और कोलंबिया के बीच मैच बिना कोई गोल के ड्रॉ पर समाप्त हुआ। अब राउंड ऑफ 32 में शुक्रवार को पुर्तगाल का सामना क्रोएशिया से होगा, जबकि शनिवार को कोलंबिया और घाना आमने सामने होंगे। इससे पहले अमरीका के न्यूजर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम और हैरी केन के एक एक गोल की बदौलत आज इंग्लैंड ने भी पनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के एक अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से पराजित किया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे स्थान पर है। और अब खेल की अन्य खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
7: जी लवली, इन खेल खबरों में शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। भारत के किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमरीका के कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकोमोतो को 22-20, 15-21 और 21-19 से हराया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सूली यांग के साथ होगा। महिला सिंगल्स में भारत की देविका सिहाग सेमीफाइनल मुकाबले में डेनमार्क की लाइने क्रिस्टोफर सेन से हार गईं। उधर क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में आज आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के अपने अंतिम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और अगर बात करें शतरंज की बाजी की, तो गोवा के 14 वर्षीय एथन वाज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित साराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज तेज वर्षा तथा कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन में आगे बढ़ सकता है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवा का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार में आज लू चलने के आसार हैं। अमेरिका के वाशिंगटन में भारतीय दूतावास ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडार, वाणिज्य विभाग तथा जुपोन सर्कल बिजनेस इम्प्रूवमेंट डिस्ट्रिक्ट के सहयोग से वार्षिक आम महोत्सव का आयोजन किया। इसमें अल्फांसो, केसर, दशहरी, लंगड़ा और बंगनपल्ली जैसी लोकप्रिय भारतीय आम की किस्मों का प्रदर्शन किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और पर अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
8: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा को अमर उजाला ने मैत्री संबंध बताते हुए लिखा है। हिंद महासागर पर बढ़ेगा सहयोग। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सेशल्स में प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया गश्ती पोत सौंपा। पत्र आगे लिखता है, श्री मोदी 194 साल के कछुए जोनाथन से मिले। अयोध्या में श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में कुछ और लोगों के इस्तीफे की खबर। हिन्दुस्तान को दिया है कि श्रद्धालुओं के मूल्य शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता होने के 10 दिन के भीतर ही फिर से सैन्य झड़पें शुरू हो जाना पश्चिम एशिया और साथ ही विश्व के लिए बुरी खबर है। अफगानिस्तान में कल आए भूकंप की खबरें सभी अखबारों में हैं। देशबंधु कहता है, दिल्ली एनसीआर तक डोली धरती। उधर राजस्थान पत्रिका ने वेनेजुएला में भूकंप के बाद तबाही से जीवन की किरण शीर्षक से लिखा है, मलबे से 18 दिन के नवजात को निकाला, राहत और बचाव कार्य तेज। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया, देशबंधु की खबर है। पत्र ने इसे भारत की अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए लिखा है, अब गगनयान मिशन की तैयारियां तेज। अमर उजाला की खास खबर है, सितंबर में रोशन हो जाएगा लद्दाख, सियाचिन तक पहुंची बिजली, पत्र ने इसे बुनियादी ढांचे और स्थानीय विकास के मोर्चे पर मील का पत्थर बताते हुए लिखा है कि इससे सेना और सुरक्षा बलों को मिलेगी बड़ी ताकत। राजधानी दिल्ली में शनिवार को भीषण गर्मी और उमस पर हिंदुस्तान कहता है 51 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसी तपिश महसूस हुई। दैनिक भास्कर की खास खबर है, इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच बाजारों में छाछ लस्सी अपना बाजार मजबूती से बना रहे हैं। पत्र कहता है अब कोल्ड ड्रिंक्स पीछे, छाछ और लस्सी की बिक्री में चौगुनी वृद्धि।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों

से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए और किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सारिका शुक्ला और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो कानपुर 102.2 की फ्रीक्वेंसी पर। सुबह के 8:30 हो चुके हैं और अब वक्त है उन सदाबहार नगमों के साथ सफर पर चलने का जिनकी खुशबू आज भी दिलों में बसी हुई है। स्वागत है आपका कार्यक्रम सुरों की पुरानी महफिल में, जहां हर गीत अपने साथ सुनहरी यादें, मधुर एहसास और बीते दौर की खुशबू और बीते दौर की खूबसूरत झलक को अपने साथ लेकर आता है। तो आइए चाय की चुस्कियों और इस प्यारी सी सुबह के साथ संगीत के उस दौर में चलते हैं, जहां हर सुर दिल में बस जाता है, जहां हर गीत दिल को छू जाता है।

102.2 एफएम रेनबो कानपुर से प्रोग्राम चल रहा है सुरों की पुरानी महफिल, और कार्यक्रम में अब बढ़ते हैं आगे और अब आपको सुनवाते हैं मेरा साया फिल्म का गीत, आशा भोसले की आवाज में, संगीत मदन मोहन का, और इस गीत को लिखा राजा मेहंदी अली खान ने।

102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है सुरों की पुरानी महफिल और कार्यक्रम में अब बारी है नया दौर मूवी के इस गीत की, जिसमें गीत लिखा साहिर लुधियानवी ने, संगीत ओपी नैयर का, शमशाद बेगम और आशा भोसले की आवाजें।

102.2 एफएम रेनबो कानपुर से प्रोग्राम चल रहा है सुरों की पुरानी महफिल। कार्यक्रम में बारी है किस्मत मूवी के इस ट्रैक की, जिसे लिखा एसएच बिहारी ने, संगीत ओपी नैयर का और आवाजें आशा भोसले और शमशाद बेगम की।

102.2 एफएम रेनबो कानपुर से प्रोग्राम चल रहा है सुरों की पुरानी महफिल। कार्यक्रम में अब बारी है नया दौर मूवी के गीत की, जिसे लिखा साहिर लुधियानवी ने, संगीत ओपी नैयर का और आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोसले की।

कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब आपको सुनवाते हैं कुदरत फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, संगीत आरडी बर्मन का और गीत लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने।

तूने और रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मतवाला जिया। 102.2 एफएम रेनबो कानपुर से प्रोग्राम चल रहा है सुरों की पुरानी महफिल। कार्यक्रम के आखिर में अब बारी है तुमसा नहीं देखा फिल्म के गीत की, जिसे गाया मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने, संगीत ओपी नैयर का और गीत लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सुरों की पुरानी महफिल अब यहीं खत्म करने का समय हो गया है। दीजिए इजाजत, एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलती हूँ कार्यक्रम रस बहार को लेकर।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित तिवारी। यू आर लिसनिंग कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट 102.2 FM रेनबो।

हेलो डियर लिसनर्स, वेलकम टू द शो रस बहार। और आज इस प्रोग्राम को लेकर मैं हूं आपकी अपनी सारिका शुक्ला। दोस्तों, वक्त तेजी से भाग रहा है और हम उसके पीछे भागते जा रहे हैं। लॉस चेंज हो रहे हैं, सोसाइटी चेंज हो रही है और हमारी थिंकिंग भी। बट द रियल क्वेश्चन इज, क्या ये बदलाव हमें बेहतर बना रहा है या हम बस बदलते जा रहे हैं बिना समझे बिना रुके। आज हर चीज आसान है, हर रास्ता खुला है, फिर भी दिल में एक खालीपन क्यों है? रिश्तों में वो गर्माहट क्यों नहीं? हम आगे बढ़ रहे हैं ये सच है, लेकिन क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं या बस भीड़ के साथ बहते जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत कुछ कीमती पीछे छूटता जा रहा है? तो डियर लिसनर्स, आज का ये सफर मेरे सवालों का है, जवाब सोचने की बारी आपकी है। क्या है आपके विचार जिंदगी के बारे में? साझा कीजिए हमसे अपने ईमेल के द्वारा। हमारा ईमेल एड्रेस है aarkansomedia@gmail.com। हमें इंतजार है आपके मेल का।

जी हाँ दोस्तों, जिंदगी का सफर है ये, कैसा सफर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। दोस्तों आज नए लॉज आ रहे हैं, डिजिटल रूल्स, सोशल रिफॉर्म्स, हर चीज़ रेगुलेट हो रही है। बट एक बात बताइए, क्या इंसान की इंसानियत भी रेगुलेट हो रही है? हम सिस्टम को तो इम्प्रूव कर रहे हैं, बट वाट अबाउट इमोशंस? एक वक्त था जब सच की वैल्यू होती थी, आज वही ऑप्शन बन गया। क्या है आपकी राय जिंदगी के बारे में, शेयर कीजिए हमसे। 102.2 FM रेनबो कानपुर से प्रोग्राम चल रहा है रस बहार। और अगर जिंदगी के बारे में आप भी अपने विचार हमसे साझा करना चाहते हैं तो हमें अपनी ईमेल लिख भेजें। हमारा ईमेल एड्रेस है airkansomedia@gmail.com।

0: 102.2 FM रेनबो कानपुर से प्रोग्राम चल रहा है रस बहार, और आज रस बहार में बातें जिंदगी की। दोस्तों याद है आपको, पहले मोहल्ले होते थे, याद है ना, अब सिर्फ लोकेशन रह गई हैं। पहले रिश्ते होते थे, क्या अब कनेक्शन ही बचे हैं? सोचिए जरा कितना कनेक्ट हैं हम अपनों से। सोशल मीडिया ने हमें जोड़ा भी है और कहीं ना कहीं तोड़ा भी। फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं बट रियल फ्रेंड्स कम हो रहे हैं। हम स्टोरीज शेयर करते हैं बट अपनी कहानी किसी को नहीं बताते। वो आखिरी समय कब था जब किसी ने आपको समझा हो वास्तव में? ऑनलाइन हम अवेलेबल हैं बट रियल लाइफ में इमोशनली अनअवेलेबल। 102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप, और कार्यक्रम चल रहा है रस बहार। इस कार्यक्रम को आप एंजॉय कर रहे हैं सारिका के साथ।
1: मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही।

मजबूरी हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: हम आ पहुंचे हैं अपने लिसनर की उस मेल तक जो भेजी है भगवंतपुर बिनौर सचेंडी कानपुर नगर से भानु प्रताप ने, और इन्होंने जिंदगी के बारे में अपनी राय हम तक लिख भेजी है। इन्होंने लिखा है कि वक्त के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा मौका दे, इसलिए जो करना है आज और अभी करें, क्योंकि कल का भरोसा किसी को नहीं। जो इंसान अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ जाता है, समझो उसने ही असल जिंदगी में जीने का हुनर सीख लिया है। तो क्या खूब लिख भेजा है भानु प्रताप जी आपने जिंदगी के बारे में, और उम्मीद है आपसे ही सीख लेके जो हमारे दूसरे अन्य लिसनर्स हैं, हमें सुन रहे हैं, वो भी आगे बढ़ेंगे। 102.2 FM रेनबो कानपुर से कनेक्ट हैं आप, प्रोग्राम चल रहा है रस बहार, और अब बारी है एक छोटे से ब्रेक की।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, KYC अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत KYC अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: वेल दोस्तों, आज सोच बदल रही है, लोग अपने फैसले खुद ले रहे हैं, युवा अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं। आज हम इंडिपेंडेंट हैं, बोल्ड हैं, एक्सप्रेसिव हैं, बट एक साइलेंट ट्रूथ भी है, सोचने वाली बात भी है, जी हाँ, कि हम अपने अंदर से कितने कनेक्टेड हैं। चॉइसेस बढ़ गई हैं बट क्लैरिटी कम हो गई है। हम अपनी लाइफ खुद डिजाइन कर रहे हैं, बट क्या हम उसमें खुश भी हैं? सोचिएगा जरूर, और अगर सोच ली तो शेयर जरूर कीजिएगा। 102.2 FM रेनबो कानपुर से कनेक्ट हैं आप।

वेल दोस्तों, क्या आपका दिल नहीं ढूंढता ऐसे फुर्सत के पल जहां सिर्फ आप अपने बारे में सोचें, कुछ अपनों के बारे में सोचें। दोस्तों, पहले सही और गलत

में फर्क बचपन से ही सिखाया जाता था, लेकिन आजकल एक नया ट्रेंड है, इफ इट फील्स राइट इट इज राइट। वेल, हर फीलिंग सही नहीं होती और हर सच कंफर्टेबल नहीं होता। हम कन्वीनियंस चूज करते हैं, पर क्या सच में सब कुछ सही होता है जो हमें अच्छा लगे? और यही आज का सच, कहीं कल के लिए सवाल ना बन जाए, सोचिएगा जरूर। 102.2 FM रेनबो कानपुर से कनेक्ट है, सोचने की बारी आपकी।

कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। जी दोस्तों, मेरे दिल में जिंदगी के बारे में कई ख्याल बार बार आते हैं। क्या आपके मन में ऐसे सवाल, ऐसे ख्याल आते हैं? वेल दोस्तों, फास्ट इंटरनेट, फास्ट लाइफ, फास्ट डिसीजन।

बट स्लो होकर कभी क्या आपने ये सोचा है कि हम जा कहां रहे? रेड रेस में सब भाग रहे बट फिनिश लाइन किसी को नहीं पता। इफ स्पीड इज एवरीथिंग देन व्हाट अबाउट मीनिंग? शायद प्रॉब्लम दुनिया में नहीं है दोस्तों, शायद प्रॉब्लम ये है कि हम रुकना भूल गए हैं, खुद से मिलना भूल गए हैं। बताइए कब आखिरी बार आपने खुद से पूछा कि मैं ठीक हूँ? नहीं याद आ रहा है ना? गाइस, डायरेक्शन वही सही होती है जहाँ इंसानियत जिंदा रहे। जरूरी हो जाता है कई बार खुद से पूछना कि क्या हम खुश हैं, क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हमारे अंदर इंसानियत बरकरार है। 102.2 FM रेनबो कानपुर है आपके साथ। सोचिए सोचिए और शेयर कीजिए हमसे। हमारा ईमेल एड्रेस है aarkansomedia@gmail.com, क्योंकि आने वाला पल जाने वाला है। जिंदगी के बारे में क्या है आपकी राय, जरूर शेयर कीजिए हमसे।

आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें ज़िंदगी मिला दो, पल ये जो जाने वाला है। दोस्तों आज हम सब सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, अच्छी जॉब, अच्छा पैकेज, अच्छी लाइफ, लेकिन फिर भी एक छोटा सा सवाल है आपके लिए, क्या सक्सेस और सेटिस्फेक्शन सेम चीज़ है? लिंक्डइन पे अचीवमेंट्स लिख जाती है, इंस्टाग्राम पे हैप्पीनेस फिल्टर हो जाती है, बट दिल के अंदर जो खालीपन है उसका कोई स्टेटस अपडेट नहीं होता। हम दुनिया को इम्प्रेस करते करते कब खुद से डिस्कनेक्ट हो गए पता ही नहीं चला। हुआ है ना कुछ आपके साथ भी ऐसा? सोच कर जरूर देखिएगा। 102.2 FM रेनबो कानपुर से प्रोग्राम चल रहा है रस बहार, और इस प्रोग्राम को आप सुन रहे हैं सारिका के साथ।

102.2 FM रेनबो कानपुर से प्रोग्राम चल रहा है रस बाहर। इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं सारिका के साथ। वेल दोस्तों, आज बात हो रही जिंदगी की। पहले लोग अपनी वैल्यूज पे जीते थे, है ना। आजकल लोग वैलिडेशन पे जी रहे। कितने लाइक्स आए, कितने व्यूज मिले, ये डिसाइड करता है हम खुश हैं या नहीं। लेकिन एक बात याद रखिए कि जो चीज दुनिया के रिएक्शन से मिले वो परमानेंट नहीं होती। असली सुकून तब आता है जब आप खुद को प्रूव करना बंद कर दें और खुद को जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दें। दोस्तों, हम डिजिटल हो गए पर क्या हम इमोशनल रह गए हैं? सोचिएगा जरूर। हर चीज अपग्रेड हो रही है, बस हम थोड़ा डाउनग्रेड से हो गए। कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है लेकिन दिल का जो नेटवर्क है वो वीक सा हो गया है। लाइफ ऑनलाइन परफेक्ट है, देखने में सब ठीक है, पर ऑफलाइन थोड़ी सी इनकम्प्लीट। क्या आपके साथ भी ऐसा है? सोचिएगा जरूर। 102.2 FM रेनबो कानपुर से कनेक्ट है, आप प्रोग्राम चल रहा है रस बहार।

तो दोस्तों आज का ये सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन ये सवाल आपके साथ रहेगा, हम किस दिशा में जा रहे हैं। दीजिए इजाजत सारिका शुक्ला को प्रोग्राम रस बहार को यहीं वाइंड अप करने की। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के बाद विविधा के तहत पॉप टाइम प्रोग्राम को लेकर मिलते हैं आपसे

नमस्कार श्रोताओं, विविधा के तहत कार्यक्रम पॉप टाइम को लेकर एक बार फिर मैं आपसे रूबरू हो चुकी हूँ। वक्त है दिन की रफ्तार को और भी जोशीला बनाने का, क्योंकि शुरू हो रहा है प्रोग्राम पॉप टाइम। यहाँ मिलेंगे आपको नए दौर की धड़कनों पर थिरकते कुछ पॉप गीत, म्यूजिक की फ्रेश बीट्स और भरपूर पॉजिटिव वाइब्स। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ पलों तक साथ रहेगा बेहतरीन पॉप म्यूजिक सिर्फ आपके अपने पॉप टाइम प्रोग्राम में। कार्यक्रम का पहला गीत आपके रेडियो और मोबाइल सेट्स पर ये रहा।

नमस्कार श्रोताओं, विविधा के तहत कार्यक्रम पॉप टाइम को लेकर एक बार फिर मैं आपसे रूबरू हो चुकी हूँ। वक्त है दिन की रफ्तार को और भी जोशीला बनाने का, क्योंकि शुरू हो रहा है प्रोग्राम पॉप टाइम। यहाँ मिलेंगे आपको नए दौर की धड़कनों पर थिरकते कुछ पॉप गीत, म्यूजिक की फ्रेश बीट्स और भरपूर पॉजिटिव वाइब्स। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ पलों तक साथ रहेगा बेहतरीन पॉप म्यूजिक सिर्फ आपके अपने पॉप टाइम प्रोग्राम में। कार्यक्रम का पहला गीत आपके रेडियो और मोबाइल सेट्स पर ये रहा।

0: नमस्ते कानपुर, मैं हूं मनोज मुंतशिर शुक्ला और आप सुन रहे हैं 102.2 FM रेनबो कानपुर, कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट।
1: एजेंसियों ने बहुस्तरीय व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का अभ्यास किया। अधिकारियों ने प्रोजेक्ट हॉक आई के तहत प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी तैनात की है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड

0: में ग्रुप ए के अपने अंतिम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम ने ग्रुप ए में 4 मैच खेले हैं और 3 में जीत के साथ वह ग्रुप में दूसरे स्थान पर है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 12 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
1: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
0: और श्रोताओं, आइए सुनते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम पदचिन्ह आकाशवाणी के। श्री सुशील रॉबर्ट बनर्जी, पूर्व उप महानिदेशक आकाशवाणी से सुमोना पांडे और सुरेंद्र राजेश्वरी की बातचीत।

0: पदचिन्ह आकाशवाणी के आज ये कार्यक्रम लेकर हम पुनः हाजिर हैं श्रोताओं, और हमारे साथ हमारे जो को प्रेजेंटर हैं सीनियर अनाउंसर श्री राजेश्वरी जी। तो राजेश्वरी जी, आज इस कार्यक्रम में हम अपने श्रोताओं से फिर मिलने आए हैं।
1: निश्चित रूप से यह हमारा बड़ा सौभाग्य है और सभी सुनने वालों को हम दोनों का बहुत बहुत नमस्कार। और हमारी कोशिश रही है कि आकाशवाणी चूंकि 90 वर्ष पूर्ण कर चुका है, और ऐसे में अगर वो स्तंभ है जिन्होंने 90 वर्षों में इस छोटे से पौधे को इतना खूबसूरत वृक्ष की शक्ल अदा की है, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए।
0: बिल्कुल। और मैं सुगुना पांडे, श्रोताओं, आज आपके लिए ऐसे विशिष्ट अतिथि को स्टूडियो में बुलाकर लाई हूँ जिनसे बात करके हमें पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और बहुत मनोरंजन भी आपका होगा। हमारे स्टूडियो में आज हमारे विशिष्ट अतिथि, जिनके लिए जितने भी हम विशेषण इस्तेमाल करें शायद कम होगा, लेकिन हमारे पूर्व उप महानिदेशक आकाशवाणी सम्मानीय श्री सुशील रॉबर्ट बैनर्जी साहब हमारे साथ हैं, जो कि विशेषकर नाटक के पुरोधा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के प्रोडक्ट और अनेक उपलब्धियों के मालिक हैं। तो हम श्री बैनर्जी साहब को कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। आपका स्वागत है सर।
2: धन्यवाद सुमोना जी और राजेश्वरी जी। ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ एक बार फिर इस स्टूडियो में बैठकर अपनी कुछ पुरानी यादें ताजा करूं, कुछ अपने श्रोताओं के साथ जो अपनी जिंदगी में जो मैंने कुछ थोड़ा बहुत सीखा है इस माध्यम के बारे में उसको बांटूं, और हो सकता है कि हम लोगों की बातों में हमारे श्रोताओं को जो आकाशवाणी में आना चाहते हैं एक उद्घोषक के तौर पर, एक प्रेजेंटर के तौर पर, एक एफएम आरजे के तौर पर या नाटक कलाकार के तौर पर, तो शायद उनको एक जरा सा हम लोगों की बात से कुछ मार्गदर्शन मिले। अगर मौका मिला तो जरूर उदाहरण देकर भी अपनी बात को सामने रखूंगा।

0: बहन साहब, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है क्योंकि आपके पास तो खजाना है अनुभवों का, उपलब्धियों का, जिनसे हम कुछ बातें यहाँ चुनकर लाएंगे अपने श्रोताओं के लिए, ताकि वो जान सके कि आकाशवाणी दरअसल है क्या। क्योंकि हम जब आकाशवाणी के लिए, अब लोगों का ऑडिशन होता है, लोगों को यहाँ पर उनको काम करने की ललक होती है, उनको जब हम बुलाते हैं उनके दिमाग में एक चित्र होना चाहिए कि क्या अपेक्षाएं होती हैं आकाशवाणी के लिए। राजेश्वरी जी,
1: जाहिर सी बात है, इस वक्त सर आपको यहाँ देख करके डॉक्टर महेश्वर तिवारी जी नवगीतकार हैं, उनकी कुछ पंक्तियां मुझे याद आई कि एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, सूनी छत दीवारों को घर कर देता है। तो आप तशरीफ लाए हैं तो यकीनी तौर पर बहुत रौनक आई है।
0: बिल्कुल सही आपने बोला है। और मैं सब मैं अपना चाहूंगी कि आप सबसे पहले अपने बारे में, जो आपने शुरुआत की, किस तरह से आकाशवाणी के लिए या उसके पहले आपका जो स्थान रहा है जहाँ से आपने शुरू किया इस यात्रा को, उसके बारे में कुछ बताएं।
2: बड़ी मनोरंजक बात है कि मैंने आकाशवाणी में अपना जीवन कैसे आरंभ किया। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मैंने 1977 यहाँ कार्यक्रम अधिशासी के पद पर कार्य शुरू किया था और इसी लखनऊ केंद्र से मैंने अपना करियर शुरू किया।
0: क्या बात।
2: और मुझे याद है मैं हुसैनगंज में रहता था और हुसैनगंज से यहाँ से मेरा ख्याल है 10 कदम पर है हुसैनगंज का चौराहा, वहां से मैं रिक्शा में बैठ के आठाने में आया करता था तो मुझे आकाशवाणी में जाना है। और रिक्शा वाले ने जिस दिन मुझसे 1 रुपया कहा, नहीं साहब आज 1 रुपया लगेगा, तो मैंने कहा मैं आज से नहीं जाऊंगा, मैं पैदल जाऊंगा। आकाशवाणी में आने का भी एक बड़ा रोमांचक रहा। मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट करने के बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की रेपेट्री में था।
0: तो ये किस वर्ष की बात है?
2: 76 में मैंने पास आउट किया NSD से और 77 में मैंने आकाशवाणी ज्वाइन कर लिया। तो 76 में जब मैंने पास आउट किया तो मैं कुछ महीने रेपेट्री कंपनी में रहा और वहाँ रेपेट्री कंपनी में आपको शायद मालूम हो, बड़े अच्छे जाने माने कलाकार अब तो नहीं है इस दुनिया में, राजेश विवेक करके थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बनर्जी ऐसा है यार, वो आकाशवाणी की कुछ प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव की जॉब निकली है तो तुम भर लो। मैंने कहा यार मैं थिएटर का आदमी, रेडियो में सरकारी नौकरी को ना, मैं तो नहीं जाऊंगा। मैनेजर कहता मैं 2 फॉर्म ले आया हूँ, एक अपने लिए एक तुम्हारे लिए, तुम भर दो उसको फिर देखेंगे। मैंने कहा नहीं मेरे से नहीं भरेगा। और मैंने उसको फॉर्म को रोल करके वहां सामने टेबल पे रख दिया और हम लोग अपना थिएटर कर रहे, रिहर्सल कर रहे, कर करा के जब 9:30 बजे रात में घर चले गए, उसके बाद घर पहुंच के हमने अपनी माँ को बताया कि ऐसे ऐसे फॉर्म है तो हम तो वहां छोड़ा है, हम नहीं ज्वाइन करेंगे। कब पागल हो गए, जाओ ज्वाइन करो रेडियो। अगले दिन हम वापस आए, अपने वहीं छोड़ा था फॉर्म, तो देखा फॉर्म नहीं। अब हम ढूंढ रहे हैं इधर उधर, कहाँ गया फॉर्म, कहाँ गया। तभी हमने देखा कि सफाई करने वाला झाड़ू दे रहा था, हमने देखा वो फॉर्म जो था डस्टबिन में पड़ा हुआ था। उसको बेचारे को क्या मालूम, उसने कहा रद्दी का कागज उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया उसने। वो डस्टबिन का फॉर्म निकाल के हमने भरा और आज हम आकाशवाणी में बैठे हूँ।
0: और लगभग अर्धशतक आपने आकाशवाणी के साथ गुजारा, सच में बाकी बहुत ही रोचक ये कहानी।
2: यानी कि हमने डस्टबिन से हम उठे हैं, मतलब
0: बिल्कुल भी नहीं, आप में वो जो एक कलाकार था वो उभर कर यहाँ आया। और आपने थिएटर की बात की, तो थिएटर की शुरुआत की तो आपको लगा कि आकाशवाणी में आपको थिएटर पे ध्यान देना है।
2: ऐसा हुआ कि लोगों ने उस वक्त कहा, NSD में तो आप मालूम है जब 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है और उसमें तो 3 साल में आपको सिर्फ आपके दिमाग में थिएटर के अलावा और कुछ नहीं जाता, आप बिल्कुल थिएटर में उठते बैठते खाते पीते सोते जागते हैं।
0: आपके परिवार से पूरा सहयोग मिला इसमें?
2: बिल्कुल, ये सबसे अच्छी बात। और उस जमाने में वैसे पढ़ाई में हम कोई एज यूजुअल बहुत तेज नहीं थे, लेकिन ग्रेजुएशन कर लिया था क्योंकि वो थिएटर का जो कीड़ा होता है ना वो फिर आपको कुछ करने नहीं देता। खैर, तो हमारे क्या था कि हमारा थिएटर 76-77 के जमाने में ना तो सीरियल्स हुआ करते थे इतने, दूरदर्शन था या रेडियो था, और फिल्मों में भी बड़े जिसे कहते हैं कि चॉकलेट वाले हीरो, यू नो, देवानंद, धर्मेंद्र, बड़े स्मार्ट। अब हमारी शक्ल क्या था, मतलब क्या बताएं। तो हम कभी भी थिएटर के अलावा फिल्म में जाने। आजकल एनएसडी जो है वो एक तरह से लॉन्चिंग पैड है फिल्म्स के लिए। हमारे साथ जो थे, हमारे साथ पंकज कपूर मेरे बैच में थे, के रैना थे और लोग थे, इन्होंने काफी स्ट्रगल किया
0: जी।
2: लेकिन मेरे सर्कमस्टांसेस है तो मैंने सोचा कि क्यों ना या तो थिएटर किया जाए, और फिर ये अपॉर्चुनिटी आई जब रेडियो की, तो हमने कहा चलिए रेडियो ट्राई किया जाए। और सही में रेडियो आके मुझे लगा कि मैंने सही में किया, क्योंकि मुझे एक ऐसा माध्यम मिला जिसमें चैलेंजेस थे। इस माध्यम में इतना काम है करने को जो आपको ना फिल्म में मिलेगा ना आपको थिएटर में मिलेगा, क्योंकि ये माध्यम सिर्फ साउंड का माध्यम है। यहाँ आपका इमेजिनेशन जो है वो डबल चलता है, क्योंकि आप देख कुछ नहीं सकते, आपके कान है सिर्फ, आपको सुनना, और आप किस तरह अपनी आवाज, अपने प्रेजेंटेशन, अपने फीलिंग से आप अपनी बात को कम्युनिकेट करते हैं।
1: बने साहब ये बताइए कि रंगमंच जो है वो दर्शकों के सामने और आकाशवाणी सुनने वालों के पीछे, इन दोनों माध्यमों में काम करने का अनुभव कैसा रहा?
2: देखिए ऐसा है कि चैलेंजिंग तो और सबसे डिफिकल्ट तो मुझे रेडियो लगता है। उसका कारण यह है, मैंने रेडियो नाटक भी प्रस्तुत तो किए ही, भाग भी लिया उसमें, और जहाँ मंच पर भी, और अभी तक कुछ महीने पहले तक मैं मंच पर से जुड़ा रहा हूँ। देखिए मंच पर आपकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, आपका पूरा शरीर इन्वॉल्व, आपके एक्सप्रेशंस इन्वॉल्व, आपका पूरा मतलब कि इमोशन, फीलिंग, मूड, आप अगर कुछ ना भी कहें तो भी और दर्शकों तक पहुंच जाए। यहाँ पर सिर्फ आपके पास आपकी आवाज है।
0: क्या बात,
2: आपको अपनी आवाज से पहुंचना है।
1: क्या बात, वाह वाह,
0: क्या बात।
2: तो वो एक जो फीलिंग है, जो मूड है, जो एक अंदर की जो आपकी फीलिंग है, वो सिर्फ आपको ऑडियंस तक आवाज से पहुंचना है, कम्युनिकेट करना है, अपनी बात को संप्रेषित करना है सिर्फ आवाज से, फीलिंग, मूड, प्रस्पेक्टिव, सब। मंच पर आप सब देख रहे हैं, आपके साथ हैं, आप खुद हैं वहां
0: जी।
2: मगर यहाँ ना आपके पास दृश्य है, ना आपके पास मेकअप है, ना आपके पास कॉस्ट्यूम है, ना आपके पास लाइटिंग है, आपके पास क्या है?
0: आवाज।
2: रेडियो जो माध्यम है इसमें हम क्या करते हैं, हम अपनी बात को संप्रेषित करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, भले ही वो नाटक के माध्यम से हो, वार्ता के माध्यम से हो, संगीत के माध्यम से हो, कमेंट्री के, न्यूज के माध्यम से हो। आप सब जानते हैं जैसे हमारा इसका ध्येय ये है, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट, राइट। हमारे पास क्या है रेडियो में, हम सिर्फ तीन चीजों से काम करते हैं
0: जी।
2: क्या है वो तीन चीजें? स्पोकन वर्ड, म्यूजिक और साउंड इफेक्ट, ध्वनि प्रभाव और साइलेंस। अभी मैंने साइलेंस लिया तो आप लोग सब मेरी तरफ देख रहे हैं, क्या है, क्या बोलने जा रहा है, कौन सी चीज आने जा रही है। एक उत्सुकता बढ़ती है इस साइलेंस से। तो साइलेंस आप न कहते हुए भी आप बहुत कुछ कह जाते
1: हैं, कह जा सकते, बिल्कुल बिल्कुल।
2: अब देखिए आपने कभी सड़क पे जाइए तो आपको वो जो सड़क में मदारी होते हैं ना वो आपको दिखेंगे, उनको तो नहीं मालूम कि क्या कम्युनिकेशन है, उनको तो नहीं मालूम कि एक सेंडर होता है, भेजने वाला होता है संदेश, एक रिसीवर होता है, रिसीव करने वाला, एक आपका ऑब्जेक्टिव है आपका, वो उसको तो कुछ नहीं मालूम है, उसको तो बेचारे को अपना पेट देखना है
0: जी।
2: तो वो क्या करता है, अजगर करीना चाकरी पंची करीना खाज, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, हाँ तो मेहरबान कदरदान, तुगदान पीकदान, मेरे सामने आइए अपना खेल दिखाऊंगा। अब क्या है,
0: क्या बात,
2: ये ऐसे करते करते हजारों की भीड़ जमा कर लेता है। आप और हम दो लोगों की भीड़ जमा करके दिखा दें
0: हो।
2: या हमारे इलाके में एक सब्जी बेचने वाला आता था, कुछ नहीं, अब वो क्या करता था, सब्जी आलू ले लियो, भिंडी ले लियो, टमाटर ले ले, कद्दू।
0: क्या बात,
2: एक दफा मैंने पकड़ी, यार ये बाकी तो ले लो, ये कद्दू क्या होता है? कहता साहब यही तो चीज है, कद्दू कोई लेता नहीं है, तो इसको मुझे जोर से कहना पड़ता कद्दू। तो आप विश्वास कीजिए, लोग सिर्फ उसकी ये, एक दिन कह रहे साहब एक कविता में कहा, लैला की उंगलियां है मजनू की पसलियां, आने की दो दो ले लो ये ककड़िया। तो दिस इज हाउ यू कम्युनिकेट,
0: एग्जैक्टली
2: दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन रेडियो। जो यंग हमारे बच्चे आते हैं, वो सोचते बस हमें तो बोल देना है, हमें आकाशवाणी में राजवीरी जी ने स्क्रिप्ट दे दी है इसको मुझे पढ़ लेना है। नहीं, पढ़ना ही नहीं है, आपको कम्युनिकेट करना है, अपनी बात को पहुंचाना है।
0: वही है जो कि भाई साहब आप जैसे बता रहे हैं और बाकी में हमारे सारे जो

0: सुनने वाले हैं जो श्रोता हैं वो मंत्र मुग्ध होकर सुन रहे होंगे राजेश्वरी जी, है कि नहीं? और ये जो आपकी कला है उसको आपने आकाशवाणी में लोगों तक पहुंचाया है, क्योंकि हम लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा है बहन साहब आपसे। तो बहन साहब, अगर आप अपने इन अनुभवों के बारे में हमारे श्रोताओं के साथ कुछ शेयर करें।
1: जी, जहाँ तक रेडियो नाटकों का प्रश्न है, हमारा जो पहले नाटक का जो स्टूडियो होता था वो जो अब कॉन्फ्रेंस रूम है आकाशवाणी का, वो हमारा नाटक का स्टूडियो होता था। और उस नाटक के स्टूडियो में, मुझे मालूम नहीं अब तो वो बंद हो गया, एक तरफ विविध भारती का बूथ होता था और दूसरी तरफ हमारा रिकॉर्डिंग का सारा नाटकों का होता था। और इधर जो होता था मेन गेट होता था। अब हम लोगों की जब रिकॉर्डिंग चलती थी उसी वक्त ट्रांसमिशन विविध भारती का चलता था। अब आप सोच लीजिए कि कितनी मुश्किल होती थी। कई दफा होता ये था कि बड़ा टेंशन चल रहा है,
0: अच्छा
1: चोर घर में घुसा हुआ घुस रहा है, लड़की अकेली है, सारे लोग जो हैं उसको मतलब लड़की घबराई हुई है, और इतने में ही दरवाजे पे खटखट होती है, सर ट्रांसमिशन करना है जरा दरवाजा के लिए। सारा मूड खत्म, नाटक खत्म, स्टॉप स्टॉप रिकॉर्डिंग रुक गए, फिर खोला जाता था दरवाजा वो अनाउंसर का। फिर अब एक्टर एक्टर होता है ना, अब जरूरी नहीं है कि उसका फिर मूड, अब वो मूड बनाने में फिर टाइम लगता था।
0: जी सर, मैं यहाँ पे ये भी जानना चाहूंगी कि रिहर्सल का कितना महत्व होता
1: था। हाँ, यस यस, देखिए हमारे टाइम पे एक घंटे का जो प्ले होता था, 60 मिनट्स का प्ले होता था, उसकी एक हफ्ते रिहर्सल चलती थी 2 बजे से लेकर, कब खत्म हो ये नहीं मालूम। आधे घंटे के प्ले के लगभग 4 या 5 दिन तो रिहर्सल चलती चलती थी। बाय द टाइम वी यूज टू गो फॉर रिकॉर्डिंग, तब तक कलाकारों को ये मान लीजिए कि वो कंठस्थ हो जाते थे। और एक्चुअली क्या होता है कि अगर यहाँ पर जैसे रेडियो में इस विधा को समझ, हाथ में स्क्रिप्ट रहती है, उसमें क्या होता है कि जब आप डायलॉग बोलते हैं तो क्योंकि स्क्रिप्ट हाथ में रहती है, आप पढ़ते हैं तो डिस्ट्रैक्ट होने का चांस है। अगर आपको वही डायलॉग कंठस्थ हो जाए तो आप इजिली उसको पुट रहे। तो रिहर्सल हम लोग थ्रेडबेयर एक एक कैरेक्टर को, एक एक मूड को, एक एक फीलिंग को, अच्छे अच्छे कलाकार, यू वोंट बिलीव, यहाँ पर हमारे जैसे पीएन श्रीवास्तव, राधे बिहारी लाल, हल्लो भाई, या पीडी वर्मा, या बिमल बैनर्जी, ऐसी पर एक से एक गजब के कलाकार, प्रमोद बाला, वो खुद फील करते थे कि नहीं हमें और रिहर्सल,
0: यानी जज्ब हो जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और तब तक जब तक वो आपके खून में ना बस जाए वो कैरेक्टर, और खास तौर से ध्वनि के माध्यम के लिए जहाँ आपके बॉडी इन्वॉल्व नहीं है, आपके सिर्फ आवाज में रहो, फीलिंग कहाँ आप पॉज लेंगे, किस वर्ड को स्ट्रेस करेंगे। देखिए अब स्ट्रेस जो हम बात करते हैं, यही गलतियां करते हैं हम। जैसे एक संवाद है, कोई सामान को ले लीजिए, जैसे चलो उस गांव में चलते हैं, मान लीजिए ये डायलॉग, चलो उस गांव में चलते हैं, रुको नहीं, चलो उस गांव में चलते हैं, उस गांव और किसी गांव में, चलो उस गांव में चलते हैं। When you emphasize a particular word, जब आप एक शब्द पर आप जोर देते हैं, बलाघात करते हैं, तो उससे उस शब्द का अर्थ निकलता है। एक ही सेंटेंस को आप 20 तरह से कह सकते हैं,
0: बिल्कुल, you know? और मतलब बदल जाता है।
1: एग्जैक्टली, तो आपको सबसे पहले जो आपके हाथ में स्क्रिप्ट है या जो आपको दिया, पहले आपको उसका मतलब समझना है कि जो लेखक है या जो आप कन्वे करना चाहते हैं वो क्या है
0: जी,
1: और तभी तो आप स्ट्रेस देंगे वर्ड्स पे, तभी आप पॉज लेंगे, तभी आप फीलिंग लाएंगे, तभी आप मूड लाएंगे
0: जी। रेडियो में दरअसल बात ये होती है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि बीच में सन्नाटा हो गया अगर, तो हम लोग कहते हैं कि भाई ये गलत है, लेकिन किसी भी विधा में विशेषकर नाटक में पॉज का जो आप बार बार कह रहे हैं बहुत महत्व है, तो क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए ऐसा है, पॉज एक ऐसी चीज है जो बहुत ही, जिसे कहते हैं कि घातक चीज है, अगर आप उसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसी पॉज को सही तरह से इस्तेमाल करेंगे, फॉर एग्जाम्पल, अब मैं थोड़ा फिल्म का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, तो ऐसा है कि हमारे सब श्रोताओं ने शोले फिल्म देखी, ठीक, शोले फिल्म में गब्बर सिंह जब, कितने आदमी थे, क्या है, कुछ नहीं है, आपने कभी अगर सुना होगा कितने आदमी थे, तो वो चल रहा है एक रॉक के ऊपर, एक चट्टान के ऊपर, हाथ में उसके बेल्ट है और बेल्ट की जो बकल की आवाज है क्लिंग क्लिंग क्लिंग क्लिंग क्लिंग क्लिंग क्लिंग क्लिंग क्लिंग क्लिंग क्लिंग क्लिंग क्लिंग क्लिंग क्लिंग, वो जितना हॉरर क्रिएट करती है, 1000 इंस्ट्रूमेंट्स का ऑर्केस्ट्रा होता तो शायद ही वो हॉरर क्रिएट, कुछ नहीं। या एक और सीन है जिसमें गब्बर सिंह ऊपर चट्टान पे है, वो गोली मारता है और वो बच्चे की डेथ होती है और बच्चा झूल रहा है, बच्चे पे जो गिरता है उसके बाद झूले की आवाज है ऐसे, और उस झूले की आवाज अब देखिए ये जो उसने साइलेंस का इस्तेमाल किया, साइलेंस कैन क्रिएट सो मेनी फीलिंग्स। इट मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये 1000 चीजें दिखा सकता है, उत्सुकता जगाता है, सस्पेंस क्रिएट करता है, हॉरर क्रिएट करता है, डर क्रिएट करता है। साइलेंस में सबसे पहले अब सामने से अगर टक टक स्टेप्स आ रहे हैं तो सुनने वाले के सामने देखे कि कुछ कुछ होने वाला है, कोई अटैक होने वाला है, कुछ कुछ होगा जरूर। साइलेंस ऐसी जगहों पे बहुत कारगर है।
2: सर, आज भी इस उम्र में आपके भीतर एक बहुत खूबसूरत कलाकार मौजूद है और अब आकाशवाणी के इतने शीर्ष पदों पर आपने काम किया, तो ये दोनों चीजों में कोऑर्डिनेशन कितना
1: बहुत मुश्किल था, कठिन था। बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। अब आप ये सोच लीजिए अगर अब मैं खुल के कह सकता हूँ कि मुझे फाइलों में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, करता था
0: जी
1: पार्ट ऑफ द जॉब, मेरा आधा मन जो रहता था वो हमेशा
2: प्रोडक्शन
1: स्टूडियो में रहता था या प्रोडक्शन में रहता था, या क्योंकि मैं लकी ये रहा कि मैं दिल्ली में NABM का भी डायरेक्टर रहा, अपना जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था RABM का भी निदेशक रहा। तो सबसे बड़ी बात इसमें ये थी कि फाइलें थोड़ी साइड पे हो जाती थी, अपनी बात जो कुछ हमने सीखा वो लोगों तक पहुंचाने में मुझे बहुत मजा आता था। जैसे अभी बैठ के मुझे जितना आनंद मुझे अब आ रहा है बात करने में आप लोगों से और अपने श्रोताओं से, मन करता है कि बस ऐसे बैठ के बात करता रहूं, मुझसे जितना भी मेरे अंदर जो कुछ है वो जितना भी वो निकाल सके। कल को मैं मर जाऊंगा, अब कितने साल रह गए, पांच साल और जिंदा,
0: हम चाहेंगे कि आप शताब्दी को बिल्कुल
1: लेकिन जितना भी रह गया है मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मैं लोगों को दे सकूं, खास तौर से इस माध्यम के लिए। इस माध्यम ने मुझे बहुत कुछ दिया, मैंने जिंदगी में शायद मैं अगर उस जमाने में फिल्मों में चला जाता या और किसी में, मैं उतना 5 साल मैं दूरदर्शन में भी रहा हूँ। जो रेडियो ने मुझे दिया है, क्योंकि रेडियो मीडियम क्रिएटिव था, सोचता था यार ये साउंड इफेक्ट क्रिएट करना। मैंने एक नाटक किया था, एनवायरमेंट पे था, साइंस फिक्शन था, उसमें दिखाना है कि मुझे कि एक बाहर से उड़न तस्करी आई है और वो उड़न तस्करी आके अर्थ पर आती है और किस तरह वो डिस्ट्रक्शन करती है, क्या करता है। अब मैं ये सोच रहा था कि उड़न तस्करी का इफेक्ट कैसे लाया जाए, या ये जो बोल रहे हैं, ये जो एलियंस बोल रहे हैं, ये कैसे बोल रहे हैं, ये इफेक्ट लाना था। अब सोच रहे हैं यहाँ पे क्रिएटिविटी आती, क्या किया, मेरे बच्चे की एक खेलने वाली बंदूक थी जो पहले वो बैटरी से चलती थी, ये सारी आवाजें वो लेके आया मैं। तो उस जमाने में हम लोग सब
2: टेप का दौर था,
1: टेप पे होता था, तो स्पीड बढ़ा के स्पीड स्लो करके, अब जैसे फॉर एग्जांपल अब डायलॉग थे, अब एलियंस के डायलॉग बोलने था कैसे बोले जाएंगे एलियन देना, अगर बहुत फास्ट करेंगे तो क्लैरिटी जाएगी, बहुत स्लो करेंगे तो क्लैरिटी जाएगी, तो क्या करना चाहिए, तो ऐसा करें यार कुछ बीच करा। तो हमने क्या किया, टेप पे पहले डायलॉग लिखा, अच्छा मैं वहां जाऊंगा और तुम मेरे साथ चलोगे, अच्छा मैं वहां जाऊंगा तुम वहां आओगे, ये सारी चीजें जितना क्रिएशन, क्योंकि क्या है कि आप देख नहीं सकते, आपको सब कुछ अपने इफेक्ट्स, मूड, फीलिंग या अपने डायलॉग से आपको लोगों को दिखाना है क्या हो रहा
0: जी। आपके अंदर का जो कलाकार है बहन साहब, हमें पूरी तरह से अनुभव हो रहा है कि वाकई में वो अभी भी कितना सक्रिय है, आप मंच पर भी सक्रिय रहे हैं, कुछ अपने अनुभव जैसे आपने नाम लिए पंकज कपूर के रैना साहब के, तो इनके साथ के कुछ अनुभव हमारे श्रोताओं के साथ आप शेयर करना चाहेंगे?
1: हाँ, इनके साथ तो बहुत अच्छा, मुझे याद है हम लोग जो NSD में थिएटर करते थे

0: हमतीन बहुत जो वेल नोन प्लेज हुए हैं एनएसडी के, जैसे एक अंधा योग धर्मवीर भारती जी का
1: जी।
0: सुल्तान रजिया और पुराने किले में किए थे, और हमने आधे अधूरे मोहन राकेश का किया था, स्टूडियो थिएटर था रविंद्र भवन का, उसमें किया था, और ये बड़े अच्छे एक्सपीरियंस रहे अंधा योग और सुल्तान रजिया और तुगला
1: जी।
0: ये तो उन्होंने अलकाजी साहब ने डायरेक्ट किया था, और मुझे याद एक छोटा सा इंसिडेंट अगर
2: जी, जी
0: ऐसा था कि दिल्ली के पुराने किले में ओल्ड फोर्ट में हुआ था ये, और पुराने किले में एक बहुत बड़ा ह्यूज दरवाजा था, उसमें से तुगलक की एंट्री होती है, तुगलक आ रहे हैं, तुगलक कर रहे थे मनोहर सिंह
1: जी,
0: तुगलक की एंट्री होती है, और जब वो आते हो पहली ओपनिंग स्पीच वो अपने रियाया से बात कर रहा है तुगलक। एक आध दफा रिहर्सल हुई, अलकाजी साहब भी थे, हम लोग भी थे। अच्छा, क्योंकि अलकाजी साहब की जो रिहर्सल होती थी हमारे लिए तो एक क्लास होती थी, मतलब कि हम सीखते थे। वो आए मनोहर सिंह, एक दो तीन तीसरी एंट्री पे, उन्होंने कहा सर एक बात मुझे कहने। अलकाजी साहब ने कहा हाँ कहो। कि सर ये जो आर्च है ना, अब मैं हूँ 5-8-9 फीट का आदमी, हाइट है मेरी, और ये आर्च जो है ये कम से कम 12, ये तुगलक के पूरे जो उसकी पर्सनैलिटी उसको खा जा रही है, तो मैं जब एंट्री लेता हूँ मेरी एंट्री बिल्कुल फीकी पड़ रही है क्योंकि ये आर्च डोमिनेट कर जाती है। तो काजी साहब मुस्कुराए, उन्होंने कहा आप हटिए मैं। अलकाजी साहब की जो हाइट थी वो 5'2" या 5'3" थी।
2: अच्छा।
0: और हाँ नाटे थे बहुत ज्यादा, और अलकाजी साहब ने जब वो उस आर्च से आके वो खड़े हुए हैं अलकाजी साहब, और उन्होंने अपने पहले दो लाइन बोली हैं डायलॉग की, आप विश्वास नहीं करोगी वो आर्च ऐसा लगता था जैसे वो कोलैप्स करके गिर गई।
1: क्या बात।
0: तो उन्होंने ये कहा कि इट इज नॉट योर पर्सनैलिटी, इट इज नॉट यू एज अ पर्सन, इट इज योर कैरेक्टर, हाउ यू स्टैंड ऑन दिस, आप मंच पर किस तरह खड़े होते हैं, आपका पोस्चर क्या है, आपकी आंखों का जो जो रौब है, आपके चेहरे की जो जो एक, एक जिसे कहते हैं ना वो जो तमतमाहट है वो आपके पूरे बॉडी को, वो आर्च वाज भूल जाइए, व्हाट यू आर, आप तुगलक बादशाह, और जब आप आके खड़े होगे तो उस आर्च का क्या मजाल के वो आपको खा जाए। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं बहुत छोटा पड़ रहा हूँ इस आर्च, तो फिर वो तो चाहे तुगलक हो और चाहे कोई भी हो, राजा हो बादशाह, वो छोटा अपने आप को फील करेगा। नो, योर बॉडी, योर फीलिंग, योर मूड, योर पोस्चर, आप किस तरह खड़े होते हैं वो काउंट करेगा।
1: कैरेक्टर का जो एक्चुअली वो जो
0: स्पिरिट, यस यस, स्पिरिट चीज काम करेगी
1: बिल्कुल, और वही चीज लाने की जरूरत होती है। आकाशवाणी में सर कैसे इस तरह को आप लोग करते थे, जैसे आपने बताया बहुत सारे।
0: देखिए आकाशवाणी में भी ऐसा, फॉर एग्जाम्पल मैं यही अपने लखनऊ स्टेशन पर मैंने एक प्ले था मोती नंदी का, स्ट्राइकर
1: जी,
0: फुटबॉल प्लेयर के ऊपर था, और उस जमाने में अनुपम खेर जहाँ भारतेंदु नाट्य केंद्र में ही वॉज पढ़ा रहे थे, और क्योंकि हमसे एक साल जूनियर थे तो हमारे अच्छे दोस्त हैं वो, तो आए यहाँ पे, हमने बुलाया उनको, ही डिड द मेन रोल।
1: अच्छा।
0: उसका हाँ वो
1: किस साल की बात होगी, लगभग
0: ये 79 की, तो अनुपम को हम ही डिड द मेन रोल। और अब सबसे बड़ी बात ये, वो कैरेक्टर था प्रसून बैनर्जी करके नाम है वो, और वो बंगाल का काफी फेमस फुटबॉल प्लेयर है वो
1: जी।
0: तो अब क्या होता है कि वो फुटबॉल खेल रहा है, अब देखिए एक स्टूडियो में फुटबॉल खेलने का जो एक प्रस्पेक्टिव बनाना होता है, इट इज नॉट एन इजी जॉब। अब क्या किया जाए कि फुटबॉल खेलने का पूरा जो मूड है वो बने, तो हम लोगों ने क्या किया, लिटरली सारे जो एक्टर्स थे जिनको वो, हमने यहाँ स्टूडियो वन में फुटबॉल उन्होंने खेली।
1: अच्छा।
0: हाँ
1: क्या बिल्कुल बात?
0: उससे क्या हुआ कि प्रस्पेक्टिव बना, बॉल यहाँ से वहां गई, वहां से वहां गई, वहां से वहां, अगर हम सिर्फ एक जगह खड़े होते तो वो पर्सपेक्टिव जो एक डेप्थ जो एक मूवमेंट होना है वो नहीं हो पाता। तो हम लोग सब ने वहां पे बॉल फुटबॉल खेली और उससे जो इफेक्ट बना वो
1: काबिले तारीफ होगा,
0: और तो वो चीज लोगों को अच्छी लगी,
1: बिल्कुल अच्छी लगी होगी। और वाकई में जब आप इस तरह से बता रहे हैं हमें लगता है कि दृश्य सबके सामने आ जाता है, और यही तो आकाशवाणी का उद्देश्य है कि आप जो भी बोलें वो लोगों तक दिल तक पहुंचे और वो उस दृश्य को देख पाए। तो कमेंट्रीज का भी, जैसे आपने कहा कि आपने वहाँ लाइव खेला, कमेंट्रीज भी हमारे आकाशवाणी से होती है।
0: राइट। देखिए कमेंट्री

0: आंखों देखा हाल भी अपने में एक एक बहुत बड़ी आर्ट है
1: जी।
0: देख आप रहे हैं लेकिन आपके थ्रू आपका लिसनर देख रहा है। वो रंग अब 26 जनवरी का आंखों देखा हाल हो या आपका क्या कहते हैं 15 अगस्त का आंखों देखा हो
1: जी।
0: किसी फुटबॉल मैच का या किसी भी गेम का आंखों देखा हाल, क्रिकेट का आधा एक जमाने में, अब आजकल तो भैया सब टीवी पे देखते हैं, लेकिन एक जमाने में जब फुटबॉल की जो कमेंट्री रेडियो पे आती, जो जो लोकान पे लगा के मार, क्यों जो जो कमेंटेटर था वो आप में है, एंड द बॉल इज कमिंग एंड दिस गोज एंड दिस कमिंग एंड दिस ओवर द बॉल शॉट, भले ही शॉट ग्राउंड पे उतनी जोर से लगे ना हो लेकिन जो कमेंटेटर होता था वो इतनी जोर से उचलता था कि आपको लगता था कि वो छक्का ही लग गया। बाद में कहता ओ बट द बॉल वाज स्टॉप्ड एट द बाउंड्री एंड आई एम सॉरी देयर वाज ओनली, तो पता लगता था दो रन लिए गए। तो एक्साइटमेंट ये क्या, जब आपकी आंखों, तो आपको ये देखना है कि मेरी आंखों से हजार लोग जो सुन रहे हैं कमेंट्री दी,
1: और पहले कमेंटेटर्स को सुनने के लिए जगह जगह पे भीड़ लगी होती थी।
0: भीड़ लगी होती
1: जी।
0: दूसरी बात, एक कमेंटेटर को सबसे पहले रिसर्च करनी चाहिए। अब मैं आपको एक बात मैं बताता हूँ, इंदिरा जी की डेथ हो गई थी और उनके अर्थ की रनिंग कमेंट्री देनी थी
1: हमारी पूर्व प्रधानमंत्री,
0: और हाँ, और मेरी जो ड्यूटी लगी थी जहाँ पे उनका अंतिम संस्कार होना था शक्ति स्थल पर, वहाँ पर मेरी ड्यूटी लगी हुई थी एज अ, दो दिग्गज लोग थे मेलविल डिमेलो और इंग्लिश में और शिव सागर मिश्र जी हिंदी में कमेंट्री। तो एज यूजुअल अब हम लोगों को तैयारी करनी थी, तो मैं सुबह दफ्तर पहुंच गया, मुझे कहा गया था कि ये दोनों 4 बजे आएंगे तो आप इनको अकंपनी करिएगा वहाँ शक्ति स्थल तक
1: जी।
0: और वहाँ पे ये कमेंट्री के लिए अभी सब हमारे इंजीनियर भाई सब उन्होंने तैयारी कर दी थी एज यूजुअल, उन्होंने परफेक्ट सारा किया हुआ था। तो मैं सुबह अपना कमरे में बैठा कोई 8:30-9 बजे के करीब, सडनली मेरे को एसडी साहब एमएस बत्रा जी थे उनका फोन आया, जल्दी आओ ये मेलबल डिमेलो और ये दोनों आ गए। मैंने कहा अरे यार इन्हें तो 4 बजे आना था, ये कैसे आ गए, जल्दी आओ तो इनको अभी जाना है वहाँ
1: स्पॉट।
0: चलिए क्या कर सकते हैं अभी जाना, हमने अपना जो कुछ भी कागज थे समेटे और चल दिए वहां गए। यू वोंट बिलीव, दोनों भाई दिग्गज का एक एक चीज, मंच जिस पर उनकी अर्थी रखी जाएगी, क्या हाइट है, कौन से पंडित बोल रहे हैं, कहाँ वीवीआईपीस कहाँ बैठेंगे, कौन किस सीट पे बैठेगा, बैंड कौन सा होगा, कौन कौन से भजन बजाए जाएंगे, कौन बैंड को लीड कर रहा है, पंडित कौन होगा, एक एक चीज उन्होंने
1: फुल रिसर्च।
0: तब मुझ जैसे एक नए आदमी ने सीखा कि सही बात है कि आपको पहले यू हैव टू बी श्योर ऑन योर ग्राउंड बिकॉज यू हैव टू फर्स्ट नो व्हाट इज गोइंग ऑन, देन ओनली तब आप उस बात को अपने श्रोता तक पहुंचा पाएंगे। अगर आपको खुद ही आप नहीं श्योर है तो आप श्रोता को क्या बताएंगे,
1: कंटेंट को आपको पहले लेना
0: है। पहले ये रिसर्च इस तरह का, ये कंटेंट कहीं बुक्स में तो मिलेगा नहीं आपको, ये तो लाइव होना है, वहीं पे होना है, आपको खुद नहीं मालूम क्या होगा।
1: बिल्कुल।
0: और विश्वास नहीं करेंगे जब कॉमेंट्री उन्होंने की, रोंगटे खड़े हो गए, इतनी खूबसूरत दोनों ने कमेंट्री की। हम लोगों का जो बूथ था वो एक मंच के ऊपर था और वहां से पूरा बिल्कुल वो उनका
1: दिख रहा था।
0: मतलब कि आज भी मैं सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते, कितनी खूबसूरत कमेंट्री की थी, लोगों की आंखों में आंसू आ गए। तो ये है कमेंट्री की खासियत।
1: बिल्कुल बहन साहब, आप इतना कुछ हमें बता रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं, अब लगातार सीख रहे हैं, और हमारे श्रोताओं को भी बहुत उत्सुकता हो रही है कि किस तरह से आपने इतने सारे प्रोडक्शंस किए होंगे, उसमें आपने बिल्कुल अपना जी जान दिया होगा, क्योंकि आपके प्रोडक्शंस के बारे में हम लोग सब जानते हैं। तो हम अपने श्रोताओं से आगे भी बात करेंगे राजश्री जी, और एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि हमारे श्रोता चाहते हैं कि साथ ही साथ थोड़ा संगीत का भी लुत्फ उनको मिल सके, तो एक गाना हो जाए हमारे श्रोताओं के लिए।

0: बैनर्जी साहब, आपने रंगमंच और रेडियो दोनों के लिए कई अहम किरदार निभाए हैं, तो आपको पसंदीदा कोई ऐसा कैरेक्टर हो, कोई किरदार आपको जो पसंद है, जो आप करना चाहते हैं उस रोल को?
1: मैं एक नाटक करना चाहता था, वो हो नहीं पाया, वो बाद में मैंने मंच पे जरूर किया। अभी
2: कुछ उसकी वानगी हो जाए हमारे श्रोताओं के लिए, पर्टिकुलरली इस नाटक के लिए।
1: ये हानुष जो है वो बहुत बहुत अच्छा कैरेक्टर है। वो एक कुफल साधु घड़ी बनाने वाला है, और होता यह है कि वो घड़ी बनाता है, राजा बहुत खुश होता है उसकी घड़ी देखकर, और बाद में क्या होता है, राजा को लगता है कि ये कहीं दूसरी घड़ी ना बना दे तो उसको अंधा कर देता है, उसकी आंखें निकलवा देता है। अब होता यह है कि घड़ी खराब हो जाती है, अब सिर्फ वही एक व्यक्ति है जो घड़ी ठीक कर सकता है और वो अंधा है।
0: ओ, ओ, ओ, ओ।
1: तो वो राजा कहता है इसको बुलाओ, यही ठीक करेगा, और एक आदमी उसकी मदद के लिए दे देता है।

0: ये सोचता है कि जिस राजा ने मुझे अंधा किया इस घड़ी पे, मैं तो ये घड़ी सारी बुराइयों की जड़ है, मैं इस घड़ी को ही खत्म कर दूंगा। वो घड़ी तोड़ने के लिए जाता और वहां जाके क्या होता है उसके साथ, एक छोटा सा अंश है जहानुष का, वो मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये तोड़ने गया है और ये जहाँ घड़ी की मशीनरी है वहां पे बैठा हुआ है, और साथ ही में उसकी वाइफ, उसकी पत्नी कात्या उसका नाम है, वो खड़ी है। कात्या, सच कहूं मैं यहां इस घड़ी को तोड़ने आया था, हथौड़ा उठा भी लिया था मैंने, लेकिन जब कमानी पर हाथ रखा तो क्या बताऊं, लगा जैसे मैं घड़ी का दिल छू रहा हूं। यहां एक आदमी आया था, मैं उसे नहीं जानता, शायद कोई लोहार था, अधिकारियों ने उसे मेरी मदद के लिए भेजा था। उसने कहा ये घड़ी तुम्हें अपने कहती है। उसकी बात सुनकर मुझे खुद पर बड़ी शर्म आई। फिर ये घड़ी सिर्फ मेरी ही नहीं रही, सबकी है, और ये मैं हूं जो इसे तोड़ने चला था। धीरे धीरे मुझे लगा जैसे मैं एक एक पुर्जे को साफ साफ देख पा रहा हूं, लगा ही नहीं कि मैं अंधा हूं। मैं तो अपनी ही बात ले बैठा, जानता पिटिया कैसी है, जी कब लौटा। अरे सच बताना, वो शहर से बाहर निकल गया है ना। कात्या, क्या मैं तुम्हें और एमिल को नहीं जानता, लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ, वो घड़ी बनाना जानता है, और वो अब इससे बेहतर घड़ी बनाएगा। हाँ, और बेहतर घड़ी।
1: क्या बात, बहुत सुंदर, बड़ा खूबसूरत नाटक रहा, और उसके खूबसूरत
2: और हम इसमें बिल्कुल डूब गए, और यही शायद कला है आपकी। आपके समय में आकाशवाणी लखनऊ में जो लोग रहे हैं उनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि आपका एक लंबा समय आकाशवाणी लखनऊ में गुजरा है, तो और बड़े बड़े कलाकार
0: जैसे यहाँ पे हमारे टाइम पे रहे, आप तो पता नहीं लोग जानते भी हैं, जैसे संतराम, पीडी वर्मा, विश्वनाथ मिश्रा जी, बिमल बैनर्जी, विजय वास्तव, वी एन गौड़, हल्लो भाई, एच के अरोड़ा, स्वदेश बंधु, डॉक्टर अनिल रस्तोगी, और बेनू कलसी, नीरजा गुप्ता, कुमकुमधर, ये अब कुमकुमधर जी के साथ तो एक मैंने नाटक किया, बहुत बढ़िया नाटक था, तट निरंजना करके था, वो भी मोती नंदी का उपन्यास था गौतम बुद्ध के जीवन पर, और वो आकाशवाणी अवार्ड उसको मिला था, तो उड़िया वर्जन को, उसका हिंदी वर्जन राष्ट्र कार्यक्रम के नेशनल प्रोग्राम ऑफ प्लेस के लिए मैंने प्रोड्यूस किया था, तो उसमें पहला दृश्य था जिसमें कुमकुम जी और हमारे नवनीत मिश्र वो दोनों मुख्य कलाकार थे, और बहुत अच्छा दोनों ने रोल किया, और उसमें पहला सीन में तेज बारिश हो रही है, और तेज बारिश में तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर एक बात बताएं, कहा कहो, दो तीन मिनट का सीन था कि इसको एक कट में रिकॉर्ड कीजिएगा, ब्रेक मत कीजिएगा, और अगर अगर बाद में आपको ठीक ना लगे तो फिर आप बताइएगा, हम जैसा आप कहेंगे ना। मैं तो ठीक है, आप चाहते हो, आप विश्वास नहीं करोगे, वो जो सीन था दोनों ने इतना खूबसूरत एक कट में दिया, बिल्कुल एक सांस में उन्होंने पूरा सीन, पूरे इमोशन, फीलिंग, आप फील कर सकते थे कि वो तेज बारिश में भीग रहे हैं, उनके अंदर जो इमोशंस हैं वो निकल रहे हैं, और वो उसके बाद वो इतना अच्छा सीन हो गया था, जब ब्रॉडकास्ट हो गया, सब हो गया, उसके बाद जब मैं पहली दफा दिल्ली में ज्वाइन किया मैंने, तो सत्येंद्र शरद जो उस जमाने में चीफ प्रोड्यूसर ड्रामा हुआ करते थे, दिग्गज जो खास तौर से मेरे कमरे में आए वो जानने के लिए कि भाई वो कौन नया आदमी है, वो बैनर्जी कौन है जिसने वो दृश्य जिसने रिकॉर्ड किया इतना खूबसूरत, तो ये जो भाव, जो फीलिंग है ना, वो आपको एक किसी और ही दुनिया में ले जाती है।
2: बिल्कुल, और ये बहुत ही सुंदर अनुभव है जब एक ऐसे दिग्गज आपको खुद उसके लिए प्रशंसा दे और खुद आकर आपको

0: सराह है। हमारे श्रोताओं को आप क्या कहना चाहेंगे, और खासतौर पर मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आपका पास टाइम क्या होता है, अगर आप अभी भी मंच पे सक्रिय रहे हैं कुछ समय पहले तक, तो उसके अलावा क्या पास टाइम आप?
1: मुझे रहता ये है कि थोड़ी बहुत मैं पेंटिंग भी करता हूँ, थोड़ी बहुत ड्राइंग।
0: अच्छा।
1: हाँ, थिएटर करने की तो बहुत इच्छा करती है, लेकिन अब थोड़ा सा शरीर साथ नहीं दे रहा, इसलिए थिएटर भी कम हो गया है
0: जी।
1: हाँ, ड्रामे देखने का शौक है, पढ़ने का शौक है, और जब रिटायर्ड आदमी हो जाता है तो घर के भी 20 काम आ जाते हैं उसमें भी व्यस्तता रहती है
0: जी।
1: तो और कभी कभी आप लोग जैसे लोग मुझे बुला लेते हैं, मैं थोड़े बहुत अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर लेता हूँ, तो बस यही है, जिंदगी किसी तरह कट रही है, कट जाए।
2: हमारे सुनने वाले ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हम तो आपको देख पा रहे हैं, उम्र किस पड़ाव में भी इतने स्मार्ट हैं आप, इतने आवाज बुलंद है, तो इतने एक्टिव हैं, तो क्या करते हो भोजन?
1: नहीं, बहुत अच्छा सही।

0: जिंदगी किस तरह कट रही है, कट जाए।
1: हमारे सुनने वाले ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि हम तो आपको देख पा रहे हैं, उम्र किस पड़ाव में भी इतने स्मार्ट हैं आप, इतने इतने आवाज बुलंद है, तो इतने एक्टिव हैं, तो क्या करते हो भोजन दिनचर्या क्या?
0: नहीं नहीं मैं बहुत अच्छा सवाल सही पूछो। देखिए मैं रिटायर्ड हूँ, चाहे जो भी आपकी अगर हॉबी है या कला है उसमें आपको डूब के उसमें रहना है, वो आपको स्ट्रेंथ देती है। रिटायरमेंट के बाद भी मतलब मैं 2012 में यहाँ से रिटायर हुआ और 13 साल हो रहे हैं मुझे नहीं मा... यही थिएटर का नाम में भी कई प्रोग्राम्स में मैं आया गया, ये आपको स्ट्रेंथ देता है। अगर आप घर में बैठ जाएंगे और अगर आप सिर्फ अपने आप को बंद कर लेंगे चार दीवारों में तो फिर आपका डेवलपमेंट खत्म हो जाएगा। कंटिन्यू डूइंग समथिंग, आपकी जो भी हॉबी है अगर नहीं है तो डेवलप कीजिए हॉबी। पास टाइम क्या है, मैं और वाइफ अगर थोड़े दिन थे उसके बाद हम लोग घूमने चले जाते हैं, उसका एक अलग आनंद है, उसका एक अलग एक्सपीरियंस है, बहुत सारी चीजें जानने को मिलती है, सीखने को मिलती है।
1: बनर्जी साहब, जब कभी लोग आपको याद करें, आपका नाम लें, तो आप क्या चाहेंगे कि आपको एक अच्छे कलाकार के रूप में याद किया जाए, अच्छे प्रशासक के रूप में याद किया जाए या अच्छे इंसान के रूप में याद किया जाए?
0: राजेश्वरी जी आप बड़े कठिन प्रश्न पूछते हैं, ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो भाई मैं तो मानूंगा इंसान तो जो मैं हूँ सो हूँ, आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता हूँ, आपके लिए बहुत अच्छा सर, किसी के लिए इतना अच्छा नहीं भी हो सकता, तो इंसान तो जैसा हूँ अब बदलना। मैं तो चाहता हूँ कि मुझे अगर दुनिया याद करे तो एक कलाकार के रूप में याद करे, और अभी भी मैं और सीखना चाहता हूँ, मुझे और मौके मिलेंगे मैं और सीखूंगा और जानना, और ये नहीं मैं आप लोगों से यहाँ जितने भी लोग हैं सबसे मैं और सीखना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। हर ऑडिशन में जब आप ही लोगों के यहाँ बैठता हूँ तो मैं अनाउंसर्स होते हैं जो ऑडिशन देने हैं तो उनसे मैं सीखता हूँ। देखो ये गलतियां होती हैं, ये गलतियां बच्चों को बतानी चाहिए तुम्हें कि ये गलती मत करो, या ये देखो ये बात इस एक नए आदमी में कितनी अच्छी है क्योंकि ये पहली दफा माइक पे बोल रहा है इसलिए फ्रेश लग रहा। अगर यही आदमी 20वीं दफा बोलता तो ये इतना फ्रेश ना बोलता। तो बहुत कुछ मैं खुद सीखता हूँ, तो भाई मुझे तो भैया याद करो तो एक कलाकार के तरह याद करो, बस और कुछ।
2: और आज का कार्यक्रम तो आपके कलाकार रूप को ही उजागर कर रहा है क्योंकि हमने आपके इतने सारे शेड्स देखे, आपके जो भी अनुभव जो भी आपका अभिनय रहा है उसको हम लोगों ने अभी भी यहाँ पे महसूस किया, और रोमांचक जो आपकी यात्रा रही इस पूरे यात्रा में श्रोताओं को भी बहुत आनंद आया होगा मुझे ये उम्मीद है। और आपने इतना जो खजाना हमारे सभी श्रोताओं के साथ साझा किया उसमें से कुछ भी अगर हम लोग ग्रहण कर लें और हमारे श्रोता ग्रहण कर लें तो हम लोग कुछ ना कुछ जरूर हासिल करेंगे, अपने लक्ष्य को पा सकेंगे, और जो एक डेडिकेशन होता है किसी के भी प्रति किसी भी काम के प्रति वो आपसे सीखने को मिलती है। तो राजेश्वरी जी,
1: हाँ अब जी तो नहीं चाहता कि बातचीत को विराम दिया जाए लेकिन फिर भी क्योंकि तालियों की गूंज दोस्तों समय के साथ थम जाती है लेकिन एक सच्ची रंगकर्मी की साधना और उसके द्वारा जगाई हुई संवेदना सदैव जीवित रहती है।
2: और जैसा कि आपने कहा हम भी आपके शतायु होने की कामना करते हैं, आप स्वस्थ रहें, आप खुश रहें, सफल रहें, और जो भी आप करना चाहते हैं आगे भी आप जितना भी सीखना चाहते हैं जरूर सीखें, यही हमारी शुभकामना है और यही हमारी इच्छा है कि आप हम लोगों को भी सिखाते रहें और हम लोग भी आपसे सीखते रहें।
0: धन्यवाद। बस चलते चलते मैं जो बार बार क्योंकि मेरे में एक शिक्षक की आत्मा घुसी हुई है तो मैं अपने जो बच्चे आना चाहते हैं आकाशवाणी में उनसे सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि पहले माध्यम को जान लो, समझ लो, किस तरह इसमें प्रस्तुतिकरण होता है वो देखो, सुनो रेडियो को, इस माध्यम को सुनो। और चलते चलते एक वसीम बरेलवी का एक छोटा सा शेर है, वो मैं कहता हूँ कि बात कौन सी कब कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाए।
2: क्या बात है,
0: मतलब अगर आपका कहने का तरीका सही है तो आपकी हर बात सुनी जाएगी। तो भैया ये जान लीजिए कि आपका कहने का तरीका सही होना चाहिए और ये अगर आप समझ गए तो आप इस माध्यम में सफलता प्राप्त कर लेंगे।
2: तो आज का सफर न चाहते हुए भी अब समाप्ति की ओर है, और राजेश्वरी जी हमारे साथ रहे हैं श्री बैनर्जी साहब,
1: पूर्व उप महानिदेशक आकाशवाणी कार्यक्रम के।

0: सर आपने बहुत कीमती वक्त दिया हमारे सुनने वालों के लिए, हालांकि अभी बहुत सारी बातें जाननी बाकी है, कुछ भी नहीं हो पाई है, लेकिन चूंकि समय की पाबंदी है मुलाकात को ही खत्म करना पड़ेगा। आपके तशरीफ आवरी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम पदचिन्ह आकाशवाणी के। श्री सुशील रॉबर्ट बनर्जी, पूर्व उप महानिदेशक आकाशवाणी से सुमुना पांडे और सुरेंद्र राजेश्वरी की बातचीत।
1: सुबह की खूबसूरत शुरुआत, सुकून से भरा दोपहर, शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
2: है,
1: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
3: ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
1: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz, FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
4: मन की शांति और शक्ति के लिए

0: जुड़िए भक्ति से आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम,
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: हर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: हर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों, जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरीज और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों, जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी और यह कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की यह ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है और इस जन भागीदारी का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक

प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहां नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम, यानी केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है, 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11,00,000 परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है। हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है। और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते।

जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती, और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है, उस पक्षी का नाम है हरगीला। हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हरगीला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हरगीला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने ये सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी, फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगीला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगीला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है, जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं, जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है, और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर

इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए एआई इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य घड़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत, संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरेबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और आध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, स्त्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी

महत्व शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका ये प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये है मेघालय के रूट ब्रिज। रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है। इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती हैं। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। ये हमारे देश की इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। साथियों,

से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती हैं। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा, इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट ब्रिजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे, लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है कौन उसे साफ करता है। ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया। ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको ब्रिक्स में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको ब्रिक्स का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो। वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें, और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदें। साथियों, मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती हैं। इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है, हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय

0: कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं, हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर जरूर गंभीरता से सोचेंगे और देश हित में कदम भी उठाएंगे। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के लोग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे छोटे बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ मिले तो कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों के बारे में मुझे जरूर लिखते रहिए, अपने विचार और अपने सुझाव भेजते रहिए। हो सकता है आपके आसपास की कोई छोटी सी पहल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाए। अगले महीने हम फिर मिलेंगे, देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और हाँ, जल संचय तो करना ही करना है, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन, ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
3: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे पुनरेकवारं भवद्भिः सह मिलित्वा अहमत्यन्तम् आनन्दम् अनुभवामि। 26,000,000 अर्धवर्षं प्रायः समाप्तमेव। एतेषु षण्मासेषु वयं मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे देशवासिनां नैकासाम् उपलब्धीनां चर्चां कृतवन्तः। जून मासेपि देशेन एतादृश्यः उपलब्धयः प्राप्ताः याः प्रत्येकं देशवासिनं गर्वेण पूरयन्ति। एताः सफलताः देशस्य सुरक्षया आत्मनिर्भरतया च सह सम्बद्धाः सन्ति। अचिरादेव अहं कोलकातायां नौसेना सम्बद्धे एकस्मिन् कार्यक्रमे सहभागस्य अवसरं प्राप्तवान्। तत्र INS दूनागिरि, INS संशोधक, INS अग्रय इत्येते पोताः भारतीय नौसेनायाः रक्षक दले सम्मिलिताः। एतेषां पोतानां संरचना निर्माणं चापि सर्वं स्वदेशीयमस्ति। सखायः जून मासे एव विमानन क्षेत्रे अपि देशेन एका महती सफलता अर्जिता। C-295 इति विमानं भारते निर्मितमस्ति, अपि च C-295 इत्येतत् विमानं सर्वप्रथमोड्डयनं पूर्णं कृतवत्। एतादृशानि 40 संख्याकानि विमानानि भारते एव निर्मीयन्ते। अनेन MSME इत्येतेभ्यः उद्यमेभ्यः विमानक्षेत्राय च नूतन शक्तिः प्राप्यते, वृत्तेः अवसराः वर्धन्ते, आत्मनिर्भरभारतस्य च सङ्कल्पः अपि सुदृढः भवति। अस्मिन्नेव मासे DRDO इत्येतेन रक्षानुसन्धान विकास सङ्घटनेन लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल इत्येतस्य प्रक्षेपास्त्रस्य सफलं परीक्षणं कृतम्। एतत् प्रक्षेपास्त्रं DRDO इत्येतस्य

राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह के निर्देश पर परिवहन विभाग 1 जुलाई से 31 जुलाई तक स्कूली बसों के फिटनेस संबंधी जांच के लिए अभियान चलाएगा। अभियान के तहत बसों की तकनीकी खराबी, फिटनेस, सुरक्षा मानकों की जांच की जाएगी, साथ ही चालकों का भी भौतिक सत्यापन, जांच इत्यादि की जाएगी। जांच में बस बॉडी की संरचना, बस की छत की निर्धारित भार मानक के अनुसार मजबूती, सीट एवं सीट एंकरेज टेस्ट, बॉडी चेसिस माउंटिंग टेस्ट, आपातकालीन गेट, फायर उपकरण पर विशेष फोकस रहेगा। अमेरिका ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अमेरिकी सेना के अनुसार ये कार्रवाई शुक्रवार को हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एक तेल टैंकर पर हुए ड्रोन हमले के जवाब में की गई। हमलों में ईरान की निगरानी प्रणाली, संचार नेटवर्क, वायु रक्षा ठिकानों और ड्रोन भंडारण केंद्रों को निशाना बनाया गया। वहीं ईरान ने दावा किया है कि उसने कुवैत और बहरीन में 8 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से जवाबी हमला किया है। इन घटनाओं के बाद दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम पर फिर से संकट गहरा गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज सुबह कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही कांगो की टीम पहली बार इतिहास रचते हुए प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में पहुंच गई है। एक अन्य मुकाबले में आज सुबह पुर्तगाल और कोलंबिया के बीच मैच बिना कोई गोल के ड्रॉ पर समाप्त हुआ। अब राउंड ऑफ 32 में शुक्रवार को पुर्तगाल का सामना क्रोएशिया से होगा, जबकि शनिवार को कोलंबिया और घाना आमने सामने होंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकेंगे 1 बजे। जुड़े रहिए FM रेनबो से।

0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुकून से भरा दोपहर, शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर। फिर रात को फुर्सत के वो पल,
1: ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz, FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. धड़कन लखनऊ की। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं 300 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी चरक हॉस्पिटल दुबग्गा लखनऊ।
3: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी,
4: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: आरोग्यम परमम भाग्यम, स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम, यानी कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा सौभाग्य है और जीवन के प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त करने का आधार भी। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं ज्योति और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ के FM रेनबो चैनल पर

0: आपका अपना हेल्थ शो, हेल्थ एंड फिटनेस। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि those who think they have no time for healthy living will sooner or later have to find time for illness। यानी कि अगर आपके पास आज अपने स्वास्थ्य की देखरेख करने का टाइम नहीं है तो कल को बीमारी आपसे उससे ज्यादा वक्त ले सकती है। जरा सोचिए, सुबह की चाय से दिन शुरू होता है लेकिन नाश्ता वो तो पता नहीं कहाँ छूट जाता है। काम के बीच आप घंटों अपनी कुर्सी नहीं छोड़ते, थकान होती है तो मोबाइल स्क्रीन का सहारा लेते हैं और रात कब 12 से 1 फिर 2 में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। और यही छोटी छोटी आदतें हमारे शरीर के उस अदृश्य इंजन को प्रभावित करने लगती हैं जिसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म या फिर चयापचय। फिर शुरू होती हैं समस्याएं जैसे वजन बढ़ना, डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, फैटी लिवर, नींद की कमी, लगातार थकान और कभी कभी उम्र से पहले ही बीमारियों का दस्तक देना। तो क्या है वजह? क्या बदलती जीवन शैली ही इन समस्याओं की जड़ है? कैसे बच सकते हैं हम इन प्रॉब्लम से? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों के जवाब तलाशेंगे हम आज के इस विशेष कार्यक्रम में। और इसीलिए आज हमने हमारे स्टूडियोज में खास तौर पर इनवाइट किया है डॉक्टर अभिषेक कुमार गोयल को, जो कि है कंसल्टेंट फिजिशियन चरक हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब, एफएम रेनबो के इस मंच पर आपका दिल से स्वागत है।
1: जी धन्यवाद।
0: श्रोताओं, ये तो आप जानते हैं कि एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है, तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, मोटापा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर, नींद, तनाव या फिर कोई भी सवाल है लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ, तो आप सीधे हमारी विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स वही पुराने 0522-223-8852 एंड 0522-223-8845। और ईमेल आईडी है fmakashwani@gmail.com। आप हमें सुन पा रहे हैं एफएम रेनबो लखनऊ 100.7 मेगाहर्ट्ज पर, न्यूज ऑन एयर ऐप और डीटीएच पर भी। तो डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के शुरू होने से पहले ही हमारी फोन लाइंस ब्लिंक करने लगती हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं श्रोताओं का कॉल लूं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक्चुअली मेटाबॉलिज्म है क्या, जिसे हम हिंदी में चयापचय कहते हैं, ये है क्या और ये किस तरह से रिलेटेड है हमारी हेल्थ से?
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है, जो कि आज की जनसंख्या को देखते हुए और होने वाली बीमारियों का जो स्तर बढ़ता चला जा रहा है यंग पॉपुलेशन में, तो उसके लिए बहुत अच्छा टॉपिक है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपका सवाल है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म जैसा जो भी पदार्थ हम खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं, उसका अंत्योदय एक ही मकसद होता है कि आपके शरीर को सुचारू रूप से चलाते रखना, उसके लिए ऊर्जा का सृजन करना। तो जो भी हम रोटी, सब्जी, दाल, चावल, जो भी हम खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं, अंततः उसका जाकर के ऊर्जा में सृजन करके शरीर फिर उसको अपने विभिन्न प्रकार के इस्तेमाल में ले सकता है। जैसे कि जो भी दिनचर्या में हम एक्टिविटी करते हैं, चलना, उठना, बैठना, सोचना, और जब हम सो भी रहे होते हैं उस वक्त भी हमारे शरीर को ऊर्जा की जरूरत होती है, जैसे दिलों का धड़कना, किडनी, लीवर, इन सब का काम करना। दूसरा चीज आपने कहा कि इस मेटाबॉलिज्म का हमारे स्वास्थ्य से क्या संबंध है, तो सीधा सीधा है कि यदि आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आने वाले वक्त में जो होने वाली बीमारियों के खतरे से आप बचे रहेंगे, आप उनको देर से आएंगे। यदि आपका मेटाबॉलिज्म खराब रहेगा तो आप उन बीमारियों को बहुत जल्दी ही अपने शरीर के प्रति बुला लेंगे कि हाँ, उनका खतरा बढ़ जाएगा।
0: मतलब अगर हम सीधे आसान शब्दों में कहें तो आज डॉक्टर साहब हमसे बात कर रहे हैं ना सिर्फ बीमारियों की, बल्कि उन बीमारियों की जिसे हम जड़ कह सकते हैं, रूट कॉज कह सकते हैं, यानी कि मेटाबॉलिज्म का ठीक ना होना, उसके बारे में। तो दोस्तों, अगर आपका कोई भी सवाल है, आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर अभिषेक कुमार गोयल से, जो कि हैं कंसल्टेंट फिजिशियन हमारे शहर के जाने माने। और डॉक्टर साहब, हमारे जो कॉलर हैं, अब उन्हें हम और इंतजार नहीं कराएंगे, चलिए उनसे सीधे बात करते हैं। हेलो, हेलो, हेलो,
2: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हेलो, हेलो जी, कुछ नेटवर्क का इशू है शायद हमारे इन श्रोता के साथ में, तो दोस्तों आप सबसे ये कहना चाहूंगी कि अगर आप डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हैं डॉक्टर अभिषेक कुमार गोयल से, तो फोन मिलाते टाइम ये भी ध्यान रखें कि आपके आसपास कोई

0: भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना हो, ना ही तो आप रेडियो के बहुत करीब हो, नहीं तो आपके आसपास टीवी चल रहा हो, और ना ही आप स्पीकर पर बात करें। फोन नंबर्स हमारे वही पुराने आपको रटे होंगे, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर रही हूँ, 223-8852 एंड 223-8845। और क्योंकि ये लैंडलाइन नंबर्स हैं, तो अगर आप मोबाइल से कॉल कर रहे हैं तो लखनऊ का कोड 0522 ये तो आपको ऐड करना ही होगा। सो लेट अस सी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर कौन है। हेलो
1: हेलो, नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: संजय बोल रहे हैं, लखनऊ से बोल रहे हैं।
0: जी संजय जी, अपना सवाल बताएं।
1: डॉक्टर साहब, हमको जो है एक दो क्वेश्चन पूछने हैं।
0: जी
1: डॉक्टर साहब ने अभी ड्यूटी के बारे में बात करी और सुगर के बारे में।
0: जी
1: तो मैडम हमको ये बताइए, जैसे बहुत लोग बीपी अपना चेक करते हैं तो उनके पास किस तरह का मेजरमेंट होना चाहिए और कौन सी सिचुएशन होनी चाहिए कि जब बीपी को चेक किया जाए, जैसे सुबह चेक किया जाए या रात में चेक किया जाए, और रीडिंग नापने का सबसे सही तरीका क्या है और कितना स्टैंडर्ड बीपी सही होता है?
0: बीपी कब चेक किया जाए, कितना बीपी होना चाहिए और किस इंस्ट्रूमेंट से चेक करना ठीक होता है ना संजय जी?
1: जी मैडम, और सुगर के बारे में भी दूसरा क्वेश्चन है।
0: जी
1: सुगर के बारे में ये क्वेश्चन है कि कितनी सुगर तक आदमी सही रहती है फास्टिंग और उसके बाद जो खाने के बाद जो होती है आफ्टर मील।
0: जी संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवालों के लिए। डॉक्टर साहब आपके सवालों के जवाब बिल्कुल देंगे।
2: जैसा कि आपका पहला सवाल था कि बीपी हम कब नापें, किस मशीन में नापें, किस मुद्रा में नापें, कब नापना चाहिए, तो यदि आपको बीपी नापना है और आप अपने घर पर नहीं नाप सकते हैं, आप क्लिनिक या किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो वहां जाकर के जाने के बाद आप कम से कम 10-15 मिनट आधा घंटा इंतज़ार करिए, वेट करिए, ताकि उसके समय में आपका जो हार्ट रेट है, जो बॉडी के जो भी रिस्पॉन्सेज है, वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाएँ, क्योंकि आप जाते ही साथ डॉक्टर से बीपी नापवाएंगे तो बीपी बढ़ा हुआ आएगा। तो थोड़ी देर वहाँ वेट करिए 10 से 15, और हो सके तो कम से कम आधा घंटा वेट करिए। दूसरी चीज़, बीपी नपवाने के लिए आप नॉर्मल सिटिंग पोजीशन में बैठ सकते हैं आराम से, और अपने उल्टे हाथ पे या सीधे हाथ, मतलब जिससे आप काम नहीं कर रहे हैं, जो कम इस्तेमाल में आता है, उस हाथ में आप बीपी नपवाइए। आमतौर पर देखा गया जो उपयुक्त तरीका है वो मरकरी मीटर से नापना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, पर चूंकि जो भी गाइडलाइंस अब आ रही हैं, अब धीरे धीरे वो मरकरी के जो भी बीपी नापने की मशीन थे उनके उपकरणों को थोड़ा सा अवॉइड किया जा रहा है, तो अब डिजिटली आप ज़्यादातर अब देखेंगे हॉस्पिटलों में भी, संस्थानों में भी, अब डिजिटल मीटर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो उससे भी नाप सकते हैं। और एक और बहुत ज़रूरी चीज़ कि कभी भी सिंगल रीडिंग को आप अपना बढ़ा हुआ बीपी नहीं मानेंगे, आपको लगातार बीपी नपवाना होगा। रही बात समय की, तो सुबह का समय सबसे उचित होता है, क्योंकि उस समय हमारा माइंड सबसे रिलैक्स पोजीशन में होता है। शाम तक होते होते कई सारे स्ट्रेस और बहुत सारी चीज़ें हमारी दिनचर्या में घट चुकी होती हैं, जिससे कि हमारा ना बीमारी होते हुए भी हमारा बीपी बढ़ा हुआ आएगा जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे। दूसरा आपका सवाल था कि डायबिटीज़ में हम लोगों को शुगर की क्या वैल्यू होनी चाहिए, किसको नॉर्मलाइज किया जाएगा। तो आमतौर पर फास्टिंग शुगर यदि आपकी 100 के नीचे है तो आपको डायबिटीज़ नहीं है, बट ये सिंगल रीडिंग नहीं है। उसके अलावा जो 3 महीने का हमारा एवरेज होता है, जिसको हम HbA1c कहते हैं, यदि वो आपका नॉर्मल लिमिट के अंदर है, लेस देन 5.5 है, तो भी आपको डायबिटीज नहीं है। और रैंडमली मान लो आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं है, सिर्फ रैंडम जांचना चाहते हैं, तो वो आपका कम से कम 200 के नीचे होना चाहिए। यदि इससे बढ़ा है तो आपको डायबिटीज़ का खतरा है, इसके लिए आपको रेगुलर आपकी शुगर मॉनिटरिंग करनी होगी, उससे पता लगेगा। और बीपी के लिए जो आपने नॉर्मल रेंज पूछी है, तो वो एज टू एज वेरी करती है। यदि आप यंग हैं तो आपका यदि 130 के नीचे ऊपर वाला बीपी है और 90 के नीचे वाला बीपी है, तो उसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहा जाएगा।
0: डॉक्टर साहब बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, बहुत सारे ईमेल भी हमारे सामने हैं जो कि जानना चाहते हैं मेटाबॉलिज्म और वजन का क्या रिश्ता है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। हमारे कॉलर्स भी फोन लाइन पर वेट कर रहे हैं, लेकिन इनसे भी बात करने से पहले हम एक बहुत छोटा सा लेकिन बेहद जरूरी कमर्शियल ब्रेक लेंगे।
3: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
4: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
3: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
5: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
0: बारह बजकर 16 मिनट और ठीक 7 सेकंड हो रहे हैं।

0: आप है ज्योति के साथ आपके अपने सबसे फेवरेट और सबसे ऑथेंटिक वीकली हेल्थ शो में, जिसका नाम है हेल्थ एंड फिटनेस। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस शो में हम खास तौर पर इनवाइट करते हैं एक एक्सपर्ट को, जो कि आपके सवालों, आपकी शंकाओं का समाधान करने के लिए खुद हमारे स्टूडियो में उपलब्ध होते हैं, आपसे बात करते हैं, आपके सवालों के जवाब देते हैं। और इसी श्रृंखला में आज हमने इनवाइट किया है हमारी स्टूडियोज में डॉक्टर अभिषेक कुमार गोयल को, जो कि हैं जाने माने फिजिशियन, और आज ये बात कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म और उससे जुड़ी हुई स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में। हमारी स्क्रीन्स भरी हुई हैं ईमेल से और फोन लाइंस भी लगातार ब्लिंक कर रहे हैं, तो चलिए डॉक्टर साहब और इंतजार नहीं कराते हमारे लिसनर्स को और फोन लाइन पर बात करते हैं, जानते हैं कौन है। हेलो,
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैम, मैं नागेश कुमार बोल रहा हूँ, जिला सीतापुर से।
0: जी नागेश जी, अपना सवाल आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पेट में दर्द होने लगती है नाभि के सामने कभी कभार।
0: वजन कितना है आपका और उम्र कितनी है?
1: मैम उम्र है 19 वर्ष और वजन है हमारा 49 केजी।
0: 49 केजी, और हाइट कितनी होगी आपकी?
1: 5.7 इंच।
0: ओके, तो डॉक्टर साहब इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: जैसा कि आपने अभी सवाल किया कि आपके पेट में नाभि के पास में दर्द हो रहा है, तो बेहतर होगा कि आप उसके लिए अल्ट्रासाउंड पहले कराएं, और ये देखना होगा किसी डॉक्टर से मिलकर के कि दर्द किस समय होता है, खाली पेट होता है, खाना खाने के बाद होता है, और इस दर्द की क्या तीव्रता है, क्या असहनीय दर्द होता है या हल्का हल्का दर्द पूरे समय रहता है। पर जैसा कि आपने अपनी उम्र और वजन बताई है, आपकी हाइट को देखते हुए आपका वजन कम लग रहा है, तो मेरी सलाह यही रहेगी किसी भी नजदीकी चिकित्सक से मिलकर अपना अल्ट्रासाउंड कराएं, जांच कराएं पेट की और लिवर की, कि आपका वजन आखिर आपकी हाइट के हिसाब से क्यों नहीं है।
0: सर, जब वजन की बात हुई ही है तो हम फिर सौम्या का ईमेल ले लेते हैं। सौम्या जानना चाहती कि मेटाबॉलिज्म का और वजन का क्या कनेक्शन है, क्या वजन ज्यादा होना मेटाबॉलिज्म सही ना होने का संकेत है, और क्या कभी मेटाबॉलिज्म की ही वजह से लोग अंडरवेट रहते हैं, क्या किया जा सकता है इस विषय में?
2: नहीं, बहुत अच्छा सवाल है सौम्या जी का। जैसा कि उन्होंने पूछा है कि मेटाबॉलिज्म का हमारे वजन से क्या संबंध है, ये बिल्कुल सही है कि मेटाबॉलिज्म यदि आपका खराब रहेगा तो आपका वजन बढ़ना या वजन बढ़ने की समस्या से, बीमारी से आप जल्दी ग्रसित हो जाएंगी। बट इसका ये भी मतलब नहीं है कि यदि आपका वजन कम है, आप पतले दुबले हैं, तो आपका मेटाबॉलिज्म ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म यदि आपका अच्छा है तो आपका वजन आपको दो तरीके से देखना होगा, कि जो वजन है वो आपका विसरल फैट जिसको कहते हैं, जो अंदरूनी फैट होता है, और एक सबक्यूटेनस फैट जो कि बाहरी त्वचा के ऊपर जो हमारा फैट जमा होता है। तो यदि आपका बीएमआई कंट्रोल में है, बाकी पैरामीटर ठीक हैं, तो आप कह सकती हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म भी ठीक है और आप अपने आप को फिट कह सकते हैं। लेकिन ये भी देखा गया है कि कुछ पतले दुबले लोग होते हैं लेकिन फिर भी उनमें वजन से ना होने वाली बीमारियां जैसे थायराइड है, बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल, उनमें भी बड़ा आता है। तो हाँ, मेटाबॉलिज्म आप ठीक करके अपने वजन को कंट्रोल करिए, जिसकी वजह से आपको जो होने वाली बीमारियां मेटाबॉलिज्म से जुड़ी हुई, जैसे कि बीपी है, डायबिटीज़ है, फैटी लिवर है, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना है, और आने वाले वक्त में हार्ट डिजीज से आप बच सकते हैं।
0: तो मेटाबॉलिज्म की वजह से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं डॉक्टर साहब ने हमें बताया, फैटी लिवर, हाइपरटेंशन, हृदय से जुड़ी हुई बीमारियां, इन सारी बीमारियों को आप कंट्रोल कर सकते हैं अगर आपने मेटाबॉलिज्म को अपने कंट्रोल कर लिया। क्या करें इसके बारे में, इस विषय में भी हम डॉक्टर साहब से जानेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे एक श्रोता लाइन पर हैं, तो चलिए उनका सवाल जानते हैं। हेलो,
3: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
3: जी मैम, मेरा नाम जितिन सिंह है और मैं आंखों से ब्लाइंड हूँ, सीतापुर गांव से बात कर रहा हूँ।
0: ओके
3: जी मैम, मेरी तो एज ऐसी है और मैम हम थोड़ा सा अपना पतले हैं, यानी कि कुछ मोटा होना चाहते हैं।
0: वजन की प्रॉब्लम, कुछ वैसे ही बात जैसी कि सौम्या ने कही थी, वजन कम है तो क्या करें डॉक्टर साहब? ये
3: हमें पाउडर भी चाहिए है मैम इसके लिए।
0: हाँ जी
3: मैम, इसके लिए पाउडर बेस कह रहे हैं, क्या मैम नाम ले सकती हूँ? नहीं,
0: ये अभी डेडिकेशन वाला तो प्रोग्राम नहीं है। ठीक है,
3: अच्छा
0: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपने। सब
3: पाउडर का नाम लेना चाहते हैं मैम?
0: पाउडर का नाम लेना चाहते हैं? नहीं, आप पाउडर का नाम नहीं लीजिए, इस विषय में मैं डॉक्टर साहब से ऐसे ही बात कर लूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया और आपके सवाल का जवाब डॉक्टर साहब जरूर

0: देंगे। नौब साहब, इनके सवाल से एक चीज और दिमाग में आई है, अक्सर वजन बढ़ाने वाले पाउडर होते हैं, प्रोटीन पाउडर्स होते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत चलने लग गई है, कीटो डाइट, क्रैश डाइट, बहुत सारी चीजें अभी हाल फिलहाल फैशन में आ गई हैं, इनका कितना असर होता है मेटाबॉलिज्म के ऊपर और क्या ये हमारी सेहत के लिए ठीक है?
1: नहीं, बहुत अच्छा सवाल इन्होंने किया है, बट चूंकि इनका सवाल दूसरा था कि हमारा वजन क्यों नहीं बढ़ रहा है, हम प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं उसके बाद भी, तो मेरा इनकी सलाह यही रहेगी कि वो नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करके जितने भी अपने जरूरी टेस्ट हैं बॉडी के वो कराएं और अल्ट्रासाउंड कराएं, ताकि ये जाना जा सके कि आपकी बॉडी में कुछ भी ऐसा मेटाबॉलिक में कोई ऐसा फेरबदल तो नहीं जिसकी वजह से आपका जो खाना आपके शरीर को लग नहीं रहा है, खा तो आप रहे हैं लग नहीं रहा है, तो जांचना होगा कि शरीर में कोई इन्फेक्शन या कोई बीमारी तो नहीं जिसकी वजह से आपका वजन नहीं बढ़ रहा है। दूसरा आपका सवाल था कि जो आजकल चलन में है इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटो डाइट या फिर क्रैश डाइट, तो इसमें से यदि ओवरऑल देखा जाए तो जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो सबसे सुटेबल डाइट टाइप की आपकी डाइट दिनचर्या में मेटाबॉलिज्म में कंट्रोल करने को माना जा सके, जिसमें आप लगभग 16 घंटे के लिए फास्टिंग रखते हैं और 8 से 6 घंटे का आप खाने का विंडो पीरियड रखते हैं, बट इसमें आप कैलोरी डिसाइड नहीं करते हैं, बस खाली आपको जो खाना है आप वो खा सकते हैं, बट ये उन मरीजों में नहीं एडवाइजेबल है जो ऑलरेडी शुगर के पेशेंट हैं, जिनको इंसुलिन चल रही है, शुगर की दवाई चल रही है। दूसरा आपका सवाल था कीटो डाइट, कीटो डाइट में बेसिकली हम लोग हाई अमाउंट ऑफ फैट लेते हैं, मॉडरेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन और कार्ब बहुत कम होते हैं, बट कीटो डाइट में बेसिकली हमारी बॉडी को फोर्स किया जाता है कि वो फैट को इस्तेमाल करे एज ए एनर्जी सोर्स, बट फैट्स के साथ ड्रॉबैक ये है कि उसमें साइड प्रोडक्ट जो है कीटोन्स होते हैं, तो यदि कोई मरीज को पहले से ही फैटी लिवर ऑलरेडी है और उसको किडनी की बीमारी है और उसमें यदि वो कीटो डाइट लेते हैं तो उनके लिए बेहद ही हानिकारक और खतरनाक साबित हो सकती है। तीसरा था आपका क्रैश डाइट, क्रैश डाइट में बेसिकली हम लोग कैलोरी डेफिसिट बहुत ज़्यादा कर देते हैं, मतलब बॉडी की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है जिंदा रखने के लिए हम उससे भी बहुत नीचे चले जाते हैं, 500-600 कैलोरी, बट इसमें आपका वजन तो बहुत तेजी से बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद जो आप वजन घटेगा आपका, तो आप ये मत सोचिए कि आप दुबले पतले हो रहे हैं, बेसिकली आपका प्रोटीन की वजह से जो आपके मसल्स हैं वो लॉस हो रहे हैं और आपकी शरीर से पानी की कमी हो रही है, तो आप पतले तो बहुत जल्दी हो जाएंगे लेकिन जैसे ही आप दोबारा खाना चालू करेंगे बहुत तेजी से मोटे होंगे, तो ये सबसे प्रैक्टिस में वाली डाइट है, क्रैश डाइट तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तीनों में से आप यदि जाना भी चाहते हो तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज बेस्ट चॉइस।
0: और अच्छा ये रहे कि किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर के ही इनको फॉलो किया जाए। डॉक्टर साहब, जो आजकल बहुत तरह के पाउडर्स आ रहे हैं, बहुत तरह की ड्रिंक्स आ रही है, हर्बल कह के भी बेची जाती हैं, कि इनको आप सेवन करें तो वजन कम हो जाएगा या इनका सेवन करें तो वजन बढ़ जाएगा, इनके विषय में आपका क्या कहना है?
1: क्योंकि मेडिकल साइंस में इस तरीके के कोई भी प्रोटीन पाउडर या किसी भी इस तरीके के हर्बल डाइट या सिरप्स को प्रमोट नहीं किया जाता है। आप अपनी डेली दिनचर्या में रेगुलर एक्सरसाइज करके अपनी पर्याप्त मात्रा में नींद ले सके, प्रॉपर हेल्दी डाइट ले करके, स्ट्रेस को मैनेज करके आप वजन बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं बजाय इन प्रोटीन पाउडर इन हर्बल लाइफ को इस्तेमाल करके।
0: तो क्या करें जिससे कि आपका मेटाबॉलिज्म सही रहे और कैसे पता करें कि मेटाबॉलिज्म आपका ठीक काम कर रहा है, इस बारे में भी हम बात करेंगे डॉक्टर साहब फॉर श्योर। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद हम एक कॉलर को ऑनलाइन लेंगे।
2: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी,
3: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
0: हम ना सिर्फ आपके दिल की धड़कन होने को क्लेम करते हैं बल्कि पूरी कोशिश भी करते हैं कि आपके दिल की धड़कन स्वस्थ रहे। सिर्फ इसीलिए तो लेकर आते हैं हम वो सारे प्रोग्राम्स जो कि आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल को लीड करने में मदद कर सकती है। इसी श्रृंखला में, इसी सीरीज में इस वक्त आप सुन रहे हैं हेल्थ एंड फिटनेस, जो कि है हमारा वीकली हेल्थ मैगजीन। और आज हमने खास तौर पर बुलाया है जाने माने फिजिशियन डॉक्टर अभिषेक कुमार गोयल को हमारे स्टूडियोज में, जो कि लाइफस्टाइल और मेटाबॉलिज्म से जुड़ी हुई खास स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आप भी इस विषय से जुड़ा हुआ कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो डायरेक्टली डॉक्टर साहब से आप संपर्क

0: सकते हैं 0522-223-8852 एंड 0522-223-8845। ये हमारे फोन नंबर्स हैं और ईमेल आईडी वही पुराना fmakashwani@gmail.com। मैं हूँ ज्योति और आप सुन रहे हैं FM रेनबो, जिस पर इस वक्त हमारे साथ कोई फोन लाइन पर है। हेलो जी, नमस्कार। आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है।
1: हेलो
0: जी, बेटर। अपना नाम बताएं।
1: मेरा नाम सुशील है।
0: सुशील जी, अपना सवाल पूछे प्लीज।
1: डॉक्टर साहब, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, मतलब हाथ पैरों में जलन होती है और पैर मतलब पंजे दर्द करते हैं।
0: उम्र कितनी होगी आपकी?
1: मेरी 28 है।
0: कोई और स्वास्थ्य से संबंधित समस्या तो नहीं है? कोई और दवा तो नहीं लेते आप रेगुलर बेसिस में?
1: नहीं, दवा नहीं लेते
0: हैं। दवा नहीं लेते हैं तो डॉक्टर साहब, इनका सवाल यही है कि हाथ पैरों में दर्द रहना और उसकी वजह से सबको लगता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म तो ठीक काम कर रहा है क्या, ये भी उसी वजह से तो नहीं है?
2: नहीं, इन्होंने सवाल बहुत अच्छा किया है और इनका जो था मुख्यतः सवाल कि पैरों में जलन की महस फील हो रहा, और तो बेसिकली यदि मेटाबॉलिज्म का तो खैर नहीं मानेंगे, इसमें आपके न्यूट्रिएंट्स की कमी की तरफ ज़्यादा इशारा कर रहा है। क्योंकि आपने एज 26 बताई है, तो फिर भी मैं चाहूँगा कि आप अपना डायबिटीज़ के ज़रूर जांच करा लें, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा मुख्य कारण पैरों में जलन, हाथ पैरों में सुन्नपन आना हो सकता है प्राइमरी लक्षण। तो आप शुगर की जाँच कराइए, और फिर भी आपको यदि शुगर नॉर्मल आती है, फिर भी आपको पैरों में झंझनाहट सुन्नपन रहता है, तो आप उसके लिए अपने बाकी टेस्ट में जैसे कि B12 की कमी की वजह से ये लक्षण बहुत ज़्यादा मरीजों में देखे जाते हैं, तो आप अपने खाने में कोशिश करिए कि B12 वाले पदार्थ को, यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं, मांसाहारी हैं, तो आप अंडा है, फिश है, चिकन है, एग है, ये ले सकते हैं, और यदि आप वेजिटेरियन हैं तो पनीर वगैरह, टोफू वगैरह आप

0: कि हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक तरीके से काम कर रहा है कि नहीं।
1: और मेटाबॉलिज्म से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनके विषय में आपको पता ही है, अगर आपको इनमें से कोई समस्या नहीं तो इसका मतलब मेटाबॉलिज्म ठीक चल रहा है। डॉक्टर साहब, हमारे एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो।
2: हेलो
1: जी, नमस्कार।
2: नमस्कार मैम, अमित कुमार बात कर रहे हैं सीतापुर से।
1: जी अमित जी, अपना सवाल पूछें डॉक्टर साहब से।
2: जी, हमारी वाइफ को जो है बीपी लो की समस्या हो जाती है, वो प्रेग्नेंट है, तो इस संबंध में यहाँ दवा चल रही है, उसके बावजूद भी बीपी लो हो जाता है मैम।
1: उम्र कितनी होगी उनकी?
2: 20 वर्ष है।
1: और प्रेगनेंसी उनकी कितने टाइम की है?
2: 7वां महीना चला है, 7वां महीना चला है, फर्स्ट बच्चा है
1: जी। डॉक्टर साहब, ये तो आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि ब्लड प्रेशर बढ़ना मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ होने का एक संकेत हो सकता है, अब ये ब्लड प्रेशर का लो होना, इस विषय में आपके क्या विचार हैं?
0: नहीं, बहुत अच्छा सवाल है, और जैसा कि इन्होंने पहले ही बता दिया है कि इनकी जो पत्नी है वो प्रेग्नेंट है और 7 महीने की प्रेगनेंसी ऑलरेडी हो चुकी है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये आसपास किसी भी सरकारी या प्राइवेट संस्थान में गायनेकोलॉजिस्ट के संपर्क में होंगे जहाँ ये रेगुलर बीपी चेक करा रहे होंगे। दूसरा सवाल इनका ये चिंता है कि बीपी लो है, तो बीपी लो में यदि आपकी बॉडी में किसी प्रकार का, आमतौर पर हम देखते हैं यदि इन्फेक्शन वगैरह हो तभी बीपी लो उस पेशेंट में ज़्यादातर देखा जाता है, या आपके हार्ट की कोई समस्या है, तो मैं इनसे ज़रूर चाहूँगा कि अपने वाइफ का आप हार्ट की जांच जरूर करा लें कि कहीं उसकी वजह से तो बीपी लो नहीं है, शरीर में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, बच्चेदानी में पेशाब में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, उसकी जाँच करा लें। ये सब भी ठीक रहता है, फिर भी बीपी लो होता है तो ये देखना होगा कि क्या इनका शुरू से ही बीपी लो ही चल रहा था प्रेगनेंसी से पहले भी, और इनको यदि पेशाब बराबर आ रही है, किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं हो रही है, तो लो बीपी भी कई मरीजों में उतना नॉर्मल मान लिया जाता है, और खास करके यदि वो महिला पतली दुबली है तो ऐसे पेशेंटों में पहले से ही उनका बीपी लो ही रेंज में रहेगा।
1: तो ऐसे में डॉक्टर से आप जरूर संपर्क करें। डॉक्टर साहब, एक ईमेल और है हमारे सामने जनवेश कुमार जी का, ये लिख रहे हैं कि माता जी को थायराइड की प्रॉब्लम है, नींद कम आती है, सुबह बहुत चिड़चिड़ा है, गुस्सा आता है, क्या कारण हो सकता है और हमें कौन से डॉक्टर को ऐसे में दिखाना चाहिए, मतलब कौन से स्पेशलिस्ट से हम संपर्क करें?
0: जैसे कि माता जी इन्होंने कहा है तो लगभग उनकी उम्र 50 के ऊपर ही होगी, तो बाकी इन्होंने जो थायराइड की भी समस्या बताई है उनको थायराइड की, तो मैं चाहूँगा कि इनको थायराइड की रेगुलर जांच कराएं, क्योंकि थायराइड की कमी की वजह से भी जो इन्होंने लक्षण बताए हैं इनके माताजी को आ रहे हैं उसकी वजह से भी हो सकता है, और बाकी मल्टी विटामिन्स की कमी की वजह से भी हो सकता है। और रही बात इनका किस डॉक्टर को दिखाना है, तो मैं चाहूँगा कि किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ को ये ज़रूर कंसल्ट करें इनकी माता में जो आ रहे लक्षणों के लिए।
1: डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो। हेलो,
3: नमस्कार।
1: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
3: मैं समझ बोल रहा हूँ, लखीमपुर से।
1: आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है।
3: मैं अल्तमस।
1: हाँ जी अल्तमस, बताइए अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से।
3: मैम, मेरा सवाल यह है कि मेरा पैर और हाथ में पसीना आने लगता है, तो क्या करें मैं?
1: पसीना आना, क्या ये भी मेटाबॉलिज्म के ठीक काम करने का संकेत है या फिर आम सी बात है डॉक्टर साहब?
0: नहीं, सही सवाल किया उन्होंने। पसीना आना यदि हद से ज़्यादा आ रहा है, शायद इसीलिए इनकी ये समस्या भी, क्योंकि पसीना हम सबको आता है एक पर्टिकुलर टाइम पर हाथों में, अक्सर का हम लोगों के भी सबके हाथ थोड़ी देर के लिए गीले हो जाते हैं, बट इतना नहीं आता, बट इनको ज़्यादा आ रहा है तो हो सकता हो कोई ज़रूरी समस्या हो। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि अपना थायराइड लेवल की जाँच करें, कोलेस्ट्रॉल लेवल की जाँच कराएँ, उनके बाद भी यदि ये नॉर्मल रहता है तो कई बार ये बीमारी में, इनको एक बीमारी भी होती है जिसमें लोगों को अक्सर कर पसीना ज़्यादा ही आता है, तो ऐसे केसेस में कुछ क्रीम्स हैं, कुछ ऑइंटमेंट्स हैं, कुछ पाउडर्स का ये इस्तेमाल कर सकते हैं, और सबसे पहले तो ये डॉक्टर से संपर्क करें।
1: डॉक्टर साहब, एक ईमेल हम और लेंगे और उसके बाद में, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था प्रोग्राम शुरू होने से पहले, आपकी पसंद का गाना जरूर सुनाएंगे। सोनू परवाना का ईमेल है कि ज़्यादा नींद आए या कम नींद आए तो इसका क्या मतलब है, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल। डॉक्टर साहब, आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गई है हमारी सबकी लाइफ स्टाइल में, इवन छोटे छोटे बच्चे भी काफ़ी सारे टारगेट्स को मीट करते हुए दिखाए जा रहे हैं, तो क्या मानसिक स्वास्थ्य का, तनाव का, चिंता का, नींद ना आने का भी हमारे मेटाबॉलिज्म से कोई संबंध है?
0: जी बहुत बढ़िया सवाल किया उन्होंने, और डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जैसा कि हमारा माइंड बॉडी कनेक्शन जिसको कहते हैं, यदि हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म सही रहने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी है, क्योंकि जब हम मानसिक रूप से शांत होंगे, हम प्रॉपर टाइम पर नींद लेंगे, कम से कम 6 या 8 घंटे की नींद लेंगे, तो हमारी बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन जिसको हम कॉर्टिसोल कहते हैं या एड्रेनलिन कहते हैं, इनकी मात्रा बॉडी में जो तय समय है या जो इसका रेट है या उस रेट से नहीं है, ज्यादा सीक्रेशन नहीं होगा। क्योंकि जब कॉर्टिसोल की मात्रा बॉडी में ज्यादा होती है तो हमारी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड पे आ जाती है, बॉडी बचाव की मुद्रा में करने लगती है, तो इसमें फिर ग्लूकोज इन सब की समस्या से होकर के बॉडी उसको स्टोर करना स्टार्ट कर देती है। और रही बात इनका जो सवाल था कि ज्यादा नींद आना या कम नींद आना, जी बिल्कुल, ज्यादा नींद अक्सर कर बेसिकली जो हम लोगों को एक्टिविटी रखने के थायराइड हार्मोन बहुत बड़ा इस्तेमाल करता है हमारे मेटाबॉलिज्म में, तो मैं चाहूंगा कि अपना थायराइड की जांच जरूर कराएं कि इनको नींद ज्यादा क्यों आ रही है। कम नींद के लिए मैं चाहूंगा कि इनके मोबाइल का, टीवी का, इनका स्क्रीन टाइम ये कम करें और एक तय समय बनाएं कि मुझे इतने बजे बिस्तर पर सोना ही है। शुरुआत में दिक्कत होगी, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी।
1: आज का वक्त ही ऐसा है डॉक्टर साहब की क्या बोला जाए, लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए हम सभी अवेयर हैं, लेकिन फिर भी किसी ना किसी रीज़न से हम उन रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए, और एज अ रिजल्ट इतनी सारी समस्याएं, घर घर में फैटी लीवर, घर घर में हाइपरटेंशन, हृदय से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स, बढ़ा हुआ या घटा हुआ वजन या स्ट्रेस। इसी विषय में हम लगातार बात कर रहे हैं। अभी 12:35:09 हुए हैं, अभी भी हमारे पास काफ़ी वक्त है। हम चाहेंगे कि इस विषय में आप और प्रकाश डालें और मेटाबॉलिज्म को हम कैसे दुरुस्त करें, या लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई डिजीजेज हैं तो उनको हम किस तरह से क्योर करें, इस विषय में भी जानना चाहेंगे कि आपके क्या विचार हैं। दोस्तों आपके पास अभी बहुत वक्त है। हमने खास तौर पर आज बुलाया है हमारे स्टूडियोज में डॉक्टर अभिषेक कुमार गोयल को, जो कि हैं जाने माने फिजिशियन, और आज ये डायरेक्टली आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, आपकी शंकाओं के समाधान कर रहे हैं। अब डॉक्टर साहब आप तो हमारी शंकाओं के समाधान कर ही रहे हैं, तो ऐसे में हम आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि आपकी पसंद का ये खूबसूरत सॉन्ग प्ले कर दिया जाए। ये खूबसूरत सॉन्ग सुनेंगे और उसके बाद फिर वापस आएंगे प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस में।
4: जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है, और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
5: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
4: चरक हॉस्पिटल @ हरदोई रोड, दुबग्गा।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: मुस्कुराइए, क्या आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
3: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
4: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
3: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
4: चरक हॉस्पिटल दुबग्गा हरदोई रोड लखनऊ। कॉल 666-444।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ।
6: 12:40 और ठीक 36 सेकंड हो गए। एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस में। और आज हेल्थ एंड फिटनेस में हम बात करें लाइफस्टाइल एंड मेटाबॉलिज्म से जुड़ी हुई प्रमुख स्वास्थ्य समस्याओं की। इसी विषय में बात करने के लिए हमने इनवाइट किया है जाने माने फिजिशियन डॉक्टर अभिषेक कुमार गोयल को, जो कि आपके सवालों के सीधे जवाब दे रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर कौन है, चलिए हम डायरेक्टली उनसे बात करते हैं। हेलो।
7: हाँ मैम जी, नमस्ते।
6: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
7: मैम अजय तिवारी बोल रहे हैं, ग्राम दहलिया, जिला सीतापुर से।
6: जी तिवारी जी, अपना सवाल पूछिए।
7: मैम हमारी बॉडी से पसीना नहीं आता है।
6: अच्छा, पसीना आता ही नहीं है, कितनी भी गर्मी क्यों ना हो।
7: जितनी भी मैडम गर्मी हो, कभी पसीना ही नहीं आता है। ठंडियों में बहुत ठंडी लगती है, गर्मियों में इतनी गर्मी लगती है, इतनी गर्मी की बर्दाश्त ही नहीं होता।
6: आपकी उम्र कितनी होगी?
7: हमारी मैम उम्र 42 है।
6: और किसी तरह का मेडिकेशन तो नहीं चल रहा है, कोई दवा तो नहीं रेगुलर लेते हैं आप?
7: नहीं मैम, दवाई किसी प्रकार की नहीं लेते। हमारे पिताजी थे, उनको भी यही दिक्कत थी।
6: जी जी।
7: और उसके बाद क्या होता है, कपड़े गीले करके हम ओढ़ लेते हैं, तब ठंडी तब बचाव कर पाते हैं।
6: जी जी। डॉक्टर साहब, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे?
8: नहीं, बहुत ही कम देखने को मिलती है। जो इन्होंने बताया है कि पसीना इनको आता ही नहीं है, चाहे कितनी भी गर्मी में रहें, और ठंड में इनको बहुत ठंड लगती है। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि ये अपने किसी भी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को या किसी डॉक्टर को मिलके अपना थायराइड की जाँच कराएँ और जुड़े हुए जितने भी हारमोनल्स के इश्यूज़ हैं उनकी जाँच कराएँ, क्योंकि यदि पसीना नहीं आ रहा है तो ये भी एक समस्या हो सकती है जब इनको ज़रा भी नहीं आ रहा है। क्योंकि पसीना हमारी बॉडी में एक तरीके का कूलिंग मैकेनिज्म का काम करता है। जब आपको ज़्यादा गर्मी में पसीना होता है तो बॉडी का बेसिकली ये डिफेंस मैकेनिज्म आपको बचाता है वो उस चीज से। पर जैसा इन्होंने बताया भी था कि इनको गीला कपड़ा रखना पड़ता है, तब जाकर के उनको गर्मी से राहत मिलती है। तो मैं चाहूंगा कि बहुत जल्द ही किसी भी डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। जैसा कि इन्होंने कहा कि इनके पिताजी को भी ये बीमारी थी, तो मैं चाहूंगा कि किसी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलकर अपनी समस्या का निवारण करवाइए।
6: और समस्या का निवारण बिल्कुल हो जाएगा, बस सही समय पर सही सलाह की जरूरत है। और दोस्तों, जैसा कि मैं बार बार बोलती हूँ कि मेडिकल साइंस की फील्ड में लगातार R&D हो रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो अपनी समस्या के संग जीना और इसे ये सोचना कि चलो कोई बात नहीं और फिर तकलीफ को लगातार बर्दाश्त करते रहना, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। समस्या को समझिए, विशेषज्ञ से बात करिए और उसका समाधान पाने की कोशिश जरूर करिए। लेट्स सी, इस वक्त हमारे साथ कौन फोन लाइन पर है। हेलो,
9: नमस्कार जोशी मैम।
6: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
9: मैं ग्राम चौजर, ग्राम पंचायत चिकन पोस्ट रहमाबाद, तहसील मलियाबाद, जिला लखनऊ से विमल ठाकुर बात कर रहा हूँ।
6: जी ठाकुर साहब, बताइए अपना सवाल।
9: अरे मैम, मैं ये कहता हूँ कि हमारा ये सवाल है कि हमारे पेट में दर्द रहती है, खाना खाता हूँ तब भी दर्द है, नहीं खाता हूँ तब भी दर्द रहती, और कई बार लैट्रिन जाना पड़ता है।
6: और ये समस्या है कब से आपको?
9: अरे ये समस्या कम से कम 5-6 साल हो रहे हैं।
6: और उम्र कितनी है आपकी?
9: इसमें उम्र हमारी 29 है।
6: 29 साल की उम्र और 5-6 साल से ऑलरेडी इनको इतनी समस्या है डॉक्टर साहब, पेट से रिलेटेड।
8: जैसा कि इन्होंने बताया कि इनको ये समस्या पिछले 5 साल से, और ये खाना खाते हैं तब भी दर्द होता है, नहीं खाते हैं तब भी दर्द होता है, और बार बार इनको लैट्रिन जाना पड़ता है। तो मैं चाहूंगा कि अपनी बॉडी का फुल जांच कराएं, जिसमें अल्ट्रासाउंड शामिल है, लिवर की जांच है, और चूंकि ये इस एरिया में रह रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि अपने टाइफाइड की भी जांच कराएं। ये सभी भी पैरामीटर यदि ठीक आते हैं, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं, तो मैं चाहूंगा कि ये गैस्ट्रो के डॉक्टर से मिलके अपनी आगे की जांच कराएं, जिसमें दूरबीन द्वारा इनके पेट की जांच की जा सके और लैट्रिन के रास्ते की, कि कहीं कोई वहां कोई ऐसी वजह तो नहीं है जिसकी वजह से इनको इस तरीके के लक्षणों से जूझना पड़ रहा है।
6: तो जल्द से जल्द आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करिए। 12:44 हो चुके हैं डॉक्टर साहब, एक छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक हम लेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे हमारे अगले कॉलर से।
0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
6: 12:45 आप हैं हेल्थ एंड फिटनेस में, और हेल्थ एंड फिटनेस में आज हम बात कर रहे हैं लाइफस्टाइल एंड मेटाबॉलिज्म से जुड़ी हुई प्रमुख स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में। और इस विषय में बात करने के लिए हमने खास तौर पर इनवाइट किया है हमारे स्टूडियोज में जाने माने फिजिशियन डॉक्टर अभिषेक कुमार गोयल को। तो लगातार आपके फोन कॉल्स मिल रहे हैं, ईमेल्स आ रहे हैं, और डॉक्टर साहब से आपकी बातचीत हो रही है। अगर आपका कोई सवाल है और आपने अभी तक हमसे कनेक्ट नहीं किया तो अभी कर लीजिए, बिल्कुल इनकी तरह। हेलो।
10: हेलो
6: जी, नमस्कार
10: जी। मैम नमस्कार, बहुत सहयोगी दिनेश आप को नमस्कार
6: जी।
10: जी मैम, हम ये कहना चाहेंगे, हम जगमोहन बात कर रहे हैं
6: जी,
10: हम जिला बहराइच से बोल रहे हैं। ये हम कहना चाहेंगे कि जैसे ज्यादातर थकान महसूस हो चलने से, तो इसका कारण क्या हो सकता है? जैसे ज्यादा चले तो ज्यादा महसूस हो तो कोई दिक्कत नहीं है
6: जी। डॉक्टर साहब आपकी उम्र के विषय में जानना चाहते हैं, कितनी उम्र है आपकी, या कोई मेडिकेशन चल रहा है, कोई बीमारी का इलाज चल रहा है लगातार?
10: जी जी, मैं 18 वर्ष का हूँ।
6: ओके।
10: और हड्डियों में जैसे चटपट की आवाज आ रही है।
6: ओहो अच्छा, और किसी तरह की कोई दवा तो नहीं आप रेगुलर लेते हैं?
10: जी नहीं, मैं दवा नहीं लेते हैं।
6: जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके सवाल का जवाब फॉर श्योर देंगे।
8: जैसा कि इनका सवाल है कि इनके हड्डियों से आवाज़ आती है, थकान रहती है, सांस फूल जाती है, और इनकी उम्र महज 18 साल है, तो जहां तक इनके लक्षणों से लग रहा है कि इनको न्यूट्रिएंट्स की कमी ज़्यादा है बजाय इसके कोई बीमारी के, तो मैं चाहूँगा कि बॉडी के रूटीन चेकअप कराएं, जिसमें कि कैल्शियम ज़रूर शामिल हो, विटामिन B12 की जाँच जरूर कराएं, विटामिन D की ज़रूर जाँच कराएं। ये सब की जाँच कराने के लिए नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करें।
6: डॉक्टर साहब एक ईमेल हमारे पास और आया है, और इस ईमेल में श्रद्धा जानना चाहती है कि क्या फैटी लिवर भी रिलेटेड है मेटाबॉलिज्म या लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई

0: की जरूर जांच कराएं। ये सब की जांच कराने के लिए नजदीकी डॉक्टर से संपर्क जरूर करें।
1: डॉक्टर साहब, एक ईमेल हमारे पास और आया है और इस ईमेल में श्रद्धा जानना चाहती है कि क्या फैटी लिवर भी रिलेटेड है मेटाबॉलिज्म या लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई समस्याओं से, और क्या ये सिर्फ अल्कोहल का लगातार सेवन करने वालों को ही होता है या फिर किसी को भी हो सकता है। इनके सवाल के बारे में हम फॉर श्योर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा लेकिन बेहद जरूरी कमर्शियल ब्रेक।
2: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
3: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
2: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
3: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
1: तो डॉक्टर साहब, वो सवाल जो मैंने आपसे ब्रेक पर जाने से पहले पूछा था, क्या फैटी लिवर भी किसी तरह रिलेटेड है मेटाबॉलिज्म से?
0: जी, बहुत ज़रूरी सवाल है और ये हमारे आज की लोगों में ये भ्रम भी है कि क्या फैटी लिवर सिर्फ अल्कोहल पीने वालों या शराब पीने वालों को ही होता है या सिर्फ उन्हीं को होता है जो लोग ज़्यादा भागदौड़ नहीं करते हैं। तो मेटाबॉलिज्म का हमारे फैटी लिवर से डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि यदि हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा तो हमारा शरीर हमारे ग्लूकोज को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा, मतलब मांसपेशियों में उसका सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है तो वहाँ पर वो भेज पाएगा। यदि आपका मेटाबॉलिज्म खराब है तो वही ग्लूकोज को हमारा शरीर फैट के रूप में तब्दील करके हमारे बॉडी के अंगों में जमा कर देगा, जिसमें लिवर, पेनक्रियास, आंतें जैसे ज़रूरी अंग है जहाँ पर फैट के फॉर्म में वो डिपॉजिट्स हो जाते हैं, जो कि आपको आगे चल के डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियक बीमारियां, क्योंकि यही फैट कभी कभी हमारी धमनियों, कोशिकाओं में भी जमा होने लगता है, जिससे कि हमें आने वाली बीमारियां बहुत जल्दी आ जाती हैं।
1: तो फैटी लिवर भी हो सकता है लाइफस्टाइल की वजह से, मेटाबॉलिज्म ठीक काम ना करने की वजह से। तो समस्याओं के बारे में हम लगातार बात करें, डॉक्टर साहब हमें आगे समाधान भी देंगे कि हम क्या करें जिससे कि मेटाबॉलिज्म या फिर लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिजीजेस से फ्री होकर के, इन बीमारियों से मुक्त होकर के हम एक स्वस्थ जीवन को जी सकें। लेकिन फिलहाल हमारे साथ कोई फोन लाइन पर है। हेलो।
4: हेलो
1: जी, नमस्कार।
4: नमस्कार, संजय तिवारी रामसुनेगढ़ जलोना से बोल रहा हूँ।
1: हाँ जी संजय जी, बताइए।
4: मैम, हमारे शरीर में अचानक दर्द होता है, हाथ में खत्म, पैर में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, फिर खत्म हो जाता है, फिर उस जगह पे नहीं रहता, ये हरदम हुआ करता है। मैम, ये क्या दिक्कत है हमारे?
1: अच्छा, अक्सर ही दर्द रहता है, ऐसा नहीं है कि बहुत काम आपने कर लिया या बहुत चल लिए उस वजह से हो रहा है?
4: वैसे नहीं, अचानक दर्द होता है, खत्म हो जाता है, पैर में दर्द होता है, खत्म, पीठ में कभी दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, तुरंत खत्म हो जाता है, या क्या लक्षण है?
1: अपनी एज भी बता दीजिए आप संजय जी।
4: एज 48 है मैम।
1: 48 ईयर्स की एज, बॉडी में यहाँ वहाँ पर पेन रहना, हाथ पैर बैक, डॉक्टर साहब बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है ये।
0: नहीं, इनकी उम्र को देखते हुए, बाकी इन्होंने बीमारियों के बारे में तो नहीं बताया, किसी कोई दवा वगैरह ये ले रहे हैं पहले से या नहीं ले रहे हैं, बट फिर भी आजकल हम देख रहे हैं कि शरीर में दर्द एक आम समस्या हो गई है
1: जी।
0: बट इसके लिए कई सारे फैक्टर्स जरूरी हैं, जिसमें हमारे पोषक तत्वों की कमी का होना बहुत बड़ा रीज़न है। आमतौर पर भारतीय समुदाय के लोगों में, इंडियंस में देखा गया है कि हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट का मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है, और खास करके फल वगैरह हैं जितने भी हैं, तो न्यूट्रिएंट्स की कमी हमारे यहाँ शरीर में जितनी भी मांसपेशियाँ होती हैं उनमें ज़्यादा पाई जाती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं। फिर भी यदि इनको कोई समस्या है तो नज़दीकी फिजिशियन से मिल करके अपने लिए ज़रूरी जाँचें कराएँ, जिससे कि किसी और किसी बीमारी का संकेत तो नहीं है, जिससे पता लग सके कि इनके पूरे शरीर में, चाहे वो काम करें या ना करें, हर वक्त दर्द क्यों रहता है।
1: मतलब हर वक्त दर्द रहना नॉर्मल नहीं है।
0: जी बिल्कुल नहीं।
1: और उम्र के साथ भी दर्द होना कोई बहुत नॉर्मल नहीं है। इसका इलाज किया ही जाना चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं और ईमेल्स भी ढेर सारे हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का टाइम हो चला है।
3: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
2: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
3: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
1: 12:52 और ठीक 17 सेकेंड्स। आप है हेल्थ एंड फिटनेस में, और हेल्थ एंड फिटनेस में आज

0: खास तौर पर हमने इनवाइट किया है डॉक्टर अभिषेक कुमार गोयल को, जो कि लाइफस्टाइल और मेटाबॉलिज्म से जुड़ी हुई खास हेल्थ प्रॉब्लम्स के विषय में आपसे बात कर रहे हैं। आप डायरेक्टली इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं मिलाकर 2238852 या फिर 2238845 या फिर हमें ईमेल भी कर सकते हैं fmakashwanilakhnow@gmail.com। मैं हूँ ज्योति और हम मिले हैं FM रेनबो पर। सो लेट अस सी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर कौन है। हेलो
1: हेलो
0: जी नमस्कार।
1: गुड आफ्टरनून मैम एंड गुड आफ्टरनून सर। मेरा नाम श्रेया है, मैं लखनऊ से बोल रही हूँ और मेरी एज 24 इयर्स है। मेरा सवाल ये है कि मेरे पेट के निचले हिस्से में तनाव सा रहता है और स्पेशली जब मैं बाइक से जाती हूँ तो झटके लगते हैं, तो मेरे पेट में हल्का सा दर्द सा उठता है और लगातार तनाव नहीं रहता है, थोड़ी टाइम के लिए सही भी हो जाता है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ ये तनाव है क्यों।
0: श्रेया जी आप कोई मेडिकेशन तो किसी मेडिकेशन पर तो नहीं है, कोई दवा तो नहीं लेती रेगुलर।
1: नहीं नहीं मैम, और मेरा वेट 48 केजी है, हाइट 160 सेंटीमीटर के अराउंड है और मेरा बीएमआई 18.7 है।
0: काफी अवेयर हमारी ये श्रोता हैं डॉक्टर साहब, सारी डिटेल्स इनके पास हैं। श्रेया जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, डॉक्टर साहब आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे।
2: जी श्रेया जी का जो मेन सवाल था वो यही था कि ये जब बाइक वगैरह पे जाती तो पेट के निचले हिस्से में अक्सर इनको दर्द रहता है, तो मेरी पहली सलाह तो यही रहेगी कि अपना पेट का अल्ट्रासाउंड ये ज़रूर करा लें। दूसरा, अक्सर कर महिलाओं में जो कि देखा गया है कि फिजिकली एक्टिव उतना नहीं होती हैं, तो पेट की जो मांसपेशियों की कमी की वजह से, कमज़ोरी की वजह से, उनमें थोड़ा भी दबाव जब पड़ता है तो उनमें खिंचाव की वजह से उनको दर्द होने लगता है। तो मैं चाहूँगा कि पेट का अपना अल्ट्रासाउंड कराएं, साथ ही साथ अपनी पेट की जो ऊपरी मांसपेशियाँ हैं उनका भी अल्ट्रासाउंड कराएं, यदि उनमें कोई कमज़ोरी है या नहीं उसका पता लगाएं। यदि नहीं भी है तो फिर भी मैं चाहूँगा कि किसी फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करके जितनी भी एब्डोमिनल मसल्स की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करें, ताकि आने वाले वक्त में प्रेगनेंसी या उसके बाद इनको और ये समस्या ना बढ़ी हो इनके लिए।
0: डॉक्टर साहब, अंजू का ईमेल आया है, रादर ईमेल्स आए हैं, अनीता चौहान अंजू ये जानना चाहती हैं वेट लॉस से जुड़े हुए इनके सवाल हैं कि क्या किया जाए जिससे कि वेट लॉस हो जाए, जो कि बड़ी कॉमन प्रॉब्लम हो गई आज। जब हम ऑफ एयर भी बात कर रहे थे तो छोटे छोटे बच्चों में भी देखा जाता है कि वो बड़े ओबीज हो रहे हैं, ओवर वेट हो रहे हैं, तो क्या हम अपने मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त करके, ठीक करके इस प्रॉब्लम से भी हम डील कर सकते हैं।
2: बहुत सही सवाल है और ये कई लोगों का सवाल है कि हम मेटाबॉलिज्म या बेसिकली हम अपना वज़न को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि वज़न एक बहुत बड़ी अब बीमारी के रूप में उभर के आ रही है। क्योंकि वज़न होगा तो आपको आने वाले वक्त में बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज़ है, फैटी लीवर है, इसकी समस्या ज़्यादा हो जाएगी, और चूंकि महिला हैं तो पीसीओडी की भी समस्या इनमें जल्दी आ सकती है उम्र से पहले।
0: जी
2: वज़न कम करने की जो बात कही इन्होंने तो उसमें बहुत बड़ा फैक्टर हमारे दिनचर्या का है, स्ट्रेस लेवल कितना है, हम किस वक्त सो रहे हैं, कितने घंटे सो रहे हैं, हम कब खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, और जो खा रहे हैं उसमें हमारे प्रोटीन की मात्रा कितनी है, फैट की मात्रा कितनी है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी है। चूंकि हम इंडियंस हैं तो हमारे यहाँ दाल चावल खाने का एक अभिन्न अंग माना जाता है, तो यदि ये सच में वजन लूज करना चाहती तो मैं चाहूँगा कि ये प्रोटीन पर ज़्यादा फोकस करें रदर देन कार्बोहाइड्रेट में। तो हम लोग कहते भी मेडिकल साइंस में कि इंडियंस को हाई प्रोटीन, हाई फाइबर और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेंगी तो इनका वजन उतना तेजी से नहीं बढ़ेगा। रही बात कम करने के लिए तो एक्सरसाइज ज्वाइन कर सकती हैं, एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम बनाएं कि मुझे उतने बजे सोना है और 8 घंटे के पर्याप्त नींद लें, क्योंकि जब हमारी बॉडी में स्ट्रेस कम होगा तो जितने भी स्ट्रेस हार्मोन्स हैं और जो बाकी हार्मोन्स हमारी बॉडी को जो नॉर्मलाइज रखने के लिए वो पर्याप्त मात्रा में बॉडी में काम कर पाएंगे, रिलीज होंगे। तो मैं तो चाहूंगा कि अपनी दिनचर्या में बेसिकली ये उसमें बदलाव लाएं और अपने खाने से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम करें।
0: तो सीधी सी बात है कि अगर दिनचर्या ठीक होगी तो मेटाबॉलिज्म बेटर हो ही जाएगा, डॉक्टर साहब के कहने का ये मतलब है। डॉक्टर साहब आजकल इतनी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं लाइफस्टाइल से रिलेटेड, कई चीज़ों में तो हम वाकई कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में है हम उनको किस तरह से मैनेज करें कि मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमारी होने ही ना पाए, और अगर हो गई हैं तो वो अंडर कंट्रोल रहे, प्लीज हमारे लिसनर्स को आप गाइड करें।
2: नहीं, बहुत अच्छा सवाल था पुराना वाला, उसी में ही इसका आधा जवाब छुपा हुआ है कि आप हेल्दी डाइट लें, सिर्फ डाइट ना लें, पेट को सिर्फ कोई डब्बा ना समझे कि हमें सिर्फ भरना है। आप ये भी तय करें कि जो हम खा रहे हैं उसमें क्या क्या है। तो जैसे मैंने कहा कि आपका कार्बोहाइड्रेट की संख्या

0: कम रखिए, फाइबर की डाइट रखिए, सलाद वगैरह लीजिए आप, प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा लीजिए, नींद पर्याप्त लीजिए, स्ट्रेस के लिए आप मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम करिएगा, और यदि आप एक्सरसाइज या जिम नहीं भी जा सकती हैं तो आप डेली कम से कम 30 मिनट तेज जरूर चलिए, ताकि ब्रिस्क वॉक बहुत अच्छा एक रेगुलर एक्सरसाइज का माध्यम हो सकता है। और दूसरी चीज़ कि आप दिनचर्या के कामों में भी पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है जितना भी लोग हैं अपने जो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी के लिए भी लोग घरों में काम के लिए बाइयां इन सब के लिए लगा लेते हैं और फिर खुद के लिए वो जिम जाते हैं वजन कम करने के लिए। तो मेरी पहली सलाह तो ये रहे कि आप अपने पहले खुद के काम तो स्वयं सारे करिए, उसके बाद यदि आपका वजन नहीं आ रहा है या आपको लगता है तब आप जिम जाइए। होता ये कि जब जिम जाते हैं जब आदमी तो वहां पर फिर वो एक्सेसिव वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उनकी कैलोरी डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है, फिर वो थोड़ा सा भी खाएंगे तो शरीर उसको एकदम स्टोर के फॉर्म में या वहां पे तुरंत लग जाएगा शरीर को। तो आप दिनचर्या में परिवर्तन लाइए, नींद पर्याप्त लीजिए, पानी पर्याप्त मात्रा में पीजिए और पर्टिकुलर टाइम पे सोना स्टार्ट करिए।
1: पर्टिकुलर टाइम पे सोना ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली हमारे यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि कहते हैं कि बॉडी रात में खुद को हील भी करती है। डॉक्टर साहब, आज की चर्चा से एक बात बिल्कुल क्लियर हुई कि बीमारियां अचानक नहीं आती हैं, वो दरअसल हमारी रोज़मर्रा की छोटी छोटी आदतों में चुपचाप पनप जाती हैं। हमारी लाइफस्टाइल का जब हम ध्यान नहीं रखते तो हमारी सेहत ऑटोमेटिकली अफेक्टेड हो जाती है। तो एक छोटा सा विचार शेयर करना चाहूंगी हमारे सुनने वालों से कि टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इट इज़ द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव। और ये मैं नहीं कह रही, ये जिम रॉन ने बोला है। यही शरीर है, इसी के साथ पूरी जिंदगी बितानी है, तो इसका अपना ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि स्वास्थ्य केवल रोगों की अनुपस्थिति ही नहीं है बल्कि ऊर्जा, संतुलन और जीवन के प्रति उत्साह का नाम है। डॉक्टर अभिषेक कुमार गोयल जी, आज आपने इतनी सरल और सहज भाषा में हमारे श्रोताओं को इतनी उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए हमारे चैनल की तरफ से आपका हार्दिक धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया आकाशवाणी लखनऊ से, मार्गदर्शन सुश्री सुमोना एस पांडे जी का, जो कि हैं हमारी कार्यक्रम प्रमुख, प्रोड्यूसर हैं श्री कुंवर बहादुर सिंह जी और विशेष सहयोग विनय का रहा। अगले रविवार फिर मुलाकात होगी हेल्थ एंड फिटनेस के एक नए विषय और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक चलते रहिए, संतुलित रहिए और तनाव कम करिए, भरपूर नींद लीजिए, अपने शरीर को वही सम्मान दीजिए जो कि आप अपने जीवन की सबसे मूल्यवान चीज को देते हैं। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे 300 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी चरक हॉस्पिटल दुबग्गा लखनऊ।
2: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
3: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
2: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।

नमस्कार, आप सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जनता की भागीदारी भारत के लिए प्रसन्नता की बात है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए उनकी अपील पर कुछ जगहों पर देशवासियों ने एकजुटता का परिचय दिया और सोने की खरीद तथा विदेशी यात्रा को कुछ समय के लिए टाल दिया। श्री मोदी ने देशवासियों से खेती की जमीन को रसायनों से दूर और ज्यादा से ज्यादा खेती प्राकृतिक उर्वरकों के साथ करने का अनुरोध किया था। उन्होंने इस अपील का समर्थन करने और हर तरह से सक्रिय सहयोग के लिए देशवासियों के प्रति आभार प्रकट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में कहा कि सरकार देश के करोड़ों परिवारों को दुर्घटना बीमा दे रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत महज 20 रुपए वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिल रहा है। योजना के तहत पीड़ित परिवारों को अब तक 3,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में श्री मोदी ने कहा कि इस स्कीम के तहत

दुखद मृत्यु की स्थिति में निकटतम परिजन को 2,00,000 रुपए तक का बीमा दिया जाता है और इसके लिए सालाना सिर्फ 436 रुपए का प्रीमियम देना होता है। श्री मोदी ने लोगों से अपील की कि वे इन स्कीमों के बारे में अपने परिवारों के साथ चर्चा करें। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्र के इस्तीफे की पुष्टि कर दी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने कल इस मामले में बयान जारी किया। बयान में कहा कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट ने यह भी पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामलों में SIT जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ में रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और एक कार्यक्रम को संबोधित किया। ये कार्यक्रम श्री सत्य साई बाबा के शताब्दी जन्मोत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। श्री पाठक ने मशाल जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंदुस्तान ने जून में देसी साख्ता C-295 तैयारी की पहली परवाज के साथ हवाबाजी के शोबे में एक अहम पेशरफ्त हासिल की है। आज आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में इस तरह के मजीद 40 तैयारे बनाए जा रहे हैं। जनाब मोदी ने कहा कि इससे बहुत छोटे छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों, MSME और एरो स्पेस सेक्टर को फरोग मिल रहा है, रोजगार के नए मौके पैदा हो रहे हैं और खुद इन्हिसार हिंदुस्तान के अज़्म को तकवीयत मिल रही है।
1: इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: वज़ीर-ए-आज़म ने बैनुल अक़वामी योगा डे पर तबादले ख्याल किया जिसे दुनिया भर में मनाया जा रहा था। इस साल ये तकरीब 2500 से ज्यादा मकामात पर हुई। हिंदुस्तान में योगा डे में लाखों लोगों ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कौमी तामीर में आवाम की शिरकत हिंदुस्तान के लिए बड़ी खुशी की बात है। उन्होंने मजीद कहा कि उनकी अपील के जवाब में मगरबी एशिया में जंग जैसी सूरत हाल के पेश नज़र बाज मकामात पर शहरियों ने यकजहती का मुजाहरा किया और सोने की खरीदारी और गैर मुल्की सफर को आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया। जनाब योगी ने शहरियों पर जोर दिया कि वो ज़रई ज़मीन को केमिकल्स से दूर रखें और कुदरती खादों का इस्तेमाल करते हुए अपनी ज्यादा से ज्यादा ज़मीन पर काश्त करें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत मुल्क भर में लाखों खानदानों को हादसाती बीमा फराहम कर रही है।
1: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपए के सालाना प्रीमियम उस पर 2,00,000 रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को 3,700 रुपए से अधिक की सहायता

0: मिल चुकी है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपए है। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11 लाख परिवारों को सहायता मिल चुकी है।
1: वजीर आजम ने कहा कि हमारे मुल्क की सबसे बड़ी ताकत इसके लोग हैं और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में की जाने वाली छोटी छोटी कोशिशें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। बराह करम मुझे अपने इर्द गिर्द होने वाली कोशिशों के बारे में लिखते रहें। वजीर आजम ने लोगों से बारिश के पानी की हर बूंद को बचाने और कैच द रेन मुहिम को फरोग देने की अपील भी की। वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज हाथरस और आगरा के दौरे पर हैं। वजीर आला सबसे पहले हाथरस पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सलेमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। जनाब योगी वहां एक जलसे आम से खिताब भी कर रहे हैं। हाथरस का दौरा करने के बाद वजीर आला आगरा पहुंचेंगे, जहां वो कमिश्नर ऑडिटोरियम में आगरा डिवीजन के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के कामों से मुतालिक मीटिंग करेंगे। इसके अलावा वजीर आला जिलई तरक्याती कामों और अमन अमान का भी तफसीली जायजा लेंगे। आगरा से वापसी पर वजीर आला शाम को लखनऊ में स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की जायजा मीटिंग करेंगे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल 2478 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा, जिसमें गौतम बुद्ध नगर में नोएडा अथॉरिटी की नई तामीरशुदा मरकजी इंतजामी इमारत भी शामिल है। उन्होंने यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के इलाके में 2 बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स का भी संगे बुनियाद रखा। मरकजी वजीर बराए रेलवे इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव और मरकजी वजीर बराए माहौलियात जंगलात और मौसमियाती तब्दीली भूपेंद्र यादव भी वजीर आला के साथ इस तकरीब में मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के नए वजीर आला ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ में श्री सत साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मुनक़िद रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तकरीब में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ब्रजेश पाठक ने मशाल रोशन करके और कौमी इतिहाद का पैगाम देते हुए तकरीब का आगाज किया। उन्होंने इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि सत्य साई बाबा की तालीमात इंसानी खिदमत इतिहाद और मोहब्बत पर मबनी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफों की तस्दीक कर दी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के खजांची स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने कल इस मामले पर एक बयान जारी किया। बयान में कहा गया कि इस्तीफों पर आइंदा इजलास में गौर किया जाएगा। उन्होंने यह भी यकीन दिलाया कि अतिया की गई चांदी की ईंटों और जेवरात के मुकम्मल अकाउंट्स दस्तयाब हैं। कौमी पल्स पोलियो मुहिम आज से शुरू हो गई। रियासत के तमाम अजला के बूथों पर 0 से 5 साल की उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। इसके बाद 29 जून से 3 जुलाई तक डोर टू डोर मुहिम चलाई जाएगी। और आज सुबह तेज हवाओं के साथ बारिश ने गोरखपुर समेत पूर्वांचल के कई इलाकों में मौसम खुशगवार बना दिया। संभल में भी आज सुबह तेज बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने अगले चंद घंटों के दौरान रियासत के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।

0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुकून से भरा दोपहर, शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
1: है,
0: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
2: ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा ये चंचल हवा,
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz, FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: जिंदगी बहुत कीमती है,
4: उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम

0: सरिया के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
1: RHL गोल्ड TMT सरिया 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

1:17:50 आप हैं ज्योति के साथ इंडिया प्रोग्राम HPTV, यानी के होंठ मेरे और बात आपके दिल की, आवाज मेरी लेकिन जज्बात एंड अल्फाज आपके दिल के। तो आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब कभी भी आप थोड़े से तनाव में होते हैं तो क्या करते हैं खुद को कूल डाउन करने के लिए, खुद को स्ट्रेस फ्री करने के लिए। जल्दी से हमें ईमेल करिए और अपनी टिप्स हम सबके साथ शेयर करिए।

0: बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
2: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki. एक बजकर 24 मिनट और ठीक 14 सेकेंड आप हैं ज्योति के साथ और ज्योति के सामने है ढेर सारी आपके दिल की बात। रामराज जी, जिला रायबरेली, गांव पहाड़ीपुर से रामराज राजू भानु, रामचरण पप्पू पासी, मनीष नीरज मधु बजरंगी काका, आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो टॉपिक है ये कि जब कभी आपको तनाव होता है, कि बहुत ही नेचुरल है आज के टाइम में, तो आप क्या करते हैं? गुस्सा करने लगते हैं, शांत होकर बैठ जाते हैं, या फिर किसी और तरीके से उसको मैनेज करते हैं? सुधाकर जाधव जी ने लिखा है कि जब हम टेंशन में होते हैं तो हम एक आधा मार्मिक पढ़ते हैं और आकाशवाणी के प्रोग्राम सुनते हैं, FM रेनबो सुनते हैं और TV का समाचार सुनने लगते हैं। ये भी एक तरीके से बहुत अच्छी बात है। होता क्या है ना कि आपका दिमाग थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट हो जाता है। बहुत अच्छा तरीका है ये स्ट्रेस को मैनेज करने का। ग्राम पंचायत काले गांव जाफराबाद से इन्होंने ईमेल किया। श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमार सर्वत देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख, कुमारी हर्षदा देशमुख, समस्त राजे जाधव देशमुख और वायाल परिवार, सतीश अनेजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने ये लिखा है कि जब भी तनाव महसूस करता हूँ तो घर में बनाए मंदिर में जाकर आंखें बंद कर अरदास करता हूँ कि हे मालिक, आपका बच्चा हूँ, जो भी परेशानी है आपसे छिपी नहीं है, मुझे शक्ति दो, ये तनाव भी हवा के झोंके की तरह चला जाए। भाई वाह क्या बात है। वो है ना चौपाई के, जय विधिनाथ होई हित मोरा, करो सुबेगी दास में तोरा, कुछ वैसी बात। इन्होंने ये भी लिखा है कि मुझे उसी वक्त राहत मिलनी शुरू हो जाती है, फिर परमात्मा का शुक्राना भी करता हूँ। विनीत कुमार अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर से, जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने सारी तारीफ के लिए। लेकिन ये बात आपकी गलत है कि मेरे मेल कभी शामिल नहीं किए जाते हैं। आपका मेल देखिए अभी शामिल हो रहा है विनीत कुमार जी, और आपके मेल तो मैंने खुद नहीं कई बार शामिल किए। क्या बात कर रहे हैं आप। आगे आगे आगे किनका मेल है, मोनू सेठ लिख रहे हैं, तनाव में होता तो जो कुछ काम करता हूँ मन को खुश रखने के लिए, कॉमेडी फिल्म देखता हूँ, रेनबो सुनता हूँ, बच्चों के साथ कौवा और चिड़िया उड़ वाला खेल खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, बाग में बैठकर सुकून ढूंढता हूँ, जैसा समय वैसा कार्य। सीधी सी बात है कि इन्होंने एक लिस्ट बना रखी है मोनू सेठ जी ने, हेल्थ एंड फिटनेस के लिए हृदय से आभार किया है। बहुत बहुत शुक्रिया मोनू सेठ जी। और अंजू जी का एक और ईमेल है, अनीता चौहान अंजू, इन्होंने हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड मेल किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इनके अलावा MK राज, विनीत कुमार, सोनू परवाना, जनवेश कुमार, मोनू सेठ, प्रवीण हैगोने, जग्गर राम साहू, इन सबके भी ईमेल्स हमारे सामने हैं और सबके ईमेल पढ़े जाएंगे, ज़रूर पढ़े जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये खूबसूरत गाना आपके रेडियो सेट्स पर। 1:27 हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं FM रेनबो ज्योति के साथ। और ज्योति आज आपसे जानना चाहती है कुछ काम की बात। जब कभी जिंदगी में तनाव आता है, जब कभी स्ट्रेस होती है, तो आप उसे कैसे मैनेज करते हैं? जस्ट लेट इट बी, सोचते हैं कि अपने आप वक्त के साथ चीजें ठीक हो जाएंगी, या फिर आपके कुछ टिप्स हैं जो कि आपको लगता है कि सबके साथ शेयर करे जाने चाहिए? तो जल्दी से हमें ईमेल करिए। हमारा ईमेल आईडी वही पुराना, fmakashwani@gmail.com। मैं हूँ ज्योति और आप के ईमेल का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। इन द प्रोग्राम होटो पे तेरी बात।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
2: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki. एक बजकर 33 मिनट और ठीक 54 सेकंड्स आप हैं ज्योति मिश्रा के साथ इन द प्रोग्राम होटो पे तेरी बात। गर्मी बहुत हो रही है आज, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि धूप के ओले बरस रहे हैं। काश मेरे यहाँ स्विमिंग पूल होता तो मैं उसी में रहती। टॉपिक पर ये लिख रही है कि जब बहुत ज्यादा तनाव होता है, गुस्सा आता है, तो कभी कभी दूसरों पर निकाल देती हूँ, डिशम डिशम डिशम। और जब तनाव होता है तो डांस करती हूँ, रेनबो सुनती हूँ, दिन रात वैसे भी रेनबो सुनती ही रहती हूँ। तो ये जो दूसरों पर कैसे निकालती हैं आप, मतलब डिशम डिशम करती हैं या फिर किसी और तरीके से? है कि सुबह से टेंशन में था, लेकिन टेंशन दूर करने के लिए आपके साथ जुड़ा हूँ। टीवी पर फिल्म भी देख रहा हूँ खट्टा मीठा, और साथ साथ रेनबो भी सुनता जा रहा हूँ। तो अगर रेनबो सुनकर आपका स्ट्रेस रिलीज हो रहा है, अगर आप रिलीव्ड फील कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टेंशन में रहना तो ठीक नहीं है, है ना। यदि तनाव हो जाता है तो मैं रामायण का पाठ करता हूँ कभी कभी, कबीर दोहा रहीम दोहा भी पढ़ता हूँ। सोनू महाजन लिख रहे हैं खालिसपुर ऊंचगांव अमेठी से, और आंचल लिख रही हैं स्वस्थ शरीर और दिमाग को विकसित करने के लिए खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कई बार जब तनाव होता है तो खेलती हैं ये, विच इज वेरी गुड। जितेंद्र नामदेव, बबलू नामदेव, अंजू नामदेव, खनक नामदेव, आरोही नामदेव, सौम्या नामदेव, खन्नौदी शहडोल मध्य प्रदेश से ईमेल लिख रहे हैं कि जब कभी तनाव में होता हूँ तो कुछ कॉमेडी फिल्म या सीरियल देख लेता हूँ, ताकि तनाव से दूर रहूँ और अपने आप में खुश रहूँ। बाकी सुख दुख का साथी रेनबो तो है ही, बिल्कुल सही। रामेश्वर जी का ईमेल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को पसंद करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मुंगीसापुर कानपुर देहात से ईमेल कर रहे रामेश्वर कठेरिया, उमा कांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू कठेरिया, कठेरिया परिवार। तो चलिए भाई आगे चलते हैं और सुनते हैं एक और खूबसूरत गाना, फिल्म का नाम माशूक। अगर आपकी भी कुछ ऐसी टिप्स हैं स्ट्रेस को कंट्रोल करने की, जिन्हें आपको लगता है हमारे साथ शेयर करना चाहिए, तो प्लीज प्लीज प्लीज डू शेयर। प्रोग्राम के नाम हो तो भी तेरी बात, मैं आपकी दोस्त ज्योति, और आप मुझे सुन पा रहे हैं FM रेनबो पर।

0: बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये बारा। टोल कर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
0: जिंदगी बहुत कीमती है।

0: ढेरिये माना, नींव से लेकर छत तक, भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ। 1:42 और ठीक 43 सेकंड अपनी अपनी घड़िया मिलाते रहिए और अपने कानों को FM रेनबो से सटा कर रखिए। वकील अहमद साहब, शुक्रिया शुक्रिया, मेहरबानी इतनी तारीफ के लिए। लिख रहे हैं कि गुस्सा नहीं आता, आता है तो खेतों की तरफ चले जाते हैं, हरी भरी फसल देखकर गुस्सा ठीक हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, कहा जाता है, ये प्रूवन है कि अगर आप नेचर लवर हैं और आप नेचर के साथ टाइम बिताते हैं तो आपका गुस्सा, आपका स्ट्रेस बहुत जल्दी कंट्रोल में आता है। मंसूरी कटका हथूरी जिला सीतापुर से इन्होंने ईमेल किया है। साहिब अंसारी, साजिया अंसारी, शमा परवीन, रिंकी मिंकी, महक अंसारी, गुलफशा सिद्दीकी और एमन नवाब के साथ मिलकर। नरेंद्र सुथार जी ने ईमेल लिखा है कि जब कभी तनाव आ जाए तो उसे गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि तनाव भी पानी के बुलबुले की तरह है और हार कर चलाता है। संगीत सुन लेता हूँ जो तनाव से राहत देता है, संगीत के साथ गुनगुनाता हूँ तो तनाव भी सोचता है कि किससे पाला पा। अच्छे दोस्त हूँ तो वो भी दोस्त का तनाव दूर कर देते हैं, जैसे सतीश अनेजा जी मेरे अच्छे दोस्त है। नरेंद्र सुधार जी नोहर राजस्थान से जी, दोस्ती तो बहुत ही खूबसूरत चीज है, नो डाउट। आप बहुत स्ट्रेस में हो और अपने दोस्तों के साथ बैठ जाएं, अपनी तनाव की आप चर्चा भी ना करें, ना चर्चा करें ना चिंता करें, देखिए थोड़ी देर के बाद में आपको काफी बेटर फील होता है। रामेश्वर जी लिख रहे हैं कि गुस्सा आता है या तनाव होता है तो रेनबो सुनने लगता हूँ। ग्रामा पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से रामेश्वर कटेरिया, उमाकांति कटेरिया, कमलेश कटेरिया, निशा कटेरिया, प्रज्ञा कटेरिया, गीता सेठ लिखती हैं कि हमारे बुजुर्ग कहते थे गुस्सा और चिंता चिता के समान होते हैं, इसलिए ठंडा पानी पिए, गहरी और लंबी सांस लें, सब मस्त हो जाएगा। एग्जैक्टली, टाइम जिस चीज को जितना लगना है सॉर्ट आउट होने में उतना तो लगेगा ही, उससे पहले टेंशन लेकर क्या करना है ना, ऐसे ही थोड़ी ना बोला जाता है कि सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है, बस जरूरत है तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की।

0: तो टेंशन किस बात की ले रहेगा? कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि हर चीज अपनी टाइम लेकर के, हर प्रॉब्लम अपना टाइम लेकर के सॉर्ट हो ही जाती है ना? और वो कौन सा डायलॉग था कि अगर हैप्पी एंडिंग नहीं हुई तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण, भरोसा, जानो फिर मानो।
3: मुस्कुराइए, क्या आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
0: अहमद नवाब ने लिखा है संडीला से कि मैं तनाव में होती तो अपने फ्रेंड्स को फोन करती हूँ, वो फोन ही नहीं उठाते, और उठा भी लेते तो ऐसी बात करते हैं कि मुझे और गुस्सा आ जाता है। होता है ऐसी, मतलब आप जब गुस्से में तो आप किससे बात करें, आपको ये भी सिलेक्ट करना होगा और ये भी देखना होगा कि आप किस टोन में बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको गुस्सा आ रहा है और किसी और का गुस्सा आप किसी और के ऊपर निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है एक्शन के रिएक्शन होंगे और रिएक्शन की वजह से आपके ऊपर जो असर होगा बहुत अच्छा नहीं होगा, है ना? तो सबसे अच्छा तो यही होता है कि शांतिपूर्वक बैठ जाइए, है ना? प्रवीण कुमार कहते हैं, प्रवीण जी बोल रहे हैं, रेनबो सुनो, पानी पियो और सो जाओ। ये भी बहुत अच्छी बात है, बड़ा प्रैक्टिकल सा ये टिप है, हालांकि बहुत नॉर्मल सा लग रहा है लेकिन ऑफ कोर्स बड़ा इफेक्टिव है। उर्फी खान का बुलंदशहर से ईमेल आया है बहुत टाइम के बाद में, लिख रहे हैं सॉन्ग्स बहुत पसंद आ रहे हैं। स्ट्रेस में वही स्थिति होती है लेकिन जब मेरे भांजे आए हुए होते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनके साथ स्ट्रेस होने ही नहीं देते। ये होता है, आप जिन लोगों को पसंद करते हैं उनके साथ में अगर आप टाइम स्पेंड करते हैं तो आपको स्ट्रेस काफ़ी कंट्रोल रहेगा, ये प्रूवन है। कल हमारे भाई का तिलक है, ज्योति दीदी आपको इनवाइट कर रहे हैं। हम लोग तो रेनबो सुनते हैं इसलिए हमें गुस्सा आता ही नहीं, क्या बात है। रिंकी पिंकी गांव जगदीशपुर शिवगढ़ दीवानों के शहर जिला रायबरेली से, अब आपने पूरा एड्रेस भी बता दिया, ये भी बता दिया कि आपके भाई का तिलक है, तो देख लीजिए बहुत सारे मेहमान पहुंचने वाले हैं और सुपरहिट बनाने वाले हैं इस प्रोग्राम को। इन एनी केस मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयां। मुनेश कुमार राज ने लिखा है, सुमोना जी के मार्गदर्शन में आकाशवाणी के पग चिन्ह कार्यक्रम बहुत ही मनोरंजक, ज्ञानवर्धक और भविष्य के लिए मार्गदर्शक रहा, हेल्थ एंड फिटनेस भी अच्छा रहा। आज के मुद्दे पर मेरा ये कहना है कि परेशानियां कितने भी आ जाएं, टेंशन फ्री रहना, हमारे पास सीधा उपाय, रेडियो लाइव है तो क्यों ना बजाएं। चिंता नहीं चिंतन करो, टेंशन नहीं काम करो, आपका पक्का श्रोता मुनेश कुमार राज जी। मुनेश जी, रोशनी रावत लिख रही है, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, ब्रह्मना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव से बिलोंग करती है, फिलहाल चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रही है, स्ट्रेस कम करने के लिए दोस्तों से बात कर लेती है और हर रेनबो भी सुनती हैं। इनका ये मानना है कि दो पल की जिंदगी, उसमें भी क्या स्ट्रेस लेना, तो हम स्ट्रेस नहीं लेते, खुश रहते हैं और चाहने वालों को भी खुश रखते हैं। नीलू शर्मा रूपपुर चंदेला से लिख रहे, मुझे कभी तनाव महसूस नहीं होता, खुशी रहती है। आज मेरी दोस्त पीहू के मम्मी डैडी की एनिवर्सरी है तो उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं। जी नीलू जी, बिल्कुल बिल्कुल ढेर सारी बधाइयां हमारी तरफ से भी। तो दोस्तों आज हमने किस बारे में बात की, आज हमने ये जानना चाहा आपसे कि अगर आपको स्ट्रेस होता है तो आप क्या करते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। आजकल की लाइफ स्टाइल ही ऐसी हो गई है कि सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ तनाव है, लेकिन तनाव को मैनेज करना, स्ट्रेस का मैनेजमेंट, ये एक बहुत बड़ी कला है और इस पर हम सबको काम करना जरूरी है क्योंकि जिंदगी तो ऐसी रहनी है। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कितनी टेंशन लेते हैं, तो टेंशन को करिए दूर और खुश रहिए भरपूर, क्योंकि ले रहकर एक ही जिंदगी तो मिली है ना। छोटे छोटे से टिप्स बहुत सारे फ्रेंड्स ने दिए, लाइक पानी पीजिए, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करिए, अपनी

पसंदीदा किताब पढ़ लीजिए, थोड़ी देर शांत बैठ जाइए और कुछ भी ना समझ में आए तो रेडियो टीवी सुनने लगे। इन सारी चीज़ों से आपको ऑफ कोर्स फर्क पड़ेगा। हमारे कुछ दोस्तों ने ये भी कहा कि भगवान के मंदिर में जाकर बैठ जाते हैं, ऊपर वाले को याद करते हैं, ऑफ कोर्स इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो तरीके अपने अपने, लेकिन बात बस इतनी सी है कि ये जो खूबसूरत सी जिंदगी है उसे स्ट्रेस के लिए बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करने का, और जिंदगी मिली है तो पूरी तरह से जम के एकदम स्टाइल में रहने का।

0: साकारेल है, ओनली बजारेल है, थोड़ा सिंगिंग विंगिंग भी हो गए बाबा।
1: घुमा के उल्टा टोपी टिका के गॉगल लगा के अपना कॉलर चढ़ा के

0: तो जी आप पूरे पूरे स्टाइल में रहिए और स्टाइल में ही सुनते रहिए एफएम रेनबो, जिस पर इस वक्त इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने का टाइम आ गया। जनवेश कुमार जी ने लिखा है, गुस्सा आता है तो अपनी गलती चेक करता हूँ, कई बार उसी में गुस्सा ठीक हो जाता है, ये भी बहुत अच्छी बात है। विनीत कुमार उमी गौतम अर्थापुर रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर से ईमेल कर रही हैं, लिख रही हैं कि गाना बजा देना तो भाई नेक्स्ट प्रोग्राम में कोशिश बिल्कुल की जाएगी। ऑन दिस नोट अब ज्योति चाहेगी आपसे इजाजत इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने की। थैंक यू सो मच आपके वैल्यूएबल इनपुट्स के लिए, बड़ा मजा आया आपके साथ। फिलहाल इतना ही कहना चाहूंगी कि थोड़ी देर में एक न्यूज ब्रेक होगा और उसके बाद बस आपकी पसंद के सॉन्ग, सो स्टे ट्यून्ड।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

0: बनाया है।
1: The Prime Minister also spoke about International Yoga Day, which saw the entire world join hands with India's efforts. He mentioned the World Yogasan Championship held in Ahmedabad, where India won a total of 114 medals in this event, including 102 gold. Prime Minister Modi stated that the power of public participation in nation building is a tremendous asset for India. He said this public participation was seen again after he urged countrymen on a few points in view of the prevailing warlike situation. In West Asia.
0: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: Mr. Modi also cited the example of the Petkar family in Nanded, Maharashtra, who arranged accident insurance for approximately 3,500 villagers. Each individual was provided with an insurance cover of 1 lakh rupees. The Prime Minister shared that the government is extending this protective shield to crores of families across the country.
0: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
1: In this episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Modi also touched upon the subject of superstition. He noted that superstition has been deeply ingrained in human society for millennia. Mr. Modi shared how the rare Hargela bird found in Assam was considered inauspicious in certain parts of the state. The Prime Minister stated that it was during that time that biologist Purnima Devi Barman resolved to change the misconceptions deeply rooted in people's minds.
0: हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगीला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगीला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम और अंधविश्वास को पीछे छोड़ कर के रहे।
1: Touching upon the topic of sports, Prime Minister Modi expressed happiness that the number of young people in the country who are both playing sports is rapidly growing. In today's Mann Ki Baat, Prime Minister Modi also spoke about preserving people's creativity in the age of technology and AI. He said Nalanda University has found a solution to this and is now shaping India's destiny in a new avatar.
0: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया।
1: Mr. Modi highlighted other significant efforts are underway to prepare the youth for new technology while keeping them rooted in their heritage. The Central Sanskrit University in Delhi is launching a B.Tech program in artificial intelligence and data science. Prime Minister Modi expressed happiness that Indian culture is reaching various corners of the globe today. He spoke of an initiative in the Dominican Republic, which has an Indian population of around 100.
0: कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहाँ भारतीयों की संख्या करीब 100 है। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहाँ हो रहा है। वहाँ स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका ये प्रयास बहुत प्रेरक है।
1: The Prime Minister mentioned Meghalaya's

0: In men's cricket, India will take on host Ireland in the second and final T20 international of the two-match series in Belfast today. The match is scheduled to begin at 6 p.m. Indian Standard Time. In FIFA World Cup, Argentina star Lionel Messi has become the first player in history to score in 7 consecutive World Cup games. The 39-year-old scored with a free kick after coming off the bench as Argentina won 3-1 against Jordan. It was Messi's 6th goal of the 2026 World Cup and he leads the Golden Boot race by 2 goals. Lo Celso and Lautaro Martinez scored the other 2 goals for Argentina as they finished their Group J campaign with 3 wins from 3. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi says India is becoming increasingly secure and self-reliant from seas to the skies with focus on indigenous defense production. Highlights completion of maiden flight of C-295 aircraft made in India. In his Mann Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi expresses gratitude to the citizens of the country for actively supporting his recent appeal to avoid buying gold, foreign travels and promoting carpooling for some time. India and Seychelles signed agreements on various subjects including health, agriculture, finance and space following delegation-level talks in Victoria. Government asked Indian citizens not to undertake Kailash Mansarovar Yatra without all required travel documents. Security situation in West Asia deteriorates sharply with both US and Iran launching fresh military strikes against each other. And in ICC Women's T20 World Cup, India to take on Australia in the final Group A match in London today. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। अमेरिका और ईरान के बीच नए सैन्य हमलों से पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति बिगड़ी और लंदन में महिला T20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
2: C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया और DRDO ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
2: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
1: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार ये आयोजन 2,500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियन

0: चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
0: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में पेठकर परिवार की चर्चा की, जिसने लगभग 3,500 ग्रामीणों का दुर्घटना बीमा कराया है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना हृदय को छूने वाली है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अब तक 3,700 करोड़ रुपए से अधिक और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है।
1: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 1 साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज में अंधविश्वास सदियों से गहरे बैठा हुआ है। श्री मोदी ने बताया कि असम में अशुभ माने जाने वाले हरगिला पक्षी को बचाने के लिए हजारों महिलाएं सामने आई हैं।
1: हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे।
0: प्रधानमंत्री ने नागालैंड बेबी लीग और नागालैंड महिला फुटसल लीग की चर्चा की।
1: देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। नागालैंड के 2 ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग, जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित करती है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है।
1: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया।
0: प्रधानमंत्री ने दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के आधुनिक प्रयास की चर्चा की।
1: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
0: श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति दुनिया भर में पहुंच रही है।
1: कैरेबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहाँ भारतीयों की संख्या करीब 100 है। भारतीय संस्कृति और

0: अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहाँ हो रहा है। वहाँ स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका ये प्रयास बहुत प्रेरक है।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। अंत में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंद महासागर की सुरक्षा और समृद्धि भारत और सेशेल्स की साझा जिम्मेदारी है। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े।
0: मेरी यात्रा ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है जब सेशल अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है और हम भारत सेशल राजनयिक संबंधों की भी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इन 50 वर्षों की यात्रा में हमने मित्रता को विश्वास में, विश्वास को सहयोग में और सहयोग को जन कल्याण में बदला है। हिंद महासागर ने भारत और सेशेल के संबंधों को सींचा है।
1: दोनों देशों के बीच कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान भी हुआ। सेशेल्स के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके दूरदर्शी नेतृत्व तथा सतत विकास और जलवायु लचीलेपन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे, भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमान ने कहा कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत किको पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की मुख्य भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
2: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और ये आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
1: पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। लंदन के लॉर्ड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। भारत ग्रुप में दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना होगा। उधर बेलफास्ट में दूसरे T20 पुरुष क्रिकेट

मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। 2 मैचों की श्रृंखला में आयरलैंड ने पहले मैच में भारत को 34 रन से हराया था। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी लगातार 7 विश्व कप मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आज अंतिम मुकाबले में अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराया। इसके साथ ही विश्व कप में उनके गोलों की संख्या 19 हो गई है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। और लंदन में महिला T20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

जी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी डीजे प्रधान के साथ पोस्ट हर हर पुर मटकली जिला बरेली से एंड जावेद अख्तर रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर राही शमशुल कमर राही बेगम रुखसार रकीबा शाहीन तूबा आफरीन शमीम अख्तर अंसारी जी के साथ इन्होंने ईमेल किया है। जॉन डी केस्ट्रो, रोजी डी केस्ट्रो, पॉल डी केस्ट्रो, विलिस डी केस्ट्रो जनकपुरी सहारनपुर से थैंक्स फॉर प्लेइंग लवली सॉन्ग्स बोल रहे हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। करते हो इतने ईमेल की पढ़ने वाला हो जाता है हक्का बक्का, वावा वावा। करते हो इतने ईमेल की पढ़ने वाला हो जाता है हक्का बक्का। अगर चिट्ठियों का जमाना होता तो पत्रों से रूम भर जाता, इतना कि संभालने वाला हो जाता बीमार पक्का। भाई ये मेरी शेरो शायरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये लिखकर भेजा है मुनेश कुमार राज ने मोहनपुर हरवा जिला लखीमपुर खीरी से। अबे देखिए, आपके ईमेल्स हो या आपके लेटर्स हो, ट्रस्ट मी, हमको बहुत अच्छा महसूस कराते हैं, क्योंकि आप हैं तभी हम हैं। तो इसके लिए ये कोई हक्का बक्का या बीमार पक्का वाली कोई बात है ही नहीं। हाँ, ये मैं बिल्कुल मानती हूँ कि हमारे पास टाइम की कंस्ट्रेंट होती है, कम वक्त होता है, इसलिए कई बार चाह करके भी कुछ मेल्स पढ़े नहीं जा पाते, कई बार सबकी पसंद के सॉन्ग्स प्ले नहीं हो पाते, लेकिन वो हमारी मजबूरी है। तो मैं तो यही कहूंगी कि दिल से शुक्रिया आप सबका, जो कि आप सबसे कीमती वक्त, जो जिसे बोलते हैं सबसे कीमती चीज आज के जमाने में, आज के बिजी टाइम्स में, जिसे कहते हैं वक्त, वो आप हमें देते हैं। ना सिर्फ वक्त देते हैं बल्कि हमें फीडबैक भी देते हैं, हमारे साथ इतनी अच्छी अच्छी बातें शेयर करते हैं। रामेश्वर जी का ईमेल आया है, मुगिसापुर कानपुर देहात से रामेश्वर कठेरिया, उमाकांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, निशा कठेरिया, आपके कई ईमेल आ चुके हैं। तो जी आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि हम अगर बस एक ईमेल करके रुक जाए ना, तो हमारे दोस्तों को भी मौका मिले, है ना। सबा अंसारी, शकील अंसारी, हिना अंसारी, बुशरा अंसारी, गुलिस्ता रानी, नंदिनी और अंजलि ने भी हमें ईमेल भेजा है श्री कृष्ण की नगरी से, श्री कृष्ण की नगरी यानी कि मथुरा से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आप ही में से किसी एक की पसंद का ये खूबसूरत गाना सुनाते हैं।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: दो बजकर 37 मिनट और 49 सेकंड्स, आप हैं ज्योति के साथ इनके प्रोग्राम हॉटमेल, और ज्योति लगातार आपके ईमेल्स भर रही है, साथ ही साथ प्ले कर रही है सिर्फ सिर्फ सिर्फ आप ही की पसंद के गाने। सिद्धार्थ गोंडाने जी का ईमेल आया है, अर्चना गोंडाने, प्रणय प्रसिद्धि, हीरामन शेंडे जी के साथ इन्होंने गाने की फरमाइश की।

रही है। ज्योति जी हमारे मेल पर भी ध्यान दे लीजिए। लीजिए मोनू सेठ जी, ध्यान दे लिया, बिल्कुल ध्यान दे लिया। महेंद्र देपन जी लिख रहे हैं नागौर रूण से। मैं हूँ महेंद्र देपन, नागौर का गांव रूण ही प्यारा ठिकाना हमारा है। लाया हूँ हॉटमेल में एक खूबसूरत सा नगमा, ये सुनवा दीजिए, यही है दिल की तमन्ना। सुल्तान रज्जा, बाबू भाई अंसारी, रोशनी और बबीता दीदी भी संग हैं। इन सभी प्यारे अपनों के साथ गूंजते रेडियो के खूबसूरत रंगे। महेंद्र जी कोशिश जारी है। अहमद फूल वाले, दुखनी सदफ आरजू, जूही इकबाल फूल वाले, इमरान अहमद फूल वाले, कापसेरा बॉर्डर नई दिल्ली से, आमना नसरीन आसमा, परी, राबिया मंतशा, आशु अहमद फूल वाले और समस्त फूल वाले फैमिली ने भी ईमेल किया है। राहुल का भी ईमेल आया है, कहाँ से आया है इन्होंने बताया नहीं, लेकिन ईमेल ऑफ कोर्स हम तक पहुँच गया है। आहिल खान जी का ईमेल है। उर्फी खान बुलंद शहर से, पॉसिबल हो तो हमारा गाना सुना दीजिए और आपके लिए दो लाइनें पेश हैं। उसने हमसे पूछा बगावत क्या है, हमने कहा जो दिल ने कर दी तुम्हें देखकर, भाई वाह क्या बात है। और इन्होंने दो बहुत ही प्यारे बहुत ही क्यूट बच्चों की तस्वीर हमारे साथ शेयर की। अगर ये आपके बच्चे तो उन्हें ढेर सारा प्यार ढेर सारा आशीर्वाद हम सबकी तरफ से। राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी ने भी हमें ईमेल किया है फ्रांसी हिसार से, बहुत दूर से। नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल अब हसन अब्बासी, रसीद वारसी, अनम अब्बासी, यशफ अब्बासी, किडवई नगर सिद्धपुरा टाउन से, जुबैर अली खान, इनका भी ईमेल आया है हम तक। दिदर्शन कौर जी का भी ईमेल, ढेर सारे गानों की लिस्ट भेजी है और कहा कोई सा भी गाना प्ले कर दीजिए। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौर जी, पूरी कोशिश की जा रही है। सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्य मल्होत्रा और सुच्चा सिंह पाठक जी का भी ईमेल है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आप ही में से किसी की पसंद का ये गाना सुनाते हैं चांदनी फिल्म से। हालांकि पर्वत से काली घटा टकरा रही कि नहीं पता नहीं, लेकिन हम मैदानों में गर्मी से राहत नहीं आने पा रही है, लेकिन कौन जाने आपकी पसंद के इस गाने के साथ ही मौसम का मूड बदल जाए और यहाँ पर भी बारिश हो जाए। तो चलिए लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड।

सिर्फ लखनऊ ही नहीं, दूर दूर से हमें ईमेल आ रहे हैं। इसका मतलब हम आप सबके दिलों में धड़क पा रहे हैं। प्रोग्राम के नाम हॉटमेल, मेरा नाम ज्योति, चैनल का नाम एफएम रेनबो और टाइम हो गया है 2:45 एंड 48 सेकेंड्स। तो चलिए जल्दी से ईमेल पढ़ते हैं ताकि आप में से किसी का भी ईमेल छूटने ना पाए। संजय साहू पोटिया कला से ईमेल इन्होंने भेजा है। सुजाता साहू के साथ लिखते हैं, सफलता कड़ी मेहनत, आत्म जागरूकता और सही दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। छत्तीसगढ़ दंतरेंगी भाटापारा से सोनम बेलदार, फातिमा बेलदार, अस्मा बेलदार, सरफुद्दीन फकीर साहब का भी ईमेल आया है और साईं गायकवाड़ जी भी लिखा है इन्होंने कि हॉटमेल बढ़िया चल रहा है, गाना सुना दीजिए। ओम रेडियो श्रोता संघ कोली दांडे नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओंकार गायकवाड़ एंड साई गायकवाड़ जी के साथ मेल किया है। अस्मा खातून, दिल साफ रखना अच्छा है मगर हर किसी के लिए नहीं है। बहुत अच्छी आपने बात कही, लेकिन मुझे लगता है कि दिल साफ रखना हर किसी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि अगर आप अच्छे इंसान बनते हैं ना, या अगर आप अच्छी चीज़ें प्रैक्टिस में लाते हैं, तो ये दूसरे के लिए नहीं है, ट्रस्ट मी, ये आपकी खुद की मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी खुद की इमोशनल हेल्थ के लिए एंड अल्टीमेटली सब्सिक्वेंटली आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी होता है। तो हमें अच्छे बनना है, इसलिए नहीं कि दूसरों के लिए, बल्कि इसलिए क्योंकि हम अच्छे हैं ही, है ना। एंड ट्रस्ट मी, बहुत मुश्किल नहीं होता। मगर पारा बिलासपुर से इन्होंने ईमेल किया है, वसीम आसमा दलाल, अक्रम आसमा दलाल, असलम आसमा दलाल, अल्ताफ आसमा दलाल, रेलवे कॉलोनी लखनऊ से सोनम कुटरिया, दिनेश कुटरिया, फातिमा कुटरिया का भी ईमेल आया है। ओम बगड़िया जी का ईमेल, क्रियांश बगड़िया, योगेश बगड़िया, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया, बांडीवाला फजिलका पंजाब से इन्होंने ईमेल किया है और गाने की फरमाइश की, कहा है कि किसी भी गाने में हमें शामिल कर लीजिए। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राहे महराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से इनका ईमेल है। मुंदी चक भागलपुर बिहार से दिलीप कुमार सोन

का ईमेल आया है एंड रुबीना थापा सरगुजा मैन पार्ट से सोनम थापा फातिमा थापा आसमा थापा आदिबा थापा रेशमा थापा के साथ और साथ ही साथ कुमारी वली थापा कुमारी डब्ल्यू थापा भी। तो जी इनके ईमेल तो हम तक पहुंचे ही हैं, अगर आपको पहुंचाना है तो अभी भी हमारे पास टाइम है, जल्दी से ईमेल करिए ताकि आपका नाम आज के प्रोग्राम में शामिल हो सके और आपकी पसंद का सॉन्ग भी प्ले किया जा

0: बैक्टेरिया की। इसकी तो हवाएं निकल गई। अब क्या होगा भैया?
1: सही जगह पे निकली है गोविंद, तो इसमें हवा भरवा दे।
0: अच्छा भैया,

दिल है कैसरगंज बहरा इसी गाने की फरमाइश के साथ, और जाकिर साहब, रोहित बेलदार एंड याकूब कुरैशी, पूनम गगनेजा, स्वर्ण सिंह, शारुन नूर अंसारी, रिजवान साहब, राजू मिगलानी, ताज मोहम्मद साहब, सुधाकर जाधव, दिलीप राजमणि, सत्यम पाल, मुकेश कश्यप, मूसा शेख जी, संजय ढिंगिया जी, अहमद फूल वाले और नवी हसन साहब, कमलकांत गुप्ता जी, यासीन अंजन जी, दिलीप कुमार जी, डी वर्मा जी, सिद्धार्थ गोंडाने एंड ब्रह्मेश जी, राजेंद्र कुमार जी, सतीश अनेजा जी, बोधराज खोरवाल, उत्तम कुमार भगत, राधे कुमार विद्यार्थी, दुर्गा राम साहू जी, स्वर्ण सिंह, रणधीर गुप्ता, सादिक साहब, नवाब खान साहब, संदीप मक्कड़, आफताब अंसारी, उदयभान पाल जी, तुलसी मस्कीन। तो जी, मैंने पूरी कोशिश की है, फागुराम यादव जी, प्रकाश बोरगांवकर जी, संजय ढिंगिया जी, पूरी कोशिश की है मैंने कि आप सबके नाम एटलीस्ट ज़रूर ले जाए, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, एक तो देखिए वक्त की कमी, दूसरे इंसान ही तो, अगर आपका नाम आज छूट गया, आपका ईमेल नहीं पढ़ा गया, आपकी पसंद का सॉन्ग नहीं प्ले हुआ, तो दिल पर मत लीजिएगा। ये प्रोग्राम हर दिन आता है, तो आप कल ट्राई कर सकते हैं, है ना? और अगली बार जब भी इस प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तो पक्का 100% पक्का आपकी पसंद का सॉन्ग जरूर प्ले करने की कोशिश करूंगी। तो ऑन दिस नोट, ज्योति चाहती है आपसे इजाजत, प्ले करते हुए आप ही में से किसी एक की पसंद का ये सॉन्ग इन द प्रोग्राम हॉट व्हील। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि एंटरटेनमेंट का सिलसिला यू ही जारी रहेगा।

अपडेटेड. कीप लिस्निंग टू FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की. कोमल तिवारी जी का भी ईमेल

102.2 पर आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो कानपुर। अ वेरी गुड आफ्टरनून गाइस। एफएम रेनबो कानपुर के स्टूडियो में आ गई हूँ मैं आरजे महिमा, लेकर आपका फेवरेट प्रोग्राम म्यूजिकार। और आज का ये खास प्रोग्राम म्यूजिक का सफर डेडिकेटेड है दो खूबसूरत चीजों को। पहली हेल्थ एंड हैप्पीनेस, यानी स्वस्थ जीवन और खुशहाल मन। साथ ही इंडियन सिनेमा के दमदार सिंगर, म्यूजिशियन और लिरिसिस्ट विशाल ददलानी को आज उनके बर्थडे पर करेंगे विश और प्ले करेंगे उनके कुछ आइकॉनिक सॉन्ग्स। साथ ही हम बात करेंगे उन छोटी छोटी आदतों की जो हमारी जिंदगी को पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस से भर देती हैं। तो भाई तैयार हो जाइए मुस्कुराने के लिए, गुनगुनाने के लिए और जिंदगी को नए अंदाज में एक बार फिर से जीने के लिए।

0: Ragaz.
1: जी हाँ, स्वागत तो कर दिया हमने हमारे लिसनर्स का प्रोग्राम म्यूजिक आर में। दोस्तों, जिंदगी की असली दौलत जो है ना, वो पैसा और शोहरत नहीं, बल्कि हमारी हेल्थ, शांत मन और चेहरे की मुस्कान है। क्योंकि जब हम फिट और हेल्दी रहते हैं, खुश रहते हैं और पॉजिटिविटी हमारे अंदर होती है, तो हर दिन एक नए फेस्टिवल जैसा फील होता है। और अब आप मुझे बताइए कि आपके अकॉर्डिंग खुश रहने का सबसे आसान तरीका क्या है, और इसके आंसर के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं, जिसके लिए हमारी ईमेल आईडी है aarkansomedia@gmail.com। ईमेल आईडी एक बार फिर से सुन लीजिए, aarkansomedia@gmail.com। तो आप जहां से भी हमसे कनेक्ट हैं, यानी 102.2 FM रेनबो कानपुर से, मुस्कुराते हुए लिख भेजिए अपना आंसर और मेरे साथ जुड़ जाइए म्यूजिक के इस खास सफर पर।

जी हाँ, बेहद ही शानदार सॉन्ग फ्रॉम द मूवी चेन्नई एक्सप्रेस। दोस्तों, प्रोग्राम म्यूजिक आर में बात हो रही है हेल्थ एंड हैप्पीनेस की। तो ये तो हम सभी चाहते हैं कि हमारी लाइफ में सक्सेस, सम्मान और खुशियाँ तीनों बरकरार रहें, लेकिन इन सब बातों का बेस है हमारी अच्छी हेल्थ और पॉजिटिविटी से भरा हमारा मन। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग दोस्तों, स्वास्थ्य का मतलब केवल बीमारी का ना होना नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना है। इसलिए एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी के लिए सेहत और मन दोनों को बराबर ट्रैक पर रखना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है।

जी हाँ, फलक तक तो नहीं लेकिन प्रोग्राम म्यूजिक आर के इस सफर में हमें साथ ही चलना है, तो कनेक्ट रहिए 102.2 FM रेनबो कानपुर से प्रोग्राम म्यूजिक आर में आरजे महिमा के साथ। दोस्तों, हेल्थ और हैप्पीनेस का रिश्ता आपस में बहुत गहरा है। अब आप सोचेंगे कि कैसे? तो भाई, जो इंसान हेल्दी रहता है वही तो लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाता है। इसलिए हर दिन कुछ टाइम अपने शरीर और अपने मन के लिए ज़रूर निकालिए और अपनाइए कुछ हेल्थ टिप्स। जैसे दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी ज़रूर पीते रहना चाहिए, क्योंकि ये हमें हाइड्रेट तो रखता ही है, साथ ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बेहतर बनाता है और पूरे दिन बॉडी में एनर्जी को बनाए रखता है। और रही बात खुशियों की, तो दोस्तों, खुशियाँ जो हैं वो किसी बड़ी अचीवमेंट्स में नहीं मिलती, बल्कि छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने में छुपी होती हैं।

जी हाँ, देसी गर्ल सॉन्ग एंजॉय किया आपने फ्रॉम द मूवी दोस्ताना। गाइज, आज की दौड़ भाग वाली जिंदगी में मेंटल हेल्थ भी उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितनी की फिजिकल हेल्थ। तो ऐसे में कुछ समय अपने लिए कोशिश करके ज़रूर निकालिए और स्क्रीन टाइम से बचकर आप इस समय को कोई अच्छी बुक पढ़ने, म्यूजिक सुनने, नेचर के साथ वक्त बिताने या योग और ध्यान करने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे हमारी मेंटल हेल्थ होती है स्ट्रॉन्ग, और जब मेंटली हम फिट होते हैं ना दोस्तों, तो बेहतर डिसीजंस भी ले पाते हैं और लाइफ को और भी ज़्यादा बैलेंस्ड कर पाते हैं।

0: 102.2 पर आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो कानपुर और एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम म्यूजिक आर मेरे यानी आरजी महिमा के साथ। दोस्तों प्रोग्राम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम अभी हाजिर होते हैं, बने रहिए म्यूजिक के इस खास सफर पर।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: एक आवश्यक सूचना सुनिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्व नामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए awards.gov.in। सूचना समाप्त हुई।
6: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
7: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित तिवारी। यू आर लिसनिंग कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट 102.2 FM।

102.2 पर आप सुन रहे हैं FM रेनबो कानपुर और एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम म्यूजिक आर मेरे यानी आरजे महिमा के साथ। दोस्तों, हम अक्सर ये सोचते हैं कि खुशियाँ इन फ्यूचर कहीं ना कहीं हमारा इंतज़ार कर रही होंगी, लेकिन सच तो ये है कि खुशियाँ किसी मंजिल का नाम नहीं दोस्तों, बल्कि ज़िंदगी के सफ़र का ही हिस्सा है। इसलिए जब हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, टाइम पर खाना खाते हैं, पूरी नींद लेते हैं और डेली एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी बॉडी ही नहीं हमारा मन भी खुश रहता है। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़िए और बेहतर बनने की कोशिश शुरू कर दीजिए।

जी हाँ, जुनून होना चाहिए लाइफ में खुद को बेहतर करने का, क्योंकि लाइफ की गाइस सबसे खूबसूरत बात यही है कि इसमें हर नया दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है। कल कैसा था ये सोचने में वक्त बिताने से अच्छा है कि हम ये सोचें कि आज हम क्या कर रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम खुशियों को अपनाएं और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ें, तो हम लाइफ को डेफिनेटली बेहतर बना सकते हैं।

गाइज, एक्सरसाइज जहां हमारी बॉडी को फिट रखती है, वहीं हंसने, अपनों के साथ टाइम स्पेंड करने और अच्छा सा म्यूजिक सुनने से बॉडी में एंडोर्फिन, डोपामिन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं। एंडोर्फिन स्ट्रेस को कम करने के काम आता है, डोपामिन खुशी का एहसास कराता है और सेरोटोनिन हार्मोन मन को शांत रखने के काम आता है। वहीं अगर ऑक्सीटोसिन की बात करूं तो वो रिश्तों में अपनापन, विश्वास, अटैचमेंट को मजबूत करता है। तो दोस्तों, खुलकर मुस्कुराइए और अपनों के साथ टाइम बिताइए, क्योंकि यही छोटी छोटी आदतें हैं ना, केवल आपको हेल्दी ही नहीं रखती हैं बल्कि खुशियों से भी आपको भर देती हैं।

102.2 पर आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो कानपुर और एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम म्यूजिक ऑन, मेरी यानी आरजी महिमा के साथ। दोस्तों, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल किसी मेडिसिन से कम नहीं होती, क्योंकि हेल्थ पर किया गया इन्वेस्टमेंट आपको पूरी जिंदगी बेनिफिट ही देता है। इसलिए ये चार आदतें अपनाएं, जिसमें बैलेंस्ड डाइट, भरपूर मात्रा में पानी, डेली एक्सरसाइज और एक अच्छी नींद। ये आदतें हमें कई बीमारियों से दूर रख सकती हैं। साथ ही अगर खुश रहने के मंत्र की बात करूं, तो दिन की शुरुआत कंप्लेन से नहीं बल्कि थैंक यू से करिए।

विशाल ददलानी, के नीति मोहन और बप्पी लहरी की आवाजों में गुंडे मूवी का ट्रैक एंजॉय किया आपने। और दोस्तों, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं सिंगर, म्यूजिक कंपोजर और लिरिसिस्ट विशाल ददलानी का बर्थडे। 28 जून 1973 को जन्मे विशाल ददलानी विशाल शेखर जोड़ी के सदस्य हैं। ये गानों में अपने शानदार रॉक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। गाइज, सिंगर विशाल ददलानी ने अपने करियर की शुरुआत 1994 में पेंटाग्राम के इंडी रॉक बैंड के साथ की थी। इंडियन सिनेमा में इंडिपेंडेंट रॉक म्यूजिक को लाने और उसे मॉडर्न बॉलीवुड म्यूजिक के साथ जोड़ने में विशाल ददलानी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आज उनके बर्थडे पर पूरी रेनबो टीम की तरफ से उन्हें ढेर सारी विशेज़।

तो दोस्तों, आज म्यूजिक आर्ट प्रोग्राम के इस सफर पर हमने जाना कि अच्छी सेहत और खुशहाल जीवन किसी चमत्कार का परिणाम नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों का नतीजा है। सो ऑलवेज बी हैप्पी एंड हेल्दी। और अब मुझे यानी आरजे महिमा को दीजिए प्रोग्राम म्यूजिक आर से इजाजत। टेक केयर एंड टाटा बाय बाय। बट यू स्टे ट्यून्ड ऑन 102.2 FM रेनबो कानपुर।

0: 102.2 की म्यूजिकल फ्रिक्वेंसी से कनेक्ट हो चुके हैं आप। सुबह हो या शाम, संडे का दिन अपने साथ लेकर आता है सुकून, अपनों का साथ और कुछ पल सिर्फ अपने लिए। और ऐसे ही खुशनुमा शाम में आपका वेलकम आपके अपने फोन इन प्रोग्राम हेलो कानपुर में। पूरे वीक के बाद आज का दिन है दिल खोल कर बातें करने का, पुरानी यादों को ताज़ा करने का और अपने मन की बात साझा करने का। तो चाहे आप घर पर हैं, परिवार के साथ हैं, दोस्तों के साथ वक्त बिता रहे हैं या फिर कहीं सफ़र में हैं, हम हैं आपके साथ। तो बस उठाइए फ़ोन और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि आपकी एक कॉल इस संडे को बना सकती है और भी खास। मैं हूँ आज इस प्रोग्राम को लेकर आपके साथ पूर्णिमा। अगले एक घंटे हम करेंगे ढेर सारी बातें, सुनेंगे आपके पसंदीदा गीत और जानेंगे आपके दिल की बात। शुरू करते हैं बातों का ये खूबसूरत सिलसिला और देखते हैं कौन है हमारे पहले कॉलर। हेलो कानपुर।
1: हेलो कानपुर, नमस्ते पूर्णिमा दीदी, कैसी हो आप?
0: हमारी आवाज़ सुनकर के आपने हमारी आवाज़ पहचान ली, बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा लगा सुनकर। कौन बोल रहा है?
1: सुनते हैं तो आपको तो पहचान ही लेते हैं और आपको तो हमेशा ही सुनते हैं।
0: थैंक यू सो मच। कौन बोल रही हैं?
1: मैं जानी पहचानी रोशनी रावत, ग्राम पोस्ट बमना, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव और अभी चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रही हूं।
0: वाह रोशनी, आपकी बराबर मेल्स हमें मिलती हैं, आपकी कॉल्स भी हमें मिलती हैं। आप चंडीगढ़ में हैं और हमारे प्रोग्राम यानी कि हेलो कानपुर में आपने कॉल लगाई, तो सबसे पहले ना इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि अपने बिजी शेड्यूल से आपने ये वक्त निकाला हमारे लिए।
1: हाँ जी, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारा कॉल रिसीव किया।
0: और रोशनी क्या कर रही है इस समय?
1: अभी तो कुछ नहीं कर रहे थे, बस आपको कॉल लगा रहे थे और अपना साइबर कैफे, तो साइबर कैफे में थे बैठे।
0: अच्छा, यानी आपका ये अपना खुद का काम है?
1: जी।
0: तो आपका तो ज्यादा वक्त यहीं पर गुजरता होगा?
1: हाँ, जैसे कि अब सुबह से 8 से लेके 10 बजे तक रहते हैं ऑफिस में, बीच में लंच टाइम होता है तो घर चले जाते हैं।
0: तो घर आपके जो ये कैफे है यहाँ से दूर है या पास में है?
1: बिल्कुल पास में, सिर्फ 2 मिनट का फासला।
0: अच्छा अच्छा, तो रोशनी एक अच्छा बताइए, जब पूरा वीक हो जाता है, इस पूरे वीक में जब भागदौड़ के बाद आपका रिलैक्स करने का कोई तरीका तो होगा, जब आप खुद को रिलैक्स करती हैं तो कैसे क्या चीजें करती हैं?
1: मैं रोज रोज तो नहीं करती हूँ, लेकिन महीने में जैसे महीना या 2 महीने के बाद मेरी छुट्टी होती हूँ,
0: एक
1: हफ्ते की छुट्टी, इस प्रकार माइंड भी फ्रेश रहता है और अपना काम भी चलता रहता है। कानपुर सुनने के साथ साथ मतलब इंजॉयमेंट तो रहते ही रहता है।
0: अरे वाह, यानी आप हमेशा बराबर जो है रेनबो से कनेक्ट रहती हैं, बनी रहती हैं हमारे साथ। तो रोशनी आज कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगी?
1: मेरा ना गाना जो है एल्बम है,
0: बिल्कुल बताइए।
1: सोनू निगम जी की आवाज में है, मुझको दफना कर वो जब वापस जाएंगे सॉन्ग, डेडिकेट करना चाहती हूँ सबसे पहले आपको
0: जी।
1: और हमारी नीलू शर्मा दीदी है, गुणवत्ता दीदी है, बबीता राव है, यासिर भैया है, तानू भैया है और आशीष भैया तेलंगाना से सुनते हैं आपको।
0: बिल्कुल, तो रोशनी बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके। चलिए हम आपकी पसंद का ये गाना सुनवाते हैं।

0: हेलो कानपुर,
1: बे इंतहा मोहब्बत दिल में बसा रखी है, तेरी चाहत को सपनों में सजा रखी है। ये दुनिया बदले पर तुम कभी न बदलना, ये उम्मीद मैंने सिर्फ तुमसे लगा रखी है, ये उम्मीद मैंने सिर्फ तुमसे लगा रखी है। आदरणीय श्री पूर्णिमा मैडम को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार, कैसी हो आप?
0: अरे वाह, बहुत अच्छे हैं और इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी, इतनी जो अच्छी अच्छी आपने लाइंस इसमें शब्द लिखे हैं ना, वाकई नीलू सुनकर बहुत अच्छा लगा और हम भी समझ गए कि ये जो आवाज़ है वो नीलू की है, राइट?
1: यस मैम, मैं नीलू बोल रही हूँ आपकी। मैं बहुत दीवानी हूँ, आपकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपके एक भी कार्यक्रम मैं मिस नहीं करती, बहुत दिल से शिद्दत से सुनती हूँ, आपकी आवाज़ बहुत ही अच्छी लगती है मुझे।
0: थैंक यू सो मच नीलू। और क्या करती है, कैसी हो नीलू?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, घर पे हूँ और आपका जो है कार्यक्रम सुनते रहते हैं हम नवाओं। आपके चैनल से जितने भी कार्यक्रम आते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सभी एंकर्स की आवाज़ भी बहुत अच्छी लगती है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको हम सबकी आवाज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो नीलू वही बताइए कि अब जब ये गर्मी का मौसम है तो इसमें आपका मूड, अपने मूड को या अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए आप क्या करती हैं?
1: मैम सच बोलूं, मैं हमेशा ना FM रेनबो कानपुर को सुनती रहती हूँ, जब भी मैं आपकी आवाज को सुनती हूँ।

0: मेरा मूड, मेरा दिल, दिमाग सब अच्छा रहता है। जब मेरे फेवरेट एंकर आते हैं उनकी आवाज सुन के ही तो मैं एकदम खुश रहती हूँ, बहुत बिंदास रहती हूँ। और मेरे घर में सभी लोग खुश भी रहते हैं मेरी वजह से, क्योंकि मैं गाना गुनगुनाती रहती हूँ FM रेनबो। मेरी फैमिली, मेरे मोहल्ले के लोग, भाभियाँ, सभी लोग सुनते रहते हैं। मैं सभी का एंटरटेनमेंट कराती रहती हूँ।
1: अरे वाह भाई, इतनी मोहब्बत हमारे रेनबो कानपुर के साथ, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: तो सभी से यही कहना है, गर्मी बहुत हो रही है और धूप भी बहुत हो रही है, अगर जरूरी हो जब भी घर से आप निकले तो ना घर पे ही रह के इंजॉय करिए और 102.2 FM रेनबो विविध भारती सुनते रहिए।
1: अरे वाह क्या बात है। अच्छा नीलू, कानपुर में ऐसी कोई ऐसी चीज है जो आप जानते हो और जिस पे आपको बहुत ज्यादा गर्व होता हो?
0: जी मैम, मुझे ना सबसे ज्यादा गर्व ये होता है कि मेरे यहाँ से, मेरे गांव से कानपुर की ज्यादा दूरी नहीं है, 55 किलोमीटर की दूरी है। मुझे सबसे गर्व ये है कि मेरा जो आकाशवाणी स्टूडियो है वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, बहुत खास है। और बहुत सी ऐसी जगहें हैं जो मैं गई भी हूँ और मुझे अच्छा भी लगा है, जैसे क्या कहते हैं, पनकी मंदिर है और ये मोती झील है।
1: बिल्कुल,
0: बहुत सी ऐसी जगह है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अभी हाल ही में आई भी थी।
1: अच्छा लगा नीलू हमें आपसे भी बात करके, क्योंकि आपकी आवाज में, आपके अंदाज में बहुत ही जो चहक है ना, जो एक्साइटमेंट है हमारे इस रेनबो कानपुर से, आकाशवाणी से जो मोहब्बत है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नीलू आज कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: मैम थैंक यू सो मच। और मैं गाना सुनना चाहूंगी, मैं हमेशा तो मैं अपने लिए सुनती हूँ, बट आज आपके लिए सॉन्ग सुनना है मुझे। अंत मूवी है और गाने के बोले, जो बीच बजरिया तूने मेरी पकड़ी मैया, कसम से बोल दूंगी। मैं कुछ नाम लेना चाहूंगी अगर आपकी इजाजत हो तो।
1: भाई बिल्कुल इजाजत है, ले लीजिए।
0: मैं सबसे पहले तो आपको और मेरी प्रिय दोस्त है पूर्णिमा सिंह, वंदना शुक्ला, गुरप्रीत सिंह और रोशनी, बबीता और गुलत्सा दीदी संडीला से, और दीपिका दीदी, मनु, सक्सेना, आरती, फरहद और जितने भी आपके स्टाफ के एंकर हैं सभी को और उच्च अधिकारियों को, और मेरी एक बहुत प्यारी दीदी है कानपुर से मधु जी को, उनको भी डेडिकेट करती हूँ।
1: भाई इतनी मोहब्बत आपको हमारे हमारे इन लोगों से है, सबसे है, स्टाफ से है। थैंक यू सो मच नीलू, थैंक्स फॉर कॉलिंग।
0: थैंक यू। चलते चलते दो लाइन और अर्ज करना चाहूंगी आपके लिए।
1: बिल्कुल।
0: कि बेदखल आईना गवारा नहीं हमें, हम खुद को तुम्हारी नजरों में देखना चाहते हैं। चाहते तो हम भी थे तेरी तस्वीर कागज पर उतार देते, पर तेरी तस्वीर को तो हमने अपने दिल में उतारा है, हमने अपने दिल में उतारा है।
1: वाह भाई वाह, बहुत अच्छा लगा हमें नीलू आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।

0: हेलो कानपुर
1: जी। नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैम, विमल बात कर रहा हूँ, बक्सेना दातागंज बदायूं से।
0: विमल जी कैसे हैं आप?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, काफी देर से प्रयास कर रहा था तब कहीं जाकर हेलो कानपुर में मेरा कॉल लगा, मुझे बेहद अच्छा लग रहा है। मैम कैसे हो? मैम
0: बहुत अच्छी हूँ। विमल जी आप कैसे हो?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और गर्मी पड़ रही है तो इसी से थोड़ा सा अपना ध्यान रखते हुए आकाशवाणी कानपुर सुन रहे हैं, साथ ही अपना काम भी कर रहे हैं।
0: क्या काम कर रहे हैं इस वक्त आप?
1: इस समय तो मैं एक हीरो के प्लांट में काम करता हूँ
0: जी,
1: तो वहीं पर जॉब कर रहा हूँ
0: जी, और साथ साथ आप हमारे प्रोग्राम्स भी सुन रहे हैं।
1: बिल्कुल, न्यूज ऑन EIR के माध्यम से आपके प्रोग्राम सुनते हैं, आपकी पसंद है और फोन इन प्रोग्राम है, जितने भी प्रोग्राम समय मिलता है समय निकाल कर जरूर सुनने की कोशिश करता हूँ।
0: जी बहुत अच्छा लगता है जब आप सब हमसे इस तरह जुड़े होते हैं, और ये ऐप के जरिए, आप कहते हैं ना कि जब से ये ऐप हमारा शुरू हुआ है तब से हमारे जो लिसनर्स हैं वो कहीं पर भी कुछ भी काम कर रहे हों, कहीं पर भी हों, हमसे कनेक्ट रहते हैं।
1: जी मैम, मैम आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है।
0: थैंक यू सो मच विमल जी।
1: जी मैम, आपको दो लाइनें पेश कर सकता हूँ अगर आपकी इजाजत हो तो।
0: जी बिल्कुल कहिए।
1: लिखकर दर्द किताबों में छुपाने से क्या होगा, लिखकर दर्द किताबों में छुपाने से क्या होगा, जो समझ ना सका खामोशी उसे सुनाने से क्या होगा, वक्त ने मिटा दिए कई पुराने निशान, वक्त ने मिटा दिए कई पुराने निशान, बीते हुए लम्हों को याद करने से क्या होगा।
0: वाह वाह क्या बात है, ये जो खूबसूरत सी लाइंस हैं ये आपने खुद लिखी हैं।
1: जी बिल्कुल, और आकाशवाणी कानपुर से काफी देर से प्रयास कर रहा था कि कम से कम हमारी ये लाइनें तमाम श्रोताओं के बीच में पहुँच कर उन्हें सुनने को मिले।
0: जी बिल्कुल, आपकी ये जो खूबसूरत सी लाइंस है ना, ये हमारे जो सुनने वाले लिसनर्स हैं उन तक भी जरूर पहुँच रही हैं।
1: जी मैम।
0: तो विमल जी आपके घर परिवार में कौन कौन है?
1: जी मैम, मेरी वाइफ है सरता जी, मेरे बच्चे हैं शुभ, लव, गुनगुन, एक लड़की है, दो लड़के हैं मैम मेरे।
0: जी बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा छोटा सा परिवार है आपका। अच्छा अच्छा आपके पास विमल जी ऐसी कोई सीख है या अनुभव है जो आप दूसरों के साथ शेयर करना

0: चाहते हैं?
1: मैं तो यही सीख और अनुभव अपना यही शेयर करना चाहता हूँ कि जब भी किसी पर थोड़ा सा अगर मान लीजिएगा बुरा वक्त है, अगर उसमें आप मदद करने लायक हो या कोई उसकी हेल्प करने लायक हो तो उसकी हेल्प जरूर करना चाहिए, क्योंकि बेसहारे को अगर सहारा दिया जाता है ये सबसे बड़ी बात रहती है। मैम
0: बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारे सा अनुभव है और साथ ही दूसरों के लिए सीख भी है कि हम अगर किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो जरूर करना चाहिए।
1: और मैम मैंने एक बार ये भी देखा है कि अगर किसी के साथ हम अच्छा करते हैं तो जो मैंने मान लीजिएगा 10% अच्छा किया है तो उससे 20% हमें और अच्छा मिलेगा, क्योंकि अच्छा करने से अच्छा तुम्हारे तरफ जरूर होता है। मैम
0: बिल्कुल रिवर्स होकर वो चीजें जरूर हमारे पास आती हैं।
1: जी मैम। और मैम मैं तो ये कहूंगा कि जो लोग समझ ना सके उन्हें समझाना चाहिए, और जो स्वास्थ्य के प्रति जैसे कि हमारे मान लीजिए शराब है या बीड़ी गुटखा, इन सबको मतलब एक जागरूक करना चाहिए समाज में रहकर कि इन सब को छोड़ना चाहिए, क्योंकि इन सबसे बीमारियां फैलती हैं तो एक को अगर बीमारी होती तो कई अन्य भी उसका शिकार हो जाते हैं। मैम
0: जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि इन सारी जो चीजें हैं इनसे हमेशा दूर रहना चाहिए, हमारी सेहत के लिए भी नहीं अच्छी है ना ही हमारे आसपास रहने वाले लोगों के लिए।
1: और मैम मैं आपके इस रेडियो स्टेशन के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि मैं जब भी जैसे ई रिक्शा पे जाऊँ या कहीं भी यातायात में जा रहा हूँ उस समय अगर कोई बीड़ी तम्बाकू गुटखा खाता तो उसे तुरंत टोकता हूँ कि आप प्लीज यहाँ पर ये ऐसा ना करें, क्योंकि जो अन्य व्यक्ति बैठे हैं उस धुआं का वो भी शिकार हो रहे हैं। मैम
0: बिल्कुल बहुत अच्छी बात है ये कि आप एक जागरूक इंसान हैं और दूसरों के मदद के लिए हेल्प के लिए हमेशा आगे रहते हैं और ऐसी सोच रखते हैं। विमल जी बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके, आज कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगे?
1: जब आपकी खूबसूरत आवाज हमारे डिस्ट्रिक्ट बदायूं में गूंजेगी और लगातार श्रोताओं के बीच में एक नई उम्मीद नई जागरूक बातें लेकर हम सभी लोग इकट्ठे होते हैं इस रेडियो के माध्यम से, तो मूवी का नाम रहेगा पति पत्नी और तबाह, और इसमें बेहतरीन सा नगमा एक दूसरे से खफा होना नहीं मर के भी हमको जुदा होना नहीं, ये सॉन्ग सुनवा दीजिएगा मैम।
0: जी बिल्कुल बहुत ही प्यारा सा गाना है ये, हम आपको सुनवाते हैं विमल जी आपकी पसंद का ये गीत। नमस्ते।
1: थैंक यू।

0: हेलो कानपुर।
1: हेलो, नमस्ते जी।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं
1: जी? मैं यासिर अमित बात कर रहा हूँ, उम्मीदों का शहर मियांगंज जिला उन्नाव से।
0: अरे वाह, उम्मीदों का शहर मियांगंज उन्नाव से, क्या
1: जी,
0: बात
1: जी।
0: है। तो यासिर जी, आप भाई बड़े खुशनुमा अंदाज वाले व्यक्ति लग रहे हैं।
1: बिल्कुल सही बात है, खुश
0: जी
1: रहना बहुत जरूरी है।
0: बहुत जरूरी है। अगर जिंदगी में कहते हैं ना कि जिंदगी में कितने भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन ये जो खुश रहने का एक जो हमारे पास मंत्र होता है ना, ये हमेशा साथ रखना चाहिए।
1: बेशक सही
0: तो यासिर जी, क्या करते हैं आप?
1: जी, मैं एक इलेक्ट्रीशियन हूँ।
0: जी
1: यही, हाँ, इलेक्ट्रिक लाइन में हूँ।
0: बिल्कुल, यानी कि और इस समय तो गर्मी का मौसम है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो खराब हो जाती हैं।
1: बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो खराब हो जाती हैं, तो जाना पड़ता है, टाइम टाइम निकाल के जाना भी पड़ता है
0: जी, क्योंकि बहुत जरूरी है ये, और आप लोगों की मेहनत भी बहुत है कि धूप हो गर्मी हो, आपको जब अगर किसी ने बुलाया है अगर, तो आपको उनकी वो चीजें ठीक करने के लिए जाना है।
1: और जाना है तो जाना है।
0: बिल्कुल जाना है,
1: ये
0: कोई
1: चीज
0: काम है,
1: रहती है।
0: हमारा काम है, तो
1: और
0: काम के लिए जो समर्पण है वो हमेशा रहता है।
1: जी बिल्कुल
0: और बताइए आसिर जी, अपने बारे में, कौन कौन है आपके घर परिवार में?
1: जी, घर में मम्मी है, पापा हैं, भाई हैं, बहन है,
0: जी
1: छोटा सा परिवार है, 3 बहनें हैं, 2 भाई।
0: छोटा सा
1: जी
0: परिवार है और खुशहाल परिवार है।
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो यासिर जी, आप अच्छा, आपके साथ कोई आपके स्कूल के टाइम की या कॉलेज के दिनों की कोई यादगार घटना है?
1: नहीं, बस क्रिकेट का थोड़ा शौक है, तो जो कॉलेज के टाइम पे क्रिकेट खेला करते थे, तो एक बार मेरी चोट लग गई थी,
0: जी
1: तो मुझे अभी भी याद है कि मैं बाउंड्री पे खड़ा हुआ था, कैच पकड़ रहा था, कैच ले रहा था,
0: जी
1: तो मेरे हाथ से कैच कैरी नहीं हो पाया, वो छूट के मेरे सिर पे चोट लग गई थी। तो मुझे आज भी याद है कि हाँ, कॉलेज जाते थे, मैच खेला था, चोट लगी थी।
0: बिल्कुल। और तो
1: जी
0: आपका जब आप वो कॉलेज के दिन थे और आपका क्रिकेट में इतना आपको शौक है क्रिकेट खेलने का, तो आप ये वक्त मिलता है कि आप थोड़ा बहुत खेल
1: मिल
0: सकते
1: जाता
0: हैं?
1: है, अभी भी टूर्नामेंट खेला था बीच में, अभी 4 दिन में। जी जी जी, नहीं प्राप्त कर पाए क्योंकि फाइनल नहीं जीत पाए, कोई नहीं,
0: जी
1: लेकिन हार
0: जी
1: जीत तो लगी रहती है ना।
0: बिल्कुल, हार जीत तो लगी रहती है भाई, खेलना सबसे बड़ा जज्बा है कि हम पूरे पूरे जज्बे के साथ हम खेलते हैं अपने खेल
1: पूरे
0: को।
1: जज्बे के साथ, पूरे लगन के साथ
0: जी
1: खेलना पड़ता है ना, क्योंकि एक तो है ना, 11 खिलाड़ी होते हैं, तो सभी का उतना ही योगदान होता है।
0: पूरी टीम होती है जो इस खेल को और भी शानदार बनाती है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो आपकी लाइफ का कोई ऐसा सॉन्ग है, कोई ऐसा गाना है जो आपको बहुत पसंद है?
1: जी मेरी मेरी मेरी जो एकदम पसंद वाली चीज है ना, सॉन्ग जो बताया, तो मेरे एक दिल के करीब एक सॉन्ग है, खैर वो मैं सुनना नहीं चाहूंगा, मोहित चौहान ने गाया है
0: जी।
1: जी गाने के बोल हैं, बहुत अच्छा गाना है, मोहित चौहान जी ने गाया है, गाने के बोल हैं एक नजर, बहुत अच्छा प्यारा सॉन्ग है, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है, ऐसे करके सॉन्ग है। जी जी जी।
0: तो आज आप यासिर जी कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: जी मुझे

0: हीरो हिंदुस्तानी मूवीज सॉन्ग सुनना है ना, आंचल ना काजल ये सॉन्ग है कुछ इसी तरीके से।
1: जी बिल्कुल है।
0: दीदी आपकी आवाज बहुत प्यारी है, बहुत अच्छा बोलते हो आप।
1: थैंक यू यासिर जी,
0: बहुत अच्छा।
1: थैंक यू सो मच।
0: अक्सर मैं सुनता रहता हूँ ना इसलिए।
1: जी आप सुनते हैं और हमारे प्रोग्राम्स को पसंद करते हैं, हमारी आवाज़ को आप पसंद करते हैं, तो हमें उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया यासिर जी। हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।
0: जी मैं नाम लेना चाहता हूँ।
1: बिल्कुल ले लीजिए
0: जी। पहले तो हमारे सभी बोर से नीलू दीदी हो गई, बहुत अच्छी दीदी है, और चंडीगढ़ से एक है रोशनी दीदी
1: जी
0: और पूर्णिमा मैम।
1: अरे वाह, यानी हमको भी डेडिकेट किया है आपने खूबसूरत सा गाना। तो चलिए हम सब मिलकर सुनते हैं आपकी पसंद का ये खूबसूरत सा गाना। नमस्ते।
0: ओके, बाय।

0: हेलो कानपुर।
1: हाँ मैडम नमस्कार।
0: नमस्ते,
1: कैसी हैं मैडम?
0: बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
1: हम भी ठीक हैं।
0: कौन बोल रहा है?
1: सुमित बोल रहे हैं रनिया से मैडम।
0: सुमित जी बोल रहे हैं रनिया से?
1: जी मैडम।
0: तो सुमित क्या करते हैं आप?
1: मैडम ट्रेनिंग कर रहे हैं फील्ड गन में।
0: फील्ड गन में ट्रेनिंग कर रहे हैं?
1: जी मैडम।
0: जी जी, तो इस समय आपकी ट्रेनिंग चल रही है?
1: जी मैम।
0: तो ट्रेनिंग का आपका क्या समय रहता है?
1: सुबह 8 से 5।
0: कितने दिनों तक ट्रेनिंग चलती है?
1: हम लोग की साल भर की मैम।
0: अच्छा, साल भर की ट्रेनिंग है और उसके
1: आईटीआई की है मैडम, फिर उसके बाद यहाँ अप्लाई किया तो हो गया ट्रेनिंग में।
0: जी बिल्कुल, और इसके बाद आपकी फिर ज्वाइनिंग?
1: अब देखो कहाँ मिलती है, ऑल ओवर इंडिया में ज्वाइनिंग।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ऑल इंडिया लेवल जॉब है तो जहाँ पर भी मिलेगी, लेकिन ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है।
1: हाँ
0: जी, तो इस ट्रेनिंग के दौरान आप रेडियो से भी बराबर कनेक्ट रहते हैं?
1: मोबाइल पर सुन लेते हैं,
0: मोबाइल ऐप पर हमारे प्रोग्राम्स?
1: हाँ हाँ
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको अच्छे लगते हैं हमारे प्रोग्राम्स?
1: आपके प्रोग्राम कानपुर टॉप है।
0: कानपुर टॉप है, तो आप रेनबो कानपुर भी सुनते हैं?
1: हाँ रेनबो भी सुनते हैं, वो भी अच्छा चैनल है आपका।
0: बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स उसमें भी आते हैं। बिल्कुल, तो सबसे अच्छी बात है भाई कि आप कहीं पर भी होते हैं, आप सभी लिसनर्स हमसे इतना जुड़ाव है कि जहाँ कहीं भी हो, किसी भी काम में हो, हमारे साथ बराबर जुड़े रहते हैं।
1: पर मैडम आप यहाँ की साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है।
0: तो सुमित जी आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: मैडम दिलवाले का है कुमार सानू और साथ में अजय देवगन है
0: जी,
1: रवीना टंडन है। जीता था जिसके लिए, मरता था जिसके लिए।
0: एक ऐसी वो लड़की थी जिसे मैं प्यार करता
1: था।

0: हेलो कानपुर
1: जी मैडम, सुमन सैनी बोल रहे हैं मैडम।
0: सुमन सैनी बोल रही, कहाँ से बोल रही है सुमन?
1: हम चुन्नीगंज से बोल रहे हैं मैडम।
0: चुन्नीगंज
1: बहुत बार आपको कॉल लगाया लेकिन कॉल लगी नहीं है, आज हमारी कॉल लगी हुई है।
0: देखिए आपकी कॉल लग गई है ना?
1: जी जी मैडम।
0: तो कैसा लग रहा है आज आपकी कॉल लग गई है?
1: अरे आज हमको आप पूछिए ना, आज हम वेरी हैप्पी।
0: यू आर वेरी हैप्पी?
1: जी जी, क्योंकि मैडम हमने बहुत बार ट्राई करा
0: जी,
1: आज जाके मेरी कॉल लगी है।
0: जी बिल्कुल, जब हम कोई कोशिशें करते हैं ना बड़ी शिद्दत के साथ तो वो काम जरूर हो जाता है।
1: जी जी।
0: तो सुमन जी आज अभी इस समय क्या कर रही हैं?
1: अभी इस समय मैडम हम तो एडवोकेट।
0: अच्छा एडवोकेट है,
1: ये कानपुर में बड़े चौराहे जो।
0: जी जी
1: जी, यहीं पे है।
0: आज हमारी आपसे पहली बार बात हो रही है।
1: जी जी जी
0: जी, तो इस समय आप लग रहा कोर्ट में ही हैं।
1: मैडम हम कोर्ट में हैं लेकिन हम कोशिश करते रहते हैं, लेकिन आज जाके मेरी कॉल लगी, हमने सोचा कि एक बार ट्राई करें तो, लेकिन लग गई।
0: वाह, लग गई कॉल, ठीक है। तो वही बल्ले बल्ले, अब कॉल लग जाती है ना और बात हो जाती है, क्योंकि आपको
1: हाँ,
0: इतनी खुशी हो रही है ना कि वो भाई क्या ही कहने। तो सुमन जी ये बताइए कि और इसके अलावा आपका शौक जो है रेडियो से जुड़ा हुआ है, रेडियो सुनना
1: जी,
0: आपको अच्छा लगता है?
1: जी जी।
0: तो रेडियो पर कौन कौन से प्रोग्राम्स आपको अच्छे लगते हैं हमारे?
1: मैडम हमको तो पुराने गाने बहुत पसंद है।
0: पुराने गाने आपको अच्छे लगते हैं
1: जी।
0: तो आप जो है कौन सा गाना आज सुनना चाहेंगे? अच्छा उससे पहले सुमन जी एक छोटी सी बात बताइए कि आपका तो नो डाउट आप तभी फ्री हो पाती होंगी क्योंकि सारे दिन जो हफ्ते हैं पूरा हफ्ता आपका बिजी जाता है, तो आप खुद को
1: संडे को मैडम मुझको टाइम मिलता है और सेकेंड सैटरडे को और फोर्थ सैटरडे को हमारे यहाँ छुट्टी रहती है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, तो आप खुद को रिलैक्स कैसे करती हैं, क्या ऐसा काम करती हैं जो आपको अच्छा लगता है?
1: मैडम देखिए हमको तो वैसे तो हम कोई भी काम होता है एनीवे कर लेते हैं
0: जी,
1: लेकिन मुझे गाना सुनना बहुत पसंद है, मैं पुराने गाना ज्यादा सुनना पसंद करती हूँ।
0: यानी आप...
1: मैंने ट्राई इतनी बार किया लेकिन मेरी कॉल नहीं लग रही थी।
0: तो भी आज आपकी कॉल लग गई है और पुराने गानों को सुन करके आप अपना मूड जो है वो फ्रेश करती है ना?
1: जी जी, तो फिर मैडम यही गाना सुनवा दीजिए, दिल खो गया न जाने कहाँ से, मुझे नींद ना आए मुझे चैन ना आए।
0: जी बिल्कुल, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का दिल मूवी का ये सॉन्ग। नमस्ते
1: मैडम, और सुनने वाले के नाम तो सुन लीजिए।
0: हाँ बिल्कुल बोलिए।
1: शंगू सैनी, रचना सैनी, सुमन सैनी और श्रद्धा सैनी
0: जी
1: और मोना सैनी।
0: ठीक है, हम आप सब की पसंद पर आपको सुनवाते हैं
1: दिल मूवी का
0: ये गाना। नमस्ते
1: नमस्ते।

0: हेलो कानपुर।
1: हेलो कानपुर,
0: नमस्ते।
1: मैं पूजा बोल रही। नमस्ते दीदी,
0: कैसी है पूजा?
1: मैं बढ़िया हूँ, और आप कैसी हैं दीदी?
0: बहुत अच्छी हूँ भाई। आप लोगों की आवाज हम जब सुनते हैं ना, कि इतनी खुश होकर के आप हमारा हालचाल पूछते हैं, तो हम और भी अच्छे हो जाते हैं।
1: अच्छा, और मुझे इंतजार रहता आपकी आवाज की दीदी, आप बहुत अच्छा बोलती हूँ।
0: थैंक यू पूजा। और क्या करती है पूजा?
1: मैं अपना बुटीक चलाती हूँ दीदी,
0: अरे
1: है ना?
0: वाह।
1: पूजा
0: यानी
1: फैब्रिक के नाम से, है
0: पूजा
1: ना?
0: फैब्रिक के नाम से है, और ये आपका खुद का काम है ना?
1: हाँ जी,
0: यानी
1: मेरा खुद का काम है।
0: आपका
1: हाँ
0: हुनर, यानी कि जो गारमेंट्स हैं उसको उसको देखना कि आज के टाइम की चॉइस क्या है, उनकी पसंद के हिसाब से कपड़ों को देना है ना?
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन होते हैं, और बहुत दूर दूर से मेरे पास सब लोग आते हैं लेने, और मुझे बहुत खुशी होती है उन्हें देने में, है ना? आप
0: हाँ
1: भी कभी
0: पूजा,
1: आइएगा। बिल्कुल।
0: बिल्कुल आऊंगी। तो पूजा, ये इस समय जो इस समय कौन कौन से ब्रांड के आप रखते हो कपड़े जो लोगों को अच्छे लगते हैं?
1: मेरे पास बहुत सारे ब्रांड होते हैं, जुनैपर होते हैं, कालमी, अनोक, सांगरिया, हाँ ये सब मुझे मिलते हैं।
0: भाई
1: हाँ,
0: सांगरिया
1: और रिजनेबल दाम में सारे प्राइस रहते हैं
0: ये तो
1: मेरे।
0: और भी अच्छी बात है कि
1: हाँ जी,
0: और
1: हाँ जी, हाँ
0: जो
1: जी, बहुत
0: ट्रेंडी भी
1: अच्छे
0: लगती
1: होते
0: हैं और
1: हैं।
0: फैशनेबल भी होती हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ
0: तो पूजा, आप अपने तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपना काम भी करती हैं और रेडियो भी सुनती हैं।
1: हाँ रेडियो भी सुनती हूँ, प्लस घर के भी सारे काम करती हूँ।
0: ये जो है प्लस
1: हाँ
0: पॉइंट होता है, फायदा है कि
1: हाँ
0: हमारे जब खुद का काम होता है ना, तो हमारे सारे काम हमारे हिसाब से हो जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो
1: हाँ आप
0: पूजा,
1: आइएगा जरूर, मैं मेरे वहाँ शॉप पे,
0: जरूर आऊंगी पूजा, बिल्कुल
1: ठीक
0: आऊंगी। और पूजा, आपको आज कौन सा सॉन्ग सुनना है, या किसको आप डेडिकेट करना चाहती हैं ये गाना?
1: है? मैं अपने सारे कस्टमर को डेडिकेट करना चाहती हूँ,
0: बिल्कुल
1: है ना? और
0: बताइए।
1: मैं सॉन्ग आप

तक था हेलो कानपुर का ये सफर आप सभी लिसनर्स के साथ। उम्मीद है आज की ये मुलाकात आपके दिल को छू गई होगी और आने वाले नए वीक के लिए आपको पॉजिटिविटी भी दे गई होगी। अब वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन ये दूरी बस कुछ दिनों की है। फिर होगी मुलाकात, फिर सजेगी बातें और फिर गूंजेंगी आपकी आवाजें। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए एफएम रेनबो कानपुर के साथ। इस प्रोग्राम में तकनीकी सहयोग था DN ओझा और अन्नपूर्णा का। प्रस्तुत करता थे राहुल पाल।

समाचार सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के बीच आज राजधानी विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान हुआ। सेशल्स के प्रधानमंत्री मोदी को सतत विकास और हरित विकास के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए देश के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान गॉर्जन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान उनके साथ साथ भारत के 140 करोड़ नागरिकों का सम्मान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस जनपद में आज 548 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, स्मार्टफोन, आवास की चाबी एवं प्रमाण पत्र भी वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक वर्ग के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी को विकास, सुरक्षा और योजनाओं का लाभ मिल रहा है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने आज लखनऊ में रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कार्यक्रम को संबोधित किया। यह कार्यक्रम श्री सत्य साईं बाबा के शताब्दी जन्मोत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। श्री पाठक ने मशाल जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए वाराणसी से सेवादारों और श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज चंदनबाड़ी जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हुआ। श्री काशी विश्वनाथ सेवा समिति के तत्वावधान में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी काशी से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए रवाना हो रहे हैं। समिति के अनुसार श्रद्धालु पहले अमृतसर पहुंचेंगे, जहां से जम्मू होते हुए पहलगाम तक का सफर तय करेंगे। इसके बाद पवित्र गुफा तक की यात्रा पैदल पूरी की जाएगी। इस बुलेटिन में इतना ही। हमारा अगला समाचार बुलेटिन 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: अब सुनते हैं उत्तर प्रदेश में मानसून के पिछड़ने के कारणों और बारिश के पूर्वानुमान पर लखनऊ मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह से खास बातचीत, जिनसे वार्ता की है आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा ने।
1: कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे उत्तर प्रदेश में मानसून के पिछड़ने के कारणों और बारिश के पूर्वानुमान पर लखनऊ मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा।
2: समेत पूरा भारत इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। लोगों को बेसब्री से मॉनसून का इंतजार है, लेकिन मॉनसून अपने अनुमानित आगमन से थोड़ा पीछे चल रहा है। क्या है मॉनसून के पिछड़ने के कारण और कब से प्रदेश में शुरू होगा बारिश का दौर, इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह।
3: अतुल जी, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: जी नमस्कार।
3: सर, जिस तरह से उत्तर प्रदेश और पूरा उत्तर भारत इस वक्त तेज गर्मी से जूझ रहा है, बहुत ही ज्यादा तापमान और लू देखने को मिल रही है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, ऐसे में सभी को इंतजार था, ये उम्मीद थी कि मॉनसून तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है, कहीं कोई ज्यादा बारिश या

0: तापमान में कोई कमी। तो ये जो मॉनसून है अभी इसकी क्या स्थिति है और क्या लगता है आपको कि कितने दिनों में ये उत्तर प्रदेश में आ सकता है?
1: देखिए वर्तमान स्थिति जो है इस समय उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हालांकि एक पश्चिमी विक्षोभ है उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर चक्रवाती प्रसंचरण के रूप में, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई भी सक्रिय मौसमी तंत्र नहीं है। यदि छिटपुट बारिश कुछ एक जगहों पर हो रही है परंतु कोई सक्रिय मौसमी तंत्र न होने के कारण पछुआ हवाएं आ रही है जिसके कारण की पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर हीट वेव या लू की स्थितियां बनी हुई हैं। और जहां तक मानसून की बात है, जो वर्षा है वो 28 जून से पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा का एक नया दौर आरंभ होगा और 29 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्कैटर्ड यानी कि कुछ जगहों पर जो है वो मध्यम वर्षा होने की संभावना है। उसी समय जो है मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल होंगी। तो अभी मोटे तौर पर अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं कि जून के आखिरी दिनों में जो है वो प्रदेश में मानसून आने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं, वो 28 जून के बाद किसी भी समय प्रवेश कर सकता है।
0: सर मानसून में देरी की वजह क्या मानते हैं आप लोग? जो आप लोगों ने अभी तक रीड करा है जिला से, आप कह रहे हैं कि स्थितियां नहीं बन पा रही थी, इसका कारण क्या है?
1: देखिए मानसून की जो परिस्थिति है वो कई सारे कारकों पर निर्भर करती है। कुछ क्षेत्रीय कारक होते परमानेंट फीचर थे, वो सारे के सारे जो हैं इस समय अनुकूल नहीं थे, चाहे वो जो भी हो मैस्करेन हाई दक्षिणी हिंद महासागर में होता है वो फेवरेबल पोजीशन में नहीं था। इसके अतिरिक्त हीट लोक जो पाकिस्तान के जैकोबाबाद के आसपास बनता है उसका भी पोटेंशियल कम था, मतलब वो कमजोर था जिसके कारण की जो मौसमी द्रोणी है वो भी बहुत ही कमजोर थी। इसके अतिरिक्त वेस्ट कोस्ट पर एक ऑफशोर ट्रफ बनती है और वहाँ पे भी जो है द्राब प्रवणता न होने के कारण वो भी अभी तक प्रदर्शित नहीं हो रही थी। तिब्बतन साइक्लोन या तिब्बतियन चक्रवात वो भी अपनी सामान्य स्थिति से खिसका हुआ था। तो ये सारी ही परिस्थितियां थी जिसके कारण की जो मानसून का फ्लो था वो 10 दिनों के आसपास तक स्टेग्नेंट रहा। लेकिन अभी फिर से एक सिस्टम बना बंगाल की खाड़ी में और उसकी वजह से ये पिछले 48 घंटों के दौरान दोनों ही शाखाएं आगे बढ़ी, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की। और आने वाले दिनों में एक और सिस्टम बनने की संभावना है जिसके कारण की इसके फिर से आगे बढ़ने और उत्तर प्रदेश में पहुंचने की संभावना बन रही है।
0: अतुल जी, एक ये इस तरह की भी खबर है कि इस बार कम वर्षा होगी हर बार की तुलना में और इस तरह के संकेत लगातार प्राप्त हो रहे हैं और इसको लेकर सरकार तैयारी भी कर रही है कि कहीं सूखा पड़ने की भी आशंका जताई जा रही है। तो क्या इस तरह की कोई बात है कि क्या इस बार नॉर्मल से कम बारिश होगी?
1: जी बिल्कुल, देखिए जो दीर्घावधि पूर्वानुमान है मानसून के लिए दो चरण में जारी किए जाते हैं। प्रथम चरण में जो दीर्घावधि पूर्वानुमान जारी किया गया था उसमें ये बताया गया था कि इस साल कुल समेकित वर्षा अखिल भारतीय समेकित वर्षा सामान्य की तुलना में 92% होने की संभावना है और उसको फिर मई के आखिर में 29 मई को फिर से अपडेट किया गया और ये आंकड़ा जो है 92 से 90% पर आ गया। लेकिन ये अखिल भारतीय वर्षा है, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी बात करें तो ज्यादातर मॉडल्स जो है वो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग सभी स्थानों पर या ज्यादातर स्थानों पर मानसूनी वर्षा जो जून से सितंबर के दौरान होती है वो सामान्य की तुलना में कम रहेगी और इसके लिए पहले ही संबंधित विभागों और स्टेक होल्डर्स को सूचित किया जा चुका है जिससे कि वो अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग और स्ट्रेटजी इस हिसाब से निर्धारित कर सके और उसके अनुसार योजनाओं पर अमल किया जा सके। तो कुल मिला के इस साल जो है वो बारिश सामान्य की तुलना में कम की संभावना है, हर साल की तुलना में कम ऐसा हम नहीं कह सकते, पहले भी सामान्य से कम बारिश हुई है कई बार तो, लेकिन ये है कि जो दीर्घावधि औसत है उसकी तुलना में कम होने की संभावना।
0: सर एलिनो का भी क्या इसमें कोई योगदान है?
1: एलिनो का भी योगदान है, एलिनो एक्चुअली एक रिमोट फोर्सिंग है और एक मेजर ड्राइवर है इंडियन समर मानसून का। और एलिनो का जब भी वार्म फेज होता है, वार्म फेज का मतलब जब भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में एलिनो 3.4 रीजन में जो है वो समुद्री सतह का तापमान जो है वो 0.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक सामान्य की तुलना में बढ़ जाता है तो उस स्थिति को हम वार्म फेज इन्सो या एलिनो बोलते हैं। और इसका सीधा तौर पर प्रभाव प्रशांत महासागर का नहीं होता है लेकिन ये दो तरीके से प्रभावित करता है। पहला, इसका जो एलिनो सदर्न ऑसिलेशन का जो एटमॉस्फेरिक ब्रांच होती है सदर्न ऑसिलेशन, उसके थ्रू भारत के ऊपर एक एनोमलस एंटीसाइक्लोन बनता है और

0: इसके कारण कि कन्वेक्शन यानी कि जो ये कन्वेक्टिव एक्टिविटीज होती हैं वो उसको सप्रेस करता है और यहाँ पे गर्म हवाओं का दोगमन कराता है, मौसम जो है वो बिगड़ने से रोकता है। और दूसरी चीज जो होती है वो ये जो है मानसून फ्लो को कमजोर करता है, तो उस मानसूनी हवाओं के कमजोर पड़ने से भी जो वर्षा की तीव्रता और उसका कुल परिमाण है उस पर प्रतिकूल तौर पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन एलनीनो सिर्फ अकेला एक ड्राइवर नहीं है, कई और फैक्टर होते हैं एलनीनो के साथ जो कि इसको प्रभावित करते हैं। ये भी एक कारण है कि कारण की सामान्य से कम वर्षा होने की सर्वाधिक प्रायिकता व्यक्त की जा रही है। इसके अतिरिक्त कुछ एक क्षेत्रीय कारक भी होते हैं,
1: जिस तरह आप कह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन है उसके कारण ये सारी चीजें एक्सिलरेट हो गई है, तो क्या आने वाले दिनों में कहा जा सकता है कि एक न्यू नॉर्मल हो गया है कि जो सीजन है हम उसमें एक्सट्रीम वर्षा देखते हैं या एक्सट्रीम गर्मी, एक्सट्रीम सर्दी, या फिर सर्दियों का मौसम बीत जाता है सर्दी नहीं पड़ती, या एक न्यू नॉर्मल के तौर पर आगे बना रहे?
0: बिल्कुल, देखिए इस समय की जो वर्तमान स्थिति है 21वीं सदी में अगर हम देखें तो ज्यादातर समय ये स्थितियां रही हैं कि जब भी तापमान जो है चाहे वो वर्षा हो चाहे तापमान हो जो वेदर एक्सट्रीम्स हैं वो बढ़ गई हैं और जो लाइट टू मॉडरेट एक्टिविटीज होती थी वो घट गई हैं। तो सीधे तौर पर जलवायु परिवर्तन की वजह से जो है वो क्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स जो है उसमें अप्रत्याशित तौर पर बढ़ोतरी देखी गई है और ये एक न्यू नॉर्मल है।
1: अतुल जी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: विशेष कार्यक्रम में आज आपने सुना उत्तर प्रदेश में मानसून के पिछड़ने के कारणों और बारिश के पूर्वानुमान पर लखनऊ मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा।

0: 93.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: इंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन रहेगा संग संग,
2: मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए
3: जब छाएगा 100.7 FM रेनबो का सतरंगी रंग।

0: सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
1: नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई।
2: Stay tuned. 100.7.
3: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
4: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
3: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ।
6: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर फिर रात को फुर्सत के वो पल
7: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा
6: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
8: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow.
9: धड़कन लखनऊ की।
10: और हमेशा की तरह मैं कहता हूँ कि जब भी किसी से कोई वायदा करो तो उस वायदे को पूरा जरूर करो। यकीन जानिए जब वादे टूटते हैं ना तो उसकी तकलीफ का अंदाजा या उसकी तकलीफ का एहसास उस शख्स से पूछे जिससे वादा किया गया। कुछ देर पहले मैंने आपसे वादा किया था होती है मुलाकात काउंटडाउन शो में यानी टॉप 10 में। और आज है इतवार का दिन यानी रविवार का दिन और रविवार के दिन काउंटडाउन कौन आगे है कौन पीछे है किस गीत ने बाजी मारी है सारी बातें करते हैं। ये नए गानों की बात कर रहा हूं मैं। वैसे तो टॉप 10 आप रोज सुनते हैं लेकिन आज का टॉप 10 होता है कुछ खास। तो चलिए गाना नंबर 10 कौन सा है इस रविवार रहिए मेरे यानी जमशेद के साथ।

पर्दे पर सलमान खान और रश्मिका, सिकंदर का ये गीत आज बज रहा है नंबर 10 पर, सिकंदर नाचे।

और गाना नंबर 10 के बाद बारी आती है गाना नंबर 9 की। तो गाना नंबर 9 कौन बन रहा है? गाना नंबर 9 है कॉकटेल 2 का ये गीत।

0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुकून से भरा दोपहर, शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर जगा, फिर रात को फुर्सत के वो पल,
1: ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा ये चंचल हवा,
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow.
3: धड़कन लखनऊ की।
4: आज 5:26 में है, कुछ सेकंड्स में है जमशेद आपके साथ काउंटडाउन शो टॉप 10 में। और एक गाना भी आपने सुना, कम ऑन बेबी फ्रॉम द मूवी बंदर, और एक बार और दूसरा गीत जो आ रहा है उसी फिल्म से है, यानी पायदान नंबर कौन सा है, बिल्कुल पायदान नंबर 7 पर ये गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर।

जब बात होती है पायदान नंबर 6 की, तो पायदान नंबर 6 पर वो गीत जो पिछले हफ्ते था पायदान नंबर 5 पर, एक पायदान की तरक्की करता हुआ फ्रॉम द मूवी धुरंधर का ये गीत।

0: बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: स्पाइन पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
2: दिल दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है।
3: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।

0: ओनली 100.7 FM रेनबो।
1: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे।
2: Stay tuned 100.7 FM रेनबो।
3: धड़कन लखनऊ की।
4: पांच बजकर 34 मिनट 7 सेकंड्स में हूं जमशेद आपके साथ इन प्रोग्राम FM टॉप 10 जहां पर है 10 खूबसूरत से गीत।

काउंट डाउन शो, कौन सा गीत आगे रहा, कौन सा गीत हुआ पीछे, ये सारी बातें इस काउंट डाउन शो में। और अगला गीत जो आपके सामने बजने वाला है, वो गीत कई हफ्तों तक लगातार रहा नंबर एक की पोजीशन पर, लेकिन धीरे धीरे खिसकता हुआ आ चुका है नंबर पांच की पोजीशन पर। धुरंधर का वो गीत आज भी मैं कहूंगा सर चढ़कर बोल रहा है। मधुबंती बागची की आवाज। और अगर हम गीत की बात करेंगे तो वो गीत है ये।

और चलते चलते हम आ गए पायदा नंबर चार की तरफ। और पायदा नंबर चार पर जो गीत बज रहा है वो है फ्रॉम द मूवी 80 का गीत मन हवा। ये आया आपके रेडियो सेट पर मोहित चौहान की खूबसूरत सी आवाज के साथ ये गीत।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: दिल दस्तरखान बिछाया दावत इश्क है।
3: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
4: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का।
3: ओनली 100.7 FM रेनबो।
5: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे।
6: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow.
7: धड़कन लखनऊ की।
8: और अब बारी आती है पायदा नंबर तीन की। तो पायदा नंबर तीन पर बज रहा है एक दिन मूवी का टाइटल ट्रैक। अरिजीत सिंह की खूबसूरत सी आवाज और इरशाद कामिल के हैं बोल। गाना ये रहा आपके रेडियो सेट पर।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ।
5: 5:52 साथ में कुछ सेकंड्स में हूँ जमशेद, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है FM टॉप 10 और टॉप 10 में पायदान नंबर 2 पर ये गीत आपके रेडियो सेट पर।
6: सर तुम्हारे बारे में सोचता हूँ।
5: एक फ्रॉम द मूवी 21 सितारे।
6: लिखने की हिम्मत होगी, कुछ लिखना चाहता हूँ।

और अब बारी आ गई है कौन बनेगा नंबर वन गीत। तो चलिए मैं बताता हूँ धुरंधर का वो गीत जो इस बार बना है नंबर वन, यानी पिछले हफ्ते था नंबर दो पर और इस बार एक पायदान खिसक कर आ गया है नंबर वन की पोजीशन पर। तो ये रहा फ्रॉम द मूवी धुरंधर का गीत गहरा हुआ। और टॉप टेन से मैं लूंगा आपसे इजाजत, कुछ देर के बाद प्रोग्राम शाम-ए-वद में फिर होगी आपसे मुलाकात। तो आपसे मैं यही कहूंगा कि आप बने रहिए 100.7 एफएम रेनबो के साथ। शाम-ए-वद में क्या है खास, इसके लिए आपको बने रहना है हमारे साथ, यानी 100.7 एफएम रेनबो के साथ, जमशेद के साथ।

ईबीजी राम जी विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण योजना 1 जुलाई 2026 से पूरे देश सहित उत्तर प्रदेश में भी लागू हो जाएगी। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी को मजबूत करना, आजीविका संवर्धन एवं विकसित ग्राम पंचायतों का निर्माण और पारदर्शी डिजिटल प्रणाली बनाना है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश में रोजगार और आजीविका को यह योजना एक नई गति प्रदान करेगी। वीबीजी रामजी योजना का 2 जुलाई को राज्यव्यापी जन सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अयोध्या दौरे के दूसरे दिन आज डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में आयोजित मातृशक्ति कॉन्क्लेव में सहभागिता की। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा 200 बालिकाओं को HPV वैक्सीन तथा 10 बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक भी पिलाई गई। अपने संबोधन में राज्यपाल ने माताओं से अपील करते हुए कहा कि वे अपनी बेटियों को HPV वैक्सीन अवश्य लगवाएं तथा 30 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को समय समय पर स्वास्थ्य जांच एवं कैंसर स्क्रीनिंग करानी चाहिए। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि आज के प्रसारण में देशभर में हो रहे नवाचारों और जन भागीदारी के प्रयासों को प्रमुखता से रखा गया। वैश्विक स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों से जुड़े संकट के बीच प्रधानमंत्री ने लोगों से कारपूलिंग अपनाने की अपील की। बृजेश पाठक ने प्रधानमंत्री को देश को एक सूत्र में जोड़ने के लिए धन्यवाद दिया। प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह के निर्देश पर परिवहन विभाग 1 जुलाई से 31 जुलाई तक स्कूली बसों के फिटनेस संबंधी जांच के लिए अभियान चलाएगा। अभियान के तहत बसों की तकनीकी खराबी, फिटनेस और सुरक्षा मानकों की जांच की जाएगी, साथ ही चालकों का भी भौतिक सत्यापन जांच होगी। देश के विद्यालयों को नए सत्र में खोलने के साथ बेसिक शिक्षा विभाग ने हीट वेव के बढ़ते खतरे के बीच बच्चों की सुरक्षा को लेकर शिक्षकों के लिए विशेष दिग्दर्शिका जारी की है। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा के निर्देश पर तैयार दिग्दर्शिका में प्रत्येक विद्यालय में हीट एक्शन प्लान बनाया जाएगा। सुरक्षित पेयजल, प्राथमिक उपचार, छायादार परिसर, स्वास्थ्य जागरूकता और आपातकालीन तैयारियों पर विशेष जोर दिया गया है। वहीं ऑरेंज और रेड हीट अलर्ट के दौरान बाहरी गतिविधियां स्थगित करने के निर्देश देने के साथ ही अभिभावकों की भी जिम्मेदारी तय की गई है। इस बुलेटिन में इतना ही। हमारा अगला समाचार बुलेटिन 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: 107 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: इंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन रहेगा संग संग,
2: मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए
3: जब छाएगा 100.7 FM रेनबो का सतरंगी रंग।

0: सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
1: नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई।
2: Stay tuned 100.7
3: Stay tuned 100.7 FM Rainbow
4: धड़कन लखनऊ की।
5: सुबह की खूबसूरत शुरुआत

0: झलकों से भरा दोपहर, शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर। फिर रात को फुर्सत के वो पल,
1: ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: शरीर में हॉर्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
3: थायराइड इम्बैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
4: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
5: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जन जारी।
6: आप सुन रहे हैं 100

नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब। मैं हूं जमशेद, आपके साथ एक बार फिर वादे के मुताबिक, और प्रोग्राम शाम अवल। मुझे उम्मीद है, बल्कि उम्मीद क्या, पूरा यकीन है कि आपने आज का दिन यानी रविवार का दिन बड़ी ही खूबसूरती के साथ गुजारा होगा और आने वाले पल भी खुशियों से भरे होंगे। इसी कामना के साथ प्रोग्राम शाम वद की शुरुआत इस खूबसूरत से गीत के साथ। बने रहिए जमशेद के साथ।

Dara dum dara. छह बजकर 12 मिनट 7 में कुछ सेकंड प्रोग्राम चल रहा है शामे वद, जिसे लेकर आज मैं यानी जमशेद हूँ आपके साथ। और शामे वद में मैं बात कर लेता हूँ आज ही के दिन जन्मे यानी 28 जून साल 1976 को चिलाम ठेरी गढ़वाल में जन्मे थे जसपाल राणा, जो भारत के प्रसिद्ध निशानेबाज हैं। साल 1995 के कॉमनवेल्थ शूटिंग चैंपियनशिप में 8 स्वर्ण जीतकर जसपाल राणा ने नया रिकॉर्ड बनाया था। भारत के दो अन्य निशानेबाज राज्यवर्धन सिंह राठौर और अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में भारतीय निशानेबाजी का इतिहास रचा था, लेकिन अगर ये कहा जाए कि जसपाल राणा ने इस भरोसे की नींव रखी थी तो ये गलत नहीं होगा। उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने एशियाई, विश्व, कॉमनवेल्थ, राष्ट्रमंडल और राष्ट्रीय स्तर पर अनेक रिकॉर्ड कायम किए हैं। और अब इस गीत की बारी आपके रेडियो सेट पर, ये रहा

0: और इस गीत को जारी रखेंगे इस कमर्शियल ब्रेक के साथ।
1: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
2: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
1: स्पाइन पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
2: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।
3: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
4: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ।

6:19 हो चुके हैं साथ में कुछ सेकंड्स और वक्त बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ, और अब से कुछ देर के बाद हम आपको क्रिकेट वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है उसका आंखों देखा हाल सुनाएंगे। लेकिन फिलहाल ट्रैफिक की हम अपडेट दे दें आपको। कुछ देर पहले हमारी विकास जी से बात हुई, कुछ दिक्कतें थी जो लाइन पर वो नहीं आ पाए, लेकिन हाँ उन्होंने ये बताया कि सारी जगहों पर ट्रैफिक जो है सामान्य तरीके से चल रहा है। लेकिन आज रविवार का दिन है तो लुलु मॉल के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक का लोड है, लोग घूमने फिरने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर उधर आप निकल रहे हैं

तो अवॉइड कीजिएगा, जाम को अवॉइड कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा अपनी क्यू में चलने की, अपने लेन में, अपने साइड में चलने की। क्योंकि होता यही है कि हम जल्दबाजी में होते हैं और जब हम जल्दबाजी में होते हैं तो ट्रैफिक अपने आप अव्यवस्थित हो जाता है। तो अव्यवस्था जो है ट्रैफिक की, वो ना फैलने पाए, इसका हम खासा ख्याल रखें। और बाकी और इलाकों की अगर हम बात करें, रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो ट्रैफिक पूरी तरह से लगभग सामान्य रहेगा।

तमिलनाडु में हुआ था, भारत के ऊंची कूद के खिलाड़ी हैं। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पैरालंपिक खेलों में पुरुषों के ऊंची कूद मुकाबले में मरियप्पन थंगावेलू ने स्वर्ण और वरुण भाटी ने कांस्य पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया था। मरियप्पन थंगावेलू ने 1.89 मीटर की जंप लगाते हुए सोना जीता, जबकि भाटी ने 1.86 मीटर की जंप लगाते हुए कांस्य को अपने नाम किया। मरियप्पन थंगावेलू, मुरलीकांत पेटकर जो कि तैराकी के 1972 हेजवर्ग और देवेंद्र झाझरिया भाला फेंक एथेंस 2004 के बाद स्वर्ण जीतने वाले तीसरे भारतीय हैं। थंगावेलू और भाटी की इस कामयाबी के बाद अभी सभी पैरालंपिक खेलों में भारत के कुल पदकों की संख्या 10 हो गई है, जिनमें 3 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य शामिल हैं।

6:25 साथ में कुछ सेकंड्स और अब बात कर रहे हैं मरियप्पन थंगावेलु की, जिनका जन्म भी आज ही के दिन यानी 28 जून साल 1995 को सालेम जिला

अब से कुछ देर के बाद यानी ठीक 6:30 बजे आईसीसी वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल हम सुनेंगे मैं तेरे। और बाकी का कार्यक्रम आप न्यूज ऑन एयर ऐप पर सुन सकते हैं। तो बस आपसे मैं ये कहूंगा कि आप बने रहिए 100.7 FM रेनबो के साथ और गीतों का ये सफर लगातार जारी रहेगा।

0: Between India and Australia of the ICC Women's T20 World Cup 2026. Before that, listen to our special program, First Ball 20.
1: First Ball 20.
2: क्रिकेट के मक्का लॉर्ड्स, जहां इतिहास सिर्फ लिखा नहीं जाता, अमर हो जाता है। और आज इसी ऐतिहासिक मैदान पर भारत की बेटियां अपने विश्व कप सफर का सबसे बड़ा इम्तिहान देने उतरेंगी। सामने है 6 बार की विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, लेकिन भारत के सामने सिर्फ एक प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि सेमीफाइनल का दरवाजा खड़ा है। दक्षिण अफ्रीका की बांग्लादेश पर जीत के बाद भारत का जीतना जरूरी है। जीत तो अंतिम 4 का टिकट, हार तो विश्व कप का सपना यहीं थम जाएगा। ऐसे में हर चौका सिर्फ रन नहीं होगा, हर विकेट सिर्फ सफलता नहीं होगी, ये होगा करोड़ों भारतीय दिलों की उम्मीदों का जवाब। तो क्या लॉर्ड्स की बालकनी आज भारत के जज्बे की गवाह बनेगी? क्या ऑस्ट्रेलिया का विजय रथ रुकेगा या फिर इतिहास एक नया मोड़ लेगा? मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। फर्स्ट बॉल 20 में मेरे साथ है मेघा और हमारे साथ 3 विशेष मेहमान हैं, पूर्व क्रिकेटर ख्याति गुलानी, बीसीसीआई कोच रविंद्र सिंह और वरिष्ठ खेल पत्रकार सौमित्र बोस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार
3: ख्याति। इंडिया हैव ट्राइड ऑल देयर 16 प्लेयर्स एंड येट द कॉम्बिनेशन डज नॉट लुक कन्विंसिंग।
4: Yeah, definitely. I mean, you must have seen that they have been trying their best in this series, but I'm sure that the best is yet to come. And the sloppy and scratchy fielding, definitely it was the, you know, reason for not performing in the previous matches. Let's see. In the coming matches, I'll see. I mean, this is very important, this match. And I'm sure that the players like Richa Ghosh and if you talk about Deepti Sharma, they are yet to perform, they are yet to give their best.
2: सौमित्रो, टॉस में बहुत ज्यादा समय नहीं है, लॉर्ड्स की पिच को देखते हुए बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग वेन्यू नहीं रहा है पिछले कुछ समय में, क्या लगता है क्या होने वाला है? चलते हैं टॉस के लिए।
5: इंडिया अप अगेंस्ट द नंबर 1 T20 साइड इन द वर्ल्ड इन ऑस्ट्रेलिया। आई हैव गॉट द मैच रेफरी शंड्रे फ्रिट्स एंड कॉइन टॉस रिप्रेजेंटेटिव एज़ वेल अलोंगसाइड मी। द कॉइन विल गेट पास अक्रॉस टू सोफी मोलिन्यू टू फ्लिप इट। हार्मन, योर कॉल।
6: हेड। विल बैट फर्स्ट।
5: Heads is the call, it's fallen your way, wait for the applause, there it is, what are you going to do and why?
6: I'm going to bat first, I think it's a very important game for us and we just thought let's just bat freely and set some decent total for us.
5: Coming off a win up north, you're now down here in London, any changes to the side for this big clash?
6: Yes, we do have one change, Kranthi is back in the side place of Nandini Sharma.
5: And why is that?
6: I think Kranthi has been bowling really well and I think these kind of pitches suits her, so we just thought let's bring her back.
5: Does recent form count for anything? Because you won a series in Australia in this T20 format as well, that semi-final as well. How much do you bring in of confidence into that?
6: It's a fresh day and fresh mind, and definitely those games have given us a lot of confidence, and today's the game to just enjoy ourselves.
5: Okay, we're in London but it feels like a home match.
6: Yes, definitely, I think weather is quite suiting us and let's just enjoy it.
5: All the best today, Harman.
6: Thank you.
5: So if I'll get you to come in, if it had fallen your way, what would you have done?
6: We're going to have a bowl, so it's worked out well.
5: There you go, happy days. Phoebe Litchfield, we've heard in the press that she's back into the side. Any other changes and who's out for her?
6: Yeah, Phoebe's is back in and Alana King's missing out. So.
5: And why is that? Because the two leggies have worked well for Australia so far.
6: They have, yeah. I think it's just conditions and matchups today. Kingy's bowled really well this tournament and she can still play a massive role for us moving forward over the next week or so. But yeah, excited to have Phoebe back.
5: It's been building nicely for Australia. It feels as if it's a bit of a final more so than a round game.
6: It does. It's really exciting. We've had a bit of a break before this game, so it's yeah. Built up really nicely for us. And
5: yeah. Enjoy all the magic of the home of cricket.
6: Yeah, we will.
5: All the best, Soph.
6: Thanks, Jonesy.
5: Well, India have won the toss today and they'll be batting first in this crunch match.
2: हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीता है और भारत पहले बल्लेबाजी करेगा। सौमित्रो, हम चर्चा कर रहे थे कि बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग वेन्यू नहीं रहा है, कैसे देखते हैं इस निर्णय को आप?
7: पहले तो दोनों कैप्टन खुश है, हरमनप्रीत बैटिंग करेंगे और इंडिया बैटिंग करेंगे और वो बॉलिंग करेंगे। और टीम चेंजेस में आपको दिख रहे हैं कि फिबी लिचफील्ड को वापस आना ऑस्ट्रेलियन टीम में बहुत इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बिकॉज शी इज गॉट एन अमेजिंग स्ट्राइक रेट। 3 मैचेस नहीं खेले हैं वो अभी तक, सो ही एब्सोल्युटली फ्रेश, इंजरी थी, नहीं पाएंगे, सो दिस इज अ बिग मैच फॉर हर और शी कैन बी द इम्पैक्ट फैक्टर जैसे आपने बोला। ये इस तरह का मैचेस में जैसे 170-180 जो रिकॉर्ड्स दिखता है लॉर्ड्स में ऐसा ही, बट इफ इंडिया कैन स्कोर 170-180 दैट बी अ वेरी गुड स्कोर. Harmanpreet ka batting is largely because we are very strong in our batting, although it does not reflect in our scoring, especially middle order. Or Harmanpreet ko aaj, she cometh the match, cometh the woman. So she has to be the woman because is tarah ka matches mein, again Australia, if there is one person that Australia fears is Harmanpreet. Aur is match mein unko aaj captain's knock khelna hai ki 85 runs in 4 matches is not what the Harmanpreet we know about. तो आज का मैच उनके लिए बहुत ज़रूरी है और सारे टीम के लिए ज़रूरी है, मगर प्रेशर नहीं. शी यूज द वर्ड एंजॉय, लेट्स सी हाउ मच एंजॉय.
3: रविंदर, हमने तब्दीलियों का जिक्र किया, आज के इस मुकाबले में भी एक बदलाव है. नंदिनी के जगह पर क्रांति गौड़ को मौका मिला है. पेस डिपार्टमेंट में खास करके स्टेबिलिटी नहीं देखने को मिली है.
8: बिल्कुल, जिस हिसाब से जो बॉलिंग अटैक चल रहा, बॉलिंग अटैक था उसमें बिल्कुल चेंजेस, हर मैच लगभग हर मैच में चेंजेस चल रहे थे, तो ये एक्सपेक्टेड ही था क्योंकि विकेट मुझे लग रहा कि थोड़ा सा सीम लग रहा, तो सीम हो रहा जैसे बताया हरमनप्रीत ने, तो उनको लगा क्रांति गौड़ इसमें शायद ज्यादा परफॉर्म कर पाएगी. लेकिन जो जो मेन जो इनका अटैक रहेगा वो चरनी के आसपास ही घूमेगा क्योंकि चरनी बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में है और वो एक तरह का मैच डिसाइड करती है कि मैच किस तरह पड़ा, मैच का पड़ा किस तरह मुड़ता है.
2: साथी, अगर दोनों टीमों की बात करें तो 38 T20 मुकाबले दोनों टीमों के बीच हुए हैं. ऑस्ट्रेलिया ने 27 जीते हैं, भारत ने 10 में विजय प्राप्त की है और एक मैच बेनतीजा रहा है, परिणाम नहीं निकला है. जब आप ऑस्ट्रेलिया के सामने होते हैं और ये वर्चुअल क्वार्टर फाइनल हम इसे कह सकते हैं, किस तरीके का टोटल होता है? क्या जो टीम मीटिंग टॉस जीतने के बाद होगी उसमें इस पर चर्चा होगी, चूंकि आप कोच भी रह चुकी हैं डोमेस्टिक सर्किट में, या फिर ये होगा कि पहले पावर प्ले देखते हैं उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे?
4: डेफिनेटली उन्होंने डिस्कस किया होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि विदाउट एनी टारगेट दे विल गेट इनटू द पिच डायरेक्टली. बट आई थिंक इट विल बी कॉन्टेस्ट फ्रॉम फ्रॉम स्टार्ट, बॉल टू बॉल कॉन्टेस्ट होगा बिटवीन बोथ द टीम्स, बैटर टू बॉलर एंड बॉलर टू बैटर. एंड आई थिंक 160-170 शुड हैव बी अ गुड स्कोर, दे मस्ट हैव डिस्कस दिस थिंग. Otherwise, you will not give the cushion to your bowlers. You have to give the cushion to your bowlers also. आपको अगर उस तरीके की गेम खेलनी, आपको हमेशा सेट होने, अगर सेट होते आपके बॉलर्स या आपके बैटर्स, डेफिनेटली आई थिंक तब आप ये सोच सकते हो कि वहाँ जाके आप पावर प्ले देखें. लेकिन अभी तक कुछ भी सेट नहीं है पावर प्ले में. एवरी टाइम इनका जो स्कोर है उस तरीके का नहीं चल रहा कि जैसा एक्सपेक्टेड है. द वे वी ऑल्सो टॉक टू द प्लेयर्स कि आपका 6 ओवर्स में 50 रन हो इस तरीके से. बट आई थिंक एक 160 का स्कोर एक पार, आई थिंक इट विल बी अ गुड स्कोर.
3: सुमित्रो, हेडिंग इन टू द वर्ल्ड कप द कंसर्न वॉज मोर अराउंड द ओपनर्स बिकॉज more around the wobbly middle order.
7: Absolutely, because if you see, first of all, you have to forget what you've done in the last 4 matches, especially you know when you play in Netherlands, and they are more like warm matches with all regards to those teams. But the point, today is the big match. Aur agar aap is level pe matches dekhe, India have always lost these kind of matches against Australia. It doesn't mean, again, history does not mean anything else. But the point is this, aaj agar aap dekhega who bats at number 3, who bats at number 4, where does Harmanpreet bat? Up 6, she has batted at 6, she has batted upper. So India have got a very unsettled look about them, which is very, very striking for a team that has won a World Cup. And the coach, and the core of the team remains the same. The coach remains the same. In spite of that, you still don't know. Aapne jaisa pehle bola ki 16 players hum 4 matches mein khila dein. That means that's not a good sign. Plus, you know, there are other concerns, fielding concern. But I would like to see who bats at number 3. I'm assuming ki South Africa, which was the biggest match so far, who Yastika batted there. She's a left-hander, and unke paas leg spinners bahut hain. Shayad yehi batting dekhenge. But I also want to see where does Harmanpreet bat, how much of responsibility takes, because when the captain takes a responsibility and she scores the runs, I think that makes a big difference. Or openers, as you have said, they are fairly all right. Smriti Mandhana is among the top scorers. Shefali has got runs. But yes, the performance of the middle order will be very, very critical.
2: The रविंदर, अगर इसी चर्चा को आगे बढ़ाएं, जुमा की भी फॉर्म इस पूरे टूर्नामेंट में सवालिया निशान पर रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यास्रिका भाटिया और भारती फूलमाली में भी चर्चा हो रही थी कि शायद उनको इस मैच में वापस लाया जाए प्लेइंग 11 में, लेकिन यास्रिका के साथ गई है हरमनप्रीत कौर की टीम। अगर हम बात करें किस तरीके का टीम में माहौल होगा इस समय, चूंकि नंबर 3 नंबर 4

0: नंबर 5 कहीं ना कहीं अनसर्टेन रहा है इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया का।
1: बिल्कुल अनसर्टेन रहा है, तभी ये मैच, ये जो टूर्नामेंट है, इस कंडीशन में आया है। आप देख रहे हैं कि 15-16 लोग खेल रहे हैं नॉर्मली। अगर आपकी एक कॉम्बिनेशन बना रहता है तो 11-12 लोगों में ही काम टूर्नामेंट पूरा चल जाता है। बहुत कम होता है कि आप 15-16 लोगों में खेलिए। बैटिंग में दिक्कत रही है अब इसमें भी, लेकिन जो बैटिंग लाइनअप है ऑन पेपर तो बहुत स्ट्रांग है, पर यह है कि अब उस स्ट्रांग को उसको एग्जीक्यूट करना है। और इससे आज नहीं करेंगे तो फिर आप पैकिंग करेंगे।
2: ख्याति, इन द गेम अगेंस्ट बांग्लादेश, दो जमीमा गॉट सम रन्स, बट इन द थ्री प्रायर गेम्स शी स्ट्रगल। इज शी समबडी हु वांट्स दैट रोल क्लैरिटी, दैट पोजीशन क्लैरिटी?
3: सी डेफिनेटली, अगर आप ऋचा घोष की बैटिंग देखेंगे तो उनको हमेशा थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। अगर आप उसको अप द ऑर्डर भेजेंगे, डेफिनेटली शी कैन शो यू गुड परफॉर्मेंस एंड शी कैन कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स अ गुड टोटल। बट उसका अगर आप बार बार डाउन चेंज करेंगे, इतने प्रैक्टिस मैचेस हुए हैं उसमें भी आपको समझना चाहिए कि उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। और जैसे ही उसको टाइम मिलता है, लास्ट वर्ल्ड कप में भी आपने देखा होगा, वनडे वर्ल्ड कप था, जैसे ही उसको टाइम मिला एंड शी गेव गुड कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द गुड टोटल। इतना तो आई थिंक अब सेम कोच है इतने साल से, तो सेम मैनेजमेंट है, इतना तो आई थिंक अंडरस्टैंडिंग अब तक हो जानी चाहिए अपने प्लेयर के लिए।
0: आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम फर्स्ट बॉल 20 में हमारे साथ जुड़ चुके हैं पहले श्रोता, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
4: नमस्कार भैया।
0: नमस्कार, अपना परिचय
4: दीजिए। भैया मैं कम से कम 50 साल से कॉमेंट्री सुन रहा भैया
0: जी।
4: जब कॉमेंट्री सुनने का था, देखने का नहीं था, तब अपना इंडिया टीम एक गलती कर रहे सर, दिख रहा था मेरे को। बैटिंग पहला लेने से पहले फील्डिंग लेना बहुत अच्छा दिखता था सर, चांस जीतने का ज्यादा चांस रहता है मैडम। कम से कम एक 200 रन तो आज बनाना कंपल्सरी है, और एक कैच भी नहीं छोड़ना अपन लोग। कैच अगर पकड़े मैच जीतने वाला, नहीं तो अगर कैच मैच हार जाएंगे इंडिया।
0: सौमित्र, यहीं से इनकी बात को आगे बढ़ाते हैं। 3 में से 1 कैच भारत ने ऑन एन एवरेज इस टूर्नामेंट में छोड़े हैं, जो बड़ा कंसर्न है कहीं ना कहीं। फील्डिंग साइड के नजरिए से देखें, पूरे टूर्नामेंट में बहुत सारे कैचेस छूटे हैं, लेकिन टीम इंडिया को आज के मैच में बहुत ध्यान देना पड़ेगा।
5: बहुत जरूरी है, 4 मैचेस में 11 कैचेस, एक मैच बांग्लादेश के साथ पहला 5 ओवर में 4 कैच। मेरे हिसाब से सबसे क्रिटिकल कैच जो इसने छोड़ा वो है मैरिजॉन कैप का कैच। वो जो मैच 81, शी हैड 3 लाइव्स, कैन यू इमेजिन इन T20 जहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर इज वर्चुअली जीरो, वी हैव डन लाइक दिस टुडे। बट अगेन यू नो व्हेन, जब हम रिपोर्टर्स लोग हमारे क्रिकेटर्स के साथ बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि इसको पता है कि इसमें ऐसा होता है, क्रिकेट में जो क्रिकेट खेले हैं उनको भी पता है। आज तो सिर्फ नर्व्स को मैनेज नहीं करना पड़ेगा आपको, पूरा मैच में 40 ओवर्स में अपना how cool you are, she has used the word enjoyment. आप अगर आपने सुना होगा, enjoyment can only come if you are cool within and you have the composure to play such a big match. वो तो पहले ही पता चल जाएगा कि जब बैटिंग करेंगे हमने पावर प्ले में कैसा लिया। डोंट फॉरगेट दैट ऑस्ट्रेलिया आर वेरी वेरी हंगरी एंड दे हैव मेड 1 वेरी इंपॉर्टेंट चेंज दैट कैन बी अ डिसाइडिंग फैक्टर। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है।
2: और रविंदर, ये बस कैचेस ड्रॉप होने की बात नहीं है, फील्डिंग में भी फंबल्स देखने को मिले। इनफैक्ट बांग्लादेश के विरुद्ध इनिंग्स की आखिरी गेंद पर कप्तान हरमनप्रीत खुद फील्डिंग के टाइम बॉल को ठीक से पकड़ नहीं पाई, तो वो जो जिटर्स हैं वो ऑलमोस्ट इन्फेक्शियस लग रहे हैं।
1: देखिए, ये कोई एक्सक्यूज ही नहीं है कैचेस का, वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, आपकी क्या प्रिपरेशन है, आपके कोचेस क्या कर रहे हैं। एक राधा यादव जो इंजर्ड थी, उसके हाथ में इतनी मोटी बैंडेज थी, उसको आपने अंदर भेजा, 3 जो प्लेयर थे वो बाहर बैठे थे और उसके हाथ से कैच छूट रही, वो पकड़ नहीं पाई। अच्छी है, उन पे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस समय उनकी हालत, एक इंजर्ड प्लेयर को आप अंदर लेके आ रहे हैं और उस वो आप 20 ओवर के मैच में 3-3 कैचेस छोड़ेंगे तो कैसे मैच जीत सकते हैं आप। कोई एक्सक्यूजेस नहीं है देखो फील्डिंग का, फील्डिंग पे अगर आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, कोई लोकल मैच तो खेलने नहीं जा रहे, तो मुझे तो इसमें पूरा मैनेजमेंट जो रिस्पॉन्सिबल है कि आप लोगों ने क्या प्रिपरेशन करी उनके लिए।
0: फर्स्ट बॉल 20 के इस कार्यक्रम में एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका।
6: जी सर नमस्कार, और मेघा जी को भी नमस्कार, आप सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग, बताएं आप क्या जानना चाहते हैं।
6: जी मैं मध्य प्रदेश सागर से विपिन कटारे बात कर रहा हूं सर।
0: जी विपिन जी,
6: सवाल सर मेरा ये था कि जैसे इंडिया पहले बैटिंग कर रही है तो क्या 180 स्कोर अच्छा रहेगा अगर बना लेती है टीम इंडिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग भी काफी अच्छी है। और दूसरा सवाल ये था कि क्रांति गौड को खिलाया गया है तो वो उनकी पहले भी बॉलिंग काफी अच्छी नहीं रही है और उनको ज्यादा ओवर भी पहले नहीं मिल पाए, तो उनके बारे में जानना था। और फील्डिंग के बारे में तो आप लोग चर्चा कर ही रहे हैं, जो कि आज

0: इसकी नौबत भी यही आई है कि हम बाहर होने की स्थिति में है।
1: इन्होंने 180 के टोटल की बात की। भारत और ऑस्ट्रेलिया T20 विश्व कप में जब भी आमने सामने आए हैं, भारत का सर्वाधिक टोटल 167 रन रहा है, जो 2018 और 2023 में टीम इंडिया ने बनाया है। 167 से आज पार पाना चाहेंगे क्या थे?
2: डेफिनेटली अमिन, वो तब बनाया था और उसके बाद से जो टीम ने इम्प्रूवमेंट की है, तो आई थिंक और एक्सपेक्टेशन हाई होगी। और ये जो आज मुकाबला है, यहाँ से आपको ऑब्वियसली और आगे अगर आपको जाना है तो आपको यहाँ पे परफॉर्म करके दिखाना होगा और सबकी कॉन्ट्रीब्यूशन इज रिक्वायर्ड। और आई एम श्योर उस बारे में बात बहुत ज़्यादा हुई होगी मैनेजमेंट में। एंड लास्ट वर्ल्ड कप में भी, ODI वर्ल्ड कप में भी इस बारे में डिस्कशंस चल रही थी कि किस तरीके से आप कॉन्ट्रीब्यूट करें। एंड बहुत अच्छी मीटिंग हुई थी, जो मुझे बाद में पता चला कि जिस तरीके से अमोल मजुमदार ने बात करी और मोटिवेट किया प्लेयर्स को, उनमें ट्रस्ट दिखाया, तो आई थिंक ये सेम सिचुएशन है, इस बारे में बात हुई होगी। एंड आई थिंक दैट दे'ल बी सक्सीडिंग इन दिस।
3: Sumitro, ever more important to be imposing because of how deep Australia bat and how attacking they themselves are.
4: एक चीज श्रोता को बताना जरूरी है कि टॉप 10 बैट्समैन, टॉप 10 बॉलर्स में एक भी ऑस्ट्रेलियन नहीं है, फिर भी ये अनबीटन है। How is that possible? It's a team game that they play. Regardless of the fact that in man-to-man, शायद experience-wise, Australians are much higher. Beth Mooney, Ellis Berry, Ash Gardner, fantastic. आप देखिए, but India has no shortage of experience. But experience counts for nothing if you don't score. Experience counts for nothing if you don't hold your catches. Experience counts for nothing if you don't take wickets. But the point is this, it's going to be a great contest. And as I said, that you know, it is all in the mind. आपने जो सवाल किया उसके लिए, India have to take over by over. ये नहीं कि रश करके हमने इतना सेट बनाना है। पावर प्ले, आई थिंक यू हैव सीन द फर्स्ट फ्यू मैचेस वेयर इंडिया स्कोर्ड 10 एंड ओवर, दैट वाज एन आइडल स्टार्ट। बट डोंट फॉरगेट दैट ऑस्ट्रेलिया हैव अ वेरी गुड बॉलिंग लाइनअप एंड दे नो एंड देयर फील्डिंग इज अमेजिंगली गुड। तो यू नो, नथिंग कैन बी प्रेडिक्टेड। आई मीन जस्ट अक्रॉस द अटलांटिक वी आर सीइंग अनदर वर्ल्ड कप। उसमें जिस तरह से केव ये सब टीम्स खेल रहे हैं, इक्वाडोर जर्मनी को हरा रहे, नोबडी कैन गो इन विद अ सेट प्लान। It is what you do at that moment and how you perform.
1: जी हाँ, थोड़ी बल्लेबाजी की बात करते हैं। रविंदर स्मृति मांदना भारत की तरफ से सबसे सफल बैटर हैं इस वर्ल्ड कप में, 4 मुकाबलों में 167 रन। लेकिन मैचअप की बात करें तो एश गार्डनर ने उन्हें 31 T20 मुकाबलों में 10 बार आउट किया है। कैसे देखते हैं इस मैचअप को?
5: देखिए, ऑस्ट्रेलियंस हैं, उनका जो होमवर्क है वो बहुत तगड़ा है। वो हर प्लेयर के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, सबसे बड़ी बात। और बाकी ये बाकी एक दूसरे के साथ उनको पता है बैटर्स हैं। इंडिया की टीम जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, हरमनप्रीत है, शेफाली है और स्मृति है, इनके ऊपर उन्होंने जरूर होमवर्क कर गया होता। अब देखिए, पहले जितने भी T20 होते हैं, ऑलमोस्ट सारे ही उनकी विक्ट्री रही है। देखिए, डिपेंड करता है कि आपका स्कोर 160-160 वो नहीं होता, आप 160 में भी जीत सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से आप फील्डिंग करते हैं उस हिसाब से अगर आप 180 बना दें, 190 बना दें, तब भी आपको जीतना मुश्किल है ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के लिए। वो प्रोफेशनल लोग हैं, बहुत ही प्लान तरीके से खेलने आते हैं उनके। देखिए, किसी भी बता रहे हैं, जैसे उन्होंने बताया कि टॉप 10 में कोई भी नहीं है, लेकिन वो टीम वर्क है सारा। नीचे वाले भी जाके बैटिंग कर रहे हैं, 8-8 प्लेयर बॉलिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। और हर और ये 160-170 रन तो बनाएं, अगर बनाते भी हैं, लेकिन उसके बाद आपको पूरे फील्डिंग जो जज्बा दिखाना पड़ेगा, उसी का जीत पाएंगे। नहीं तो आप 180 रन करके भी जो फील्डिंग कर रहे हैं उसमें भी कोई फायदा नहीं होगा।
3: नाउ ख्याति, फ्रॉम वन ओपनर टू द अदर, शेफाली वर्मा हैडंट स्कोर्ड अ हाफ सेंचुरी इन T20 वर्ल्ड कप्स, दो शी फीचर्ड इन मल्टीपल ऑफ दोस सिंस 2020, बट दिस एडिशन गॉट टू ऑफ दोस, दो ऑस्ट्रेलिया वुड लाइक टू एक्सप्लॉइट हर वीकनेस अगेंस्ट शॉट balls?
2: Yeah, definitely. I mean, she's known for big games, but yeah, I mean, it's yet to come. And let's see, I mean, if they must have, they might have done homework for her as well. And they know that, yeah, she's bad with the short pitch balls and all. But even Amol must have spoken to her and must have told her her weakness and their strength. I think they'll come with good homework, but let's see how good she can, you know, execute on the ground today.
4: I want to add to what she said, that you know, these teams have played 37-38 T20 matches, internationals. Isse pehle India won a T20 series against. It's not, most of the top players are not unknown to each other. Like if you notice, all the champion sides, regardless of whether it's tennis or badminton or kuch bhi dekhe, the top 10 jo players hota

0: they know each other. It's on the day, that's how you perform, right? It's on the day how you. So you can only guess ki Shefali A karenge, Ashley Gardner can do this and all that. That's history. It's exactly what you do in the next 1.5 hours at lots.
1: जी हाँ बिल्कुल, कल प्री मैच कॉन्फ्रेंस में स्मृति मंधाना ने कहा भी था कि हमारे प्लेयर्स बिग बैश में खेलते हैं, उनके प्लेयर WPL में खेलते हैं, तो बहुत ज़्यादा हम एक दूसरे को जानते हैं। इस बीच फर्स्ट बॉल 20 में एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका।
2: आनंद जी आपको सबको नमस्कार, आपका रेगुलर श्रोता कारण हरगिज लीलाधर चोपड़े बात कर रहा हूँ। आनंद
1: जी नमस्कार।
2: नमस्कार, मेरा सर सवाल है कि

0: खेलते हैं तो बहुत ज्यादा हम एक दूसरे को जानते हैं। इस बीच फर्स्ट बॉल 20 में एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका।
1: आनंद जी, आपको सबको नमस्कार। आपका रेगुलर श्रोता कारण हरगिज लीलाधर चोपड़े बात कर रहा हूँ। आनंद
0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार, मेरा सर सवाल है कि हमारे पेसर बॉलर के लिए तो हमारे पास में ऐसा लग रहा है कि इतना बड़ा हमारा भारत देश है कि जैसे गलियों में क्रिकेट खेली जाते वैसे महिला कम क्रिकेट खेलती है, वो तो वजह नहीं है। रविंद्र सर से मैं इस बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ कि पुरुषों में तो अब हमारे पास में बहुत गति के बॉलर है, लेकिन महिलाओं में ये जो समस्या क्या महिला कम भारत में क्रिकेट खेलती है, इसका ये कुछ है इसके ऊपर? और बैटिंग देखिए थोड़ा गलत काम ऐसा लग रहा है।
0: तेज गेंदबाजों को लेकर बेंच स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं रविंदर।
2: देखिए बेंच स्ट्रेंथ है हमारे पास, अरुणिति रही भी रही है, रेणुका ने बॉल किया और क्रांति गौड़ हैं, लेकिन अब जैसे से अब भारत में अब क्रिकेट वुमेन्स के लिए बहुत पॉपुलर होता जा रहा है। अब तो देखिए लोकल डिस्ट्रिक्ट में लीग चल रही है उनके लिए, और अब तीन चार पांच साल में जिस हिसाब से इनके ऊपर जो पैसा खर्च किया जा रहा है जो BCCI द्वारा, उसमें आपको बहुत ही जल्दी आपको और भी अच्छे और टैलेंट देखने को मिलेगा। छोटी छोटी जगहों से काफी निकल के आ रहे हैं प्लेयर, में देख रहा हूँ लड़कियां भी काफी निकल के आ रही है झारखंड से बिहार वगैरह से, तो ये आपको जल्दी थोड़े दिनों में और भी अच्छा टैलेंट देखने को मिलेगा आपको।
3: One of the reasons probably for Indian pacers struggling, easy conditions, and second, a lot of pace bowling all rounders got injured ahead of the World Cup. Getting back to India's batting, Soumitro, Harmanpreet Kaur somehow hasn't looked in rhythm. There's no pattern to her dismissals, but she's been struggling to score runs fluently.
4: Absolutely, that you can see there. Lack of confidence can be seen in the way she has, the number of positions she has batted. If she was confident and she had the rhythm, then she would have perhaps batted in the top 4 or 5. Although, you know, she has enough batting power, but today is the day when she has to get her rhythm back. And against Australia, she's always scored the runs. She's always been the most valuable player. Unfortunately, all the 450s that she has scored in T20s have come against her. Whenever India have lost, Saturday is the day when the equation will change.
0: साथ ही हमने बहुत बात की भारतीय टीम की, थोड़ी चर्चा ऑस्ट्रेलिया की भी कर लेते हैं। किस रणनीति के साथ वो इस मैच में उतरेंगे?
5: देखिए अगर आप स्टार्टिंग में देखेंगे उनका पेस अटैक काफ़ी अच्छा है, तो ये कॉन्टेस्ट होगा बिटवीन स्मृति मांदना एंड शेफाली वर्मा अलॉन्ग विद दीज आई मीन इन फ्रंट ऑफ दीज ऑस्ट्रेलियन बोलर्स और एश गार्डनर एंड हरमन के उसमें। तो आई थिंक डेफिनेटली ये कॉन्टेस्ट कौन कि ये पूरा 40 ओवर्स लास्ट बॉल आप इस
3: और वही एलिस भी रन बनाए पाकिस्तान के विरुद्ध पहला T20 विश्व सात और भी आगे गुनाना चाहेंगे। रविंदर
2: बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, ऑस्ट्रेलिया अनबीटन साइड है। देखिए अभी तक उनमें अभी ज्यादा कुछ कमियां दिख नहीं रही क्योंकि अभी तक हारी नहीं टीम। जब टीम हारती है तभी आपकी कमियां निकल के आती हैं, जीत जाने पे सारी कमियां छुप जाती हैं। अगर उस दिन में अफ्रीका के अंग्रेज मैच जीत जाते लास्ट में तो सारी राधा यारों को कोई याद भी नहीं कर रहा होता। आज भी इनको इसलिए याद करा जा रहा है कि इंडिया मैच हार गई, तो ये डिपेंड करता है कॉम्बिनेशन अच्छा चल रहा है उनका। यही अब ये जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के जो एपिक जो राइवलरी है वो आज देखने को मिल रही है, डिपेंड करता है कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है। आप जो पहले बैटिंग करने जा रहे हैं, आपने डिसीजन अच्छा लिया, रीजन पॉजिटिव रीजन है क्योंकि इतने बड़े प्रेशर मैच में आपको पहले अगर आप रन बना देते हैं तो बढ़िया है। अगर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग करते 180 नंबर बनाते तो चेस करने बहुत प्रेशर होता, लेकिन बढ़िया आप 6 ओवर पहले संभल के लिए 40 रन का टारगेट रखिए, विकेट मत दीजिए आप, और उसके बाद धीरे धीरे इसको टीम अपना बिल्डअप करेंगे तो आप 20 ओवर में 180 के आसपास पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आपने लूज की विकेट शुरू में पावर प्ले में तब वापस आपको दिक्कत आ जाएगी।
0: सौमित्रो हमने कई खिलाड़ियों की चर्चा की, लेकिन अगर आज भारत को बड़ा टोटल बनाना है तो ऋचा घोष को बहुत बेहतर बल्लेबाजी करनी होगी लोअर मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि तीन ऐसे इस टीम में प्लेयर हैं जिनके पास बल्लेबाजी का अनुभव नहीं है, और T20 में टेल अगर की बात करें तो भारतीय टेल थोड़ी लंबी नजर आती है।
4: देखिए ऋचा घोष का नाम आपने लेकर के बैटिंग कहाँ करेंगे, 4 नंबर में किया, 7 नंबर में किया, 6 नंबर में किया, आज कहाँ करेंगे? वो तो सवाल मैंने पहले भी पूछा है कि इंडिया का बैटिंग ऑर्डर क्या होगा। एंड डोंट फॉरगेट दे समबडी कॉल दीप्ति शर्मा, शी लाइक द रविंद्र जडेजा ऑफ इंडियन टीम, कहीं पे भी बैट कर सकते, कभी भी विकेट ले सकते, मोस्ट बिजिएस्ट क्रिकेटर इन द इंडियन क्रिकेट टीम। तो देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स कि यू कैन गो विद अ सेट प्लान, कोच साहब ने कहा है यू कैन गो विद अ सेट प्लान, यू कैन नेवर गो विद अ सेट प्लान, बट यू वुड एक्सपेक्ट दैट योर मेन प्लेयर्स विल स्कोर द रन्स, राइट? सो व्हाट इज अ गुड स्कोर, नोबडी नोस, 160 परहैप्स,

0: So there are a lot of questions, and that's the beauty of these contests like between India and Australia. You don't know. There are so many factors that you cannot control. What you can control is what you can do. Like, you know, he said maybe 40 runs net 10 overs. Hold your wickets. So fascinating. I mean, that's why India, Australia, England, Australia, these are big matches. And big matches, you can't go with a plan. You play on the day, face the circumstances, play the conditions, and go on.
1: Talking about questions, at the start of the year, Sophie Molino was anointed the captain. There were question marks around her fitness, whether she'd be able to lead Australia during the World Cup. Not only has she shown herself to be fit enough, she's also delivered consistently 6 wickets in 4 games. Kathy?
2: Yeah, definitely. I mean, if you see that, like Litchfield also, they want to play against India because they have that hunger, and they still remember the ODI World Cup. And they were waiting for this game, and they will give their best for this game, and they are coming up with the best team, and I'm sure that she will deliver.
3: शेफाली वर्मा पर दबाव होगा रविंदर, चूंकि तेज तर्रार शुरुआत के लिए वो जानी जाती हैं, अच्छी फॉर्म भी दिखाई है, छोटे छोटे टुकड़ों में उन्होंने पारियां खेली हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम, बड़ा मुकाबला।
4: देखिए, शेफाली एक बहुत बड़ी प्लेयर है, इम्पैक्ट प्लेयर है, वो जिस हिसाब से बैटिंग करती है, जैसे वीरेंद्र सहवाग वगैरह बैटिंग करते थे, अगर वो 6 ओवर में उनको वो रहती हैं, स्टार्ट देती हैं, तो उसके बाद अगर वो विकेट पे रहती हैं, तो ये मैच इंडिया बहुत पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि उनके जो पॉजिटिव अप्रोच है, उनकी जो बाउंड्रीज निकालना है, वो और इवन किसी भी प्लेयर के लिए तो आसानी जितने आसानी से शेफाली निकाल पाती हैं। शेफाली उनकी मतलब ऑस्ट्रेलियंस की वेटलिस्ट में होंगी कि उनको पहले आउट करना चाहेंगे शेफाली को जरूर, वो तो उनको पता है शेफाली बहुत अग्रेसिव प्लेयर हैं, उनको जितना लंबा खड़ी रहेंगी उतना इंडिया के लिए बेटर रहेगा।
3: जी हाँ, बिल्कुल, शेफाली से उम्मीदें होंगी। लॉर्ड्स की इस ऐतिहासिक पिच पर एक मजबूत स्कोर सिर्फ स्कोर बोर्ड पर अंक नहीं जोड़ता, बल्कि विपक्षी टीम के मन में भी सवाल खड़े कर देता है। अब निगाहें होंगी भारतीय टॉप ऑर्डर की ठोस शुरुआत पर, मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी पर, और अंत के ओवर में तेज गति से रन बटोरने की क्षमता पर। फर्स्ट बॉल 20 में इतना ही। रविंदर जी आपका, ख्याति गुलानी आपका, और सौमित्र बोस आपका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
0: शुक्रिया, थैंक यू।
5: फर्स्ट बॉल 20।
6: मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास।
7: भारत के लिए ये मुकाबला काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का ये मुकाबला भारत को जीतना होगा अगर भारत सेमीफाइनल में अपना दाखला चाहता है। इससे पहले कि मुकाबला शुरू हो, मैं आपको बता दूं कि आज की टीमें किस तरह से, ऑस्ट्रेलिया की जो टीम खेल रही है उसमें खिलाड़ी हैं पैट मूनी, जॉर्जिया वॉन, एलिस पेरी, एशली गार्डनर, जॉर्जिया बेरफिन, एनिबल सदरलैंड, निकोला कैरी, सोफी मोनिलू, लूसी हैमिल्टन, किम गार्ड और फीबी लिचफील्ड। और भारत की तरफ से जो टीम खेली जा रही है उनमें शामिल हैं स्मृति, शेफाली वर्मा, यस्तिका भाटिया, हरमनप्रीत, जमीमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, राधा यादव, श्रीचरनी, रेणुका सिंह ठाकुर और क्रांति गौड को आज के इस मुकाबले में शामिल किया गया है, जिन्होंने अपने रेडियो सेट्स अभी ट्यून किए हैं। उनकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि भारत ने टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है, और पिच को अगर देखा जाए तो पिच पर घास है, जो ये बताती है कि गेंद में गति और उछाल देखने को मिलेगी, और घास सूखी है, जो ये बताती है कि बल्ले के ऊपर गेंद अच्छे से आएगा और रन ज्यादा यहां पर बनने की संभावना। और मेरे साथ हैं अश्विन। नमस्कार अश्विन।
8: थैंक यू भूपेंद्र जी। It was, as you mentioned, it is a very important match from India's perspective. This is slated to be a kind of a quarter-final match, where India, it's a do-or-die game for India. They need to win this match if they have to progress from here to play in the further in the journey of the World Cup. So this is being a very critical match for India, and as you mentioned, there's only one change for India, where Kranti Gaur comes in.

0: in place of Nandini Sharma, and that's a good move, because this match is going to happen at Lords, which will prefer the pace and you know, the variable bounce, which is very important. So I feel that's a great change for Indian team that has happened in this match, and so we are all looking in very exciting times for Indian cricket, and they are all set to prove and play the kind of cricket that Indian fans are looking for. Banerjee
1: और आरंभक बल्लेबाज के रूप में शफाली वर्मा और स्मृति इस समय क्रीज पर हैं, और मुकाबला शुरू होने को है शफाली वर्मा, जो कि इस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी फॉर्म में है। नेदरलैंड्स के विरुद्ध शानदार 55 रन की पारी उन्होंने खेली थी, विकेटों के चारों तरफ स्ट्रोक लगाए थे, 38 गेंदों में ये 55 रन उन्होंने बनाए थे, और साउथ अफ्रीका के विरुद्ध भी 31 रन की शानदार पारी थी, और बांग्लादेश के विरुद्ध भी अर्धशतक बनाया। स्मृति मानधना इस समय स्ट्राइक पर, और लूसी हैमिल्टन की ये पहली गेंद, बाएं हाथ की तेज गति की गेंदबाज लूसी हैमिल्टन, जिन्होंने स्टंप्स के बीचों बीच गुड लेंथ पर ये गेंद डाली थी, जिसे सीधे बल्ले से वापस गेंदबाज की तरफ खेला था स्मृति मानधना ने। लूसी हैमिल्टन एक बार फिर से ओवर द विकेट, ओवर पिच गेंद, सीधे बल्ले से ड्राइव किया, मगर सीधा मिड ऑफ पर खड़ी फील्डर के पास, रन बनने की कोई संभावना नहीं। आरंभक जो बल्लेबाज हैं भारत के, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, और पारी में अगर मजबूती बनानी है तो आरंभक जोड़ी से साझेदारी दरकार होगी भारतीय टीम को, और इस बात को बखूबी जानती हैं ये दोनों बल्लेबाज शफाली वर्मा और स्मृति। स्मृति सामना करने के लिए तैयार। इस बार ये गेंद लेग स्टंप के बाहर फ्लिक कर दिया गया डीप फाइन लेग क्षेत्र पर, रन भागने का मौका स्मृति के पास, जब तक गेंद को फील्ड करके वापस थ्रो किया जाए, एक रन भागने का मौका, भारत का खाता खोला, स्मृति एक भारत एक, बिना किसी विकेट पर। लूसी हैमिल्टन, जिनकी गेंदों में थोड़ा उछाल, थोड़ी मूवमेंट देखने को मिली है, इन तीनों गेंदों में उन्होंने इन स्विंग डाली है स्मृति मानधना को, और बल्ले के बीचों बीच लेते हुए इन गेंदों को खेला है स्मृति ने, जो ये बताता है कि पूरी तरह से आत्मविश्वास में, फॉर्म में अच्छी बल्लेबाजी कर रही है। एक अच्छी साझेदारी की जरूरत रहेगी भारत को यहाँ पर। तीन गेंदों में एक रन, लूसी हैमिल्टन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी करते हुए, शफाली वर्मा अब सामना करेंगी। ओवर द विकेट लूसी हैमिल्टन की ये गेंद, ओवर पिच कवर ड्राइव किया मगर स्ट्रोक में ज्यादा जान नहीं, सीधी फील्डर के हाथ में गेंद, जिसकी वजह से रन बनने की कोई संभावना नहीं। शफाली वर्मा ने ये पहली गेंद बल्ले के बीचों बीच लेते हुए खेली। शफाली वर्मा का बल्ला बुलंद है इस वर्ल्ड कप में, अच्छी बल्लेबाजी की है उन्होंने, स्पिन गेंदबाजी के विरुद्ध काफी आत्मविश्वास से खेली हैं वो, विकेट के चारों तरफ स्ट्रोक खेले हैं, और इस वर्ल्ड कप में उनकी बल्लेबाजी में ये देखा गया कि ज्यादा क्रॉस बैट से नहीं खेल रही हैं, विशेष तौर पर स्पिन गेंदबाजी के सामने वी शेप में स्ट्रोक लगाने का प्रयास किया है। लूसी की अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ बैकफुट पर जाकर इसे कट किया बैकफुट पॉइंट क्षेत्र पर, जब तक अपनी बाई तरफ भागकर गेंद को फील्ड करेंगी डीप बैकफुट पॉइंट से फील्डर, एक रन भागने का मौका शफाली वर्मा के पास। पांच गेंदों में दो रन भारत के इस पहले ओवर में। लॉर्ड्स के इस खूबसूरत मैदान में भारत और ऑस्ट्रेलिया का यह मुकाबला, विकेट अब तक बिल्कुल सटीक सपाट, बल्ले पर अच्छी तरह से गेंद आती हुई। लूसी की अगली गेंद इस ओवर की आखिरी, सीधी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, ड्राइव करना चाहती थी, बल्ले का भीतरी किनारा लेती हुई गेंद स्क्वायर लेग क्षेत्र पर गई, जब तक गेंद को फील्ड किया जाए भागकर एक रन पूरा किया। एक रन के साथ भारत का स्कोर 3 इस पहले ओवर की समाप्ति के बाद।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: लड़िए जानिए आभा के बारे में।
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: Cautious start by India here at the crucial match. India, after first over, they are 3 without loss. So Smriti Mandhana and Shefali Verma doing what they're supposed to. They are not taking anything lightly. They are positioning, waiting for the ball, and that's what they're going to do, because this match is going to be a crucial and very crucial for

0: दो स्ट्रोक्स खेले बैकफुट पर जाकर जिस तरह से ऑन ड्राइव लगाए उन्होंने, क्या टाइमिंग थी उनकी, बड़ी खूबसूरत टाइमिंग के साथ वो स्ट्रोक्स खेले थे। इस बीच इनस्विंग गेंद अंदर की तरफ आती हुई मिडल और लेग स्टंप पर, जिसे सीधे बल्ले से मिडॉन क्षेत्र पर खेला गया बगैर किसी रन के, और कमाल की टाइमिंग से खेल रही हैं। और दोनों बल्लेबाजों की जो अप्रोच है उससे लग रहा है कि उनको मालूम है कि उन्हें लंबा खेलना है, साझेदारी बनानी है और एक अच्छा लक्ष्य देना है ऑस्ट्रेलिया को। 12 भारत बिना किसी विकेट पर 2.3 ओवर के बाद। लूसी हैमिल्टन प्रभावशाली गेंदबाजी करती हैं। इस बीच शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद बैकफुट पर जाकर इसे पुल किया मिड विकेट क्षेत्र पर, फील्डर भाग रही है गेंद के पीछे, डाइव किया मगर रोक नहीं पाई, 4 रन।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: स्मृति को मौका मिला और इस मौके को पूरी तरह से भुनाया उन्होंने। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, बैकफुट पर जाकर बल्ले के बीचों बीच लेते हुए इस गेंद को पुल किया उस क्षेत्र में जहां कोई फील्डर मौजूद नहीं था। स्क्वेयर लेग पर खड़ी फील्डर ने हालांकि कोशिश की गेंद को रोकने के लिए मगर सफल नहीं हो पाई। एक चौका स्मृति और भारत के खाते में। 16 भारत बिना किसी विकेट पर 2.4 ओवर के बाद। इस ओवर में 5 रन आ चुके हैं, 2 गेंदें बाकी। स्मृति सामने है लूसी हैमिल्टन के। गुड लेंथ गेंद जिसमें ज्यादा गति नहीं थी, थोड़ा सा लहराव अंदर की तरफ आती हुई, सीधे बल्ले से इसे सुरक्षात्मक तरीके से खेला गया। किसी तरह का जोखिम नहीं ले रहे हैं अश्विन दोनों बल्लेबाज, वो जानते हैं कि विकेट को सुरक्षित रखना काफी जरूरी और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बल्लेबाजी की जा रही है। अभी तक कोई भी हवाई स्ट्रोक दोनों बल्लेबाजों की तरफ से देखने को नहीं मिला है। इस ओवर की आखिरी गेंद, भारत को यह मुकाबला जीतना ही होगा क्योंकि साउथ अफ्रीका अपना मुकाबला जीत चुका है। लूसी की यह गेंद गुड लेंथ गेंद, ड्राइव करना चाहती थी, बीट हुई, भाग्यशाली रही कि बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लगा। 3 ओवर्स की समाप्ति के बाद भारत 16 बिना किसी विकेट पर।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
4: ली। जानिए आभा के बारे में।
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: So that was a great start from India. One, another boundary coming in from Smriti's bat in this over. So 3 boundaries for her in her brief score of 14 runs of 15 deliveries. Shefali Verma hasn't gotten much opportunity as of now. She's just faced 3 deliveries, scored a single. But now this over, she's going to be on strike after Smriti Mandhana was beaten on the last ball of Lucy Hamilton. Matchups we need to see. I was waiting for Ashley Gardner to come, and this time Shefali Verma goes over the bowler's head on the long off region for a beautiful, beautiful boundary. What a boundary this was from Shefali's bat.
1: Ye laga abha ka chauka.
5: We were waiting for this. Shefali was itching one to join Smriti Mandhana. She has scored 3 boundaries, and you can see that there's a kind of competition, Birinder Jain, between them this time again. Ashley Gardner, again, the tossed up delivery, but played very carefully along the ground. The ball, by the time, rolls down to long on region. Batsmen, both the batters have enough time to cross for a single, and that moves the team score to 21 without loss with 4 boundaries in this. So that's a cautious start, and all boundaries are coming along the ground. So that was a great sign for Indian team that they are not going to go anything in the air unless that ball's demands or invites them to come and launch it over the boundary. So 3.2 overs, 21 without loss. Smriti on 14 or 15 delivery. Shefali on 7. This time Smriti Mandhana again cautious, went on the back foot. There was a good length ball, went back and drives it down to the mid-off region. So no damage done. 3.3 overs gone, 21 without loss, 4 boundaries of Indian. And Ashley Gardner's, if you look at matchup, she has actually taken Smriti Mandhana for cleaners. She has actually taken 10 dismissals against her. So there was a good matchup for Ashley Gardner and Smriti, and that makes Smriti more conscious. This time she drives, dances down the wicket, plays on foot, full toss, and enough time to cross for a single. So Shefali on strike, 22 without loss, 3.4 overs gone. This time Shefali again on the rise, picks it up and over the boundary for a sixer.
1: Ye laga abha ka chakka.
5: This was outside the off stump, loose delivery, and Shefali is not going to give away anything on that. And she

0: actually targets the loose delivery, and she was on to the target, launches it over the long off boundary for 6-1-6 and 1-4 off Ashley Gardner. She is one of the most successful bowler of Australia. Ball and launches it over for a 6. That moves Indian score to 28 with 1-6 and 4 boundaries, and 3.5 overs, 28 without loss. Again in the air, but lands safely on the left hand side of Ashley Gardner, and that brings to end of Ashley Gardner's over. She has given 13 runs in that over, and Indian score 29 without loss at the end of 4.
1: कमाल की बल्लेबाजी रही है इस ओवर में शेफाली वर्मा की. अश्विन, जिस तरह से फ्लाइटेड गेंदों पर उठाकर ऊंचे स्ट्रोक्स खेले हैं शेफाली वर्मा ने, पहला मिड ऑफ के ऊपर से 4 रन के लिए और दूसरा कमाल का स्ट्रोक था कवर्स के ऊपर से 6 रन के लिए. और इस वर्ल्ड कप में शेफाली वर्मा ने स्पिन गेंदबाजी पर जिस तरह से आक्रमण किया है वो दर्शनीय है. बांग्लादेश के विरुद्ध भी जो 53 रन की पारी उन्होंने खेली थी 24 गेंदों में, जिसमें 8 चौके और 1 छक्का शामिल था, उसमें भी हमने देखा कि स्पिन गेंदबाजी को में उन्होंने स्ट्रोक्स खेलने का प्रयास किया है. पावर प्ले में जबकि घेरे में ज्यादातर फील्डर्स हैं, घेरे के बाहर सिर्फ 2 फील्डर्स हैं, और मिड ऑफ के ऊपर से जिस तरह से उन्होंने स्ट्रोक्स खेले हैं वो दर्शनीय है, काबिले तारीफ है, और बिल्कुल सही है इस मुकाबले में भारत के लिए जिस तरह से एक अच्छी साझेदारी की जरूरत है भारत को. तो भारत का स्कोर 29 4 ओवर्स की समाप्ति के बाद. शेफाली वर्मा इस समय बल्लेबाजी कर रही हैं 14 रन पर 7 गेंदों का सामना करने के बाद, और स्मृति है 15 पर 17 गेंदों का सामना करने के बाद. नए ओवर की शुरुआत पैरी करती हुई गेंदबाजी में परिवर्तन, लूसी हैमिल्टन की जगह पर पैरी को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है. रनों की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ती हुई, आत्मविश्वास में आते हुए ये दोनों बल्लेबाज, और प्रहार करते हुए आक्रमण करते हुए ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी के ऊपर, और ये जरूरी है और एक साझेदारी की जरूरत है भारत को. 4.1 ओवर के बाद भारत 29 बिना किसी विकेट पर. शेफाली वर्मा है सामने पैरी के. ओवर द विकेट, लंबी ऊंची कद की पैरी, मिडल और लेग स्टंप के बाहर ये गेंद फ्लिक करना चाहती थी, बीट हुई, मगर वाइट बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से. भारत का स्कोर हुआ 30 बिना किसी विकेट पर. अच्छी क्रिकेट यहां पर लॉर्ड्स के इस मैदान में. भारत के लिए ये महत्वपूर्ण मुकाबला, इस मुकाबले को जीतना ही होगा, और जीत के लिए चाहिए एक अच्छा लक्ष्य जो कि ऑस्ट्रेलिया को देना होगा, ताकि ऑस्ट्रेलिया को दबाव में लाया जा सके, और इसके लिए जरूरी है साझेदारी का होना और गेंदबाजों के ऊपर आक्रमण का करना. वुडलैंड गेंद ऑफ स्टंप के बाहर स्टीयर करना चाहती थी, बीट हुई, डॉट बॉल, अच्छी गेंदबाजी करती हुई पैरी. 114.9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये फेंकी हुई गेंद, हालांकि हवा में ज्यादा स्विंग नहीं और टिप्पा खाने के बाद भी गेंद सीधी रही, मगर स्टीयर करने के प्रयास में बीट हुई थी शेफाली वर्मा, जो कि इस समय 9 गेंदों का सामना करने के बाद 14 पर बल्लेबाजी कर रही है. 30 भारत का स्कोर 4.2 ओवर के बाद. पैरी की ये गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ लेग स्टंप पर बैकफुट पर जाकर इसे फ्लिक किया, डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र पर फील्डर मौजूद है वहां पर. जब तक गार्डनर थ्रो करेंगी, बेथ मूनी के दस्तानों में एक रन भागने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास. 15-15 दोनों का स्कोर. स्मृति और शेफाली का अच्छी बल्लेबाजी करती हुई 4.3 ओवर के बाद भारत 31 बिना किसी विकेट पर. स्मृति सामना करेंगी पैरी का. इस ओवर में अब तक 2 रन आए हैं, एक बल्ले से और एक वाइट बॉल की मदद से. बाएं हाथ की बल्लेबाज स्मृति अच्छी टाइमिंग से आज बल्लेबाजी कर रही हैं. 2 खूबसूरत बैकफुट पर ऑन ड्राइव खेले हैं उन्होंने. राउंड द विकेट स्मृति के लिए, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पुल करना चाहती थी, पैड से टकराई, हालांकि हल्की सी LBW की अपील भी की गई, मगर खुद गेंदबाज ये जानती थी कि ये गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, इसीलिए अपील में ज्यादा प्रभाव नहीं. और स्मृति अपने आप से नाखुश होती हुई, वो जानती है कि यह कमजोर गेंद थी और पुल शॉट खेलकर रन बटोरे जा सकते थे इस गेंद पर, मगर सफल नहीं हो पाए. 31 भारत का स्कोर बिना किसी विकेट पर 4.4 ओवर के बाद. पैरी अपने ओवर की अगली गेंद लेकर अराउंड द विकेट, इस बार ये लेग स्टंप पर बैकफुट पर जाकर इसे पुल कर दिया, स्क्वायर लेग क्षेत्र में, गेंद सीमा रेखा के पार जा रही है, 4 रन.
2: ये लगा आभा का चौका.
1: कमजोर गेंद, और इससे पहले भी कमजोर गेंद थी जिसको भुना नहीं पाई थी स्मृति, मगर इस बार चूकी नहीं वो, और सफाई से पुल शॉट को खेला गया गैप में जहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं था. 35 हुआ भारत का स्कोर. 19 पर पहुंची स्मृति 19 गेंदों का सामना करने के बाद, जिसमें 4 शानदार चौके शामिल हैं. पैरी अराउंड द विकेट, एक बार फिर से शॉट.

0: कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: 6 ओवर्स का खेल हो चुका है भारतीय पारी का और 43 रन भारत ने बनाए हैं। शानदार बल्लेबाजी की है दोनों, स्मृति और शफाली वर्मा ने। 22 पर हैं स्मृति, जिन्होंने 22 गेंदों में ही ये 22 रन बनाए हैं 4 चौकों की मदद से, और शफाली वर्मा है 20 पर 14 गेंदों का सामना करने के बाद, जिसमें 2 चौके और 1 शानदार छक्का शामिल है। अब तक के खेल में किसी तरह का अश्विन जोखिम नहीं उठाया गया है, और अगर जोखिम उठाया गया है तो वो काफी कैलकुलेटेड रहा है, विशेष तौर पर शफाली वर्मा की तरफ से, जो फ्लाइटेड गेंदों पर उन्होंने हवाई स्ट्रोक्स खेले, मिड ऑफ और कवर्स के ऊपर पीछे कोई फील्डर मौजूद नहीं था, और जिस तरह से सूझबूझ से बल्लेबाजी की है लग रहा है कि ये दोनों लंबी पारी की तरफ से आ रहे हैं।
2: Precisely, Virender Jeet, as you mentioned, they have been a very cautious in their approach. They haven't taken any risk, but as we know, Shefali Verma, she is known to hit the balls which are available to hit, and she's doing that. If you look at those two deliveries from Ashley Gardner, she went behind them. She knows it was the outside, awesome full length delivery. She went it over and lofts it over the boundary for a 6. So it was a mixed approach, I would say, where aggression when they need to show, when the deliveries are there to hit, they are hitting that. But otherwise, they have been very watchful, and that's what brings India after 6 overs. 43, I think, is a decent total, and you would take it any day, Virender ji.
1: Aur dekha jaye to Ashwin, is World Cup mein ab tak ye dusri aarambhik ballebazon mein sabse badi saanjhedari hai. Netherlands ke virudh dono ballebazon ne 115 run ki saanjhedari ki thi, aur ab ye 43 run ki saanjhedari hai. Pakistan ke virudh 6 run ki saanjhedari bani thi, South Africa ke virudh 30 ki, aur Bangladesh ke virudh 31 run ki. To ye kaha ja sakta hai ki is aable mein bhi ye इस वर्ल्ड कप में भारत की सबसे बड़ी साझेदारी होनी चाहिए, तो भारत एक अच्छा लक्ष्य दे सकता है ऑस्ट्रेलिया को।
2: Precisely, and I believe that what against when you are under a pressure situation and doing that, that's what is required from a caliber of these two players. They need to put up, come up a friend, lead by example, and set something for the batsman coming up, and that's what they're doing. And what great opportunity it could be then a quarterfinal, virtual quarterfinal for India in this, and they need to stay in the game if they have to stay in this World Cup, and they are doing the best, and I'm quite impressed with their playoff approach. So far.
1: और अगर ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी की बात की जाए तो लूसी हैमिल्टन ने काफी सटीक गेंदबाजी की है। 2 ओवर में उन्होंने 8 रन दिए हैं, स्टंप्स के बीचों बीच अपनी गेंदबाजी को रखा है, स्ट्रोक बनाने का मौका नहीं दिया। किम गार्थ ने कुछ कमजोर गेंदबाजी बीच में जरूर की है, 2 ओवर में 15 रन खर्च किए हैं उन्होंने, और गार्डनर को आड़े हाथों लिया शफाली वर्मा ने, एक ही ओवर में 13 रन लगाए थे शफाली वर्मा ने उनके विरुद्ध, और एलिस पेरी जो कि अब तक एक ओवर उन्होंने फेंका है, इसमें भी उनकी तरफ से कुछ शॉर्ट पिच गेंदबाजी देखने को मिली, जिस पर पुल शॉट खेलने का मौका मिला स्मृति को, और बेरहम की तरफ से अभी गेंदबाजी की जानी है, और देखना है कि किस तरह का आक्रमण वो इन दोनों भारतीय बल्लेबाजों के आगे, स्मृति और शफाली के आगे करेंगे। ओवर प्ले के बाद टाइम आउट था, और उसके बाद ये दोबारा से खेल शुरू होता हुआ। 22 पर हैं स्मृति, शफाली वर्मा हैं 20 पर, 14 गेंदों का सामना करने के बाद। 6 ओवर के बाद भारत का स्कोर 43, 7.17 की औसत। लेग स्पिन गेंदबाज बेरहम, जिन्होंने शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद की स्मृति के लिए, बैकफुट पर जाकर ड्राइव किया 4 रन के लिए।
3: ये लगा आभा का चौका।
1: जॉर्जिया वेरम की ये गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ, ऑफ स्टंप के बाहर बैकफुट पर गई और प्रहार किया पॉइंट क्षेत्र पर, जहां गैप मिला स्मृति को और 4 रन भी। 47 हुआ भारत का स्कोर बिना किसी विकेट पर।
4: द क्रिकेट कमेंट्री विल कंटिन्यू आफ्टर अ शॉर्ट फीफा अपडेट।
5: World Football Update from the BBC.
6: Hello, I'm Nick Hatton at the BBC Sports Centre with the latest World Cup news. DR Congo set up a World Cup last 32 meeting with England as they reached the knockout stages for the first time. They came from behind to beat Uzbekistan 3-1 in their final group stage game. The win sees them finish third in Group K and will face England on Wednesday in Atlanta. Here's manager Sébastien Desabre.
7: I think today we knew what we had to do. We conceded a goal a bit early in the game, but like against Portugal or even Nigeria, we were able to bounce back. We had dedication and motivation. For the game itself, the win was straightforward. That's an achievement in itself. And for us, the most important thing is that we showed confidence.

0: Then a cautious start for Indian women here. Again, Shefali was looking to drive it. She actually moves ahead to play the ball, but then checks the shots and then somehow navigate it on the onside and crosses for a single. So just 4 runs off this 5 deliveries. 53 on board already with 7.5 runs over. So this has been a good over from Australians' point of view, where they are going for the boundaries. But this time, after 6 overs, there's no boundary and Smriti must be looking for that. But no, a good length delivery drives it down. There's Ashley Gardner in the deep and throws it back to the keeper. That's the end of over number 8, India 54 without loss.
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ले।
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
2: आभा?
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
4: क्या परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: 7.37 की औसत से भारत ने 54 रन बना लिए हैं अब तक और मंधाना है 29 पर और शेफाली वर्मा 23 पर इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। गार्डनर को दोबारा गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। गार्डनर जो कि अपने पहले ओवर में काफी महंगी साबित हुई थी, स्मृति सामना करेगी। फ्लाइटेड गेंद, इसे उठाकर खेला एक्स्ट्रा कवर की तरफ, लॉन्ग ऑफ से भागी फील्डर और जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करें, 1 रन भागने का मौका। गार्डनर ने स्मृति को 10 बार आउट किया है 31 T20 पारियों में। जतिन सूद हमारे स्टेटिस्टिशियन हमें बता रहे हैं और स्मृति को ये बात ध्यान होगी जिसकी वजह से काफी सुरक्षात्मक तरीके से और अपने आप को बचाते हुए खेलती हुई 30 पर बल्लेबाजी कर रही है। शेफाली वर्मा सामना करेंगी। फ्लाइटेड गेंद, ऑन ड्राइव करना चाहती थी, बीट हुई, गेंद पैड से टकराई, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं। ये खतरनाक हो सकता था जिस तरह से बीट हुई थी शेफाली। 2 गेंदों में 1 रन, 55 भारत का स्कोर 8.2 ओवर के बाद। गार्डनर ओवर द विकेट, एक बार फिर से शफाली के लिए फ्लाइटेड गेंद, कदमों का इस्तेमाल, कवर क्षेत्र में ड्राइव किया मगर फील्डर मौजूद है वहां पर, रन बनने की संभावना दिखाई नहीं दे रही। 55 भारत का स्कोर 8.3 ओवर के बाद। फ्लाइट कर रही हैं गार्डनर, न्योता दे रही हैं और जिसे स्वीकार कर रही हैं शफाली वर्मा। बार बार कदमों का इस्तेमाल करके ड्राइव करने का प्रयास करती हैं वो और अपने पहले स्पेल में अच्छा आक्रमण किया था। इस बार उठा दिया मिड विकेट की तरफ, गेंद सीमा रेखा पार चली गई, हवाई रूट लेती हुई 6 रन।
6: ये लगा आभा का छक्का।
5: मिडल स्टंप पर ये फ्लाइटेड गेंद थी जिसका पूरा इस्तेमाल किया शफाली वर्मा ने और बल्ले के बीचों बीच लेते हुए स्लॉग स्वीप किया इसे मिड विकेट क्षेत्र पर और गेंद सीमा रेखा पार कर गई 6 रन के लिए। 61 भारत का स्कोर। रनों की रफ्तार इस ओवर में तेज होती हुई, 7 रन आए हैं, 2 डॉट गेंदें, 1 छक्का और 1 सिंगल। एक बार फिर से फ्लाइटेड, फुल टॉस गेंद, कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गेंद इस बार सीमा रेखा पार जा रही है, 4 रन।
6: ये लगा आभा का चौका।
5: आक्रमण करती हुई शफाली वर्मा, गार्डनर हालांकि फ्लाइट कर रही हैं गेंदों में और उस फ्लाइट के न्योते को पूरी तरह से गेंद को 4 रन में बनाया। 65 हुआ भारत का स्कोर बिना किसी विकेट पर 8.5 ओवर के बाद। 11 रन इस ओवर में आ चुके हैं। आक्रमण करती हुई दोनों भारतीय बल्लेबाज, 30 पर हैं स्मृति और शफाली इस समय बल्लेबाजी कर रही हैं 33 पर। गार्डनर एक बार फिर से ओवर द विकेट, एक बार फिर से फ्लाइटेड गेंद, फिर से कदमों का इस्तेमाल किया गया, ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर और 1 रन मिलेगा। 9 ओवर्स के बाद भारत 66 बिना किसी विकेट पर।
1: रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ले।
3: जानिए आभा के बारे में। आभा यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें।

0: what kind of approach they will have from here, because as Birindaji mentioned that we need to be at the tempo. Cuts it down, lovely stroke play, but similar kind of fielding there by Ashley Garner. She actually dives it down, feels it and throws it back to the keeper. This was Sutherland who feels it well, and that is the end of over number 10. 74 for one, India.
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ले।
3: गरीब जानिए आभा के बारे में।
2: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर 74 एक विकेट पर, और सदरलैंड अपना नया ओवर शुरू कर रही हैं। पहली ही गेंद पैड से टकराई, LBW की अपील, और ऑस्ट्रेलियाई जो फील्डर्स हैं वो विचार कर रही हैं कि रिव्यू लेना चाहिए कि नहीं। टाइमर चल रहा है। स्टंप के बीचों बीच ये गेंद थी जिसे बैकफुट पर जाकर ऑन ड्राइव करना चाहती थी स्मृति, और रिव्यू ले लिया गया है। 74 भारत का स्कोर एक विकेट पर, और सदरलैंड जो कि तेज गति की लंबी ऊंची कद की गेंदबाज हैं, स्टंप्स के बीचों बीच मिडल स्टंप पर ये गेंद थी जिसे स्मृति मंधाना ड्राइव करना चाहती थी बैकफुट पर जाकर, मगर गेंद पैड से टकराई थी और LBW की अपील की गई। अंपायर पर उसका कोई प्रभाव नहीं था जिसकी वजह से रिव्यू लिया गया। बैकफुट पर जाकर इसे पुल किया था स्मृति ने, और गेंद उनकी जांग से टकराई है। जिस तरह से गेंद में गति और उछाल है, शायद ये हो सकता है कि उछाल ज़्यादा हो, और ये रिव्यू में देखा गया कि जो गेंद का टिप्पा है वो लेग स्टंप के बाहर पड़ा है, जिसकी वजह से रिव्यू पर गौर करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। स्मृति सुरक्षित अपनी क्रीज पर इस समय बल्लेबाजी कर रही हैं 31 पर। शॉर्ट ऑफ लेंथ ये गेंद थी लेग स्टंप के थोड़ी बाहर, जिसे पुल करने का प्रयास किया था, पैड से टकराई थी, जिसकी वजह से LBW की अपील की गई। प्रभाव नहीं था अंपायर पर इस अपील का, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने रिव्यू लिया था जिसे नकार दिया है। सदरलैंड एक बार फिर से इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, ड्राइव किया पॉइंट क्षेत्र पर, और डाइव करके इस गेंद को फील्ड किया गया, मगर फिर भी एक रन भागने का मौका स्मृति के पास। 75 भारत का स्कोर एक विकेट पर 10.2 ओवर के बाद, 7.26 का औसत इस समय। रनों की रफ्तार को अब तेज करना होगा अगर ऑस्ट्रेलिया को एक अच्छा लक्ष्य देना है, और जेमाइमा इसी मानसिकता से आई हुई लगती हैं। आते ही उन्होंने स्ट्रोक्स खेलने शुरू कर दिए हैं, आक्रमण करना शुरू कर दिया है, और देखना है कि इस ओवर में सदरलैंड की तेज गति की गेंदबाजी के आगे किस तरह से आक्रमण करेंगी, ये देखने वाली दिलचस्प बात रहेगी। सदरलैंड की ये गेंद ऑफ स्टंप के लेग स्टंप के बाहर फ्लिक करने का प्रयास, मगर गेंद से काफी दूर, जिसकी वजह से वाइड बॉल का इशारा, एक रन भारत के खाते में। 76 भारत का स्कोर 10.2 ओवर के बाद। जेमाइमा काफी समझदार बल्लेबाज हैं, गेंद खेल के नब्स को वो समझती हैं और कैलकुलेटेड रिस्क लेकर अपनी इनिंग्स को बनाती हैं। हालांकि इस वर्ल्ड कप में ज्यादा सफल अब तक नहीं रही हैं। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद फ्लिक किया स्क्वायर लेग क्षेत्र पर, जब तक गेंद को फील्ड किया जाए भागने का मौका, एक रन जेमाइमा और भारत के खाते में। 77 हुआ भारत का स्कोर। जेमाइमा रोड्रिग्स T20 मुकाबलों में 130 मैचेस अंतर्राष्ट्रीय मैचेस खेल चुकी हैं, 117 पारियां, 2790 रन, 118.92 के स्ट्राइक रेट से, और अपने करियर में 16 अर्धशतक लगा चुकी हैं। ये बताता है कि कितना अनुभव है उनके पास। स्लो फेंकी हुई गेंद और चकमा खा गई स्मृति मंधाना, बीट हो गई, ड्राइव करना चाहती थी, और ये एक और डॉट बॉल, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं। सदरलैंड चतुराई से गेंदबाजी करती हैं, अपनी गेंदों में धीमी गति की गेंद भी फेंकती हैं जो परेशान करती है बल्लेबाज को, और इस बार परेशानी में दिखाई दी स्मृति मंधाना। अराउंड द विकेट गेंदबाजी कर रही हैं बाएं हाथ की बल्लेबाज स्मृति को। इस ओवर की पांचवी गेंद सदरलैंड की, इस बार ओवर पिच गेंद सीधे

0: बल्ले से ड्राइव किया मिड ऑफ क्षेत्र पर, गैप मिला स्मृति को, सीमा रेखा पार कर गई गेंद, 4 रन।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: 7 रन अब तक आ चुके हैं इस ओवर से, एक वाइट बॉल से, 2 सिंगल्स और एक शानदार स्मृति के चौके से। सीधे बल्ले से खूबसूरत तरीके से ड्राइव किया था सदरलैंड की इस गेंद को, हालांकि इस गेंद को भी धीमी गति से फेंका गया था सदरलैंड की तरफ से, मगर इसे समझा, अच्छी तरह से पढ़ा और सीधे बल्ले से गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेते हुए ड्राइव किया। शानदार बल्लेबाजी। 36 पर स्मृति 34 गेंदों का सामना करने के बाद 81 भारत का स्कोर। रनों की रफ्तार को तेज करना होगा, आक्रमण करना होगा ऑस्ट्रेलिया की।

0: doing a wrist spin and ball is coming in nicely to the bat, but with that pressure, I believe something is playing in Jemima's mind that she was she could have gone for a hit in this ball, but she actually checked the stroke, and it's after 11.5 overs, India 84 for 2. So this over, a wicket fell and just a single which Smriti took at the very first, so they would need a boundary as they have been picking up generally. So what it's really interesting to see what Jemima does this time. She actually reaches the ball, pushes it down along the ground to mid-wicket region and has a time to switch the guard. So 12 overs gone, 85 for 2 India.
1: रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ले।
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
2: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ले।
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
2: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
4: आठ ओवर्स का खेल बाकी, भारतीय पारी का 85 भारत ने बनाए हैं 12 ओवर्स के बाद, और 8 ओवर्स में 10 की औसत से अगर 80 रन बनते हैं 165 रन का लक्ष्य दे पाएगा। देखना यह है कि आक्रमण भारत का किस तरह से रहेगा। हैमिल्टन को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है, स्क्वायर ड्राइव, कप्तान हरमनप्रीत का डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए एक रन भागने का मौका। 86 हुआ भारत का स्कोर। अभी स्मृति मंधाना आउट हुई जब भारत का स्कोर 83 था, और हमारे स्टेटिस्टिशियन जतिन सूद हमें बता रहे हैं कि स्मृति ये चौथी बार है कि अपने 172 T20 मुकाबलों में रन आउट हुई हैं। 172 पारियों में वो ये चौथी बार रन आउट हुई हैं। ज़्यादा रन आउट नहीं होती हैं अगर आज गलती कर बैठी। हैमिल्टन ओवर द विकेट, बाएं हाथ की धीमी गति से फेंकी हुई गेंद हवा में, मगर किसी तरह का कोई नुकसान नहीं। मिडॉन पर इस गेंद को खेला गया था जमाइमा की तरफ से, और एक रन भागने का मौका। इस ओवर में दो गेंदों में दो रन, 87 भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। रनों की रफ्तार को तेज करना होगा इस मैदान पर। विकेट पूरी तरह से बल्लेबाजों को मदद देने वाला, ज्यादा गति या उछाल या टिप्पा खाने के बाद मुड़ती हुई गेंदें दिखाई नहीं दी हैं। हैमिल्टन की शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद ऑफ स्टंप के बाहर कट करना चाहती थी, बीट हुई डॉट गेंद, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। 87 2 विकेट पर भारत। हरमनप्रीत जो कि इस वर्ल्ड कप में इतना अच्छा।
5: दिस इज दिल्ली, प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट प्रोग्राम। दिस इज आकाशवाणी। We now bring you the English version of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi's Mann Ki Baat, broadcast earlier this morning at 11 on the national network of Akashvani.
6: My dear countrymen, Namaskar. It gives me immense joy to connect with all of you once again through Mann Ki Baat. Half of the year 2026 is drawing to a close. Over these 6 months, we've discussed numerous achievements of our countrymen in Mann Ki Baat. In June as well, the nation has attained certain achievements that fill every citizen with pride. These successes are linked to the country's security and self-reliance. Recently, I had the opportunity to attend a Navy-related event in Kolkata. There, INS Dhunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra were inducted into the Indian Navy's fleet. Everything from the design to the manufacturing of these ships is indigenous. Friends, the country also achieved a major success in the aviation sector. In the month of June itself, the C-295 aircraft is made in India. The C-295 aircraft has completed its maiden flight, and 40 such aircrafts are being manufactured right here in India. This is providing new momentum.

0: दोनों अच्छा प्रहार करती हैं, आक्रमण करती हैं, तो इससे ज्यादा भी शायद मिल सकते हैं। कम से कम इतना तो चाहिए कि आप एक बाउंड्री ओवर में करें और उसके बाद सिंगल्स या डबल्स आते हैं तो 8-10 रन, अगर यहां से 40 रन और आते हैं तो 160 रन के करीब भारत लक्ष्य दे पाएगा ऑस्ट्रेलिया को। और अगर ये देखा जाए कि हरमनप्रीत ज्यादा आक्रामक रहती हैं, एक दो ओवर भारत के लिए अच्छे आते हैं, तो इससे ज्यादा का भी लक्ष्य भारत दे सकता है ऑस्ट्रेलिया को। मगर ये निर्भर करेगा कि हरमनप्रीत किस तरह की बल्लेबाजी करती हैं। जब ये विश्राम के दिन थे अश्विन, तो हरमनप्रीत ने लंबे स्ट्रोक्स खेलने का अभ्यास किया है नेट में, ये देखा गया है। शायद उन्हें मालूम था कि इसी इन हालात में उनकी बल्लेबाजी आएगी और इस तरह का आक्रमण उन्हें करना होगा जिसके लिए वो पहले से ही अभ्यस्त होकर आएंगी। 16 ओवर्स में 118 रन भारत के, 2 विकेट के नुकसान पर। गार्थ अपने ओवर की शुरुआत करती हुई, ये पहला गेंद ऑफ स्टंप पर धीमी गति से फेंका हुआ जमाइमा के लिए, ड्राइव करना चाहती थी, ठीक से टाइम नहीं कर पाई, मगर फिर भी एक रन मिलेगा जब तक कवर से गेंद को फील्ड करके वापस थ्रो किया जाए। गार्थ की ये पहली ही गेंद चतुराई भरी, गति परिवर्तन, धीमी गति से फेंकी हुई जिस पर प्रहार करना मुश्किल, मगर फिर भी एक रन मिला। 119 भारत, 2 विकेट पर 16.1 ओवर के बाद 7.36 का औसत इस समय। 119 पर 2 हरमनप्रीत सामना करेंगी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज किम गार्थ का, जो कि अब तक 2.1 ओवर में 16 रन दे चुकी है। इस ओवर की दूसरी गेंद ओवर द विकेट हरमनप्रीत के लिए, गुड लेंथ, धीमी गति से फेंकी हुई, सीधे बल्ले से ड्राइव किया मिड ऑफ पर और एक रन भागने का मौका। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज ये समझ चुकी हैं कि बल्लेबाज प्रहार करेंगे, आक्रमण करेंगे, इसलिए ज्यादा गेंदों में गति नहीं दी जा रही है, बल्लेबाज को खुद जोर लगाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आक्रमण करना, चौके ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल काम यहां पर दिखाई देता हुआ। 16.2 ओवर के बाद 120 भारत का स्कोर, 2 विकेट। गार्थ ने अपने ओवर की दोनों गेंदें धीमी गति से फेंकी, इस ओवर की तीसरी गेंद फेंकने के लिए तैयार जमाइमा के लिए। इस बार फुल टॉस गेंद उठा दिया मिड विकेट की तरफ, मगर फील्डर वहां पर मौजूद हैं। गार्डनर जब तक थ्रो करें, एक रन भागने का मौका। 3 गेंदें 3 रन इस ओवर में अब तक। 121 2 विकेट पर भारत, औसत 7.33 का होता हुआ। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज काफी प्रभावशाली रही हैं, अच्छी तरह से अनुशासन से गेंदबाजी की है उन्होंने, जिसकी वजह से भारत को बाउंड्रीज ढूंढने में थोड़ी दिक्कत आ रही है इस समय। गार्थ अपने ओवर में चौथी बार, इस बार फिर से धीमी गति से फेंकी हुई गेंद, ड्राइव करना चाहती थी, बल्ले का बाहरी किनारा लगा, थर्ड मैन बाउंड्री से गेंद सीमा रेखा पार कर गई, 4 रन।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: 125 पर 2 भारत इस ओवर में, जो कि 4 रन मिलने मुश्किल लग रहे थे, इस धीमी गति से ऑफ स्टंप के बाहर फेंकी हुई गेंद पर, जबकि खेलना चाहती थी मिड विकेट पर, बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री से होती हुई सीमा रेखा पार कर गई। 125 पर 2 भारत, 7 रन अब तक इस ओवर में आते हुए, 2 गेंदें बाकी। गार्थ अपने ओवर की अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार, ओवर द विकेट कप्तान हरमनप्रीत के लिए, ओवर पिच गेंद, सीधे बल्ले से ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए, एक रन फिर से भागने का मौका। 126 भारत का स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। एक गेंद इस ओवर में अभी बाकी जमाइमा। बड़े शॉट लगाने में जमाइमा रोड्रिग्स को थोड़ी परेशानी आ रही है, जिसकी वजह से ज्यादा सिंगल्स के साथ खेल रही हैं वो। 20 गेंदों में 22 रन बनाए हैं। इस बार ये धीमी गति से फेंकी हुई ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, जिसे ड्राइव किया था जमाइमा ने, कवर क्षेत्र पर डीप कवर से इसको फील्ड किया गया, एक रन भागने का मौका। 17 ओवर की समाप्ति के बाद 127 भारत का स्कोर, 2 विकेट।
2: So end of over number 17, 127 for 2 India, with Jemima Rodrigues on 23 or 21 with one boundary she picked up, but she is playing so well that both of these together have put in a partnership of around 44 runs in just the 33 deliveries that they have faced. So 18 more legal deliveries to be bowled in this match. And what I've seen so far, that though Australians has been very tidy on their lines, they haven't given anything. The player has to work out to create the opportunities and play the stroke, place the ball and find the gaps. That's the India so far has managed to do that. But also that the pitch has been little gripping the ball. It's not coming on as

0: डिफेंडर मौजूद नहीं था और गेंद सीमा रेखा पार कर गई 4 रन के लिए 139 भारत का स्कोर 2 विकेट पर 18.2 ओवर के बाद। क्या ये ओवर बड़ा होगा भारत के लिए? रन आएंगे, बाउंड्रीज लगा पाएंगी हरमनप्रीत जो कि 37 पर हैं 22 गेंदों का सामना करने के बाद। 2 गेंदों में 5 रन अब तक आ चुके हैं। सदरलैंड एक बार फिर से धीमी गति से फेंकी हुई गेंद, इसे स्लॉग स्वीप किया, मिड विकेट क्षेत्र पर फील्डर मौजूद हैं मगर गेंद उनके आगे गिर गई, काफी देर हवा में रही। 1 रन मिलेगा हरमनप्रीत को। 6 रन 3 गेंदों में 18.3 ओवर के बाद 140 भारत का स्कोर। चतुराई से गेंदबाजी करती हुई सदरलैंड ये देखते हुए कि हरमनप्रीत आक्रमण करेंगी, चौका लगा चुकी हैं वो। धीमी गति से गेंद को फेंका गया जिसकी वजह से मिस टाइम हुआ और बड़ा स्ट्रोक नहीं लगा पाए हरमनप्रीत। 3 गेंदों में 6 रन 140 पर 2 भारत 18.3 ओवर के बाद। सदरलैंड की ओवर द विकेट गेंद एक बार फिर से धीमी गति से फेंकी हुई, ड्राइव किया वापस गेंदबाज की तरफ, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया गया सदरलैंड द्वारा। हालांकि प्रहार काफी तेज था मगर फील्ड करने में सफल रही और डॉट गेंद 4 गेंदों में मात्र 6 रन आते हुए 140 2 विकेट पर भारत का स्कोर। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे जो सफल गेंदबाज हैं वो मोलिनू ही रही हैं, 1 रन आउट स्मृति हुई हैं और 1 सफलता मोलिनू को मिली है। इस बीच धीमी गति से फेंकी हुई ये शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद बैकफुट पर जाकर इसे पुल किया, डीप स्क्वायर लेग पर कैच छिटक गया और गेंद सीमा रेखा पार कर गई 6 रन के लिए।
1: ये लगा आभा का छक्का,
0: डीप स्क्वायर लेग पर इसे पुल किया था इस धीमी गति की गेंद को जेमाइमा रोड्रिग्स ने, डीप स्क्वायर लेग पर बिल्कुल हाथों में ये कैच था उनके और छिटक कर गेंद सीमा रेखा पार कर गई 6 रन के लिए। 6 रन भारत के खाते में 146 2 विकेट पर भारत 18.5 ओवर के बाद। इस ओवर में अब तक 12 रन आ चुके हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद सदरलैंड की, गुडलिन गेंद कवर्स के ऊपर से ड्राइव किया सीधा डीप, कवर्स पर खड़े फील्डर के हाथ में एक बार फिर से कैच छिटक गया और 1 रन भागने का मौका जमाइमा के लिए। किस्मत अच्छी है इस बार जमाइमा की, 19 ओवर्स के बाद 147.74 का औसत है इस समय पारी का भारत के।
2: Brindaji, as it's been said in English, luck favors the bravo, and that's what is happening with Jemima. She has been brave today. She has been very skillful today, and she's been managed to score 34 of those 26 deliveries that she has faced with 28 deliveries that she has faced with just one boundary and 1 6, and that takes India's total to 147 for 2 in 19 overs. 13 came off of that last over with a 6 and a 4, and 2 catch dropped in that over. So that finishes Annabelle's 4 overs 36 runs without wicket, and Sophie would bowl the last over of the match. 3 overs 23 runs so far she has given, she has taken a wicket, the only bowler who has taken, and this time she will bowl to Jemaima Rodrigues who has taken single, but there's a fall of a wicket in between, and then or I think she has retired her. We need to see what has happened in between. Maybe she has changed, she has retired her. So 19 overs gone, 147 for 3. Jemaima goes out and in comes Richa Ghosh. She knows that Indian management knows that they need to maximize the 6 balls as much as they can score. So Harmanpreet is a non-striker end of 38 runs of 23 deliveries, and Jemaima walks herself out of the to the pavilion, and in comes Richa Ghosh this time, and she goes it from ball number 1 and over. She took the aerial route. By the time ball runs to Ashley Gardner, she has the time to take for 1. So 148 for 3. That 13 runs came in the last over. That actually has prompted Indian scoring rate to 7.72 runs per over. And there's a lot happening in the middle with Jemaima telling what's happening with the ball. Ball is not coming nicely onto the bat. So they think they have enough on the board. But with Australians, you push the envelope as much as you can. This time, Harmanpreet dances down the wicket and lofts it over for 6.
1: ये लगा आभा का छक्का।
2: And that six brings India's 150. India are now 154 for three. Harmanpreet actually sends the ball, a shorter delivery, reaches the ball and lofts it over the bowler's head for a mighty, mighty, one of the huge sixes of this match. And that took India total to 153. Harmanpreet on 44, 24 delivery

0: Minilo from nursery, and this time to Harmanpreet. Again, lofts it down. We need to see, has it got enough elevation? And it does. One more six.
1: Ye laga, abha ka chakka.
0: That brings 50 for Harmanpreet. This is the 50 number 6 for her. Two sixes back to back. And Harmanpreet actually playing the skipper innings. That brings a 50 in just 25 deliveries that she has faced. And as we were guessing that anything around 160, Birinderji would be a good total. And last two overs, Indians were able to switch the gear with Harmanpreet leading that with 160 for 3 and still 4 more deliveries to go in this over.
2: कमाल की बल्लेबाजी, कमाल का बल्ले का फॉलो थ्रू हरमनप्रीत का. एक बार फिर से कदमों का इस्तेमाल किया, कवर्स के ऊपर से खेला और कैच अटक गया. 6 रन भारत के खाते में.
1: ये लगा आभा का छक्का.
0: Three sixes and three deliveries, and Indians won't mind that catch would have been taken. That's okay, but they need to maximize. 166 now. Three balls, 18 runs has costed to a bowler who's been so economical throughout this match. But Harmanpreet is now changing the whole scheme of things and match tilting. You can see from the face of the Australian skipper, India, 19.4 overs, 166 for three, and Harmanpreet is now 56 in 26 deliveries with 6 fours and 3 sixes. What she can do, 2 more deliveries to go. She dances out again, plays it, and but this time she actually lofts the ball straight into Ellis Perry, and she makes no mistake in taking the catch, and that brings to downfall of Harmanpreet. But she knows, India knows, the dressing room knows, and the fans knows that she has done her job. Birinderji,
2: kamal ki pari, kamal ki ballebazi. Us samay mein jabki Australiai gendbaz puri tarah se haavi the भारत के ऊपर, उस समय में प्रहार करना, बड़े शॉट्स खेलना जो कि मुश्किल लग रहा था, हरमनप्रीत ने इस ओवर में कमाल की बल्लेबाजी की है और शानदार पारी खेलकर वापस आती हुई 166 भारत 4 विकेट पर 19.5 ओवर के बाद 56 रन की यह पारी 27 गेंदों में 6 चौकों और 3 शानदार छक्कों की मदद से.
0: And this quick change in gears by Harmanpreet actually built this partnership for 19 runs and 6 deliveries that they have faced. And Yashtika will face the last ball of this match. 19.4, 5 overs gone, 166 for 4. And Harmanpreet, actually that was expected. She hasn't had a great tournament so far in this World Cup. A 50 was expected, and law of averages caught up, as you would say. And then she scored a 50 in a very, very important game for India. Yashtika Bhatia comes in. She will face the last ball of Sophie Minilu, who's been very, very critical. 4 overs, 46 runs she has given. What she does, we need to see. Deepthi Sharma comes in and actually grants this ball down to the leg side, and this ball goes for the boundary. So a boundary here, 170 for 4. India ended the inning in 20 overs. Birinderji, what a score it is.
2: अच्छा लक्ष्य है भारत के लिए. और एक
1: ये लगा आभा का चौका.
2: ये ओवर भारत के लिए शानदार रहा और 3 छक्के 1 चौका, 170 रन 20 ओवर के बाद. और ये देखना होगा कि चौका हुआ है कि नहीं, अंपायर इस बात का निर्णय करेंगे. 19.5 ओवर में 166 रन भारत के बने हैं और शायद इसका निर्णय अभी होना है कि आखिरी गेंद पर जो कि दीप्ति शर्मा ने खेला था उस पर 4 रन लगे हैं कि नहीं. शानदार पारी हरमनप्रीत द्वारा, आरंभक बल्लेबाजी अच्छी रही भारत की तरफ से. पावर प्ले में जिस तरह से स्मृति और शेफाली वर्मा ने बल्लेबाजी की, 66 रन की पहली विकेट की साझेदारी थी जिसकी वजह से भारत की पारी मजबूत हुई. मगर उसके बाद से जिस तरह की गेंदबाजी ऑस्ट्रेलिया ने की, जिस अनुशासन से गेंदबाजी की गई, विकेट के बीचों बीच सटीक गेंदबाजी और तेज़ गति की गेंदबाजी में जो गति परिवर्तन किया गया उसको देखते हुए बांध कर रखने में काफ़ी हद तक कामयाब रहे थे. तो आखिरी गेंद का ये निर्णय कि वो 4 रन ही थे. 170 भारत का स्कोर, 171 रन का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया के सामने. दूसरी पारी जब शुरू होगी उसका आंखों देखा हाल सुनाने के लिए आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे. तब तक सुनिए हमारा कार्यक्रम फ्री हिट 20.
3: महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात.
4: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार. मन की बात में आप सबका स्वागत है.
3: यह होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ मोदी जी के साथ देश का

0: संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव, साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात, भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात, विदेश में भारतीय संस्कृति की बात, अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात, आत्मनिर्भर बनते विकसित होते विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला, बात देश की सबके मन की।
1: मेरे लिए मन की बात ये कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था पूजा व्रत है।
0: तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार, और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर।

0: Another do or die game against Australia. Another Harmanpreet half century as India snatched momentum in the final over, slamming 23 to take their total to 170, having retired out Jemima ahead of the over. Hello and welcome to Free Hit 20. I am Megha and joining me in studio is Anand Srivastav.
1: हमारे साथ तीन विशेष मेहमान हैं. वरिष्ठ खेल पत्रकार सौमित्रो बोस हैं, बीसीसीआई के कोच रविंदर जी हैं और पूर्व भारतीय क्रिकेटर रही ख्याति गुलानी भी हैं. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है.
2: शुक्रिया.
1: हरमनप्रीत कौर की शानदार अर्धशतकीय पारी, स्मृति मांदना, शेफाली वर्मा और जमीमा का स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रीब्यूशन, 170 पर 4 भारत का स्कोर है. ख्याति आपसे शुरू करेंगे, टोटल को कैसे देखती हैं जब 10 ओवर के बाद हम 74 रन बना चुके थे.
2: डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड स्कोर. आई थिंक नाउ बॉलर्स विल गेट कुशन एंड नाउ इट्स नाउ देयर पार्ट टू शोकेस देयर स्किल्स. नाउ आई गेस दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग इनिशियली दैट 170 विल बी अ गुड स्कोर. And it's spot on.
0: Soumitro, it was an innings of 3 halves where India got off to a flyer in the power play overs, slow down in the middle overs, and then came the final over.
3: Very unusual because normally you will see the middle overs, you will score better. But nevertheless, 170 is a very good score. We were talking about 180. Which was par, which we thought was par for the course, but 170 in this particular Lord's wicket, jahan pe ball was coming a little bit slower, and the Australians, you would have noticed ki jis tarah se line and length, and they were using the pace of the ball, they were forcing the batsmen to generate the pace to score the runs. Aapko aur ek cheez shrota ko batana chahiye ki ye Lord's ground mein slope hai. Once you beat the infield. Then, but another thing which the Australians will not be happy is the way they drop the catches.
1: 56 रन हरमन ने बनाए, 34 जमीमा के नाम, शेफाली के नाम 34 और स्मृति ने भी 38 रन बनाए. रविंदर, आखिर के दो ओवर में 36 रन भारत की पारी को मोमेंटम प्रदान कर गया, लेकिन उससे पहले की अगर थोड़ी चर्चा करें, रन अ बॉल खेलती नजर आई स्मृति, रन आउट महंगा पड़ा.
4: डेफिनेटली रन आउट और खासकर जमीमा से उम्मीद थी थोड़ा सा फास्ट खेलती वो. ये तो लास्ट में हरमनप्रीत ने कवर कर ली दो ओवर में 36 रन बना के. अगर ये नहीं होता तो आप 150 के आसपास स्ट्रगल कर रहे होते. वहां पे आपको देखना, जब विकेट्स आपके हाथ में है, आप रन ए बॉल करी, वहां पे आपको चांस लेना चाहिए था. रन ए बॉल तो एक नॉर्मल एवरेज गेम. इस गेम में अगर आपको जो आपका एक डू ऑर डाई मैच है उसमें आपको पता है कि 180 के आसपास आपका टारगेट होना चाहिए, और रन ए बॉल आप खेल रही हैं उस समय और विकेट नॉन ऑफ विकेट हाथ में है, वहां पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा लैग कर गए. लेकिन हरमनप्रीत ने जो लास्ट ओवर में 23 रन लिए वो एक काफी लास्ट में मोमेंटम शिफ्ट हो गया.
0: ख्याति, इंडिया वुड हैव बीन मलिंग द रिटायर्ड आउट डिसीजन अर्लियर एज वेल.
2: Yeah, they have been taking this decision. I don't know what is the thought behind this. Maybe they must be thinking that when Richa will come, she can, you know, dominate the bowlers. But I seriously think that that was not required at that moment.
1: सौमित्रो, अगर ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी की थोड़ी चर्चा करें, लूसी

0: सी हैमिल्टन के 3 ओवर में 17 रन, एलिस पेरी के 1 ओवर में 7 रन, जॉर्जिया वेरम के 3 ओवर में 16 रन। काफी किफायती गेंदबाजी, लेकिन किसी का कोटा पूरा नहीं कर पाया कप्तान ने।
1: यस, इनफैक्ट आप देखो, ये पहला 10-11 ओवर में दे हैड यूज्ड 6 बॉलर्स, तो नेचुरली सोफी वाज ट्राइंग टू रोटेट द बॉलर्स, क्योंकि एक-एक ओवर एलिस पेरी जैसे सीनियर बॉलर को एक-एक बॉल देना। बट द पॉइंट इज, यू ऑल्सो हैव टू अप्रिशिएट कि जिस तरह से इंडियन बैट्समैन we're using the conditions and playing the strokes, khas karke say it was very clear ki you know Smriti Mandhana jis tarah ka classical batsman hai wo apna hips over the hips khelenge, on the slides khelenge, push karenge, flicks marenge, aur exactly Shefali would use our power and she was quite successful in an out shots khel raha tha aur runs bhi aa raha tha, वैसे in and out inside out shot khel se out bhi hua hai, magar they had got the runs initial jo we were saying कि विकेट पकड़ के रखो, और उसके वजह से कोच साहब ने बोल रहा था कि विकेट पकड़ के रखो और फिर आप एक्सेलरेट करो और शिफ्ट करोगे, और उसी ने वैसे ही किया। आपने जैसे बोला कि मिडिल ओवर्स में हाँ थोड़ा सा हमारा एक्सेलरेशन कम हो गया था, बट लेट हरमनप्रीत 207 स्ट्राइक रेट, वी वर टॉकिंग अबाउट हरमनप्रीत स्ट्राइक रेट एंड टुडे शी हैज प्रूव्ड अगेन। बस सिर्फ एक ही चीज़ है जहाँ पे उसने 50 बनाया इंडिया हार में, हार ऑलवेज इन द लूजिंग साइड, होपफुली द इक्वेशन विल चेंज टुडे।
2: यू हाइलाइटेड दैट इन द प्री शो एज वेल। नाउ फ्रॉम वन कैप्टन टू द अदर, सोफी मिलिनो इन फैक्ट इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ इन द 10th ओवर, दिस इज द 18th टाइम व्हेन शी हैज गॉटन अ विकेट इन अ फर्स्ट ओवर इटसेल्फ, लेकिन आखिरी का जो ओवर रहा रविंदर काफी महंगी रही, वो 23 रन दिए।
3: देखिए, ये स्पिनर्स के लिए नॉर्मली आजकल आखिरी ओवर कराया नहीं जाता, नॉर्मली मीडियम पेसर्स को रिकमेंड किया जाता है और प्रेफर किया जाता है। मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने आखिरी ओवर क्यों किया, क्योंकि लास्ट में वो अटैक करेंगे आपके पास, उनको विकेट्स हैं। देखिए, स्ट्रेटजी पहले यही थी कि आपके पास विकेट्स हाथ में होनी चाहिए, आप उसको बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल जो प्लान था ऑलमोस्ट एग्जीक्यूट कर दिया था, वो 2-4 रन के बीच में जो 2 ओवर जमीमा के साथ रहे, उन अगर ओवर को छोड़ दिया जाए, अगर वो ढंग से करते रहो 180 प्लस होता, लेकिन लास्ट में जो आपने सही बोला, स्पिनर्स को मेरे हिसाब से नहीं लगाना चाहिए था।
0: ख्याति, अब बात थोड़ी भारतीय गेंदबाजी पर कर लेते हैं। श्री चरणी इस विश्व कप में भारत की सबसे सफल गेंदबाज हैं, 4 मुकाबलों में 12 विकेट 5.31 की इकोनॉमी से लिए हैं और 19 रन देकर 4 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है। दीप्ति शर्मा ने पहले मैच में 5 विकेट लिए थे, इन दोनों पर बड़ा दारोमदार होगा।
4: डेफिनेटली, अगर आप देखेंगे श्री चरणी जो है वो फर्स्ट ओवर भी डालती है, मिडिल ओवर्स में भी आके वो विकेट्स लेती है और डेथ ओवर भी डालती है, तो आई थिंक उनको उनसे स्टार्ट कर सकते हैं। और इस टाइम पे जो सबसे बेस्ट बॉलर वही दिख रही है, बिकॉज अभी हाईएस्ट विकेट टेकर भी हैं, 12 विकेट्स ऑलरेडी ले चुकी है इस टूर्नामेंट में, तो आई थिंक उनसे स्टार्ट करेंगे तो
2: आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी।
1: अगेंस्ट अ टर्निंग बॉल on a wicket that can have a little dual bounce, it is always dangerous. So 170 is a really solid score. Aur jis tarah se hamara bowlers bhi hai, Kranti hai, Renuka, they were very line and length, agar ye jis tarah se Australians log ball kar rahe the, I think this will be a very good total to chase and it's not easy.
0: रविंदर, अगर ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स की बात करें तो जॉर्जिया वॉल, जिन्होंने पिछले 10 मुकाबलों में 365 रन बनाए हैं, बेथ मुनी, जिनके नाम पिछले 10 मुकाबलों में 255 रन हैं, बड़ी भूमिका निभा सकती हैं, और एलिस पेरी भी अच्छी फॉर्म में आ चुके हैं।
3: बिल्कुल, देखिए ये इनकी जो बैटिंग काफी डीप है, और पीछे कई मैचेस में देखिए दो बीच में कोलैप्स हुआ था, लेकिन लास्ट में जाकर वो लोग कवर कर जाते हैं। डिपेंड सारा बैटिंग, तो अब 170 रन है, फाइटिंग टोटल है, डिपेंड करता है इनके राधा पे और श्री चटनी पे और शेफाली पे और दीप्ति, जो 4 स्पिनर्स इन इंडियन लिए हैं। लेकिन क्रूशियल पॉइंट रहेगा पहले 6 ओवर, अगर उन 6 ओवरों में दोनों मीडियम पेसर्स अगर कराए जाते हैं उनसे बॉल, तो अगर वो ठीक ठाक से निकाल देते हैं तो बाद में चारों स्पिनर्स उसको टेक ओवर कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि 6 ओवर में कोई फ्लाइंग स्टार्ट ना मिले।
2: And we've seen, Khyati, that getting a flying start in the power play overs has been something that Australia have time and again emphasized on. Barring that game against South Africa, they got off to a fly in each of the games.
4: Yeah, definitely. I mean, they will also go for like no loss. They'll try for that as the kind of start Indian batters got. I think they will also try for that, and they have to be one step ahead for that.

0: जी हाँ, लेकिन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उन्हें भी सतर्क शुरुआत करने की जरूरत है सौमित्रो। निश्चित तौर पर सेमीफाइनल में उनकी जगह पक्की हो गई है, लेकिन जब आप 171 रन का चेस करते हैं तो आप फेजेस में इनिंग को प्लान करेंगे?
1: जरूर करेंगे। जैसा हमेशा मैं बोलता हूँ कि क्रिकेट इज लाइक अ चेस गेम, ओपन गेम, मिडिल गेम, एंड गेम, और हमेशा आपको स्ट्रेटेजी वाइज खेलना पड़ेगा। इसलिए तो गेम को ऐसा डिजाइन भी किया हुआ है कि 6 ओवर में पावर प्ले, फिर मिडिल ओवर्स, एंड ओवर्स। आई थिंक ऑस्ट्रेलियंस, आपको आपने जैसा कह दिया कि उसने ऑलरेडी सेमीफाइनल में चल, they're going to top the group, so the possibly is the best thing is to take it like a professional side, not do things that will, but 170 runs cannot be scored in 10 balls, so obviously it has to be scored over 20 into 6, 120 balls. So aapko innings ko pace karna hai, aur uske they have the required experience and the wherewithal to pace the innings, but again the thing is it will not be easy. As we have been discussing, wicket mein thoda thoda spin mein dikh raha hai. India have got the best spinners, India have got a decent medium pace attack, line and length agar maintain karenge they will be under pressure.
2: और अगर एक टीम है जिसने ये प्रूव किया है कि ऑस्ट्रेलिया को हराया जा सकता है वर्ल्ड कप के बड़े प्लेटफॉर्म में भी, तो है भारतीय टीम। रविंदर,
3: बिल्कुल ठीक है। देखिए, मैच अच्छी तरह बैलेंस्ड है, विकेट बहुत स्लो है, टर्नर विकेट है, चार स्पिनर्स के लिए इंडिया की स्ट्रेटजी ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है कि उन विकेट पे आप कैसे बॉल करें। आपका बॉल का पेस है सबसे बड़ी चीज है, बॉल का पेस इस विकेट के ऊपर। आपको अगर स्लो हल्का रखेंगे, टर्न होगा बॉल, ज्यादा तेज करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर आपको दिक्कत आ सकती है। यही है, अगर ये ठीक ठाक से स्पिनर्स अगर अच्छा बॉल किया तो मैच बहुत अच्छा हो सकता है।
0: ख्याति, थोड़ी चर्चा रेणुका सिंह ठाकुर पर भी करनी पड़ेगी। भारत की प्रीमियम तेज गेंदबाज हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से स्ट्रगल करती नजर आ रही हैं। वो स्विंग देखने को नहीं मिल रहा है, वो लाइन लेंथ जहां पर वो बल्लेबाजों को परेशान करती हैं वो भी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन टीम ने भरोसा जताया इस बड़े मैच में।
4: देखिये, वो हमेशा बड़ी गेम्स में परफॉर्म करती आई है और अभी इंजरी से वापस आई है, तो आई एम श्योर थोड़ा सा उनका स्टार्ट थोड़ा सा ऐसा स्लॉपी था, बट आई एम श्योर अब जब वो इस टूर्नामेंट में आ चुके और उन पर इतना भरोसा दिखाया जा रहा है, तो मुझे है कि वो आज कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। डेफिनेटली,
2: बहुत धन्यवाद आपका आपके विश्लेषण के लिए और खिलाड़ियों पर लगातार भरोसा जताने के लिए, जो कि भारतीय टीम ने भी किया है इस मुकाबले में। रेणुका अपना दूसरा मुकाबला खेलती हुई इस विश्व कप का, काफी दारुमदार होगा इन सारे एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ियों पर कि भारतीय टीम को ये महत्वपूर्ण जीत दिलाए ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध सेमीफाइनल्स के लिए जगह तय करने के लिए। प्रोग्राम में फिलहाल बस इतना ही, और भारतीय टीम उतर चुकी है 171 को डिफेंड करने के लिए।

0: मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास।
1: नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका अभिनंदन। दूसरी पारी का खेल शुरू होने को है। 171 रन का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया के सामने। बैथ मूनी आरंभक बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर इस समय। बाएं हाथ की बल्लेबाज काफी आक्रामक खेलती हैं। चुनौती है भारतीय गेंदबाजों के लिए इनको रोक कर रखना, इनको आउट करना। रेणुका सिंह ठाकुर गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाले हुए 65 T20 मुकाबलों में 69 सफलताएं प्राप्त कर चुकी हैं। रेणुका सिंह 6.6 की उनकी इकोनॉमी। रेणुका के हाथ में अच्छा स्विंग है, अच्छी लहराती है गेंद को और यहाँ की जो परिस्थितियां हैं उनके अनुकूल हो सकती हैं, उनकी गेंदबाजी के अनुकूल हो सकती हैं। अपने ओवर की शुरुआत करती हुई पहली ही गेंद बैकफुट पर इसे ड्राइव किया वॉल ने, कवर्स और पॉइंट के बीच में से गेंद सीमा रेखा पार कर गई, 4 रन।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: कमजोर गेंद जिसे प्रहार किया वॉल ने और बल्ले के बीचों बीच लेते हुए बैकफुट पर जाकर शानदार ड्राइव खेला, पॉइंट और कवर्स के बीच में से गेंद सीमा रेखा पार कर गई थी 4 रन के लिए। पहली गेंद पर 4 रन से खाता खुला ऑस्ट्रेलिया का। जॉर्जिया वॉल आक्रामक बल्लेबाज हैं, सामना कर रही हैं रेणुका सिंह का। पहली ही गेंद पर चौका लगा चुकी है। 171 रन का लक्ष्य। रेणुका सिंह ओवर द विकेट। ये गेंद अच्छी अंदर की तरफ आती हुई, LBW की अपील, अंपायर विचार करते हुए मगर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं। अच्छी गेंद टिप्पा खाने के बाद तेजी से अंदर की तरफ आई जिसने हैरान किया बॉल को और गेंद पैड से टकराई और टीम इस बात पर विचार करती हुई कि रिव्यू लिया जाए कि नहीं और हरमनप्रीत ने यह रिव्यू ले लिया है।

जॉर्जिया वॉल जो कि आक्रामक बल्लेबाज हैं, अगर उनका विकेट प्राप्त होता है तो भारत के लिए ये बड़ी सफलता होगी। अंपायर ने थर्ड अंपायर की तरफ इशारा कर दिया है कि बताएं ये आउट है कि नहीं। पहले ये देखा जाएगा कि गेंद बल्ले के भीतरी किनारे से लगती हुई पैड से टकराई है कि नहीं। इस तरह की कोई संभावना रिप्ले में दिखाई नहीं दे रही है और गेंद पिछली जांग से टकराई है बॉल की। और ये भी देखना होगा कि टिप्पा कहाँ खाया, ये भी देखना होगा कि उछाल कितना है, स्टंप्स के बीच जा रही थी ये गेंद की नहीं, और ये सब कुछ जो विकेट का रिव्यू

0: कॉल, जिन्होंने बड़े आत्मविश्वास से पहली गेंद पर चौका लगाया था। ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर पिच हुई है और टिप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई है, इंपैक्ट अंदर है और स्टंप से जा टकरा रही थी। अंपायर को अपना निर्णय बदलना होगा। भारत को यह पहली सफलता वॉल के रूप में, जो आक्रामक बल्लेबाज हैं वापस लौट रही हैं। दूसरी ही गेंद पर रेणुका सिंह ने भारत को सफलता दिलाई है। अश्विन,
1: Yeah, the girl from Uttarakhand brings in the smiles for Indian. It is 4-1. And what a start. First ball boundary and a great comeback to pick this wicket. And I would say this is a good strategy that Harmanpreet believed in wicketkeeper and bowler to pick that wicket. Take that review.
0: और पहली गेंद जो रेणुका सिंह की थी, ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, जिस पर बैकफुट पर जाकर ड्राइव लगाया था जॉर्जिया बॉल ने। और दूसरी गेंद थोड़ी सी अंदर की तरफ, ऑफ स्टंप के बाहर भी थी ये गेंद, मगर टिप्पा खाने के बाद तेजी से अंदर की तरफ आई, स्टंप्स की तरफ जा रही थी, टकरा रही थी। अंपायर को निर्णय बदलना पड़ा और जॉर्जिया बॉल, जो कि इस वर्ल्ड कप में काफी फॉर्म में थी, जो अच्छा आक्रमण कर रही थी गेंदबाजों के ऊपर पिछले मैचेस में, इस मुकाबले में ज्यादा सफल ना होती हुई आउट होती हुई वापस पवेलियन लौट गई थी। तो इस तरह से ये भारत को पहली सफलता रेणुका सिंह के रूप में, ये आत्मविश्वास देगा रेणुका सिंह को भी और भारतीय फील्डर्स को भी कि 171 रन का लक्ष्य मुश्किल बनाना है ऑस्ट्रेलिया के लिए। ये मुकाबला जीतना है क्योंकि साउथ अफ्रीका अपना मुकाबला जीतकर 8 पॉइंट अर्जित कर चुका है, भारत के 6 पॉइंट हैं। इस मुकाबले को जीतकर भारत के 8 पॉइंट बनते हैं और जिस तरह की औसत है वो भारत की बेहतर है साउथ अफ्रीका से। लिचफील्ड नहीं आई बल्लेबाज हैं मैदान पर। ये पहली गेंद रेणुका सिंह की स्टंप्स के बीचों बीच गुड लेंथ बैकफुट पर जाकर इसे सीधे बल्ले से खेला वापस गेंदबाज रेणुका सिंह की तरफ। रन बनने की कोई संभावना नहीं, दबाव बनता हुआ ऑस्ट्रेलिया पर। इस दबाव को कितना ज्यादा बरकरार रख सकेंगी भारतीय गेंदबाज, ये देखने वाली बात होगी। इसके लिए जरूरी है गेंदबाजी में अनुशासन होना, सटीकता होना और प्रभावशाली गेंदबाजी का होना। रेणुका सिंह की ये गेंद खराब गेंद, शॉर्ट ऑफ लेंथ, लेग स्टंप के बाहर। ऋचा घोष भी इस गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाई, गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही है। दीप्ति शर्मा ने कुछ गज अंदर इस गेंद को फील्ड करके वापस थ्रो किया। रन भागने का मौका, वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर हुआ 7-3 गेंदों के बाद। दबाव बनाने के लिए जरूरी है कि गेंदबाजी में अनुशासन रखा जाए, स्टंप्स में गेंदबाजी की जाए, मगर इस बार दिशा से भटक गई थी रेणुका सिंह और उसका कारण शायद ये कि बाएं हाथ की बल्लेबाज लिचफील्ड हैं, जिसकी वजह से थोड़ी दिशा बदलनी पड़ती है, जिसकी थोड़ी समस्या गेंदबाज को आती है, विशेष तौर पर तेज गति की गेंदबाज को जिसके हाथ में स्विंग हो। रेणुका सिंह भारत की सफल गेंदबाज, इस ओवर की 3 गेंदों में 1 सफलता प्राप्त कर चुकी हैं अपने ओवर की 4th गेंद लेकर। ओवर द विकेट बाएं हाथ की लीच को शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद ऑफ स्टंप के बाहर पुल करना चाहती थी लिचफील्ड से, मगर बीट हुई डॉट गेंद, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं। 7 ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 1 विकेट पर। अच्छी क्रिकेट होती हुई यहां पर, दबाव बनता हुआ ऑस्ट्रेलिया पर। बेट मूनी और लिचफील्ड दोनों बल्लेबाज, देखना है कि इस दबाव को किस तरह से झेलती हैं और किस तरह से बल्लेबाजी करती हैं पावर प्ले के इन ओवर्स में, जिसमें रनों की रफ्तार को तेज करने का प्रयास किया जाता है। 4 गेंदों में 7 रन अब तक ऑस्ट्रेलिया के बने हैं। लिचफील्ड रेणुका सिंह का सामना करने के लिए तैयार। एक बार फिर से दिशा से भटकी रेणुका सिंह, जब भी अंदर की तरफ डालने का प्रयास करती हैं तो वो गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से वाइड बॉल का इशारा और इस बार अच्छी विकेट कीपिंग ऋचा घोष द्वारा अपनी दाईं तरफ डाइव करके उन्होंने इस गेंद को कलेक्ट किया था, नहीं तो ये भी 4 रन हो जाते पीछे। रेणुका सिंह, जिनकी गेंदों में स्विंग दिखाई दे रहा है, उसे नियंत्रण में करने की जरूरत, दबाव बनाने की जरूरत ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के ऊपर। 171 रन का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया के सामने। आईसीसी T20 महिला विश्व कप का यह मुकाबला लॉर्ड्स के मैदान पर होता हुआ। रेणुका सिंह की ये स्टंप्स के बीचों बीच गुड लेंथ गेंद, जिसे शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र पर खेला और 1 रन भागने का मौका। लिचफील्ड के पास 5 गेंदों में ऑस्ट्रेलिया 9 रन बना चुकी है, मगर 1 सफलता भारत ने प्राप्त कर ली है वॉल के रूप में, जो कि एक खूबसूरत अंदर आती गेंद पर LBW आउट किया था रेणुका सिंह ने मैच की दूसरी ही गेंद पर। इस ओवर की आखिरी गेंद रेणुका सिंह द्वारा मुनी के लिए, जिन्होंने अब तक सामना नहीं किया है गेंदबाजी का। रेणुका सिंह की पहली गेंद का सामना करेंगी।

0: दो ओवर्स के बाद ऑस्ट्रेलिया ने 23 रन बना लिए हैं। एक सफलता भारत को जरूर मिली है, मगर उसके बाद से ऑस्ट्रेलियाई इन दोनों बल्लेबाजों ने किसी तरह का कोई दबाव नहीं कबूला है। आक्रमण कर रहे हैं भारतीय गेंदबाजी के ऊपर, स्ट्रोक्स लग रहे हैं, और मुनी जो कि 3 रन पर खेल रही हैं, और लिचफील्ड जो कि आउट होने के बाद आई हैं मैदान पर, 12 पर बल्लेबाजी कर रही हैं। 8 गेंदों का सामना करते हुए 2 शानदार चौके उन्होंने लगाए हैं। रेणुका सिंह अपने नए ओवर की शुरुआत करती हुई, मुनी है बल्लेबाज। ओवर द विकेट, गुड लेंथ गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई, ऑन द राइज ड्राइव करना चाहती थी मुनी, बीट हुई, अच्छी गेंदबाजी। ऋचा घोष जो कि बिल्कुल स्टंप्स के साथ चिपक कर विकेट कीपिंग करती हुई तेज गति की गेंदबाजी के सामने, ये देखते हुए कि दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज कदमों का इस्तेमाल करके आक्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए ऋचा घोष स्टंप्स के बिल्कुल साथ सटक कर विकेट कीपिंग तेज गति की गेंदबाजी के सामने करती हुई। रेणुका सिंह की ये दूसरी गेंद, एक बार फिर से आउटस्विंग गेंद, बैकफुट पर जाकर इस बार ड्राइव किया, मगर डीप पॉइंट के स्थान पर क्रांति गॉड है वहां पर। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए, एक रन भागने का मौका, 24 ऑस्ट्रेलिया का स्कोर, एक विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में रेणुका सिंह द्वारा, अपनी गेंदों को ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के बाहर रखे हुए, स्विंग मिल रहा है उन्हें, टिप्पा खाने के बाद गेंद मुड़ भी रही है उनकी, मगर अपने पहले ओवर में थोड़ी दिशा से भटकी थी वो, जब गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज को अंदर लाने का प्रयास करती है। इस बार ये गेंद फिर से बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए आउट स्विंग गेंद, लिचफील्ड के लिए गुड लेंथ, जिसे कवर्स में खेला गया बगैर किसी रन के। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी करती हुई रेणुका सिंह पिछले ओवर के मुकाबले। हालांकि एक सफलता मिली, मगर फिर भी सही नियंत्रण में गेंदबाजी नहीं कर पाई, जिसकी वजह से शॉट लगाने के और रन बनाने के मौके दिए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज लिचफील्ड और मुनी को। रेणुका सिंह इस ओवर में चौथी बार ओवर द विकेट, लिचफील्ड के लिए गुडलेंद गेंद, धीमी गति से फेंकी हुई, ड्राइव करना चाहती थी, बल्ले का भीतरी किनारा लेती हुई गेंद शॉर्ट फाइन लेग पर गई, जहां पर चुस्त और मुस्तैद दीप्ति शर्मा, जिन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया स्टंप्स के ऊपर, रन बनने का कोई मौका नहीं। अच्छी वापसी भारत द्वारा, जिस तरह से दो ओवर में प्रहार आक्रमण ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों द्वारा हुए, इस ओवर में अच्छी वापसी करती थी, और ये जरूरी दबाव बनाने के लिए और सफलताएं प्राप्त करने के लिए। पावर प्ले का ये खेल काफी दिलचस्प, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का प्रयास रहेगा कि फील्डर्स घेरे के अंदर हैं, ज्यादा फायदा उठाया जाए, आक्रमण किया जाए, उसी के प्रयास में कदमों का इस्तेमाल किया था लिचफील्ड ने इस बार, लेकिन सटीक अनुशासित गेंदबाजी रेणुका सिंह द्वारा, ऑफ स्टंप पर गुड लेंथ आउटस्विंग गेंद, जिसे सीधे बल्ले से ड्राइव किया था लिचफील्ड ने, मिड ऑफ पर फील्डर मौजूद, रन बनने की कोई संभावना नहीं। ऑस्ट्रेलिया 24 एक विकेट पर 2.5 ओवर के बाद। इस ओवर की आखिरी गेंद, अच्छा ओवर भारत के लिहाज से रेणुका सिंह द्वारा, मात्र एक रन आया है इस ओवर में। ओवर द विकेट ये गेंद, इस बार इसे फाइन लेग की तरफ स्कूप करना चाहती थी, मगर गति परिवर्तन रेणुका सिंह द्वारा, और कोई रन नहीं, डॉट बॉल। अच्छा ओवर, 3 ओवर्स के बाद ऑस्ट्रेलिया 24 एक विकेट के नुकसान पर।
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ले।
3: जानिए आभा के बारे में, यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
4: So for the first time in the match, after that great comeback by Renuka Singh with just a solitary run in that over, she has bowled 2 overs, 12 runs and a wicket of Georgia ball. Australians are now 24-1, needing another 147 runs of those 102 deliveries, and there's an asking rate of 8.65 runs per over. So good comeback, and we might see a change in bowling with Kranti Gore not being able to grip the ball, maybe Sri Charney, or yes, there is Shefali Verma coming in. Good ball, lovely ball, quicker delivery this time, not much of the height, little flattened delivery from Shefali, comes in power play. She has been good off late for India in power play, and that's what Kranti Gore maybe using the middle, because she was not able to grip the ball well. She's been a little expensive with 3 boundaries in the last over, prompted Indian skipper Harmanpreet to get Shefali Verma in for the 4th over. Let's see what she can do. Beth Mooney on strike, 4 balls, 5 deliveries. There's gully, point, cover, deep extra cover, and mid on.

0: again. This guy's again a low flight to deliver this chance of run out. Batsman was the batter was looking. Litchfield was looking for a single, but Shefali Verma was quick in a follow through. Throws on to the stump, misses it, but I think there was enough time for her to come back into the crease. It could be a little close. We may need to see it later, but a great fielding effort by Shefali Verma. So two dot balls adding to more pressure to Australians, wherein they need to score more than 8 runs per over. And that's a smart move by Harmanpreet to bring in Shefali and then Sri Charney later on. We may see one over from Sri Charney also, I believe, in the power play. Shefali Verma again not giving much width and the high flight to the deliveries and manages to scamper for a single. Beth Mooney has faced 7 deliveries and scored 5 runs. That gives strike to Febe Litchfield, who's been on 12 runs with those 3 glorious boundaries that she has hit to Kranti Gaur. 12 runs of 12 deliveries that she has faced. So 3.3 overs has already bowled in this power play. 2 more overs to go after this. 25 for 1. India wanted to pick 1 or 2 more wickets in this power play, which could actually expose Australia. And this time she dances down, makes it a full toss, but the ball rushes on to the player, little squarish, Jemima Rodericks on mid-off region. No damage done to Australia. Score 25 for 1. 3.4 overs, 4 deliveries gone, just one of that. So great over by Shefali. There's a change in position because there's a left-right combination here. This time Shefali close to the umpire, bowls in to the player and she drives it, but straight to the player at points. So another dot ball adding more pressure. You can see in the Australian dressing room they're thinking that what needs to be done here. Last two overs hasn't costed much. 11 deliveries, just 2 runs came off that. 3.5 overs gone, 25 for 1. This is, mind you, 4th over in progress. 2 more overs to go. Last 11 balls, just 1 run, and India somehow managing to get their rhythm back. They have been great with the bat. They need to be very, very skillful with the ball. This time again, Febe Litchfield trying to reverse sweep, actually premeditated shot. She went in, she wanted for a reverse sweep, misses it, and it's collected by the keeper. So 4 overs, 25 for 1, Australia.
1: 4 overs ke baad Australia 25 run bana paya hai, aur ek aur acha over Shefali Verma ka, jisme kafi sateek anushasit gendbazi ki. Unhone apni gendon mein flight lekar aaye, stumps ke beechon beech gendbazi ki, bazu kholne ka mauka nahi diya dono baaye haath ke ballebaz Beth Mooney aur Litchfield ko, jiski wajah se ye ek acha over samapt. और इन 2 ओवर्स में भारतीय गेंदबाजों ने अच्छी वापसी की है. रेणुका सिंह ने 2 ओवर्स में 12 रन दिए, एक सफलता प्राप्त की. क्रांति गौड़ ने 1 ओवर में 12 रन दिए, जो कि काफ़ी महंगा ओवर रहा उनका, जिस पर पुल शॉट खेलने का मौका मिला, जिसकी वजह से ऋचा घोष ने स्टंप के 7 सटक कर विकेट कीपिंग करने का प्रयास किया, जो कि प्रभावशाली रहा. इस बीच रेणुका सिंह अपने नए ओवर की शुरुआत करती हुई, पहली गेंद गुड लेंथ जिसे कवर्स के ऊपर से खेला है मुनी ने, और जब तक गेंद को डीप कवर से क्रांति गॉड द्वारा फील्ड करके वापस भेजा जाएगा. 2 रन भागने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास. इस ओवर में आक्रमण करने का प्रयास करती हुई, यह चुनौती है रेणुका सिंह के लिए. क्या रोक पाएंगी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को, उनके आक्रमण को देखना होगा. ये दिलचस्प बात रहेगी इस ओवर में. 27 ऑस्ट्रेलिया 1 विकेट के नुकसान पर. पिछले 2 ओवर भारत के लिहाज से अच्छे रहे हैं, जिसमें 1-1 रन आया है, और इस ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों का यह प्रयास रहेगा कि आक्रमण किया जाए रेणुका सिंह के ऊपर. 13 गेंदें हो चुकी हैं, जबकि कोई बाउंड्री नहीं आई है. इस बीच इसे उठा दिया मिड विकेट के ऊपर से, कोई फील्डर मौजूद नहीं है. 4 रन.
2: ये लगा आभा का चौका,
1: और आक्रमण करने का प्रयास और सफल हुआ बेथ मूनी का. ये गेंद उन्हें उनके पाले में मिली, ये कहा जा सकता है. इससे पहले रेणुका सिंह ऑफ स्टंप के बाहर अपनी गेंदों को रख रही थी. ये गेंद मिडल स्टंप पर थी, बिल्कुल उनकी रेंज में, बिल्कुल स्लॉट में, और इसका पूरा फायदा उठाया. शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर से खेला, और पीछे कोई फील्डर मौजूद नहीं था. 4 रन मुनी के खाते में. 31 हुआ ऑस्ट्रेलिया का स्कोर. आक्रमण करने का फिर से प्रयास रहेगा. रेणुका सिंह किस तरह से रोकेंगी, ये देखना होगा. ओवर द विकेट रेणुका सिंह की ये गेंद, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, शॉर्ट ऑफ लेंथ, बैकफुट पर जाकर इसे कट किया, मगर सीधा दीप्ति शर्मा के हाथों में. रन बनने की कोई संभावना नहीं. अच्छी गेंदबाजी. रेणुका सिंह समझ गई हैं कि बाएं हाथ की इन बल्लेबाजों को ऑफ स्टंप के बाहर अपने आक्रमण को रखना होगा, अगर इनके प्रहार को रोकना है, इनके आक्रमण को रोकना है. 31, ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 171 रन का लक्ष्य, 140 रन और दरकार है ऑस्ट्रेलिया को, 9 विकेट उनके हाथ में, 4.3 ओवर में 31 रन ये बने हैं, इस ओवर में 6 रन आए हैं। 14 गेंदों के बाद बाउंड्री लगी थी जिसने आत्मविश्वास दिया होगा ऑस्ट्रेलिया को। 11 पर है मूनी, 12 पर लिचफील्ड। रेणुका सिंह एक बार फिर से धीमी गति से फेंकी हुई गेंद लेग स्टंप पर, जिसे स्वीप किया और गेंद एक बार फिर से सीमा रेखा पार जा रही है, 4 रन।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: रेणुका सिंह चकमा देने के प्रयास में इसे धीमी गति से फेंका था मगर दिशा पर काबू नहीं रख पाई, लेग स्टंप के बाहर फुल टॉस, जिसे स्वीप करने में कोई परेशानी नहीं हुई मुनी को और गेंद शॉर्ट स्क्वायर लेग के फील्डर के ऊपर से होता हुआ 4 रन के लिए सीमा रेखा पार कर गया। इन 4 रनों के साथ 35 हुआ ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 1 विकेट पर। रेणुका सिंह एक बार फिर से ये गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ मिडिल स्टंप पर बैकफुट पर जाकर इसे पुल किया, जयमाइमा है वहां पर डीप मिड विकेट के क्षेत्र पर जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करें, 1 रन फिर से भागने का मौका। ये ओवर ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी अच्छा रहा, अब तक 11 रन आ चुके हैं। पहले से ही उन्होंने मन बनाया था कि आक्रमण करेंगे और उसमें सफल भी रहे, जिसकी वजह से काफी संतुष्ट होंगे इस ओवर में अपने आप से। लिचफील्ड सामना करेंगी रेणुका सिंह का इस ओवर की आखिरी गेंद। ओवर द विकेट रेणुका सिंह की यह गेंद का दो कदमों का इस्तेमाल किया, मिड विकेट क्षेत्र पर ड्राइव किया इसे और एक बार फिर से जयमाइमा के पास ही गेंद और जब तक थ्रो करें 1 रन भागने का मौका। 5 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया 37, 1 विकेट के नुकसान पर।
3: तुम रिपोर्ट लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
3: तुम हो ही भुलक्कड़।
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
5: ली। जानिए आभा के बारे में, यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: So if you look at the comparison between scores, Australia after 5, 25 for 37 for 1 and India were 29 without loss, thanks to our scorer Ranjit Singh Rawat, who helps us ably with those figures to help us. And so end of over number 5, 37 for 1 Australia. And I must tell you that Beth Mooney has been very prolific against India. She has already scored 965 runs. She's the top scorer. She loves to play against India, like Indian batter Smriti Mandhana and Harmanpreet. Similar she is. This time she dances down and plays it over for a 6. Fairbairn Lichfield this time facing Shefali, picking up the length quite early, dances down the wicket and plays over the long on area for 6.
2: Ye laga aabha ka chakka.
0: That 6 would put pressure on Shefali. Very first ball of her went to 6 and that brings Australia to 43 for 1. Fabian, there's a chance of appeal, but no, I think there's a ball is rushing toward the boundary, so is Rainuka. Cuts it off and the batsman and the player has enough time to take 2. Lichfield, rather Beth Mooney was looking for third run, but Lichfield wasn't interested. So 45, 5.2 overs gone, 45 for 1 and Australians are getting into their rhythm. They need to pick up wickets and that's what is in the back of the mind. This time Lichfield quite early switches her side. She reverse sweeps it, actually changes from a left-hander to right-hander quite early before the ball been bowled by Shefali, and plays it over the circle for 2 more. So that 2 gives 10 already in this over and score moves on to 49 for Australia. So 47 for Australia for 1. 5.3 overs, 47 for 1. Lichfield, 21 of 19 deliveries. This time again looking for drive, but Shefali not giving enough width. And that resulted in a dot ball. So 4 balls, 10 runs of this Shefali's over. First over she just gives single, but now in this over she has already consisted 10. Maybe next over we can see the leading bowler of the World Cup, Shri Charni, coming in. This time again, Lichfield was quite intentional that she wanted to go for drive every over. They want to maximize the power play, the runs they can score in the power play. They wanted to do that. But Shefali outsmarted her by checking her length and not giving any width. Another dot ball resulted. So 5.5 overs, 48 for one, and it's Mitsubishi. What is there in the store for the last ball? This time again, drives it. There's a chance of run out. Could be if there's a direct throw, but no, misses. Renuka at short fine leg, looking for a dry ball. Went to Renuka. She was quick, but so were much more quicker with Australians. So 6 overs gone. Power play 49 for one, chasing 171 Australia.
6: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: 6 ओवर्स का खेल हो चुका है, टाइम आउट ड्रिंक्स का समय समय 49 रन ऑस्ट्रेलिया ने बना लिए हैं, 171 रन का लक्ष्य है। ऑस्ट्रेलिया को 122 रन चाहिए 84 गेंदों में। खेल इस समय अश्विन पूरी तरह से संतुलित है अगर देखा जाए तो। रेणुका सिंह ने एक सफलता प्राप्त जरूर की है, मगर अपनी गेंदों में वो पहले ओवर में ज्यादा दिशा को काबू में नहीं रख पाए थे, अनुशासित नहीं हो पाए थे, जिसकी वजह से रन बनाने का मौका मिला। और क्रांति गौड़, जिनके पास गति है और हवा में ज्यादा मूवमेंट नहीं है, इस वजह से आक्रमण करने पर और स्ट्रोक लगाने में कोई ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आई ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को, जिसकी वजह से उनके एक ओवर में ही 12 रन बटोर लिए थे। और शेफाली वर्मा, का पहला ओवर काफी अच्छा रहा, एक रन दिया था उन्होंने, मगर दूसरे ओवर में उनकी फ्लाइट को, उनकी वेरिएशंस को भांपते हुए अगले ओवर में फिर से प्रहार करने पर सफल रहे थे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज। तो काफी संतुलित है खेल इस समय। भारत को विकेट्स चाहिए और ऑस्ट्रेलिया को चाहिए साझेदारी।
0: Precisely, but what India has managed to do with those two overs, where just single runs were scored, they were able to put breaks on Australians. Otherwise, they were scoring very freely. So look at 6 overs, 49. The required run rate is still around over 8 runs per over, which was earlier 8.71 required. So they need to be consistent. And we know in a game of T20 where there's not much of margin for errors, if Indians stick to the line and length, they should be able to build pressure. Because once you get a wicket, then I think there'll be more pressure on Australians, and that's what would be discussed in the huddle during the drinks break. There'll be some messages passed on by the team management to see what can be done. And Birinderji, mind you, we haven't used Sri Charni so far. She's been the most successful spinner in this World Cup, picking up 12 already in the matches, 4 matches she played, and she can be very lethal against Australians.
1: और यहाँ से खेल काफी दिलचस्प होने वाला है अश्विन, क्योंकि पावर प्ले के ओवर समाप्त हो चुके हैं। भारतीय गेंदबाजों के पास सुरक्षा के लिए फील्डर्स होंगे, बाउंड्री पर 4 फील्डर्स होंगे, जिसकी वजह से वो ज्यादा खुलकर, ज्यादा आत्मविश्वास के साथ गेंदबाजी कर सकेंगे। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बड़ा शॉट खेलने के बारे में सोचेंगे, और इन परिस्थितियों में दीप्ति शर्मा और श्री चरनी किस तरह की गेंदबाजी करती हैं और किस तरह की अनुशासित और प्रभावशाली गेंदबाजी रहती है, ये काफी ज्यादा तय करेगा ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के ऊपर कि वो आक्रमण ना कर सकें, ज्यादा रन ना बटोर सकें और दबाव वापस उनके ऊपर आ सके।
0: एंड देन वी हैव राधा यादव आल्सो विद द स्पिन अटैक टू ऐड टू इट, सो इंडिया हैज क्वाइट अ फ्यू बॉलिंग ऑप्शंस, एंड हियर कम्स श्री चरनी।
1: गेंद फेंकती हुई फ्लाइटेड स्टंप्स के बीचों बीच, कदमों का इस्तेमाल करके इसे ड्राइव किया था बल्लेबाज लिचफील्ड ने, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, 2 रन भागने का मौका। 50 हुआ ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। श्री चरनी, जिस तरह की अश्विन ने बताया कि सबसे सफल गेंदबाज हैं भारत की इस वर्ल्ड कप में, 12 विकेट्स प्राप्त कर चुकी हैं 5.31 की इकोनॉमी से। ओवर की अगली गेंद रिवर्स स्वीप का प्रयास, हवा में गेंद जिसे लपकना चाहती थी ऋचा घोष, मगर गेंद उनसे काफी दूर, लगता नहीं है कि बैट से लगी हो, बैट से टकराई थी ये गेंद, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं। अच्छी गेंदबाजी श्री चरनी द्वारा, इस गेंद में कम फ्लाइट की थी उन्होंने, जिसकी वजह से अपने रिवर्स स्वीप को ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाई थी लिचफील्ड। ओवर द विकेट श्री चरनी की ये गेंद, इसे उठा दिया कवर्स के ऊपर से, पीछे फील्डर मौजूद हैं, लॉन्ग ऑफ से भागी क्रांति गौड़, जब तक गेंद को फील्ड करेंगी एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र से, 2 रन भागने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। 52 हुआ ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 1 विकेट पर। इस ओवर की 3 गेंदों में आक्रमण करने का प्रयास किया है ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने, कदमों का इस्तेमाल किया जा रहा है, फ्लाइट को अच्छे से भांपा जा रहा है अच्छी क्रिकेट लॉर्ड्स के इस मैदान में। 52 पर 1 ऑस्ट्रेलिया 6.3 ओवर्स के बाद। ओवर द विकेट श्री चरनी की ये 4th गेंद स्टंप्स के बीचों बीच, रिवर्स स्वीप का प्रयास, पैड से टकराई गेंद, एलबीडब्ल्यू की अपील, मगर गेंद लेग स्टंप से बाहर है। ये देखते हुए अंपायर का निर्णय नॉट आउट। हरमनप्रीत ने हालांकि पूछा गेंदबाज से कि रिव्यू लिया जाए कि नहीं। श्रीचर

0: रानी ने नाम इस सिर हिलाया क्योंकि वो जानती हैं कि गेंद लेग स्टंप से बाहर थी। लेग बाय, एक अतिरिक्त रन ऑस्ट्रेलिया के खाते में, 53 ऑस्ट्रेलिया एक विकेट पर 6.4 ओवर्स के बाद 171 रन का लक्ष्य। भारत का यह मुकाबला जीतना जरूरी अगर सेमीफाइनल में जाना है तो, और ऑस्ट्रेलिया पहले से ही अपने पूल में सबसे पहले नंबर पर 8 अंकों के साथ। बेथ मुनी 18 पर सामना करेंगी श्री चटनी का। इस ओवर की पांचवी गेंद, गुड लेंथ गेंद, सीधे बल्ले से ड्राइव किया, ऑन ड्राइव मिड विकेट क्षेत्र पर, एक रन फिर से भागने का मौका, 54 एक विकेट पर। ऑस्ट्रेलिया के 50 रन में 50 रन की साझेदारी लिचफील्ड और मुनी में 39 गेंदों में। श्री चटनी अपने ओवर की अगली गेंद लेकर उठा दिया इसे लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर, देखना है कहां तक जाती है। यह दूसरी सफलता भारत के लिए लिचफील्ड के रूप में, बड़ा शॉट खेलना चाहती थी, ठीक से बल्ले पर नहीं आई गेंद और स्मृति ने कोई गलती नहीं की इस कैच को लपकने में। जोश आता हुआ भारत के खेमे में, उत्साह आता हुआ इस सफलता के साथ लिचफील्ड, जो कि काफी आक्रामक खेल रही थी, 24 पर 25 गेंदों का सामना करने के बाद कदमों का इस्तेमाल करके बाहर निकली थी और ऊंचा खेली। स्मृति ने कोई गलती नहीं की इस कैच को पकड़ने में और इस तरह से अश्विन, ये भारत को दूसरी सफलता।
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ले।
3: जानिए आभा के बारे में।
2: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
4: Just when the partnership was building between the two, they scored 50 of those 42 deliveries. India struck the chord. And who else than Sri Charni picking that 13th wicket of the tournament. She's the leading wicket taker. And as we discussed, Birendraji, that Indians, with the field expansion, India would give them opportunity to go over the rope. And that's what they did. And eventually found safe hand of Smriti Mandhana to lose the second wicket. So that brings smile to Indian players all over. And the fans who are supporting the women in blue from all over the globe. So 54 for 2, 7 overs gone, and India back into the game with that wicket. There was a partnership building in, and two danger men, Feb Lichfield and Beth Mooney, both were very, very dangerous against India. Historically, they love to play great games, good shots in against India. Though they have a mighty lineup, but this definitely adds in pressure. Deepti Sharma, another spin option, comes in, dances down the wicket, Beth Mooney this time to Deepti Sharma, but plays it back to the bowler, and she was quick enough to throw it back and give that, we are not going to give you an inch. You need to work for every run, every single you need to buy from us or rent from us. That's what the language of Indian today has been on the field. 7 overs, 54 for 2. A great catch there, especially by the team who's under pressure for catching. They have lost so many catches, but this time Smriti Mandhana didn't make any mistake. Deepti Sharma on the middle stump. A shorter delivery, but Beth Mooney again dances down the wicket, guides the ball to the deep extra cover region for single. So that single adds to the total of Australians with 55 for 2. So two balls, one dot, one single of Deepti Sharma. 7.2 overs, 55 for 2. And that was a great catch by Smriti, wherein she has to run 11 meters. But she knew that this time they are not going to drop any catch. They are true determined. And that was shown after she took the catch. She threw the ball onto the ground, saying that we are good enough to hold that. This time again in the air. Is there someone in the deep? We need to see it. No, one bounce. A little wider of Kranti God. And that resulted in a four. So Deepti Sharma consisting a boundary this time. 59 for 2.
5: ये लगा आभा का चौका।
4: So with that boundary, it was in the air, but there's a lot of running for Kranti Gore to do. Definitely this was going to be out of her reach. Ellis Perry with the boundary, very first ball, she made her intention very clear that she is not going to stop. And Australians after 7.3 overs, 59 for 2, chasing 177. Ellis Perry again want to play with the fuller length. Deepti Sharma couldn't hold the ball in her follow through, but there's Radha Yadav in that V region, Radha Yadav and Shefa.

0: Ali Verma protecting that V and trying to control. So Deepthi, who has taken 5 wickets against the match against Pakistan, with the best bowling figures so far for in the ICC tournament, best figures for anyone in the ICC tournament. Deepthi Sharma, for the 5th time in this over, slog sweeps it, but there's Kranti God in the deep, cuts it off. So 7.5 overs gone, 61 for 2. And if we look at most wickets in a single edition of Women's T20 World Cup, it's Emily Kerr of 15 wickets which she has taken in last World Cup. She has been the top wicket taker. But Sri Charney, this time fuller end delivery on the onside, drives it down to Nandini Sharma, I think, is on the field. We need to see who she's replacing. And that resulted in a single. So 8 overs gone, 62 for 2, Australia.
1: 8 ओवर का खेल अब तक हो चुका है और खेल में रोमांच पूरी तरह से है, जिस तरह से भारत ने दूसरी सफलता प्राप्त कर ली जबकि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज आक्रमण कर रहे थे, और उसके बाद श्री चरनी का वो सफलता प्राप्त करना, उसने वाकई एक जोश और एक उत्साह भरा है भारतीय खेमे में, और अनुशासित गेंदबाजी और प्रभावशाली गेंदबाजी उसके बाद से देखने को मिल रही है। 62 पर 2 इस समय ऑस्ट्रेलिया 8 ओवर्स की समाप्ति के बाद। हालांकि रनों का जो औसत है ऑस्ट्रेलिया का वो ज़्यादा बुरा नहीं है, 7.75 का लगातार रन बनाने का प्रयास ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज करते रहे हैं और इसमें काफ़ी हद तक सफल भी रहे हैं। मगर ये जो पड़ाव है खेल का, जिसमें श्री चरनी और दीप्ति शर्मा गेंदबाजी कर रहे हैं, देखना है कि इस स्पेल में कितनी सफलताएं वो प्राप्त करते हैं। एक आध सफलता अगर और मिलती है तो ये निश्चित ही दबाव डालेगा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। गुड लेंथ गेंद मिडिल स्टंप पर श्री चरनी की, राउंड द विकेट, जिसे सीधे बल्ले से ड्राइव किया पेरी ने, और लॉन्ग ऑन से जब तक गेंद को फील्ड किया जाए एक रन भागने का मौका। इस एक रन के साथ ऑस्ट्रेलिया 63 2 विकेट पर। मुनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 21 पर 18 गेंदों का सामना करने के बाद, जिसमें 2 शानदार चौके शामिल हैं। ये 2 चौके पहले ओवर में ही उन्होंने लगाए थे क्रांति गॉड के विरुद्ध, मगर उसके बाद से सिंगल्स के साथ बल्लेबाजी कर रही हैं। श्री चरनी की ये गेंद फ्लाइटेड, जिसे कदमों का इस्तेमाल किया, ऑन ड्राइव किया लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर, शफाली है वहां पर, और एक रन फिर भी भागने का मौका मिलेगा। पहली 2 गेंदों में 2 रन श्री चरनी की। ये एक अच्छी बात है कि वो स्टंप्स के बीचों बीच गेंदबाजी करती हैं, बल्लेबाज को ज्यादा बाजू खोलने का मौका नहीं देती हैं, और गुड लेंथ पर उनका टिप्पा रहता है। अराउंड द विकेट ये गेंद, इस बार इस गेंद में फ्लाइट थी ओवर पिच, जिसे ड्राइव किया कवर्स क्षेत्र पर पेरी ने, और गैप मिला और गेंद सीमा रेखा पार कर गई, 4 रन।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: श्री चरनी, जो कि सटीक अनुशासित गेंदबाजी कर रही थी, ये ओवर पिच गेंद बल्ले के बिल्कुल नीचे, जिसे खूबसूरत तरीके से पेरी ने कवर ड्राइव किया था कवर्स क्षेत्र में, और गैप भी मिला उन्हें, और 4 रन भी। 68 पर 2 इस समय ऑस्ट्रेलिया 8.3 ओवर्स के बाद। श्री चरनी अराउंड द विकेट एक बार फिर से पेरी के लिए, इस बार अच्छी गेंद, गुड लेंथ गेंद, पैड से टकराई, LBW की अपील, मगर कोई प्रभाव नहीं इस अपील का अंपायर के ऊपर। अच्छी गेंदबाजी, इस बार गेंद घूमी नहीं, टिप्पा खाने के बाद सीधी रहती हुई, और इसे ड्राइव करना चाहती थी पेरी, मगर पैड से टकराई। भाग्यशाली रही कि निर्णय उनके पक्ष में रहा। 8.4 ओवर के बाद 68 ऑस्ट्रेलिया 2 विकेट पर। श्री चरनी अराउंड द विकेट एक बार फिर से, गुड लेंथ गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर, इसे स्टीयर किया शॉर्ट थर्डमैन क्षेत्र पर, दीप्ति है वहां पर चुस्त और मुस्तैद, गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, रन बनने की कोई संभावना नहीं। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी चौका लगने के बाद श्री चरनी द्वारा, अपनी गेंदों को गुड लेंथ पर डालती हुई और ऑफ स्टंप पर रखती हुई। राउंड द विकेट एक बार फिर से, इस ओवर की आखिरी गेंद फ्लाइटेड गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया, ड्राइव किया गया मगर सीधा कवर्स क्षेत्र पर खड़े फील्डर के हाथ में। 9 ओवर्स के बाद ऑस्ट्रेलिया 68 2 विकेट पर।
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
3: तुम हो ही भुलक्कड़।
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ले।
5: गरीब, जानिए आभा के बारे में।
6: आभा
5: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: So Sri Chani doing what she is known for best. She has just given 5 runs at an average of 2.

0: overs, 2 overs, 10 runs and an important wicket of Phoebe Litchfield that she picked up in the last over. It's over number 9 which has gone by 68 for 2. Beth Mooney on 22 of 19 deliveries. Alice Perry with 2 boundaries, glorious boundaries, 11 of 8. This time in the air, look, we need to see if there's anyone to catch it, and it does. This time Radha Yadav, butterfinger, hails it and she roars loudly with that wicket. So another wicket fell down in terms of Beth Mooney. 9.1 overs, 68 for 3. Beth Mooney gone, the danger lady who loves to score against India, and Deepthi Sharma, who's been the most successful bowler against Australia, picking a maximum wickets so far. Anyone from India, it's been Deepthi, and she manages to pick the wicket off Beth Mooney. So 68 for 3. This is 10th over in progress, mind you, and the run rate now climbing to 9.51 runs per over. That brings in more pressure to Australians, and Indians are completely bossing this game, Birinder ji.
1: और अश्विन, जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि खेल का जो ये पड़ाव है ये काफ़ी दिलचस्प है. यही वो समय है जब भारत ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बना सकता है, क्योंकि भारत के ये जो दो स्पिन गेंदबाज हैं, श्री चरनी और दीप्ति शर्मा, इस वर्ल्ड कप में सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, सबसे बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, और उसी का ये परिणाम देखने को मिला कि फ्लाइटेड गेंद थी बेथ मूनी के लिए, फ्लाइट में बीट किया, इसे ड्राइव करना चाहती थी, गेंद से दूर रह गई और इसे लॉन्ग ऑन पर बड़े अच्छे तरीके से ने इस कैच को पकड़ा, और इस तरह से ये सफलता मिली भारत को. और ऑस्ट्रेलिया की तीसरी विकेट बेथ मूनी, जो कि जिम्मेदारी से बल्लेबाजी कर रही थी, वापस आ चुकी है.
0: And Deepthi Sharma, this time again a full length delivery. They are trying to make batsman, the batter reach to the ball, and with that wicket, Deepthi Sharma became the highest international wicket taker in the women's history with 356 wickets she has taken already, and she is the one now. She got with this wicket over Julan Goswami of India. 356 wickets she has taken, 2 dot balls, 1 wicket and 1 dot. This time again, Deepthi Sharma, quick in delivery on the onside. They're looking for single. They should be pushing for 2, but so quick was Harmanpreet there. And with that, just resulted in a single. So new batter is Ashleigh Gardner, who's on strike. And Australia 70 for 3. 69 for 3 in 9.3 overs. This time, Ellis Perry right on the top. She plays it, but there's someone with one bounce. Radha Yadav was looking for a catch. She knows that she could have taken that stride earlier. But then able to pick the ball on the first bounce, throws it quickly to the back to Deepthi Sharma, resulted in 1. There's 70 for 3, 9.4 overs gone. There's another 101 runs required in 10.2 overs. This time Ellis Perry on the back foot drives it down. Deepthi Sharma dives it but couldn't cut off the single, and batsman and the batter has time to cross for one more single. So Deepthi Sharma has been economical this over. She's just given 3 runs and picked up a very, very important wicket of dangerously looking Beth Mooney. So Indians are striking when there was a little bit of partnership getting built, and they're striking at the right moment. This time again, she follows the batsman. She was looking for off drive and moved on to the on side, but Deepthi Sharma quick to understand that. So 10 overs gone, 73 for 3 Australia.
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है.
1: 2 ओवर्स 12 रन देकर एक सफलता, ये हैं दीप्ति शर्मा की गेंदबाजी के आंकड़े. 2 ओवर्स में 10 रन देकर एक सफलता, ये श्री चरनी की गेंदबाजी के आंकड़े हैं. ये दोनों स्पिन गेंदबाज ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के ऊपर दबाव डालने में पूरी तरह से सफल रहे हैं, और देखना है कि यह कहानी कितनी लंबी चलती है, किस तरह की गेंदबाजी से और ज्यादा कितना दबाव बना पाते हैं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर. 72 है ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर. 10 ओवर्स का खेल अब तक हो चुका है. ऑस्ट्रेलिया को चाहिए 60 गेंदों में 99 रन, और राधा यादव को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है. पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ बैकफुट पर जाकर इसे ड्राइव किया था पॉइंट क्षेत्र में, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, एक रन भागने का मौका. अच्छी गेंद राधा यादव की, जिसमें फ्लाइट थी मगर शॉर्ट ऑफ लेंथ ऑफ स्टंप पर, और इसे हल्के हाथों से खेलकर एक रन पूरा कर लिया था पैरी ने. गार्डनर सामना करेंगी राधा यादव का। बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज राधा यादव, जिनका प्रयास ये रहता है कि गुड लेंथ गेंदबाजी ऑफ स्टंप पर की जाए, अराउंड द विकेट गेंदबाजी करती हुई तेज फेंकी हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, शॉर्ट ऑफ लेंथ जिसे बैकफुट पर जाकर ड्राइव किया मगर रन बनने की कोई संभावना नहीं। 91 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में 106 विकेट्स प्राप्त कर चुकी हैं राधा यादव। फ्लाइटेड गेंद, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था गार्डनर ने, सीधे बल्ले से ड्राइव किया लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर, स्मृति है वहां पर जिन्होंने फील्ड करके वापस थ्रो किया। 74 ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 10.3 ओवर के बाद। 57 गेंदों में 97 रन चाहिए ऑस्ट्रेलिया को। रन रेट थोड़ा बढ़ता हुआ, रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता हुआ इस समय, जिस तरह का दबाव भारतीय गेंदबाजों ने बनाया। राधा शर्मा की ये गेंद स्टंप्स के बीचों बीच फ्लाइटेड, जिसे कवर्स क्षेत्र पर खेला था पेरी ने, रन बनने की संभावना नहीं। ज्यादा टर्न देखने को नहीं मिल रहा है इस ओवर में, 2 रन आए हैं अभी 4 गेंदों में। अराउंड द विकेट राधा यादव की ये गेंद थोड़ी तेज फेंकी हुई, जिसे ड्राइव किया कवर्स क्षेत्र पर, गेंद सीमा रेखा पार जा रही है, 4 रन।
3: ये लगा आभा का चौका।
1: इस गेंद को थोड़ा तेज फेंका था राधा यादव ने मगर दिशा को और लंबाई को सही नहीं रख पाई, ऑफ स्टंप के बाहर, ओवर पिच, और ये दोनों कारण काफी थे पेरी के लिए एक मजबूत कवर ड्राइव खेलने के लिए और गैप में खेलने के लिए, जिसकी वजह से 4 रन मिले। राधा यादव की ये गेंद इस बार फ्लाइटेड ऑफ स्टंप पर, जिसे फिर से ड्राइव किया गया, डीप कवर्स पर हैं फील्डर, जब तक गेंद को फील्ड करेंगे 1 रन भागने का मौका। 11 ओवर्स के बाद ऑस्ट्रेलिया 79-3 विकेट पर।
4: रिपोर्ट्स लाई हो ना?
5: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
4: तुम हो ही भुलक्कड़।
5: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
6: ली। जानिए आभा के बारे में।
5: आभा
6: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: So Harmanpreet has already used 6 bowlers so far in this 11 overs of Australian innings, and it would be interesting to see where she gets in Kranti Gore to bowl in a over or two, or she would completely leave her out till another wicket or so fell in. Shefali Verma replaces Deepti Sharma. Shefali's will be third over this time and bowling to Ellis Perry. This time she went on the back foot, a good length ball, and she checks the stroke. Ball rolls down to Radha Yadav on mid on for just a single. With that single, Australia moves on to 80 for 3, and the required run rate now is more than 10 runs per over, 10.3 runs per over. But there's enough power in Australians' batting lineup to come, so they won't be too much thinking about it till the time they build in the partnership. Shefali Verma, a little slower delivery with 75 miles kilometer per hour, and this is 81 for 3 in 11.2 overs. This time with all the supporters, this 21,000 odd people cheering up for India and Australia together. There will be some supporters of South Africa as well in the field. This time cuts it down, and by the time there's a few yards of running for Renuka Singh to do, and the batter managed to take one more run. So 3 balls, 3, and Indians wouldn't mind a single coming off at this stage because that builds in pressure on the next ball. 11.3 overs gone, 82 for 3. Another single resulted in that delivery. Gardner onto the back foot, drives it on the on side. By the time ball goes to deep mid-wicket region, or rather mid-wicket region, the player has time to shuffle their ends. 11.4 overs gone, 83 for 3. And the percentage of India winning is increasing with every time. This time there's a slash. There are two players chasing. Kranti Gore beats the ball, jumps, and by the time that player has enough time to cross for 2 more runs. A direct throw from Kranti Gore, but Ellis Perry was quite back in a crease. She is playing a little cameo. 23 runs of 17 deliveries that she has faced and got a couple of boundaries earlier. And she is a danger lady. We know what she can do. She's single-handedly won matches for Australia. She's one athlete who has played 2 professional games for Australia. She used to play soccer. She has played Soccer World Cup for Australia. She has played Cricket World Cup also for Australia. This time, she was looking for a drive, dancing down the wicket, but Shefali checks in her arc of the delivery slowly.

0: Pulls it down, weighted, and that gives time for ship. For Ellis Perry also to check her stroke. So end of over number 12 for Australia. They're just 3 wickets down.
1: 85 ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर्स का खेल बाकी 48 गेंदों में 86 रन चाहिए ऑस्ट्रेलिया को 10 से ऊपर की औसत है और जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है भारतीय ये सभी गेंदबाज ये समझ चुके हैं कि जितनी तेज आप गेंद फेंकें उतने प्रहार से स्ट्रोक लगता है इसलिए फ्लाइट करने की कोशिश की जा रही है स्पिन गेंदबाजी में और यही देखा शेफाली की इन गेंदों में ज़्यादातर स्टंप्स के बीचों बीच फ्लाइट करने का प्रयास राधा शर्मा अपने ओवर की पहली गेंद फेंकती हुई ये फ्लाइटेड गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जिसे कदमों का इस्तेमाल करके कवर्स के ऊपर से खेला गार्डनर ने 4 रन
2: ये लगा आभा का चौका
1: इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर जिसने पूरी तरह से मौका दिया बाजू खोलने का गार्डनर को और कदमों का इस्तेमाल करके बड़े अच्छे तरीके से इसे कवर्स के ऊपर से इस स्ट्रोक को खेला गया 89/3 ऑस्ट्रेलिया राधा यादव की ये गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन इस बार पुल कर दिया मिड विकेट क्षेत्र पर गेंद हवाई रूट लेती हुई सीमा रेखा पार कर गई है 6 रन
2: ये लगा आभा का छक्का
1: 2 कमजोर गेंदें और उस पर प्रहार लगाने से नहीं चुकी गार्डनर पहली गेंद फ्लाइटेड ऑफ स्टंप के बाहर दूसरी शॉर्ट ऑफ लेंथ मिडल स्टंप पर जिसे खूबसूरत तरीके से पुल किया 6 रन के लिए दर्शनीय बल्लेबाजी गार्डनर द्वारा 95 स्कोर होता हुआ ऑस्ट्रेलिया का 3 विकेट के नुकसान पर 46 गेंदों में अब 76 रन चाहिए ऑस्ट्रेलिया गार्डनर 9 गेंदों में 15 रन बना चुकी है 1 छक्के और 1 चौके की मदद से इस ओवर की तीसरी गेंद फेंकने के लिए तैयार राधा यादव राउंड द विकेट गेंदबाजी करती हुई इस बार ये गेंद जिसमें कम फ्लाइट स्टंप के बीचों बीच वापस गेंदबाज की तरफ खेला डॉट बॉल रन बनने की संभावना नहीं 10 गेंदों में 15 रन बना चुकी हैं गार्डनर 95 ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 12.3 ओवर के बाद 30,000 क्षमता है लॉर्ड्स स्टेडियम की 27,000 दर्शक इस मुकाबले को देखने के लिए आज पहुंचे हैं जो कि रिकॉर्ड है ग्रुप स्टेज मैचेस में दर्शकों के आने का इस बीच राधा यादव की ये फुल टॉस गेंद जिसे ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर गार्डनर ने और 1 रन भागने का मौका 96 ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 12.4 ओवर के बाद राधा यादव की ये तेज फेंकी हुई शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद बैकफुट पर जाकर इसे कट किया पेरी ने कोई फील्डर मौजूद नहीं 4 रन
2: ये लगा आभा का चौका
1: 12.5 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया के 100 रन पूरे 3 विकेट के नुकसान पर 43 गेंदों में अब 71 रन चाहिए ऑस्ट्रेलिया को इस ओवर में रनों की रफ्तार बढ़ती हुई और उसका कारण यह है कि राधा यादव ने कुछ कमजोर गेंदें फेंकी हैं और हरमनप्रीत भी इससे नाखुश कि जिस तरह की गेंदबाजी राधा यादव कर रही है इस बार फ्लाइटेड गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जिसे ड्राइव किया कवर्स क्षेत्र पर और जब तक श्रीचरणी गेंद को फील्ड करके थ्रो करें पेरी के पास मौका 2 रन भागने का 13 ओवर्स की समाप्ति के बाद ऑस्ट्रेलिया 102 3 विकेट के नुकसान पर
3: रिपोर्ट्स लाई हो ना
4: नहीं मुझे लगा तुम लाए हो
3: तुम हो ही भुलक्कड़
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
5: ले जानिए आभा के बारे में
4: आभा
5: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं आभा सेहत के सफर में आपका हम सफर आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7
0: A much-needed over for Australians when the required run rate was inching towards 11 runs per over. That over, Radha Yadav consisted 17 runs, 2 boundaries and a 6, which brings down to another 9.5 runs per over. This time, Deepthi Sharma coming in with her third over and see what she can do. She's brought in to take the wicket here. Perry looking dangerous. So is Gardner. 13.1 overs gone. 103 for 3. Still 87 runs required of 49 deliveries. There's tension simmering all around. This is actually playing to a great game of one day. Display by both teams not giving anything to each other. India so far has been dominating in those last 4-5 overs and in the power play. But then Australians

0: are doing the Australian thing. They are clawing back to the game with 17 runs in that over. Deepthi Sharma again close to the umpire, makes it full toss, dances down the wicket. There's someone in the deep, cuts it down, Jemima Rodrigues, but enough time for the both the players to take two. So with that two, now 39 deliveries to go, 65 runs required. 39 balls, 65 runs, 106 for 3. India needed a wicket at this stage. 38 runs of partnership between these two, Ellis Perry and Ashleigh Gardner. Ashleigh Gardner has been very clinical. 19 runs of 13 balls. Now she has taken her total 20 runs of 14 deliveries. 107 for 3. 13.4 overs. This match is going down to the wire. 64 required. 38 deliveries to go. 14th over in progress. 171 is the target, and currently Australia are sitting at 107 for 3. India, though, managed to pick wicket, but this partnership is looking dangerous. In there, let us see what happens. One bounce, two bounce, two rather, other fields it, throws it back to Jemima Rodrigues. Batsman, or the batter has time to take two more runs here. Very nice fielding there in the deep. Deepthi Sharma, so far in five deliveries, has conceded seven runs. So I would say at par bowling with the required run rate. Nine runs they require, she's conceded seven. One more dot ball would again take the run rate to 10 runs and per over. 13.5 overs, 119. This is a very bad delivery, but equally bad shot. She's not happy with the shot that she played. She knows she missed in boundary opportunities. So 14 overs gone, 109 for 3, 36 legal deliveries and 62 runs required. Birinderji's match is actually going great for both teams.
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: ड्रिंक्स का समय हो चुका है, 6 ओवर का खेल बाकी है और 109 रन ऑस्ट्रेलिया ने बना लिए हैं और 36 गेंदों में 62 रन चाहिए ऑस्ट्रेलिया को। खेल अभी भी संतुलित है क्योंकि अच्छे ओवर अभी भारत की तरफ से आने बाकी हैं। श्रीचरणी के कुछ ओवर बाकी हैं और तेज गति की गेंदबाजी आनी बाकी है। और दूसरी तरफ अगर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी की तरफ देखा जाए तो दोनों ही बल्लेबाज इस समय आत्मविश्वास में हैं। एलिस पेरी जो कि 32 पर इस समय 23 गेंदों का सामना करने के बाद बल्लेबाजी कर रही हैं, 4 चौके लगा चुकी हैं, पूरी तरह से आत्मविश्वास में हैं और जब भी जरूरत पड़ती है आक्रमण की वो कर रही हैं। और गार्डनर जो कि मची हुई अनुभवी बल्लेबाज हैं, पूरी तरह से सक्षम हैं आक्रमण करने में। तो ये खेल किसी भी तरफ जा सकता है। 14 गेंदों में 20 रन गार्डनर ने बनाए हैं और पूरी तरह से सक्षम हैं वो भारतीय गेंदबाजी के ऊपर आक्रमण करने में। तो देखना ये है कि क्या भारतीय गेंदबाजी कुछ सफलताएं प्राप्त करके, कुछ विकेट हासिल करके दबाव बनाती हैं ऑस्ट्रेलिया पर, या फिर ये दोनों बल्लेबाज अश्विन किसी तरह से रन बटोरते रहेंगी और ऑस्ट्रेलिया को लक्ष्य के करीब लेकर जाती है।
0: एंड इंडियन सेमीफाइनल होप्स आर हैंगिंग बाय अ थिन थ्रेड ऑफ 36 बॉल्स एंड दोस 62 ऑड रन्स दैट Australians require in those 36 balls, so a very thin margin. And what India need, they have been very clinical so far. They need to pick up wickets on a regular interval, and that chokes up the runs. You know, a new person comes in, takes time to settle and score, and that's what would be important and would be discussed in this drinks break and the huddle between the management and umpire and all the players to regroup themselves, slow down the game a little bit, because those two overs have costed India some runs. Otherwise, 11 runs per over was going to an area where it was match was tilting toward India, but Australia are now again clawing back onto the game. 109 for 3 of 14, 36 more balls to go, and they just need 62, and that makes hearts pumping for everyone all around in our commentators box, the fans all around the globe thinking what's going to happen in those 36 deliveries.
2: और इन 6 ओवर्स में अश्विन ये बात पक्की है कि इस दबाव की स्थिति में आपको अनुशासित और स्टीक बाजी करनी होगी। आपने देखा कि अगर आप कुछ भी कमज़ोर गेंद फेंकते हैं तो बल्लेबाज आपको बख्शेंगे नहीं, जिस तरह से राधा यादव ने 1 ओवर में कुछ कमज़ोर गेंदें फेंकी और उस पर रन बनाने के मौके मिले। श्रीचरणी अपने ओवर की शुरुआत करती है, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद बैकफुट पर जाकर इसे पुल किया गार्डनर ने, और हालांकि ठीक तरह से बल्ले पर नहीं आई थी ये गेंद, मगर उनसे दूर, जिसकी वजह से रन बनाने का मौका। 110 ऑस्ट्रेलिया 3 विकेट पर। श्रीचर

0: ने जो कि सफल गेंदबाज हैं भारत की तरफ से आज भी सफलताएं प्राप्त कर चुकी हैं अपने ओवर की शुरुआत करती हैं। फ्लाइटेड फुल टॉस गेंद जिसे ऑन ड्राइव किया पेरी ने लॉन्ग ऑन पर जब तक स्मृति गेंद को फील्ड करके थ्रो करें एक रन भागने का मौका। श्रीचरण का ये ओवर काफी महत्वपूर्ण रहेगा, अगर किसी बल्लेबाज को आउट करने में वो सफल हो पाती हैं तो दबाव बनेगा ऑस्ट्रेलिया पर। अराउंड द विकेट श्रीचरणी की ये गेंद, इसे उठा दिया मिड विकेट के ऊपर से गार्डनर ने, स्लॉग स्वीप किया, गेंद सीमा रेखा पार कर गई, 6 रन।
1: ये लगा आभा का छक्का।
0: श्रीचरणी ने फ्लाइट की थी मिडल स्टंप पर।

0: खिलाफ बनेगा ऑस्ट्रेलिया पर। अराउंड द विकेट, श्रीचरनी की ये गेंद, इसे उठा दिया मिड विकेट के ऊपर से गार्डनर ने, स्लॉग स्वीप किया, गेंद सीमा रेखा पार कर गई, 6 रन।
1: ये लगा आभा का छक्का।
0: श्रीचरनी ने फ्लाइट की थी मिडल स्टंप पर, जिसे स्लॉग स्वीप किया गार्डनर ने, और बल्ले के बीचों बीच लेते हुए शानदार फॉलो थ्रू और सीमा रेखा से काफी दूर गिरी गेंद, जो ये बताती है कि स्ट्रोक अच्छी तरह से कनेक्ट हुआ था। दबाव भारतीय गेंदबाजों के ऊपर, जिस तरह से स्ट्रोक लग रहे हैं, रन बन रहे हैं, 117 ऑस्ट्रेलिया, 33 गेंदों में 54 रन चाहिए ऑस्ट्रेलिया को, 117 पर 3, 14.3 ओवर हो चुके हैं। श्रीचरनी, जो कि भारत की तरफ से सफल गेंदबाज, एक सफलता प्राप्त कर चुकी हैं, अपना तीसरा ओवर फेंक रही हैं। अराउंड द विकेट, फील्डिंग में थोड़ा परिवर्तन होता हुआ, गार्डनर 27 पर 16 गेंदों का सामना करने के बाद ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रही हैं। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, कदमों का इस्तेमाल करके कवर्स के ऊपर से ड्राइव किया, काफी देर हवा में रही गेंद, राधा यादव है वहां पर, मगर उनसे दूर गेंद फील्ड किया गया और एक रन भागने का मौका। 50 रन की साझेदारी पेरी और गार्डनर के बीच 33 गेंदों में 19 मिनट्स में, दबाव की स्थिति में बल्लेबाजी कर रही थी और पूरी तरह से निकलने का प्रयास कर रही हैं इस दबाव से। एक बार फिर से तेज फेंकी हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, जिसे स्टीयर कर दिया गया बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री की तरफ, 4 रन।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: पैरी के बल्ले से निकला था ये स्ट्रोक, ऑफ स्टंप के काफी बाहर ये तेज फेंकी हुई गेंद थी श्रीचरनी की ओवर द विकेट, और नो बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से, फ्री हिट मिलेगी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को और मौके रन भुनाने के। 123 हुआ ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट पर। दबाव बनता हुआ श्रीचरनी पर, भारत पर, रनों की रफ्तार बढ़ती हुई ऑस्ट्रेलिया की, दोनों बल्लेबाज जो कि 50 रन की साझेदारी कर चुकी हैं, तेज खेलती हुई, आक्रामक होती हुई, लक्ष्य के करीब पहुंचती हुई, रुकना होगा भारत को, और ये रुक सकता है विकेट प्राप्त करके। श्रीचरनी की ये फुल टॉस गेंद, जिसे सीधे बल्ले से ऑन ड्राइव किया स्मृति मंधाना के पास, और जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करें, एक रन भागने का मौका। 124 ऑस्ट्रेलिया 3 विकेट पर।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
4: ले। जानिए आभा के बारे में।
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: So that is the end of the over number 15. 15 overs got 125 for 3. The equation now is 30 balls, 46 runs, what Australians require. And that is bringing in some of disappointment for Indians fans all across. They need to be extremely tight. There was a no ball bowl. There was one bound. 15 runs conceded in that over, which an earlier 17 runs conceded, that brings Australia back into the game. They are 125 for 3, and let us see who's going to bowl the next over. Shefali Verma comes in, first delivery, shorter delivery, pulls it and should go for 4. Yes, it does. So boundaries are coming in barrage for Australia. They have actually changed or switched the gear from first to straight away fourth. 129 for 3.
1: Ye laga abha ka chauka.
5: A similar script been played out, what has been done with South Africa earlier. India was controlling the game till 10-12th over, and after that, India has leaked runs to Marzenka, but this time, Ellis Perry and Ashley Gardner are taking Indians to the cleaners. There's some bit of poor bowling by Indians, and Australians were able to punish them as hard as possible. So 28 balls to go, 41 runs required. This is the last over, Shefali Verma. 3.2 overs she has bowled, 26 runs she has conceded. And this time, third time in this over, cuts it, but straight to the field. There's a misfield there. Deepthi Sharma runs in, can she cuts it off? 1-2, looks unlikely, and this ball also goes to the boundary. So when the times are tough, the mistake happens, and that's what is happening. Harmanpreet needs to come and regroup.

0: as a leader, tell them to calm down. The boundaries are leaking. Kranti got this time. Anyone bounce there, she actually loses the grip of the ball in that bounce, and that conceded a boundary. So two boundaries came off this over of Shefali Verma. That takes their score to 134 for 3. 37 requires of 27 deliveries. Now equation difference is just 10 balls or 10 runs per over per ball. So that has been reducing so far. 15.3 overs gone. 134 for 3. 171 required. So 37 more. There's some talk between Richa Ghosh and Shefali Verma. They need to slow the things down, because off late there's too much favored bowling, which costed them runs. Let's see what she can do this time. A good ball, good length delivery, and just a single. Shefali is saying, don't throw, just it's okay. Single has been conceded, we're fine with it, and has been able to calm down Arundhati Reddy, who's in for Kranti Gaur, who missed the variable bounce and conceded the boundary. And I think in that process, she has hurt her thumb. 15.4 overs gone. 135 for 3. This time, Gardner pulls it to the deep mid-wicket region. Jemima Rodericks fields it and throws it back to Shefali. She's not happy. 25 balls more to go. 35 runs to score. Match is going out of India's grips, because they have 7 wickets in hand. Let's see what they can do. They need wicket badly, but Australians are not giving anything. A similar kind of shot this time by Ellis Perry. Same run, same place, same kind of ball. Single conceded. So 24 balls required. 24 balls to go. 34 runs required for Australia to win this match.
1: ये ओवर भारत के लिहाज से काफी बुरा रहा. भारत के लिए जिस तरह से स्ट्रोक्स लगे, रन बने और रनों की औसत नीचे आई. चार ओवर्स में अब 34 रन चाहिए. 8 से कुछ ज्यादा की औसत दरकार ऑस्ट्रेलिया को. और जिस आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की जा रही है गार्डनर और पेरी द्वारा, उनके लिए ये लक्ष्य कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा. भारत को जरूरत है विकेट की, क्योंकि जब तक ये साझेदारी टूटेगी नहीं, भारत वापस दबाव नहीं बना सकेगा, इस मैच में वापसी नहीं कर सकेगा. ये मुकाबला, ये मैच जो भारत के लिए जीतना बहुत जरूरी है. और इस समय ऑस्ट्रेलिया अपने पक्ष में इस मैच को ले जाता हुआ जिस तरह की बल्लेबाजी अब हो रही है. चार ओवर में 34 रन चाहिए और देखना है कि कप्तान हरमनप्रीत गेंदबाजी के लिए किसे बुलाती हैं. अब तक रेणुका सिंह, क्रांति गौड़, शेफाली वर्मा, श्री चरनी, दीप्ति शर्मा और राधा यादव, इन गेंदबाजों का इस्तेमाल हो चुका है. रेणुका सिंह, श्री चरनी और दीप्ति शर्मा ये सफल गेंदबाज हैं भारत की तरफ से. रेणुका सिंह को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है. ये पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ बैकफुट पर जाकर इसे ऑन ड्राइव किया पेरी ने, जो कि 45 पर बल्लेबाजी कर रही हैं. और जब तक स्मृति लॉन्ग ऑन से फील्ड करके बॉल को थ्रो करें, एक रन भागने का मौका. 138 तीन विकेट पर इस समय ऑस्ट्रेलिया. शॉर्ट थर्डमैन पॉइंट कवर में की ये गेंद गुड लेंथ, जिसे सीधे बल्ले से वापस गेंदबाज की तरफ खेला, फॉलो थ्रू में इसे फील्ड किया गया. रन बनने की कोई संभावना नहीं. 138 पर 3, 16.2 ओवर के बाद 22 गेंदे, 33 रन चाहिए ऑस्ट्रेलिया को. भारत इस समय विकेट की तलाश करता हुआ, जो मिल नहीं पा रही है. रेणुका सिंह भारत की तरफ से सफल गेंदबाज, जिन्होंने पारी की दूसरी गेंद पर विकेट प्राप्त की थी. इस बार उठा दिया गार्डनर ने लॉन्ग ऑफ की तरफ, गेंद हवा में सीमा रेखा पार करती हुई 6 रन.
2: ये लगा आभा का छक्का.
1: गार्डनर पूरी तरह से आत्मविश्वास में, 41 पर बल्लेबाजी कर रही हैं, 23 गेंदों का सामना करते हुए. ये गेंद गुड लेंथ, जिसे कदमों का इस्तेमाल करके बल्ले के बीचों बीच लेते हुए इसे ऊंचा और बड़ा शॉट खेला था लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, और गेंद हवाई रूट लेती हुई सीमा रेखा पार कर गई 6 रन के लिए. रनों की रफ्तार तेज होती हुई 16.3 ओवर में 144 ऑस्ट्रेलिया, 21 गेंदों में 27 रन दरकार ऑस्ट्रेलिया को. लक्ष्य के करीब जाती हुई ऑस्ट्रेलिया. ओवर द विकेट रेणुका सिंह एक बार फिर से गार्डनर के लिए गुड लेंथ गेंद, सीधे बल्ले से ऑन ड्राइव किया. स्मृति मंदाना है वहां पर लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर, जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करें, एक रन भागने का मौका. दोनों बल्लेबाज पूरी तरह से जम चुके हैं, जिम्मेदारी से और सूझबूझ से खेलते हुए. 45 पर पेरी, 42 पर गार्डनर, 145 ऑस्ट्रेलिया तीन विकेट पर 16.4 ओवर के बाद. इस ओवर की दो गेंदें बाकी. रेणुका

0: पासिंग ओवर द विकेट, गुडलैंड गेंद, इसे स्लॉग स्वीप किया मिड विकेट क्षेत्र पर, गेंद सीमा रेखा पार कर गई, चार रन।
1: ये लगा आभा का चौका,
0: दर्शनीय स्ट्रोक पैरी का जो कि 49 पर पहुंच चुकी हैं इस चौके के बाद। गुड लेंथ गेंद थी मिडल स्टंप पर जिसे ऊंचा खेले मिड विकेट क्षेत्र पर जहां कोई फील्डर मौजूद नहीं, और गेंद सीमा रेखा पार कर गई चार रन के लिए। मैच भारत के हाथ से फिसलता हुआ जिस तरह से आक्रामक बल्लेबाजी हो रही है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, 149 तीन विकेट पर ऑस्ट्रेलिया। रेणुका सिंह ओवर द विकेट पैरी के लिए, 31 गेंदों में 49 रन की पारी पैरी द्वारा। इस ओवर की आखिरी गेंद, रेणुका सिंह ओवर द विकेट, ये गेंद काफी बाहर धीमी गति से फेंकी हुई, वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। एक और रन ऑस्ट्रेलिया के खाते में, और ये इतनी बाहर थी गेंद कि अंपायर ने इसे वाइड बॉल की जगह नो बॉल का निर्णय दिया है। फ्री हिट ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज पैरी के लिए जो कि इस समय 49 पर बल्लेबाजी कर रही है, और इस एक नो बॉल द्वारा ऑस्ट्रेलिया के 150 रन पूरे, 19 गेंदों में 22 रन ऑस्ट्रेलिया को चाहिए। रेणुका सिंह इस ओवर की आखिरी गेंद फेंकेगी पैरी के लिए। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया बॉलर के सर के ऊपर से, पैरी ने यह शानदार चौका लगाया।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: इस शानदार चौके से पैरी का अर्धशतक पूरा हुआ, 33 गेंदों में 53 रन पर खेलती हुई इस समय। ओवर की समाप्ति
2: लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ले।
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: So Gardner and Perry maneuvering the Indian bowlers to cleaners. They, as the ball is racing towards the boundary, the Indian hopes are also dashing and they are cruising out of this World Cup. This time a Fullerland delivery plays it nicely to Jemima Rodrigues in deep mid-wicket region. Batsman has ample time to take one run. 17.1 overs gone, 155 for 3. Ellis Perry with 53 of just 33 balls. But the more destructive has been the Ashley Gardner. 25 balls, 43 runs. She couldn't do well with the ball today, but she came back strongly with the batting. 25 balls, 43 runs. She's on strike. What she can do this time? Ellis Perry dances down the plays between the two fielder, but Jemima Rodrigues has worked to cut out. Collects the ball, throws it back to the Deepthi Sharma. So 16 deliveries to go, 15 runs is required, and you can see some disappointed face in the crowd that Indian now thinking that their all hopes to qualify for the semi-finals are now out of their reach. 16 legal deliveries, 15 runs to go, 156 for 3, 17.2 overs already been bowled, just 15 more runs required, and what they can do. This is another scoop shot played nicely. 4 more runs to Ashley Gardner. Would she reach her 50? It's to be seen, but there's a good fielding there by Yashtika Bhatia. And by the time she feels they have taken 2 or 3, we need. Harmanpreet is not happy with this. So they have taken 4 runs by running. There's a slow outfield. Yashtika Bhatia tried to cut the boundary off, but though she managed to keep the ball inside, but that's the batter has been able to take 4 runs by running. And that sums up India's campaign in this World Cup. 11 runs required, 15 balls to go, 160 for 3, 17.3 overs already gone in this match. And Ashley Gardner now on 47 of 26 this time. Now she's slogging and able to give the ball to Jemima Rodrigues at deep mid-wicket region, and she took a single. So 10 required. Would they finish off in this over? It is interesting to see. Ellis Perry has been very clinical today with 54 runs of 34 deliveries she faced. Deepthi Sharma again a waiver.

0: length on the legs, and there's again Jemima Rodrigues has to do a lot of work at the end of the match. She's running all over, she's been omnipresent in the ground, one could say. 9 runs required of 13 deliveries, and so are the Indian hopes fading with each and every deliveries. And we can see smiles in South African camp. They're smiling that they're through to the semi-final this time, and lofts it over 4, so they get a 4 over deep extra cover region. Just 5 runs required of 2 deliveries, and that's the 50 of Gardner. Ashley Gardner, 52 of 28 deliveries.
1: ये लगा आभा का चौका.
2: टी ट्वेंटी मुकाबलों में गार्डनर ने अपना 9वां अर्धशतक पूरा किया इस शानदार चौके से, और इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया अपने लक्ष्य के बिल्कुल करीब आता हुआ. 5 रन दरकार हैं, 12 गेंदें बाकी हैं, और 166 पर 3 ऑस्ट्रेलिया. और ये इस वजह से है क्योंकि पेरी और गार्डनर दोनों ने कमाल की बल्लेबाजी की है, दोनों ने अर्धशतक लगाए हैं, दोनों ने आक्रमण किया है भारतीय गेंदबाजी के ऊपर, और अपनी टीम को उन्होंने जीत के रास्ते पे डाला है. गार्डनर हैं 52 पर और पेरी बल्लेबाजी कर रही हैं 55 पर. श्री चरनी अपना ओवर डालती हुई. ओवर द विकेट फ्लाइटेड गेंद जिसे स्क्वेयर ड्राइव किया बल्लेबाज गार्डनर ने डीप कवर्स क्षेत्र पर, और 1 रन भागने का मौका. 4 रन चाहिए ऑस्ट्रेलिया को इस मुकाबले को जीतने के लिए. इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक एक भी मुकाबला नहीं हारा. आज का मुकाबला जीतकर ग्रुप स्टेज में वो पहले नंबर पर रहेगा और अपने सभी मुकाबले जीतेगा, जिस तरह से ये जीत निश्चित दिखाई दे रही है. श्री चरनी इस वर्ल्ड कप में 13 सफलताएं 13 विकेट्स प्राप्त कर चुकी हैं. अपने इस स्पेल का आखिरी ओवर डालती हुई आज भी एक सफलता उन्हें प्राप्त हुई थी. 167 ऑस्ट्रेलिया 3 विकेट पर. गार्डनर सामना करेंगी श्री चरनी का. फ्लाइटेड फुल टॉस गेंद सीधे बल्ले से ड्राइव लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर, 1 रन फिर से भागने का मौका. 100 रन की साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच. इस 100 रन की साझेदारी में 45 पैरी के हैं, गार्डनर के 53, 57 गेंदें ली हैं उन्होंने इस 100 रन की साझेदारी को बनाने के लिए. 168 ऑस्ट्रेलिया 3 विकेट पर. 10 गेंदों में 3 रन चाहिए. पैरी सामना करेंगी श्री चरनी का. ओवर द विकेट श्री चरनी की ये गेंद फ्लाइटेड ऑफ स्टंपर जिसे ड्राइव किया कवर क्षेत्र पर. दीप्ति शर्मा है वहां पर, रन बनने की कोई संभावना नहीं. ये मुकाबला अब से 5 ओवर पहले जो संतुलित नजर आ रहा था उसने अगर अंतर डाला है इस मुकाबले में, ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में गया है, तो इन दोनों बल्लेबाजों की वजह से जिन्होंने समझदारी से और सटीक बल्लेबाजी की है. इस बार उठा दिया गेंद हवा में, शफाली हैं गेंद के नीचे और इसे कैच कर लिया गया, और पैरी 56 रन की पारी खेलकर वापस लौट रही हैं. ये चौथी सफलता भारत को, मगर काफी देर हो चुकी है. जिस तरह से रन दरकार हैं ऑस्ट्रेलिया के सामने, ये ज्यादा मायने नहीं रखेगी ये सफलता दबाव बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, क्योंकि बिल्कुल जीत की राह पर ऑस्ट्रेलिया इस समय, और ये भारतीय खेमा जानता है, जिसकी वजह से इस विकेट को प्राप्त करने के बाद भी कुछ ज्यादा उत्साह दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि मैच उनके हाथ से फिसल चुका है. ऑस्ट्रेलिया इस मुकाबले में उनसे बाजी मार चुका है. 8 गेंदों में अश्विन मात्र 3 रन चाहिए, और देखा जाए तो इस आखिरी सत्र में, खेल के इस आखिरी पड़ाव में दूसरी ड्रिंक्स के बाद ऑस्ट्रेलिया हावी रहा है और ऑस्ट्रेलिया ने आउट प्ले किया है भारत को.
0: Actually, there's a lot of despair that these two players have brought into Indian dressing room. They have played nicely with 100 in partnership. At one stage, it was looking like 11 runs per over they required, but Australians are, with their never-say-die attitude, they have been able to cross that boundary comfortably. So that wicket for Sri Charni here, that's her wicket number 14 in the World Cup, but that's where she will end her World Cup campaign, because India most likely are crushing out of this World Cup.
2: वेरहम आए हैं बल्लेबाजी के लिए। श्री चरनी की ये पहली गेंद उनके लिए गुड लेंथ, जिसे सीधे बल्ले से खेला गया, रन बनने की संभावना नहीं।

सात गेंदों में 3 रन बनाने हैं ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया ने पहले सटीक प्रभावशाली गेंदबाजी की, जिसकी वजह से भारत को ज्यादा रन नहीं बनाने दिए, और उसके बाद बल्लेबाजी में भी शानदार प्रदर्शन किया, और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, बाहर निकल के ये ड्राइव किया विरहम ने, और गेंद सीमा रेखा पार कर गई 4 रन के लिए।

0: ये लगा आभा का चौका।
1: रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
3: ले। जानिए आभा के बारे में।
4: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
6: तो आपको ये जानकारी दे दें कि आईसीसी टी20 महिला विश्व कप में भारत का सफर आज समाप्त हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया से भारत आज पराजित हो चुका है। पहले टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। 170 रन का लक्ष्य दिया, जिसमें स्मृति ने 38 रन की पारी खेली। शफाली वर्मा 34 रन बनाकर आउट हो गई थी। जमीमा ने 34 रन बनाए थे और फिर कप्तान हरमनप्रीत कौर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 56 रन की पारी खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया को 170 रन का लक्ष्य दिया और जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर्स में ये लक्ष्य प्राप्त कर लिया, जिसमें शानदार अर्धशतक शामिल हैं पेरी के और गार्डनर के। तो आपको ये बताते हुए कि भारत का आज का ये लीग मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ समाप्त हो चुका है, भारत पराजित हो चुका है और वर्ल्ड कप में भारत का सफर बस यहीं तक रहेगा। ये बताते हुए आपको अब ये बता दें कि हमारा विशेष कार्यक्रम आप जरूर सुने, जिसमें फोन करके आप अपने विचार भी साझा कर सकते हैं। सुनिए इस कार्यक्रम को और अपने विचार साझा कीजिए। नमस्कार।
7: प्लेयर ऑफ द मैच

0: आज एक सपना अधूरा रह गया, एक उम्मीद बिखर गई और करोड़ों भारतीय प्रशंसकों का इंतजार कुछ और लंबा हो गया। वनडे के विश्व विजेता टीम T20 की बादशाहत हासिल करने निकली थी, लेकिन सेमीफाइनल की इस कड़ी परीक्षा में ऑस्ट्रेलिया ने भारत की राह रोक दी। जिस गेंदबाजी पर पूरे टूर्नामेंट में भरोसा था, वही आज सबसे बड़ा सवाल बन गई। स्पिन का वो जाल जिसने बड़े बड़े बल्लेबाजों को उलझाया था, आज ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के सामने भी असर नजर आया। दबाव के पलों में गेंदबाज लय नहीं पकड़ सके और मुकाबला धीरे धीरे भारत की मुट्ठी से फिसलता चला गया। क्रिकेट में कहा जाता है, बड़े मैच सिर्फ रन से नहीं बल्कि दबाव झेलने की क्षमता से जीते जाते हैं। आज ऑस्ट्रेलिया ने वही कर दिखाया। तो आखिर कहां छूटी भारत से बाजी? क्या स्पिनर्स उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए? क्या रणनीति में कहीं चूक हुई? और इस हार से टीम इंडिया को कैसे आगे क्या सीख मिलेगी? इस पर चर्चा करेंगे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव, मेरे साथ है मेघा। हमारे साथ तीन विशेषज्ञ हैं, वरिष्ठ खेल पत्रकार सौमित्र बोस, पूर्व भारतीय क्रिकेटर ख्याति गुलानी और बीसीसीआई कोच रविंदर जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत।
1: ख्याति, डू वी गो बैक टू द फर्स्ट इनिंग्स एंड वंडर ओवर वेदर दैट टारगेट वाज इनफ बिकॉज इंडिया हैड एम्पल विकेट्स इन हैंड्स।
2: Yeah, definitely. I think they could have scored a little more.
1: Absolutely. And that was proven by the player of the match, that is Elise Perry.
2: Yes. I think...
3: As Australia own a slice of history at this historic venue, congratulations, Elise. The highest shares in the history of the ICC Women's T20 World Cup. You must be delighted it's come at such an iconic venue.
4: It's been a wonderful day for us. Just incredible atmosphere and amazing support from the crowd. Like the opportunity to play here at Lord's against India, an amazing team that we've had great battles with. So, yeah, really special day for everyone. Really appreciative to everyone who came out and supported today and made it such a fun day.
3: An Australia-India contest always lives up to the billing. When you and Ash Gardner came together, what were the conditions like and how did you construct the partnership looking at the required run rate and the opposition?
4: I think we obviously got to see India bat and how that innings panned out, and we felt like it was a pretty good wicket, and we just needed a strong partnership through the middle there to give us a good platform at the back end. And I thought Ash was absolutely superb. She targeted the first two balls of the over and, you know, sort of regularly found a boundary in those balls, and I think that always puts you on the front foot in the over, and then we're able to kind of go on with it and get a bit of momentum. So Ash was superb. It was so much fun to bat with her today. And yeah, look, I thought we bowled really well as well. In the end it was a pretty good total that we defended, so I thought it was just a good game of cricket.
3: So your 10th outing at the World Cup, ending up being the most productive one with the bat, with a long way to go. You're having a good time out there. How does it feel? How's the prep and just the overall process and results that you're getting on the field?
4: Oh, look, I think it's been a wonderful tournament so far. You know, every venue that we've played at has had a great atmosphere and crowds. The cricket's been so competitive. Like, you look at some of the upset results and various matches that have gone right down to the wire. So it's been such a fun tournament to be a part of so far. We've obviously got hopefully two more big games to go, but you know, most importantly the semi-final first. I thought our preparation's been awesome. Everyone's in a really nice spot and just enjoying each other's company, so we'll see what happens.
3: Elise, congratulations and best of luck for the semi-finals.
4: Thanks so much. Cheers.
1: Elise Perry scoring 56 off 38 balls and being a crucial part of that stand with Ash Gardner that yielded 100 runs. And Khyati, we were discussing about the total because the way this partnership was shaping up, it looked like India didn't have much of a chance.
2: Yeah, definitely, I mean, such partnerships while chasing is commendable, I would say. And definitely, they could have scored a little more. And having said that, the strike rate could have been better of like Jemima and Shefali and as well as Smriti Mandana. But definitely, I would say that today Australia outplayed them.
0: सौमित्रो, 9.1 ओवर में 68/3 थी ऑस्ट्रेलिया की टीम। क्या वहां से भारतीय कप्तान उन पर दबाव बनाने का जो ट्रिक है वो मिस कर गई?
5: नहीं, क्रेडिट शुड बी गिवन वेयर इट इज ड्यू। टू बिग प्लेयर्स कंस्ट्रक्टिंग एन इनिंग्स मोर देन 100 रन्स। एक टाइम तो हम जोक कर रहे थे शायद इंडिया आराम से जीत ही जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। दिस इज वेयर द हॉलमार्क ऑफ अ प्लेयर हु हैज प्लेड 178 T20 internationals, partnering with another one, just a 103 T20, इनका experience आज हमको देखने को मिला। Good cricket क्या होता है? Good cricket is construction, regardless of the format, whether it is T20, whether it is ODI or test cricket. पार्टनरशिप हर एक फॉर्मेट में होती है और वही आज हमको देखने को मिला। ये नहीं कि हमारा बोलर्स ट्राई नहीं किया, शायद मुझे लगा कि विकेट और बेटर हो गया था सेकेंड हाफ में, जिस तरह से वो बॉल मिडल कर रहा था। और सबसे बड़ी बात है दे वर फाइंडिंग द गैप्स, जहाँ पे जैसे जिस तरह से वो स्ट्रोक्स ले रहा था अलॉन्ग द ग्राउंड सिक्सेस, फैंटास्टिक। इट इज अ क्लासिकल चेस एंड इट हैज बीन प्रूवन बाय टू वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड वर्ल्ड टी20 ऑलराउंडर्स।
1: Absolutely, credit where it's due. But रविंदर, शुरुआती झटका भारत ने दिया ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड के विकेट के फॉर्म में, लेकिन अगेन 10 ओवर के मार्क के बाद जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने कंसोलिडेट करना शुरू किया, तब भारतीय गेंदबाज they were looking short of ideas.
6: देखिए, यही अच्छी ग्रेट टीमों की पहचान यही होती है, तो विकेट दो तीन निकल गए लेकिन उन्होंने कहीं पर रन रेट को बढ़ने नहीं दिया। 10 रन की रन रेट लगभग आ चुकी थी लेकिन वो उसको मेंटेन करते हुए इतना मेंटेन किया कि आखिरी एक ओवर स्पेयर करके खत्म हो गए। 38 बॉलों में 56 पैरी ने बनाए हैं और 29 बॉलों में 53 रन, मतलब ये तब आया तब 3 विकेट आउट हो चुके होते, 10 ओवर में लगभग 70 रन के करीब थे, 9 ओवर में इन्होंने 100 रन बना दिए। ये यही एक अच्छी टीम की पहचान होती है। यहाँ पे इंडिया चूक करके, मैंने आपको पहले बताया कि जेमिमा जब बैटिंग कर रही थी वहां पर ये स्ट्राइक रेट, वो ये नहीं कह रहा कि 180 रन बनते रहे जीत जाते हम, लेकिन वहां ये स्ट्राइक रेट और बेटर हो सकता था। लेकिन सबसे बड़ा जो कहीं नहीं रहे, विकेट एक लिया रेणुका ने लेकिन आप देखिए कोई भी आसपास चढ़नी के अलावा कोई इंप्रेस नहीं कर पाया। इसमें अगर आप 180 रन भी बना पाते तो उसमें 180-85 में भी लग नहीं रहा जिस हिसाब से ये मैच जीत सकते थे। तो बॉलिंग में इंडिया को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, टोटली आउटप्लेड ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया क्योंकि आज।
7: ख्याति, अगर इसी चर्चा को आगे बढ़ाएं जो रविंदर चर्चा कर रहे हैं, क्रांति गौड़ को आपने खिलाया नंदिनी शर्मा की जगह पर इस प्लेइंग 11 में, सिर्फ एक ओवर की गेंदबाजी की 12 रन दिए। जब स्पिनर्स पर बहुत ज्यादा मार पड़ने लगी 14वें ओवर में, श्रीचरणी के ओवर में

0: कूलर रन गए और उसके बाद धावा बोल दिया एक तरीके से गार्डनर और पेरी ने। क्या वहां पर क्रांति गौड़ को एक ओवर के लिए लाया जा सकता था?
1: डेफिनेटली लाना चाहिए पेसर को, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि अगर नंदनी का आप देखेंगे उसके पास काफ़ी वेरिएशन है, स्लोअर वंस हैं, उसके पास बाउंसर्स भी हैं, बहुत अच्छे उसके पास वेरिएशन हैं, बहुत अच्छे तरीके से वो डालती है राइट एरियाज में। आई थिंक नंदनी को ही आज खेलना चाहिए था आज का मैच, क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म करती आ रही हैं, हंगर है। एंड क्रांति गौड़ को पहले अगर बिठाया है तो आपको डेफिनेटली इसने क्रूशियल मैच में नंदनी को बाहर नहीं बिठाना चाहिए था और क्रांति को ऑल ऑफ अ सडन इतना बड़ा मैच नहीं देना चाहिए था।
2: और इसी बीच हमारे साथ कॉलर्स जुड़ गए। हम अपने श्रोताओं को दोबारा से याद दिलाना चाहेंगे कि वो अगर हमारे कार्यक्रम में जुड़ना चाहे तो वो हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं 0112342108385। अभी जो श्रोता जुड़े उनसे बात करते हैं। नमस्कार।
3: नमस्कार मैडम
2: जी, अपना परिचय।
3: हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। मैंने रविंद्र साहब से मैं बात करने का था। सर नमस्ते। सर
4: नमस्ते। नमस्ते
3: सर, पहला बैटिंग लेने से बहुत बड़ा गलती की है ना सर रविंद्र ने। फिर कौन ये लोगों को ऐसा सलाह देते सर, सेकंड बैटिंग लिए तो 99% इंडिया जीत भी दिया।
4: देखिए 170 रन बना, 170 रन टारगेट अच्छा था, लेकिन आप पहले बैटिंग करते हैं बाद में बैटिंग करते हैं, प्रेशर की गेम थी। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी फाइनल सेमीफाइनल से पहुंचा हुआ है। इंडिया ने सोचा कि हम पहले बैटिंग करके हम अच्छा स्कोर बना सकते हैं, हरमनप्रीत ने एक अच्छी एफर्ट भी करी बाद में, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर आप पहले जिस तरह के बॉलिंग अटैक है आपने देखिए, एक क्रांति गौड़ एक ओवर किया, श्रेणुका ने चार ओवर किए, आप जहां पे बिल्कुल आपने सही बोला कि अगर जहां पे आपको स्पिनर्स पिट रहे थे वहां पे आपको यही तो एक कप्तानी की बात होती है, एक आध ओवर चेंज करके मीडियम पेसर को कराना चाहिए था। एक विकेट अगर वहां पे निकलता, ये दोनों जो 9 ओवर में 100 रन की पार्टनरशिप थी वहां पे आपको गेम को कहीं चेंज कर सकते थे। आपने स्पिनर्स को बिल्कुल एक रिमोट की तरह चलाते गए, एक स्पिनर्स पिटा दूसरा लगा दिया, दूसरा पिटा तीसरा लगा दिया, लेकिन कहीं आपने कहीं गेम को कहीं चेंज नहीं किया, गेम की स्पीड को वहां पर मुझे लगता है ट्रिक मिस कर गए।
0: थोड़ी चर्चा रेणुका सिंह ठाकुर पर भी सौमित्रो, पूरा टूर्नामेंट बहुत ही अनसर्टेन रहा और पिछले अगर एक डेढ़ साल में उनकी आप फॉर्म को देखें, चाहे वो WPL में भी उनकी फॉर्म को देखें, इकोनॉमी रेट काफ़ी ज़्यादा रही है, वो नेचुरल स्विंग गेंदबाज के तौर पर आई थी, वो मूवमेंट उनको नहीं मिलता नजर आ रहा है, ज्यादातर गेंदबाजी मिडिल और लेग स्टंप पर कर रही हैं जिससे कि बल्लेबाज काफ़ी आसानी से उनको खेल पा रहा है, एक बड़ा सवाल।
5: जरूर, और उसका देखिए उसका पेस भी अभी कम हो गया, ये होते रहता है कि जिद शीज नाउ अ सीनियर पेसर, इट इज़ टाइम टू लुक अहेड। जैसे आप नंदिनी शर्मा है, पाटिल है जो इंजर्ड हो गया था, नाउ इट इज़ टाइम टू बिल्ड, रिकॉन्स्ट्रक्ट पीपल, रिकॉन्स्ट्रक्ट द बॉलिंग। हालांकि हमारा स्पिन स्ट्रेंथ स्टिल गुड, हमारा दृष्टि चरण इज स्टिल वन ऑफ द हाइस्ट विकेट टेकर्स ऑफ द T20 वर्ल्ड कप। आई थिंक देर आर लेसन्स लर्न फ्रॉम डिफीट्स ऑल्सो, आई थिंक दिस डिफीट विल टेल द टीम मैनेजमेंट वॉट वेंट रॉन्ग। आप देखिए आप 5 मैच खेले हैं and you're still not comfortable with your playing 11. We are still saying whether Kranti should have played or so-and-so should have played. But why should that be asking these questions at all? And especially when you're playing your 5th match, and your 5th match is probably your best match you have to play and the most decisive match. We are still don't know. Does it reflect well on the Indian team? No.
2: And how the captain reflects on that, both the captains, be it Harmanpreet Kaur or Sophie Molineux, let's listen in.
6: Yeah, I think end of the day we got decent total on the board. In between when we were batting, I thought we were a little short, but I think the last over did the job for us. But unfortunately, we didn't play well. We didn't play well against good teams. I think we really need to rethink about that.
7: Did part of it come back to batting in probably those first 10 overs and being sort of a runner ball, the retirement of Jimmy Rodrigues? Could that have come a little earlier?
6: I think they were looking for the run, but unfortunately they didn't get in. I think they bowled really well. They bowled according to their plans, and I think we thought we didn't lose a wicket, but at the same time we didn't get what we expecting. But I think if I have to think about the entire tournament, I think we didn't play good against good teams, and I think as a group we really need to rethink that what we have to do against good teams.
7: Explain to me your performance against Australia. You kind of like playing against them. Your 6th half century.
6: Well, I think I feel against best teams always your best comes, and they are, you know, one of the best teams in the world, and you know they are been pushing us to get to that level, and I think it was a good game, but unfortunately we didn't cross that line today.
7: And I think you might have a few teams ringing you up going, how did you turn around your catching? You dropped 4 catches in 5 overs

0: That is why this is the time to change gears, rethink, and the team management has to think, what should the future be?
1: ख्याति, वनडे वर्ल्ड कप जीतने के बाद बहुत ज्यादा समय नहीं बीता है. अगर आप टीम की कोर की बात करें, मंजूत की बात करें, काश्वी की बात करें, क्या ऐसा हो गया कि ये टीम ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाई?
2: सिर्फ सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके एक्स फॉर्मर वेमेन क्रिकेटर्स हैं, आई थिंक उनको पार्ट बनाना चाहिए इसका. मिथाली राज हैं, आई थिंक बैटिंग यूनिट को शी कैन ऑलवेज गिव द आई मीन एडवाइस एंड रिकमेंडेशंस. एंड आई थिंक झूलन गोस्वामी, शी इज़ फ्री, डेफिनेटली दे शुड मेक हर अ पार्ट ऑफ द टीम. आप मैनेजमेंट देखेंगे, मैनेजमेंट में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने वेमेंस क्रिकेट के लिए खेला हो. डेफिनेटली आई मीन सारे मेन कोचेज आर देयर, मेन स्टाफ इज देयर. तो आई थिंक उनको पार्ट बनाना चाहिए, दिस इज द मेन थिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक फील्डिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी फॉर्मेट. So I think especially in T20, if you see, intent should be there first of all, and then fielding is an integral part. They should work towards it.
3: और हमारे श्रोताओं का ओपिनियन भी इंटीग्रल पार्ट है हमारे शोज का. तो अभी फिर से हमारे साथ एक श्रोता जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं. नमस्कार.
4: नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र पाटिल है, अमलनेर महाराष्ट्र जलगांव से बात कर रहा हूँ.
3: जी, आपका स्वागत है शो में. क्या आपका सवाल या क्या आपकी टिप्पणी है?
4: जी, मेरा सवाल तो ये है कि कभी कभी मैनेजमेंट की गलत डिसीजन की वजह से मैच भी हार सकते हैं हम लोग. इसका उदाहरण राधा यादव के बारे में देखने को मिलता है.
3: जी,
1: राधा यादव को टीम में शामिल करने पर ये सवाल कर रहे हैं. दो ओवर में आज 24 रन दिए, लेकिन कप्तान ये चाहती थी कि शायद लोअर मिडिल ऑर्डर में वो कुछ आकर बड़े शॉट्स खेल सकें, शायद इसलिए उनको टीम में रखा गया.
0: द ब्यूटी ऑफ स्पोर्ट इज हाइंडसाइट, चर्चा. और हम माहिर है, इंडियंस आर वेरी गुड एट चर्चा. चर्चा करके आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा. चर्चा करके अगर हमारा भविष्य अच्छा हो सकता है तो maybe that is a possibility. Radha Yadav कर सकते थे, ये कर सकते थे, वो कर सकते थे. हरमनप्रीत आज बैटिंग करके 50 रन किया, फोर्थ और फिफ्थ 50 अगेंस्ट T20, एंड शी ऑलवेज फिनिशेज ऑन द रॉन्ग साइड. बट अनफॉर्चुनेट है, दिस अनफॉर्चुनेट. हमने सोचा कि शायद आज चेंज हो जाएगा. हमने जब 170 रन बनाया, हमने सोचा चेंज हो गया. बट दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ बिग टीम लाइक ऑस्ट्रेलिया, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दैट. छः टाइम का चैंपियन तो ऐसा नहीं हुआ है, राइट? और देखिए, दे एंजॉय देयर क्रिकेट एंड हाउ इजीली दे पेस देयर इनिंग्स. हमारा जो इनिंग्स है, हम पेस करना अभी तक नहीं सीखे हैं. आप पाँच मैच हमने जो देखा है, we have never looked like a fluid and solid and smooth sailing team. Somewhere or the other we were faltering, right? And the two big matches we faltered. Antrit says that hindsight is good, but the future, as Kathy said, you have to ponder over it. You mentioned about Renuka Singh. What is her future? The question marks are there. Those question marks have to be addressed very quickly.
3: और राधा यादव का हमने जिक्र किया, पिछले मुकाबले में इस विश्व कप का जो पहला अपना मैच खेला, 3 विकेट उन्होंने झटकाए. हालांकि भारतीय टीम के पास प्रिपरेशन के लिए काफी वक्त था. घर पर 5 मैच की T20 सीरीज खेली रविंदर, उसके बाद साउथ अफ्रीका गई, वहां पे 5 मैच की T20 सीरीज खेली, ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 3 मैचेस के उन्होंने सीरीज खेली, और उसके बाद फिर इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में प्रिपेयर करने का मौका मिला. एक्सपेरिमेंटेशन जो था वो वहां तो चला ही, मेन टूर्नामेंट में भी देखने को लगातार मिला.
5: देखिए, आपके सारे प्लेयर्स खिला रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, हर मैच में 2 चेंजेस, 1 चेंजेस, कहीं मोमेंट कहीं आपका कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहा. आपकी बॉलिंग में आपको बहुत ध्यान देना है. सबसे बड़ी बात, फास्ट बॉलर आपके पास 1 ओवर 2 ओवर के लिए बॉल कर रहे हैं. स्पिनर्स पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, एक चर्दी को छोड़कर. बीच में आपकी जो फिट, और सबसे बड़ी चीज है फिटनेस है. आप ये फिटनेस देखिए, जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की फिटनेस है और इंडियन प्लेयर की फिटनेस है. फील्डिंग में देखिए आप, उन्होंने कम से कम 15 से 20 रन बचाए होंगे इंडिया के, कम से कम 15 से 20 रन. एक अच्छा ओवर, एक लास्ट का अच्छा ओवर हरमनप्रीत के कारण आपको 170 दिख गया, तो ये 150 था, और आप वन साइड हार रहे थे मैच को. ये तो डिपेंड, ये तो आप एक जीत जाते तो आपकी सारी चीजें, आप जो आज डिस्कशन कर रहे हैं, कोई भी नहीं करता, सब बोलते बहुत ही बढ़िया है. लेकिन इंडियन टीम को देखिए, आपने हराया किसको है? बांग्लादेश को, पाकिस्तान को, ऐसी टीमों को, जहां पर 2 अच्छी टीमें हैं वहां पर आप लोग कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, आप वो देखिए. पिछले मैचों में बैटिंग, बॉलिंग का आपका क्या लेवल था, आज फील्डिंग का क्या लेवल था, इसमें आपको अगर कम्पीट करना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एक ही तरह के सिस्टम बना के आप पूरे मैच नहीं खेल सकते।
0: मेरा और एक आई वांटेड टू ऐड समथिंग आना कि जेमाइमा को अगर रिटायर्ड आउट करना ही था इतना देर में क्यों किया? मे बी वन मोर ओवर कुड हैव गिवन अस अनदर 20 रन्स। ये दीज आर क्वेश्चंस मैनेजमेंट में, जैसे एक श्रोता ने सवाल पूछा है कि मैनेजमेंट का क्या रोल रहता है। रिटायर्ड आउट का डिसीशन तो ऑन फील्ड नहीं लिया जाता, वो मैनेजमेंट लिया लेते हैं, एक ओवर पहले ले लेते हैं, शायद हमको और भी टोटल में 15 रन का इजाफा होता है। तो दीज आर मिस्टेक्स, दीज आर क्वेश्चन मार्क्स,
5: ये ब्लंडर्स हैं। आखिरी ओवर में आप ऋचा घोष को भेज रहे हो दो बॉलिंग खेलने के लिए, आपका पहली बॉल से उम्मीद करोगे को छक्के मारेगी? जो लड़की 35 बॉल सेट होकर खेल रही है उसको आपने बाहर बुला लिया, उसके पास ज्यादा चांस था, वो सेट विकेट का पेस देख चुकी थी, उसके पास ज्यादा चांसेस था।
1: सेमीफाइनल मुकाबलों पर भी चर्चा करेंगे, उससे पहले एक छोटा सा सवाल हरमनप्रीत।
2: क्वेश्चन आप मुझसे तो पूछ सकते हो, आई थिंक एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें हरमन से जब किसी ने पूछा था उसने ये बोला, पूछा था कि क्यों आप चाहते हो कि मैं खेलना छोड़ दूं, तो मैं भी यही आपसे पूछूंगी कि क्या वो खेलना छोड़ दें?
3: Well, we talked about experience that Harman brings, but then Sri Charini, who made her debut just last year, she has finished this edition of the World Cup with 14 wickets, becoming the highest wicket taker in any single edition for India, and as of now, also the highest wicket taker in this edition of the World Cup. So, Mitro, your concluding thoughts on the player?
0: Excellent. She's definitely a great potential. But the potential counts for nothing when the results don't show. That is the ultimate truth of sport. His score line matters. Sri Charini is beautiful, great. Smriti Mandana, great, fantastic. But these are adjectives which can add to cricketers. Harman should play or not, God knows. But ultimately thing is the result that matters, and we are not in the semifinals.
1: अब ये T20 विश्व कप अपने बिजनेस एंड पर पहुंच चुका है। 30 जून को पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का सामना वेस्टइंडीज से होना है और फिर 2 जुलाई को इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीम आमने सामने होगी। ऑस्ट्रेलिया विजय रथ पर सवार है रविंदर, वेस्टइंडीज की टीम कह सकते हैं कि कभी हां कभी ना वाली फॉर्म उनकी रही है, कभी बढ़िया खेली कभी खराब खेली। ऑस्ट्रेलिया फेवरेट पहले सेमीफाइनल में?
5: बिल्कुल, मुझे फेवरेट ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में नहीं, टूर्नामेंट की लग रही है। जो जिस हिसाब से कॉम्बिनेशन है, जो उनका आपस में जो फील्डिंग, जो उनका जो उन्होंने अपना जो स्टैंडर्ड सेट किया है वो देखने वाकई लाजवाब है। ऐसा लगता नहीं है कि लड़कियां खेल रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। इतनी अच्छी फील्डिंग, चेस करते हुए ड्राइव करते हुए आ रही है, वापस भागते हुए आ रही है, मैंने तो इंडियन टीम को देखा ही नहीं कभी इस तरह की फील्डिंग करते हुए। ये जो लेवल दिखा रही है ये वाकई एक चैंपियंस लेवल है। मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट के लिए चैंपियंस फेवरेट।
3: And this is the first time in Australia are not the defending champions in T20 or ODI World Cups, and that's why they're extremely hungry. West Indies, on the other hand, are coming off a loss to Ireland, Kathy.
2: Yeah, I mean, that's also news. I mean, that's a big news, definitely. I mean, we are not ready for two big news, and that too sad news.
1: दूसरा सेमीफाइनल जहां पर इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। दक्षिण अफ्रीका भी आज बहुत मुश्किल से बांग्लादेश से पार पाए हैं, उनका भी फॉर्म बहुत अच्छा नहीं रहा। भारत के साथ भी जीते, वो जीवनदान मैरिजन कैप को अगर नहीं मिला होता तो शायद वो उस मैच की स्थिति अलग होती। इंग्लैंड वहां पर एज पर नजर आ रही
0: 100%, they will start as with the fancy team, South Africa will be the underdogs and they love to be the underdogs. इस तरह का जो टीम जो लड़खड़ा था वो सेमीफाइनल पहुंच जाते हैं, they like to be the underdogs. But they have match winners. Don't forget their captain, Marizon Capps, Tasman Brits, fantastic. They're all capable cricketers. And in T20 format, 20 overs, they can be a very, very solid force. And you just need 4 or 5 people to perform, not the entire team. And unka feeling bhi theek thaak hai. Aur dekhiye, England will obviously start at favorites, unbeaten run, superb run. But that will be a cracker for match. I would say South Africa have a chance to go to the final.
3: Kathy there alluding to India's one run loss to Ireland, which means that for the first time ever they've lost a series to Ireland, and that coming by a margin of 2-0 in men's cricket. Coming back to women's cricket, or wapas se England aur South Africa ke us semi-finals के लिए बिल्डअप करते हुए यहाँ पर हम रविंदर, इंग्लैंड की तरफ से हमने देखा है कि हालांकि उनकी कप्तान को इंजरी हुई, लेकिन जिस तरह से चार्ली डीन उनके एब्सेंस में लगातार फिट इन होती आई है सिवा ब्रेंट के नहीं होने पर।
5: बिल्कुल, इंग्लैंड का इंग्लैंड बिल्कुल एक ऐसी टीम लग रही है जो कि सिर्फ जो इस समय ऑस्ट्रेलिया को लग रहा है कि इन दोनों के बीच में जो डिजर्विंग जो फाइनल दिख रहा है मुझे, क्योंकि वही

0: लगता है जो चैलेंज कुछ रख सकती हैं, क्योंकि जो ये लोग, अब सबसे बड़ी बात है आपको अगर ऊपर आना है आपको सबसे पहले अपनी फिटनेस, अपने फील्डिंग पर जोर देना पड़ेगा। बैटिंग बॉलिंग तो बात की बात है, सब करेंगे, लेकिन जब तक आप अपने फील्डिंग का लेवल नहीं सेट करेंगे, आपकी फिटनेस का लेवल सेट नहीं करेंगे, तब तक आपको इतने ऊपर की टीमों से आप कम्पीट नहीं कर सकते। देखिए आप शेफाली को लेकर, आप शेफाली बॉलर नहीं है, आप बैटर था चाहिए, लेकिन आप उसको पार्ट टाइम बॉलर को फुल टाइम बनाना शुरू करोगे, बांग्लादेश पाकिस्तान के अगेंस्ट चल जाएगा, अच्छी टीमों के अगेंस्ट आप नहीं चलेगा। देखिए 9 ओवर में 100 रन बना के मैच खत्म कर दिया 3 विकेट निकालने के बाद। तो यहां पे आपको जो मैनेजमेंट है, और जो एक ओवर पहले एक सेट बैट्समैन को बाहर बुला रहे हैं, इस पे बहुत ही बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है मुझे कि ये क्या इनकी विजडम है, क्या सोच के ये लोग वापस बुलाए उनको।
1: छाती अगर कुछ समय पहले तक हम चर्चा करते थे तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका, ये 3 देश ऐसे माने जाते थे जहां पर 30 गेंदबाजों का बोलबाला होता था। लेकिन अगर इस पूरे विश्व कप में हम देखें तो ज्यादातर स्पिनर्स, किसी भी देश की बात करें, ऑस्ट्रेलिया ने कई मैचेस में पहला ओवर स्पिनर को दिया, भारत 4-4 स्पिनर्स के साथ खेलता नजर आया, दक्षिण अफ्रीका ने भी प्राथमिकता दी, खैर पाकिस्तान और बांग्लादेश की तो स्ट्रेंथ स्पिन गेंदबाजी रही है। क्रिकेट कितना बदल गया इन देशों में?
2: देखिए बिल्कुल बदल भी चुका है, अगर आप देखेंगे कि आजकल जिस तरीके से इतनी क्रिकेट बढ़ती जा रही है तो थोड़ा टाइम बहुत ज़्यादा लगाना पड़ रहा है पेसर्स को ग्राउंड पे, और लोड मैनेजमेंट भी ध्यान में रखते हुए आई थिंक वो सारी चीज़ देखते हैं, और उस हिसाब से इतनी इंजरीज हो रही है। एंड आई एम श्योर इस तरीके से अगर बढ़ता जाए तो दोनों तरफ से अब हमें स्पिनर्स देखने को मिल भी सकते हैं।
0: देखिए आप ये इस पे मैं ऐड करना चाहूँगा, 20 ओवर में 180 रन आराम से चेज हो रहे हैं, 9 रन की एवरेज, एक जमाने में 9 रन की एवरेज बहुत बड़ी मानी, आज 180 रन चेज हो रहे हैं, इजीली चेज हो रहे हैं। तो आप देखिए विकेट्स कैसे बनाए जा रहे हैं, कहीं ऐसा लग रहा है कि विकेट्स बॉलर्स को हेल्प कर रहा है, सब बैट्समैन विकेट हैं, कहीं पे भी नहीं लग रहा कि कोई बॉलर्स की विकेट है, तो उन बॉलर्स के लिए बहुत ही कम चांस बचा था।
3: And Soumitra, this unprecedented heat wave in England, and during the course of the World Cup, we have seen that back-to-back games get played on a single surface. So that too had a say in how spinners fared, apart from their own talent as well.
4: They should have favored the Indians. The Indians are, you know, used to heat. They're used to playing in spinning conditions. It's like it should have been like home conditions, but we did not utilize those home conditions because ultimately, it actually is a supportive question to your previous question on spin. The other countries have become equally intelligent. It is not only just T20 cricket, it is in all formats of cricket where spin has a huge domination in the say of the contest of a match. It's largely because this is a workload jo hota hai aajkal din mein, this tremendous amount of workload, and that is why you need to have spinners to give you the cushion to the fast bowlers so that there is a balance in the team. Agar aapne bola heat hai to spin ho rahe hain to hum jeete kyun nahi, so it's just not about conditions, it is also what goes into the dressing room.
1: जी हाँ बिल्कुल, हर विश्व कप सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं देता, कुछ कहानियां भी छोड़ जाता है। आज भारत की कहानी जीत पर नहीं, एक अधूरे सपने पर थम गई, जिस सफर ने करोड़ों उम्मीदों को उड़ान दी थी वो फाइनल की दहलीज से ठीक पहले रुक गया। ऑस्ट्रेलिया ने बेहतर खेल दिखाया और भारत का इंतजार एक बार फिर लंबा हो गया। लेकिन याद रखिए, हर मंजिल का अंत आने वाला समय होता है, यही खेल की सबसे बड़ी सच्चाई भी है। इसी विश्वास के साथ कि ब्लू जर्सी फिर लौटेगी नए जुनून और नई कहानी के साथ, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमें दीजिए अनुमति। सौमित्रो आपका, ख्याति आपका, रविंदर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
4: थैंक यू।
3: और इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे उन लोगों का जिन्होंने बिहाइंड द सीन्स मेहनत करके प्रोग्राम को आप तक पहुंचाया। हमारी टेक्निकल टीम में है लिली, सचिन, मनोज और संदीप, हमारे प्रोडक्शन असिस्टेंट थे कविता, तन्मय और अमीशा, और हमारे प्रोड्यूसर हैं शाहनवाज खान। वापस मिलेंगे सेमीफाइनल्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।
5: प्लेयर ऑफ द मैच।
6: अभी आप ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए T20 क्रिकेट मैच पर आधारित विशेष कार्यक्रम प्लेयर ऑफ द मैच सुन रहे थे।
7: यू हैव बीन लिसनिंग टू अ स्पेशल प्रोग्राम प्लेयर ऑफ द मैच ऑफ द T20 क्रिकेट मैच प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ऑफ द ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।
8: ये दामन है लिख

दोस्तों, मोहब्बत की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें वजह कम और एहसास ज्यादा होते हैं। दिल जब किसी को अपना मान लेता है तो फिर फासले ये सब नक्शे पर रह जाते हैं, एहसासों में नहीं। किसी का ख्याल बार बार आना इत्तेफाक नहीं होता। शायद दिल अपनी पसंद बहुत सोच समझ कर चुनता है। और हर कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा वो नहीं होता जहां बार बार आई लव यू कहा जाए, बल्कि वो होता है जहां बिना कहे सब कुछ समझ लिया जाए। कुछ लोग हमारी जिंदगी में शायद सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि हमें यकीन हो जाए कि खूबसूरत ऐसा

और हर कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा वो नहीं होता जहां बार बार आई लव यू कहा जाए, बल्कि वो होता है जहां बिना कहे सब कुछ समझ लिया जाए। कुछ लोग हमारी जिंदगी में शायद सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि हमें यकीन हो जाए कि खूबसूरत एहसास आज भी जिंदा है। अगर किसी की मुस्कान आपकी वजह से हो तो समझ लीजिए आपने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत कमा ली, क्योंकि प्यार जताने के तरीके बदल सकते हैं लेकिन किसी के लिए दिल में जगह बन जाना, ये एहसास कभी भी पुराना नहीं होता। आप सुन रहे हैं रजनीगंधा ओनली ऑन 100.7 एफएम रेनबो पर। रजनीगंधा का पहला पड़ाव रात 11 बजे तक। इन बातों के साथ एक और गीत, और इस गीत के साथ ही न्यूज के उस पार रजनीगंधा एक बार फिर से करेगा आपका इंतजार। रहिएगा जरूर हमारे साथ रात 12 बजे तक। फिलहाल आज रात के हम सफर आरजे प्रीति है आपके साथ, सुनते रहिए